मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों

0: की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः बेला की आराधना वंदना।

आकाश में रंगों का उत्सव, धरा पर जीवन का उद्भव। नहीं नाप सकती सकल सिद्धियां भी, साथ मिलकर उड़ते पंछियों का वैभव। जी हां श्रोताओं, हमारा मन जब भी धरती पर जीवन के वैभव को देखता है, उस परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। उसका असीम प्रेम, उसकी अनंत कृपा बनकर एक नई भोर हमारे जीवन में उतरती है। एक नया दिन जैसे उसका उपहार हमारे लिए। परमेश्वर के इस असीम प्रेम को महसूस कर मन वंदना में रमने लगता है। ये वंदना प्रेम में डूबती है, स्वरों से सजती है और मधुर कंठ से प्रवाहित हो प्रकृति के कण कण में समा जाती है। भोर की पहली किरण के साथ अपने राष्ट्र का गौरव गान कर उठती है।

ये संसार दुखों का सागर है और प्रभु का नाम एक नाव की तरह है जिसके सहारे भक्त इस सागर को बड़ी सुगमता से पार कर जाता है। भक्त का अवलंब केवल उसका आराध्य होता है। जीवन की सारी विपदा, सारे कष्ट, सारे संकट उसके चरणों में समर्पित कर अपने प्रभु के भरोसे ही वो निश्चिंत आगे बढ़ता है।

आत्मा की मांग है शाश्वत की, चिरंतन की, सनातन की। आत्मा की मांग है आत्मा की। आत्मा से आत्मा के मिलन पर जो रस पैदा होता है उसी का नाम भक्ति है। शरीर की सीमा है ठोस, मन की सीमा है तरल, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं। इस आत्मा से उस परमात्मा के मिलन का ही नाम है भक्ति। यही कारण है कि भक्त हृदय प्रतिपल अपने आराध्य की प्रतीक्षा में ही डूबा रहता है।

ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। कर्म से भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी है। ज्ञान से भी उस तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये यात्रा भी संक्षिप्त नहीं है, बहुत सी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। लेकिन भक्ति एक छलांग है, इसमें सीढ़ियां नहीं हैं और न ही दूरी। भक्ति एक पल में घट सकती है, तत्क्षण घट सकती है, ये केवल भाव दशा की बात है। इधर हमारा भाव और उधर रूपांतरण, लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है ईश्वर से विशुद्ध प्रेम की।

हमारा भटकना तभी तक है जब तक हम ईश्वर को बाहर तलाशते हैं। जैसे ही हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, उस विराट का ठीक ठीक पता मिल जाता है। हमसे विलग वो है ही नहीं। हर घट में रमा, कण कण में समाया, वो ही तो है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। इस ज्ञान के साथ ही भक्त की हर सांस अपने आराध्य के नाम स्मरण में डूब जाती है।

0: इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना। गायक कलाकार थे हरिओम शरण, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अनुराधा पौडवाल और अनूप जलोटा।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शीर्षा रामचरितमानस गान। स्वर है कविता कृष्णमूर्ति का, संगीत सतीश भाटिया का।

पार्वती की हस्तरेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का, संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन। इस कार्यक्रम में विषय है भोर, आलेख डॉक्टर कैलाश मड़बैया का है।
1: प्रातःकाल एक नए दिन की शुरुआत ही नहीं, जिंदगी के एक नए अध्याय का शुभारंभ भी होता है। चिंतक कहते हैं कि हर शाम जीवन अस्त होता है और हर सुबह जीवन फिर उदय होता है। इसलिए जितने जल्दी आप उठ जाते हैं, उतने ही जल्दी आप नए दिन अर्थात जीवन का प्रारंभ कर पाते हैं, और उसी अनुपात में आपको उस दिन अधिक समय जीने को मिल जाता है। उषा काल को इसीलिए अमृत काल या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि वनस्पति पेड़ पौधे अलसुबह ही ताजा ऑक्सीजन छोड़ना प्रारंभ करते हैं और उस समय ही प्रदूषण की मात्रा वायुमंडल में सबसे कम होती है। ये तो सभी जानते ही हैं कि ऑक्सीजन जीवन वायु का दूसरा नाम है। जैसे ही सूरज की पहली किरण उदय होने के साथ संसार में हलचल प्रारंभ होती है कि प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है, इसलिए फिर शुद्ध ऑक्सीजन का अभाव बढ़ता जाता है। भोर का धुंधल का छटे, सूर्य की पहली किरण फूटे, इसके चार पहर पहले

0: आपका जीवन प्रारंभ हो जाना चाहिए, जिससे सूर्योदय की स्वर्णिम आभा का स्वागत आप पूरे मनोयोग से कर सकें और उस स्वर्णिम ऊर्जा को आप भरपूर ग्रहण कर सकें, क्योंकि जगत में सूर्य की ऊर्जा से ज्यादा पावरफुल और कुछ नहीं होता। हाँ, पर इसके लिए आपको अलसुबह जागना आवश्यक है। ये बहुत कठिन काम तब तक है जब तक आप प्रारंभ नहीं करते। एक बार ये संकल्प कर सुबह जागना प्रारंभ कर दिया कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में, और आप जानते हैं कि बिना कष्ट उठाए दुनिया में कभी कुछ हासिल नहीं होता, या कहें दुर्लभ चीजें नहीं मिलती। जिंदगी में भोर में ही उठने की आदत डालने का मतलब है सारे रोग दोष से मुक्ति, या कहें कि दवाओं और डॉक्टरों की आपकी दुनिया से छुट्टी, क्योंकि भोर जागरण अपने आप में रामवाण औषधि है और एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो सोच अच्छा है, और इसी से व्यक्तित्व निखरता है, जो आपकी सफलता का प्रतीक है, प्रमाण है, पहला सोपान है। हाँ, जल्दी सोकर उठे ही नहीं, बिस्तर के साथ कुछ समय के लिए घर भी छोड़ दें, बाहर निकल जाएं, कहीं प्रकृति के आंगन में, गली गेवड़े में, यानी बस्ती से दूर कहीं कुछ जंगल की ओर प्राकृतिक पर्यावरण में घूमने टहलने निकलें। तो मान लीजिए कि सोने में सुहागा, इसलिए जागकर आपको प्रकृति की गोद में पहुंचना भी आवश्यक है, ताकि उस नियामत को आप पहचान सकें, पा सकें, भोग सकें और उसे जी सकें। फिर आप ईश्वर की आराधना करें, व्यायाम करें, या अध्ययन मनन करें, या कोई उद्यम करें, सकारात्मक कार्य प्रारंभ करें, सफलता मिलने की संभावना निश्चय ही बहुत अधिक बढ़ जाती है। कारण बिल्कुल साफ है, शुद्ध मनोयोग से स्वच्छ वातावरण में क्लीन स्लेट पर कार्य की शुरुआत माने आधी सफलता। ये कोरा उपदेश नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो किसी भोर जागकर बाग की तरफ टहलते चले जाएं और देखें कि कैसे मनुष्य ही नहीं जानवर तक प्यारी प्यारी प्रातः बयार में कुलांचें भरते दिख जाएंगे। बेलें लताएं गलबहियां डालती सी लगती हैं, विदा लेता चंदा शीतलता देता है और आसमान अमृत बरसाता है। प्रातःकाल आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि पेड़ पौधे और पर्वत आनंद मनाते हैं। केवल तालाब ही नहीं, नदियां तक लहराते मदमाते देखी जा सकती हैं। इसलिए ये घिसी पिटी नेक सलाह नहीं, वरन जीवन का शाश्वत सत्य है कि ऊषा काल प्राणी मात्र के लिए एक नियामत है। ये प्राकृतिक ऊर्जा का मूल्यवान स्रोत है, ये जीवन के अनुभवों का निचोड़ है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था भोर, आलेख डॉक्टर कैलाश मड़बैया का था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कृषि चर्चा, विषय है खरीफ फसलों में बुआई एवं प्रबंधन, वार्ताकार हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह।
2: किसान भाइयों, हम आज की कृषि चर्चा में बात करेंगे खरीफ फसलों की बुआई एवं प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा समय खरीफ फसलों की बुआई का चल रहा है, उसके प्रबंधन का चल रहा है। हमारे किसान भाइयों ने, ज़्यादातर किसान भाई हमारे जो है सोयाबीन, धान, मक्का, इन सब फसलों की बुआई कर रखी होगी। और किसान भाई का जो समय है यह है धान की रोपाई का समय। कुछ किसान भाई हमारे जो धान की रोपाई करते हैं, उनकी नर्सरी भी तैयार हो गई होगी, वो अपने गड़े बना चुके हैं और खेत में मचाई करके उसकी जो है रुपाई करेंगे। तो किसान भाई, मैं आप लोगों से दो चार बातें, बहुत आवश्यक जो जानकारियां हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। किसान भाई, आपकी जो पौध है धान की, वो 20 से 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो रुपाई का सही समय है, वो जो है आप जब आप मचाई करते हैं, मचाई करने के तुरंत बाद हमें रुपाई नहीं करना है। कम से कम हम जो है 6 से 7 घंटा रुक जाएँ, उसके बाद ही हम रुपाई करें, से कि मिट्टी के कण जो पानी में तैरते रहते हैं वो बैठ जाएं, उसके बाद हम रुपाई करें। और हम रुपाई में जो गहराई का ध्यान दें वो बहुत ही आवश्यक है। उसे हमें जो है 1.5 से 2 इंच से गहरा नहीं रुपाई करना है। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 से

0: सेंटीमीटर। इस तरीके से यदि हम धान की रुपाई करेंगे तो हमें धान में अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब हमारी बात आती है किसान भाइयों की इस समय कि जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन बो दिया है, मक्का बो दिया है, उनमें हमें खरपतवार का किस तरीके से प्रबंधन करें, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाई जब आपने सोयाबीन बो दिया है, अगर सोयाबीन आपकी 15 दिन की हो गई है, 20 दिन की हो गई है, तो हमें 20 से 25 दिन की अवस्था में जो हम पोस्ट इमरजेंस डालते हैं, इमिजा थापर है, डाइकोसेलम है, इनको जो है हम उपयोग करते हैं, तो 20 से 25 दिन की अवस्था ही सबसे सही अवस्था मानी जाती है, जिससे कि हम अपने खेत में, क्योंकि ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, ये फसल को पहचानते हैं, सोयाबीन को पहचानते हैं, इसके अलावा अन्य जो खरपतवार हैं उन सभी को ख़त्म करते हैं, जिससे कि जो है हमारा सोयाबीन में सारे खरपतवारों से हमारी सोयाबीन मुक्त हो जाती है। ध्यान ये हमें रखना है कि हम पहले से जो मौसम विज्ञान की जो है जानकारी ले करके कि हम उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश यदि हो जाती है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो आप देखें कि 7 से 8 घंटे तक बारिश ना हो, तभी हमें उसका छिड़काव करना है। और इसके बाद किसान भाई हमारे और भी चीज़ों का, एक चीज़ मैं आपसे और आग्रह करना चाहूँगा किसान भाई, कि खड़ी फसल में आप जो है DAP का उपयोग ना करें। हमें जो है जो अपना बेसल डोज है उसको खेत की तैयारी करते समय ही देना है। दूसरा, किसान भाइयों, विषय विशेषज्ञ से या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से या कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं उन लोगों से ही आप जानकारी लेकर के, आप जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, आप खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं, उनकी सही मात्रा और सही तरीका वो ज़रूर अपनाएं, क्योंकि यदि हम जो है सही मात्रा नहीं डालते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो किसान भाई, खरीफ फसलों को अच्छी तरीके से को उगाने के लिए, अब जैसे बारिश का सीजन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बारिश कहीं कहीं पे हो रही है, तो हमें ये ध्यान देना है कि जिन खेतों में हमने सोयाबीन लगा रखी है, अरहर लगा रखी है, उड़द लगा रखी है, उनमें हमें पानी के निकास का प्रबंध जरूर रखना है। अगर उसमें पानी ज़्यादा दिनों तक रुक जाता है तो उसमें जड़ गलन की समस्या आने लगती है, तो हमें ये ध्यान देना है कि जल निकास का उचित प्रबंध रखें। उसके अलावा किसान भाई, जैसे कि हम देखते हैं कि मक्का लगाते हैं, तो मक्का भी अभी हमारे किसान भाइयों ने लगा रखी है, उसमें हमें अच्छी तरीके से उसका भी खरपतवार का प्रबंधन करना है। इसके अलावा आप जो है देखते हैं अरहर का भी समय आता है, तो उसको भी हमें जल निकास का अच्छा से उपयोग करिए, जिससे कि हमारी फसल स्वस्थ रहे और उसमें हमें अच्छा उत्पादन मिल पाए।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय था खरीफ फसलों में बुवाई एवं प्रबंधन। वार्ताकार थे डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको एक सूचना दे दें। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का STD कोड है 0755। दिन और समय एक बार फिर सुन लें। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। फ़ोन नंबर है 2660901 और 2660902। भोपाल का STD कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के

0: साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहाँ लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह सात बजकर बीस मिनट पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बिजली गिरने, तेज हवा, पानी के तेज बहाव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव के उपायों पर SDERF के कमांडेंट कमलनाथ धुर्वे से विशेष बातचीत, ई साक्ष्य प्रणाली क्या है और ये न्याय व्यवस्था को कैसे प्रभावी बना रही है, इस विषय पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के विधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोना पुरोहित से विशेष चर्चा, और ईवी वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी, इसके नए नियम और वाहन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर श्री आन ईवी सर्विस सेंटर के संचालक अम्बरीश शुक्ला एवं भगवान सिंह से विशेष बातचीत।

8:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:02 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। 9:15 पर सुनिएगा सुगम संगीत, इसमें आज आप सुनेंगे अश्विना रंगनेकर के गाए भजन।

9:30 पर आप सुन सकते हैं नाचक खो गया सब कुछ। लेखक अलमासुद्दीन सिद्दीकी, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन। जिले की चिट्ठी आपको सुनवाएंगे सुबह 10 बजे। गीत सागर कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:05 पर। शाम 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुन सकते हैं वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद की सलाह विषय पर डॉक्टर ऋतु पांडे से भेज वार्ता। आइए जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। 11:14 कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे सुना जा सकता है। आपकी फरमाइश कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं हंसना मना है धारावाहिक का पहला भाग। 1:00 महिला कार्यक्रम महिला सभा सुना जा सकता है।

11 बजे फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे सुना जा सकता है। आपकी फरमाइश कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दोपहर 12 बजे। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं हंसना मना है धारावाहिक का पहला भाग। 1 बजे महिला कार्यक्रम महिला सभा सुना जा सकता है। लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 1:30 पर और 1:45 पर सुगम संगीत सुना जा सकता है। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होंगे।

2 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत और आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे 2:30 पर। आइए अब जानते हैं आज की संध्याकालीन सभा के कार्यक्रम। संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 6:30 पर चित्रपट संगीत सुना जा सकता है। सुर्खियों में आप सुनेंगे रात 8 बजे 8:15 पर और 9:30 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। आपकी फरमाइश आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। 10:30 पर हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, धान की फसल पर भावांतर राशि दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा, दूसरा मैच शनिवार को होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ताकाइची की ये पहली भारत की आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान, भारत,

0: मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे हालधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक जी टैग मिल गया है। श्री यादव ने कहा,
2: धान पर भी हम भावांतर देने वाले, जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से हमारी सरकार खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक हरेक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हरेक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल कल जीएसटी के 9वें वर्ष के अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में सुगम कर सशक्त भारत थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। यह ऐतिहासिक यात्रा इस बात का प्रमाण है, जब केंद्र और राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं तो आर्थिक सुधार केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाते बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कल फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा पथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने उसका उद्घाटन किया। गैलरी में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा DD न्यूज के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा,
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्री बिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। कल उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल

भाग में दस्तक बाकी है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कल भी दिनभर यहां रुक रुक कर बारिश होती रही। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 9 प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में कल जबलपुर के मानस भवन में गौरव शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवपुरी में अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पोहरी के ग्राम अनभौरा में लगभग 3 करोड़ रुपए की 150 बीघा से अधिक पट्टे की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। खंडवा में बीबी जी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ आज विकासखंड की ग्राम पंचायत बमन गांव आखई में होगा। वहीं बीबीजी रामजी योजना का आगरमालवा में जिला स्तरीय शुभारंभ 2 जुलाई को यानी आज सुबह ग्राम पंचायत पिपलिया चाचा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य बारेलाल अहिरवार आज अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। झाबुआ कलेक्टर ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। शिविर में 67 यूनिट रक्तदान हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: यह दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल

मंगल कामनाओं के साथ मैं विवेक का हर स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। बारिश की पहली फुहार, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ठंडी हवाएं और गर्मा गर्म पकौड़े या समोसे खाने का मन आखिर किसका नहीं करता होगा। मानसून अपने साथ राहत तो लेकर आता है श्रोताओं, लेकिन अगर इस मौसम में खान पान का ध्यान ना रखा जाए तो यही मौसम कई बार बीमारियों की वजह भी बन सकता है। दरअसल बारिश के दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है और पाचन तंत्र सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा कम धीमा काम करता है। ऐसे में ज़्यादा तला भुना और ऑयली खाना पेट पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इससे गैस, अपच, एसिडिटी और फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कत हो सकती है। खास बात यह है कि बारिश के मौसम में बासी खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नमी की वजह से भोजन में बैक्टीरिया और फंगस तेज़ी से पनपते हैं। बाहर मिलने वाला खुला खाना, कई बार इस्तेमाल किए गए तेल में तले पकवान और लंबे समय से रखा हुआ भोजन हमारी हेल्थ यानी स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पकोड़े या अन्य तली हुई चीज़ें आपका खाने का मन कर रहा है तो घर पर ताज़ा बनाकर उसे सीमित मात्रा में खाएं। इसके साथ गर्म सूप, हर्बल चाय, मौसमी फल और ताज़ा पका हुआ भोजन अपने आहार में शामिल करें। और सबसे ज़रूरी, पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिएं।

तो इस मानसून बारिश का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य से समझौता मत कीजिए। याद रखिए, मौसम का मजा तभी है जब सेहत भी साथ निभाए।

0: विवेक कहार के साथ सुन रहे हैं आप दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। देश विदेश, राज्य, शहर हो या गांव, सबकी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए समाचार पत्रों से।
1: भोपाल में 12 साल बाद जुलाई में आया

मॉनसून 3 घंटे में 1.5 इंच हुई बारिश। भोपाल में बुधवार को दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून की एंट्री कई मायनों में खास रही। सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह है कि 12 साल बाद मॉनसून जुलाई में भोपाल पहुंचा। इससे पहले 2014 में मॉनसून 7 जुलाई को आया था। तय समय से 11 दिन की देरी से बुधवार तड़के भोपाल में इसकी दस्तक हुई है। लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। और वहीं यात्रियों के लिए PME बस सेवा 2 रुपये में 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकेंगे। भोपाल में 15 जुलाई से 10 रूटों पर दौड़ेंगी 20 ई बसें। मंडीदीप, सीहोर और अब्दुल्लागंज तक ये बसें जाएंगी। खास बात यह है कि इस बसों का संचालन नगर निगम सीमा के बाहर मंडीदीप, सीहोर और अब्दुल्लागंज तक किया जाएगा। वर्ष के अंत तक शहर में कुल 100 ई बसें मिलेंगी, जबकि अगले वर्ष 140 बसें को इस कुंभ में और शामिल किया जाएगा। और वहीं नीट PG 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 21 जुलाई तक इसमें आवेदन किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 21 जुलाई रात 11:55 तक netboard.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम 183 रुपये हुए कम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 183 रुपये की कमी की है। राजधानी में अब तक 3,116 रुपये में बिकने वाला इस 19 किलो वजनी सिलेंडर के दाम अब 2,933 रुपये हो गए थे। और 6-5 किलो वाले सिलेंडर में 28 रुपये की भी कमी की गई है। ये सिलेंडर अब 837 रुपये में उपलब्ध हो रहा था, जो अब 809 रुपये में मिलेगा। और वहीं अब साधारण डाक पार्सल पर भी लगेगा बारकोड। कहां तक पहुंचा ये, जो आप इसको ट्रैक कर सकेंगे। और वहीं मैरिज गार्डन में लेजर बीम व हाई इंटेंसिटी लाइट का उपयोग किया तो होगी कार्रवाई। राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास मैरिज गार्डन्स में लेजर बीम और हाई इंटेंसिटी लाइट का उपयोग हुआ तो लेजर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग की दृष्टि से एयरपोर्ट के आसपास एवं गांधीनगर में खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। श्रोताओं, ये थे समाचार पत्रों से सुर्खियां। आप सभी के लिए इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म फनहा से।

0: सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस गीत को फिल्म फरार से। ज्ञान सूचना जानकारी और मनोरंजन के संग श्रोताओं अपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप विवेक के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे कि बारिश के मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जाए और साथ ही हम जानकारी देंगे आपको ई एविडेंस के बारे में और होगी बातचीत जब आप ईवी वाहन खरीदने जाते हैं तो उसमें मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। बारिश की शुरुआत हो चली है और मॉनसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक भी दे दी है। ऐसे में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हमारे सामने देखने को मिलती हैं, इसमें कई सारे लोगों को जानमान की हानि भी होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं में हम अपनी सुरक्षा कैसे करें इसके बारे में हमने और अधिक बातचीत की है SDERF के कमांडेंट कमलनाथ ध्रुवे से।
1: अब जैसे कि हमारा मानसून का सीजन शुरू हो गया है और सभी जानते हैं कि जब पानी आते हैं तो साथ में बारिश के साथ बिजली और बिजली आती है तो कहीं ना कहीं गड़गड़ाहट होती है। तो आपने देखा होगा कि जब कहीं मतलब गड़गड़ाहट होती है तो आवाज़ पहले आती है, फिर मतलब प्रकाश पहले दिखता है और आवाज़ बाद में आती है।
0: जी जी जी।
1: तो ऐसे जब परिस्थितियाँ बनती हैं तो लोगों को सबसे पहले तो स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहें, यदि बिल्कुल ही आवश्यक हो तो ही घरों के बाहर निकलें। अगर आप खेतों में काम करते हुए या जंगल में लकड़ी काटते हुए या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि आप घर के बाहर हैं, मैदानी क्षेत्र में हैं या जंगली क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर जो ऊँचे ऊँचे पेड़ होते हैं उनसे हटकर अपने आप को कहना चाहिए एक कुड़ू बैठकर स्वयं को बचाएं। अगर ऐसा महसूस हो रहा हो कि यहाँ बिजली कड़कने वाली है और वो बिजली उस पेड़ में गिरकर या उस खंभे के माध्यम से गिरकर आप तक पहुँच सकती है, तो उस स्थिति में यही कि स्वयं को बचाएं।
0: मतलब कोई ना कोई हमको एक ऐसा स्थान देखना चाहिए पेड़ों के अलावा जहाँ पर बिजली नहीं गिरती है,
1: ऐसा स्थान जहाँ पर बिजली ज़्यादा आकर्षित ना।
0: अच्छा,
1: ऊँचे ऊँचे पेड़ बिजली गिरने को आकर्षित करते हैं। खुले मैदान में क्या होता है कि ऐसे प्लस माइनस वेव तरंगे जुड़ जाती हैं जैसे बिजली वहीं गिरती है। तो ये इसमें यही है कि जैसे जो ऊंचे पेड़ हैं उनसे थोड़ा सा हटकर अपने को खड़े होना है काफ़ी दूर, जैसे 50-60 मीटर की दूरी पे, या बिल्कुल ही मैदान में ना खड़े हो जाए वहाँ पर गिरता है। तो ये है कि इसके बचाव यही उकड़ू बैठना, स्वयं को सुरक्षित रखना, घरों में लाइटनिंग अरेस्टर लगाना, तड़ित चालित लगाना और ऊंचे पेड़ों से दूर रहना।
0: मानवीय भूल सर हमें अक्सर देखने को मिलती हैं कि कई बार आपने वीडियो देखे होंगे या फिर कई बार सामने ऐसी चीज़ें आती हैं कि बहुत तेज़ पानी बह रहा है किसी पुलिया के ऊपर से, लोग गलती करके चले जाते हैं और तेज़ पानी तेज़ बहाव में गाड़ियाँ निकलते हैं। तो ये जो मतलब गलतियाँ होती हैं, मानवीय गलतियाँ जो होती हैं जो कई बार जानलेवा हो जाती हैं, इसमें आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे?
1: इसमें मैं लोगों से यही कहूँगा कि जब आपको पता चला है, पता है कि ये ख़तरनाक स्थान है, जैसे लोग सेल्फी लेते हैं, जैसे पुल में पानी का बहाव तेज है फिर भी जबरन घर जाने की जल्दी में नदी को क्रॉस करते हैं, कार को क्रॉस कराते हैं और कहते हैं क्या कहते हैं और मतलब उस स्थिति में वो बहकर या पूरे परिवार सहित बहकर मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह है कि थोड़ा सा इंतजार करें, धैर्य रखें, स्वयं को सुरक्षित रखें, स्वयं को बचाने के चक्कर में अनावश्यक किसी दुर्घटना में ना फंसे। आकाशवाणी और FM रेडियो को प्रॉपर सुने, समाचार पत्रों का ध्यान दें, मुनादी जो गाँव में

0: जाती है उसका भी ध्यान दें। ये सब जो सूचनाएं इस इन सब के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसमें व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रखने के जितने ज़्यादा प्रयास कर सकता है वो प्रयास करें।
1: क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस या फिर कोई ऐसे नंबर जारी किए गए हैं जो बारिश की आपदा से लोगों को राहत देने का काम करते हैं?
0: मध्य प्रदेश के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी घटनाओं की सूचना SMS के माध्यम से और FM रेडियो, TV, टेलीविज़न में सूचनाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं कि इस शहर में अगले 3 से 4 घंटे में ये तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है या बारिश के साथ तेज़ आंधी आने वाली है। इस प्रकार की सूचनाएं जारी की जाती है तो इन सूचनाओं पर परस्पर नज़र रखें और बराबर उसके अनुसार ही कार्य करें।
1: जी, कोई महत्वपूर्ण नंबर अगर यदि कुछ ऐसा नज़र में आता है, कोई आपदा हो
0: अगर
1: तो?
0: कोई व्यक्ति इस प्रकार किसी आपदा में फंस जाता है या किसी व्यक्ति को फंसा हुआ पाता है या देखता है कि कोई व्यक्ति सच में इससे परेशान है तो उस परिस्थिति में वो 112 नंबर को डायल करके हमारे बचाव सहायता कर्मियों को सूचना दे सकता है और तत्काल उस पर सहायता पहुंचाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त 1079 जो है ये आपदा संबंधी सूचनाओं के लिए जारी किया गया है, इस पर भी सूचना करके आप बता सकते हैं।
1: बिल्कुल, यदि इस तरीके की आपके सामने कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या परिस्थितियां बनती हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और दिए गए आपातकालीन नंबरों पर कॉल करके लोगों की जान बचा सकते हैं। SDRF के कमांडेंट कमलनाथ ध्रुवे जी हमें ये जानकारियां दे रहे थे। श्रोता, इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म मंजिल से। आवाज़ है किशोर कुमार की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है अगली जानकारी का। मध्य प्रदेश सरकार ने ई साक्ष्य यानी ई एविडेंस का अध्यादेश जारी कर दिया है। ई एविडेंस क्या है, ये हमारी न्याय व्यवस्था को

0: कैसे अधिक प्रभावी बना रहा है, इसके ऊपर हमने बातचीत की है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विधि विभाग की अध्यक्ष विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोना पुरोहित से।
1: देखिए, जैसे हम सब इस बात से विदित हैं कि 2023 में भारत सरकार ने 3 क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट्स हैं वो लागू किए थे, उसके पश्चात से ही एक बहुत बड़ा चेंज हमारे सिस्टम में आया था, लीगल सिस्टम में। और वो चेंज था जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंसेस हैं उनको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करना। जब हम द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उसको ग्राह्य करते थे, उसके लिए हमको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आते थे। इस कारण से हमारे पास एक बड़ा आधार मिला कि जब कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हमारे यहाँ आजकल हर व्यक्ति कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यूज़ करता है और ज़्यादातर डेटा हमारा इसी पे है, कहीं सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जब ये डेटा इस तरीके की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष जाते थे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और सबसे बड़ी समस्या जो होती थी वो ये होती थी कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होता था एक्सपर्ट का कि हाँ, ये एविडेंस टेम्पर्ड नहीं है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और उसको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कैसे कोर्ट ग्रहण करे। अब जब ये समस्या आती थी तो हमारे सामने दो चीज़ें आईं। पहला ये कि हमने स्टार्ट तो कर दिया, अधिनियम लागू भी हो गया, प्राथमिक साक्ष्य की चीज़ें आने भी लगी, न्यायालय ने कार्य भी प्रारंभ कर दिया, और हमारे नियम के अनुसार पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग करनी थी, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी एविडेंसेस कलेक्ट की, उन्होंने वो भी प्रारंभ किया। परंतु ये कैसे श्योर किया जाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो चीज़ें हमारे पुलिस ऑफिसर ने कलेक्ट की है डेटा के रूप में, एविडेंस में, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं रियल टाइम डेटा इकट्ठा करना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहल है हमारी सरकार की ओर से। हमारे जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैं उनके साथ मिलके ही हमारी जो सरकार है उन्होंने ई जो साक्ष्य प्रणाली है उसका उद्घाटन किया, उसके लिए अधिसूचना जारी की है। और इसका जो बेनिफिट आपको दिखाई देगा वो ऐसा है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या कोई व्यक्ति जिसको भी अधिकार दिया गया है किसी तरीके के साक्ष्य एकत्रित करने का, वो जैसे ही साक्ष्य एकत्रित करेगा, रियल टाइम में इस प्रणाली के द्वारा वही चीज़ एज इट इज़ हमारे कोर्ट और हमारे वकीलों के पास हो जाएगी। और जब वो जाएगी तो हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि उसमें किसी भी प्रकार की टैम्परिंग है। ये भी व्यवस्था है कि यदि किसी भी प्रकार से उसमें चेंज होता है तो वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसमें इतना चेंज कर दिया गया है। तो ये चेंज करने की भी संभावना हमारे पास नहीं होगी।
0: ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रमुखतः साक्ष्य के तौर पर मानी जाएगी, क्योंकि दिमाग में कई तरीके के सवाल आते हैं।
1: जी बिल्कुल, अभी अगर आप देखना चाहें तो इसके अंतर्गत हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल दो तरीके के साक्ष्य की बात की गई है ना। अब उसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स में आप देखते हैं कि डिजिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या होता है। तो हर सोशल मीडिया का जो आपने स्क्रीन किया वो तो एज इट इज़ ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपका कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें आपने पूरी चैटिंग रखी हुई है उसमें, और आपने उस चीज़ को ही क्लेम किया है कहीं, और अचानक आपने इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया या इंक्वायरी के दौरान उस चीज़ का क्लिक करके एक पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज व्यक्ति उसको डाल रहा है कि ये इस टाइम पे दिख रहा है, हमने इसको क्लिक किया उस समय, वहाँ पे वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। बट आप एक लेमन के रूप में जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। शायद इसका ही आपको एक प्रभाव और दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल रेप केसेस हैं, हैरेसमेंट ऑफ विमेन है, जहाँ पे महिलाओं के साथ होने वाली चीज़ों को, उनकी चीज़ों को क्या रखना है, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो उस चीज़ के लिए भी इसमें बड़ा प्रावधान किया गया है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, हर जज हर चीज़ को देख लेगा, हर एडवोकेट नहीं, तो फिर पार्टीज से, तो पार्टीज का पूरा डेटा फिर प्राइवेसी से बाहर चला जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखा गया है कि कौन सी पार्टीज उसके अंतर्गत उस वाद से प्रभावित हो रही हैं, जिनको हम पार्टीज बोलते हैं, वो कौन से अधिवक्ता उसमें इन्वॉल्व है और किस तरीके के जजेस हैं, उनके पास ही इसको कैसे पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं कि ये ओपन एक्सेस के रूप में दिखाई देता है आपको, क्योंकि वो व्यक्ति उसमें डाल रहा है, लेकिन ये ओपन एक्सेस नहीं है कि आप और हम सब कुछ, सभी किसी की राइट टू प्राइवेसी पे एनक्रोच करेंगे।

0: उसके लिए एक फिक्स प्रक्रिया होगी जिसको हम पासवर्ड के थ्रू बोलते हैं, उस तरीके से इसको सेफ्टी मेजर के साथ अडॉप्ट किया जाएगा।
1: जिस तरीके के जो कानून में बदलाव होते हैं ये न्याय संहिता जो है हमारी उसको कितना मजबूत बनाते हैं और आम लोग की जिंदगी इससे कितनी बदलेगी।
0: ई एविडेंस, ई साक्ष्य के बाद जिसको हमारे मध्य प्रदेश ने अब नोटिफाई कर दिया है, टेक्निकल करने में हमको एक लंबा समय लगता है और 2 साल में हमने अपनी शासन व्यवस्था को इस तरीके से कर लिया है कि एक सामान्य व्यक्ति ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैं जिस जगह घटनाक्रम हुई थी, जो मैंने 0 FIR कहीं करी थी, वो 0 FIR सही कोर्ट में पहुंची नहीं पहुंची, वो सब उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई भी देगा क्योंकि उसके पास उसका एक्सेस होगा। जिसने अपने साक्ष जहां दिए हैं आपके पास भी तो है, आप एक पार्टी के रूप में बहुत अलूफ नहीं रह गए, आप उस सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। तो बार बार एडवोकेट के पास ही जाना, बहुत टेक्निकलिटीज को समझने से ज्यादा यदि आप थोड़े भी टेक्नोलॉजी को समझते, क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में आपको मोबाइल यूज करता दिखा जाता है, नेट बैंकिंग यूज करता है, सबको पता है ई ट्रांसफर से उनके पास पैसा, तो अगर वो थोड़ा भी यूज करेगा तो अपनी अपडेट न्यायिक प्रक्रिया में उसके साथ क्या हो रहा है तुरंत देख पाएगा, ई फाइलिंग कर पा रहा है, आप बस एक भेज रहे हैं ई फाइल कर रहे हैं और आपकी FIR दर्ज हो जा रही है, आप उसके बाद 3 दिन में जाके उसको अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करें, पर आपकी इतनी चीज आपके घर बैठे FIR हो जा रही है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है न्यायिक प्रक्रिया में जो अपने जो लोकहित है, जनहित है, उसके ही फेवर में है।
1: ई साक्ष्य प्रणाली पर ये जानकारी आप सुन रहे थे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के विधि विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोना पुरोहित से। इसके साथ चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म विकी डोनर से। आवाज़ है आयुष्मान खुराना की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में हम अगली जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हुई, इससे जुड़ी हुई सब्सिडी और इससे जुड़े हुए नए नियम क्या हैं, और अगर यदि आप ई वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में हमने एक्सपर्ट अमरीश शुक्ला और भगवान सिंह से खास बातचीत की है।
1: क्योंकि तो कभी भी ये सब्सिडी डायरेक्ट कंज्यूमर को मिली नहीं है और कंज्यूमर में अवेयरनेस भी नहीं इस चीज़ को कि सब्सिडी मिलती है, किस गाड़ी पे मिलती है, कितनी मिलती है।
0: अच्छा,
1: अभी तक किसी को नहीं है। मैं भी एज ए कंज्यूमर अगर किसी गाड़ी को लेने जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि प्राइस कितना है, मेरे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है, कितने में पड़ रही है। मैं उसमें नहीं पूछूंगा कि कितने की पड़ने वाली, सब्सिडी मिलती कि नहीं मिलती, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है। तो लास्ट कंज्यूमर पर तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
0: देखा जाए तो कितनी गाड़ियों पे सब्सिडी मिलती थी और टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों सेगमेंट में देखें तो क्या कुछ इस पे असर दिख रहा है?
2: स्टेट गवर्नमेंट की वर्तमान में भी कोई डायरेक्ट सब्सिडी जो कस्टमर को मिल रही हो वो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं। लेकिन हाँ, ईवी प्रमोशनल स्कीम में ऐसा ज़रूर है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेना चाह रहे हो कोई फोर व्हीलर, तो उसके ऊपर 100% वेव्ड ऑफ आपके जो रोड टैक्स ये सब जो चीज़ें होती थी उन पे आपको 100% वेव्ड ऑफ मिलेगा।
0: अच्छा।
2: अब अगर टू व्हीलर की बात करें तो इसमें एक कैटेगरी है हाई स्पीड कैटेगरी, जिसमें RTO रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है, 55, 65, 70, 80 तक हो सकती है। ये स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, माइलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें जो हाई स्पीड गाड़ी है और जिनमें बैटरी की कैपेसिटी 2.5 किलोवाट से

0: कम है या इक्वल है उसमें मैक्सिमम आपको 5,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती थी। ये पीएम ई ड्राइव एक योजना है, उसके तहत भी ये एप्लीकेबल है। और जब आप किसी भी शोरूम से गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जो एक ऑनलाइन पोर्टल भी हुआ करता था इसमें, जिसमें सब्सिडी क्लेम करनी पड़ती थी,
1: हाँ।
0: आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी वो, जब आप गाड़ी खरीद चुके होंगे, आप पूरा पैसा दे चुके होंगे, उसके बाद में जब आप क्लेम करेंगे सब्सिडी, तब बैटरी के पर किलोवाट के हिसाब से किसी में 5,000, किसी में 2,500, इस तरीके से वो आपके अकाउंट में रिफंड होती है, जिसे इनकम टैक्स भरने के बाद में अपने को हाँ। वापस मिल जाता ना,
1: जी जी जी।
0: इसी तरीके से ये सब्सिडी अपने को मिला करती थी।
1: लोगों में ये जानकारी नहीं है कि ईवी खरीदते समय वो क्या देखें, बैटरी के बारे में भी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब भी हम कोई ईवी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान?
0: देखिए इसमें है ना, तीन ही मुख्य पॉइंट होते हैं। सबसे पहले ये जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, तो सबसे पहली चीज़ होती है बजट। दूसरा, आपको पर डे कम्युनिकेट कितने डिस्टेंस पर करना है। तो आप ऐसी किसी भी ईवी पर जा सकते हैं जो आपको 80 से 90 का माइलेज दे, ये आपके लिए सूटेबल होगी। तीसरा होता है उसका सर्विस लाइफ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक परमानेंट डिग्रेडेबल मटेरियल होता है जिसको हम सेकेंडरी सेल यानी कि बैटरी कहते हैं, वो उसका पावर हाउस होता है। बैटरी एक ऐसी चीज़ है कि समय के साथ में आप इस्तेमाल करें या ना करें, एक समय के बाद में वो डिग्रेड होती ही है। तो इसी तरीके से गाड़ी लेते समय ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपका बजट, दूसरा आपको कितना ट्रैवल करना है उससे, और तीसरा उसकी सर्विस लाइफ कितनी है। जैसे आपने 5 साल अगर गाड़ी इस्तेमाल की और 5 साल में आप से फॉर एग्जांपल लगभग 30,000 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई, तो एक नॉर्मल स्कूटर के कंपैरिजन में 2,500 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 30,000 का लगभग 60 और 90,000 रुपये आपने पेट्रोल बचाया। ये केवल पेट्रोल बचाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस 90,000 के अगेंस्ट में हो सकता है आपको ये 5 साल बाद बैटरी डलवानी पड़े जिसकी कीमत लगभग 35 से 40,000 रुपये हो, फिर भी आप काफ़ी सेविंग में हैं।
1: तो किस तरीके का रोज़गार आप देखते हैं, क्या कुछ ऐसे क्षेत्र खुलते हैं?
2: सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रोज़गार अच्छे हैं लेटेस्ट में जो आया है। अभी तो इलेक्ट्रिक मार्केट आपको पता ही बढ़ता जा रहा है, रिसेंटली जो फ्यूल चार्जेस बढ़ रहे हैं, इम्पोर्ट बढ़ रहा है, तो इस कारण से ना अभी सर्विस सेक्टर में जैसे बताया सर्विस का बहुत बड़ा इशू है, स्किल टेक्नीशियंस हैं ही नहीं, इसलिए अगर हम कुछ ऐसे लेबर क्लास खड़ी कर देते हैं या ऐसे स्किल पर्सन खड़ा कर देते हैं जिनको टेक्नीशियन टेक्निकल नॉलेज हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, इसकी स्पेस के बारे में, सर्विस कैसे करनी है।
0: खासकर अगर आपके पास में अच्छी खासी ज़मीन है तो आप एक ज़ीरो एमिशन चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं जो कि कम से कम दिन में तो काम कर ही सकता है। वही मैंने आपको बताया था कि पीएम ई ड्राइव योजना में जो छोटे चार्जिंग स्टेशन है उस पर 25% की सब्सिडी मिलती है जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका, प्लस लैंड एक्विजिशन में और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो लाइन मिलती है उन सब में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग स्केल पे सब्सिडियाँ मिलती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रोज़गार हो सकता है, जैसे देश में पेट्रोल टैंक एक अच्छी वो देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, पेट्रोल टैंक पे कई सारे लोग काम करते हैं, उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन में भी बहुत से लोग स्किल से अनस्किल्ड और सभी तरीके के लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है।
1: बिल्कुल, ईवी के कई सारे फायदे हैं, पर्यावरण के साथ साथ ये कई लोगों के लिए रोज़गार की वजह भी बन सकता है। ईवी से जुड़ी सब्सिडी और उससे जुड़े नियमों के बारे में ये जानकारी आप सुन रहे थे ईवी एक्सपर्ट अमरीश शुक्ला और भगवान सिंह से। इसके साथ चलिए श्रोताओं, शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल तो पागल है से। आवाज़ है लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

0: हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी ही बारिश हो और भोपाल को वो तरबतर कर दे। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई सूचना जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में अब विवेक कहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
3: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज

0: जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है।

यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन

0: दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल

0: कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आज़ादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आज़ादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे।

दिनेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था, जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी, वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आज़ाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आज़ादी उनकी आँखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आज़ाद होगा।

दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहाँ क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहाँ गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आज़ादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज़ बनकर उभरे। आज़ादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी

और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर चौथी लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम दो दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।
1: और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था।
0: आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति भी स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के धान उत्पादक किसान अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ लेंगे। उन्होंने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब जीआई टैग मिल गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कल फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वेदिका का अनावरण किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी डीडी न्यूज के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत।

अंजाम फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी अभिजीत भट्टाचार्य की, गीत था समीर का और तर्स बनाई थी आनंद मिलंद ने।

ये तर्ज है आनंद मिलन की। फिल्म का नाम एक लड़का एक लड़की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, आवाज़ें कुमार सानू और साधना सरगम की।

0: बीवी नंबर वन फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की, समीर के बोल थे और अनु मलिक ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अश्विना रंगनेकर, इनसे आज आपको सुनवा रहे हैं भजन।
1: जन्म

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं। इसमें आज के कलाकार हैं अश्विना रांगनेकर। इनसे आप सुन रहे हैं भजन।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज की कलाकार थी अश्विना रांगनेकर। इनसे आज आपने सुनी भजन। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक खो गया सब कुछ, लेखक अलमासुद्दीन सिद्दीकी, प्रस्तुतकर्ता चितेंद्र स्वरूप राजन।
1: प्रस्तुत है नाटक खो गया सब कुछ। इस नाटक के लेखक हैं अलमासुद्दीन सिद्दीकी, संयोजक राकेश ढोंडियाल और प्रस्तुतकर्ता हैं चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: विजय, बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूँ।
1: क्या हुआ राहुल?
0: यही कि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक फार्मा कंपनी की दवाइयां बिकवाने कभी इस डॉक्टर तो कभी उस डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना?
1: हाँ यार, ये टाई लगाकर हाथ में बैग लेकर चलना कभी कभी तो बोरियत जैसा लगता है यार।
0: और जब देखो तब बॉस समीर का फोन आ जाता है।
1: रे बाप, क्या कहा पे तूने? ओए 10:30 बज गए, जल्दी तैयार हो, फोन आता ही होगा उसका।
0: ओ
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: राहुल, 10:30 बज गए हैं, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे।
4: सर सर, रास्ते में हूँ, बस अभी पहुंच रहा हूँ।
2: राहुल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
4: क्या हुआ सर?
2: मैंने तुम्हें लैंडलाइन पे फोन किया है, अभी तक घर पर हो? क्या सारी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे?
0: सॉरी सर।
2: व्हाट सॉरी? और ये विजय कहाँ है?
3: सर विजय भी मेरे साथ है।
2: सुनो, तुम दोनों जल्दी से ऑफिस पहुंचो।
3: यस सर।
1: ये रामू को देखो, हमें देखकर ऐसा मुस्कुरा रहा है जैसे कह रहा हो आज तो आप दोनों की खैर नहीं। समीर सर आज बहुत गुस्से में हैं।
0: तो क्या हुआ? अगर समीर सर सख्त हैं तो हम भी मस्त हैं। एकदम ठंडा कर देंगे, ठंडा, क्या समझे। चलो चलते हैं बॉस के चैम्बर में।
1: हाँ चलो।
2: यस कम इन।
5: गुड मॉर्निंग सर।
2: क्यों, ये टाइम है ऑफिस आने का? कब तक तुम दोनों को बचाता रहूं मैं? अरे मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है।
0: सॉरी सर। सर वो क्या है ना, आप तो जानते हैं सर कि अब हम दोनों की उम्र शादी के लायक हो गई है।
2: ये क्या बकवास कर रहे हो?
1: अरे सर, आपने भी तो हमारी जितनी उम्र में कुछ उल्टा सीधा किया ही होगा ना सर, मस्ती की होगी। अब हमारे खेलने कूदने के दिन है तो हमें क्यों रोकते हैं सर, एंजॉय करने दीजिए ना।
0: सर क्या है ना, सच बताऊं सर, आज हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें मिलने का टाइम दिया सर, और वही टाइम ऑफिस आने का था सर। क्या करते सर, बस दिल के हाथों मजबूर थे हम।
2: देखो तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो वरना पछताओगे।
1: समीर सर, हम माना कि हम ऑफिस 1 घंटा लेट आए हैं, तो क्या हुआ, हम 1 घंटा देर तक काम कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है सर।
0: सर आप ही तो हैं जो हमें समझ सकते हैं, वरना आज तक हमारे डैडी हमें नहीं समझ सके।

0: क्या?
1: कुछ नहीं सर, कुछ नहीं।
0: देखो ये लास्ट वार्निंग है, तंग आ चुका हूँ तुम दोनों की हरकतों से। अरे अब तो डॉक्टर्स भी परेशान है तुम्हारे झूठ बोलने से।
2: अरे सर नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। क्या
0: फिर वही झूठ? अरे सच्चाई का सामना करना सीखो, समझे? और अब डॉक्टर्स की लिस्ट बनाओ जिन्हें आज विजिट करना है, और फिर मुझे दिखाओ।
1: यस सर।
2: जी सर।
3: विजय लंच टाइम हो गया यार, चलो साथ में लंच करते हैं।
1: यार राहुल, यार कब तक अब हम ये 15,000 रुपये की नौकरी करते रहेंगे यार? वही घिसे पिटे दिन, क्या कभी अच्छे दिन भी आएंगे हमारे?
3: चल चल पहले खाना खाते हैं फिर सोचते हैं। यार एक आइडिया है।
2: कौन सा आइडिया है?
3: क्यों ना हम अपनी फार्मा कंपनी खोल लें।
1: अबे क्यों मजाक कर रहा है यार? अबे पैसे हैं तेरे पास, कंपनी खोलेगा?
3: पैसे की चिंता छोड़ विजय, बस तू हाँ कर, पार्टनरशिप में काम करते हैं। अबे पैसा कमाएंगे, लाखों बनाएंगे।
2: अच्छा प्लान तो बेटा, क्या प्लान है तेरा?
3: देख मेरी पहचान की एक लैब है, वहां दवाइयां बनती हैं, वहीं से हम थोक में दवाइयां खरीदेंगे और अपनी कंपनी का लेवल लगाकर मार्केट में सप्लाई करेंगे। और वैसे भी सारे डॉक्टर्स तो हैं ही अपनी पहचान के, रातों रात अमीर हो जाएंगे यार, ऐश करेंगे ऐश।
1: यार राहुल, नकली दवाइयों के चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए?
3: नहीं यार, पैसा सबको दबा देता है, माल होना चाहिए जेब में, बस यूं समझ लो कि दुनिया अपनी मुट्ठी में है।
2: अगर ऐसी बात है तो मिलाओ हाथ और आज ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं।
3: यब्बा।

0: हेलो सर।
1: क्यों विजय, डॉक्टर बंसल ने तुम्हें मिलने का टाइम दिया था?
0: हाँ सर, आज डॉक्टर बंसल से 2 बजे का अपॉइंटमेंट है।
1: और अभी क्या बजा है?
0: 3 बजा है सर।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें? एक डॉक्टर के वक्त की कीमत नहीं समझते हो?
0: सॉरी सर।
1: अभी डॉक्टर बंसल का फोन आया था मेरे पास,
0: क्या कहा सर उन्होंने?
1: यही कि राहुल और विजय को अब कभी मेरे पास मत भेजना। मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी, अब टर्मिनेट करता हूं तुम दोनों को। नालायक, झूठे, मक्कार कहीं के।
0: सॉरी सर। सर बस सर, एक चांस और सर, प्लीज सर।
2: क्या हुआ, क्या हुआ विजय?
0: नौकरी गई और क्या।
2: यानी दवा की फार्मेसी खुल गई विजय, नाम होगा RV फार्मा।

0: विजय, कब से तुम दोनों को फोन लगा रही हूँ? घंटी बज रही है, फिर भी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
1: अरे बस यूं ही स्वाति, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इस दुनिया में आए हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, है ना स्वाति?
0: क्या मतलब तुम्हारा?
1: देखो, जो लोग रिस्क उठाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कामयाबी उनके कदम चूमती है, दौलत उनके पीछे भागती है।
0: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? रिस्क, कामयाबी, दौलत, क्या है ये सब?
2: विजय तुम बताओ, बात क्या है?
3: मधु, बड़े शहरों में रहने वाले छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्या समझी?
2: तो सच नहीं बताओगे, क्या हो गया है तुम दोनों को?
3: अरे हम दोनों ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है, नौकरी छोड़ दी है हमने।
2: क्यों? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ दी क्यों?
4: डार्लिंग, ये रिस्क हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम दोनों टेंशन मत लो।
2: तो अब क्या करोगे?
3: अरे हम तो अपनी फार्मा कंपनी खोल चुके हैं, अब तुम देखना हमारा घोड़ा सबसे आगे होगा और बाकी सब पीछे। ये रिस्क हमने तुम दोनों के लिए लिया है, हम नहीं चाहते शादी के बाद तुम दोनों पैसों के लिए तरसो।
1: अरे हम चाहते हैं कि जिस चीज पे तुम हाथ रख दो वो तुम्हारे पास चल कर आ जाए, समझी डार्लिंग?
0: जो भी करो सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो पूरे के चक्कर में सब कुछ गवा बैठो।

0: बधाई हो विजय, बधाई हो, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। आज वो खुशी का दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था।
1: हाँ यार राहुल, आज हम अपनी फार्मा कंपनी की दवाइयां लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: ए चलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग
0: डॉक्टर साहब। लास्ट टाइम हमने दवाई के कुछ सैंपल्स दिए थे, लेकिन सर मार्केट में कोई डिमांड अभी तक नहीं आई।
2: ओ यस, आपकी कंपनी की जो दवाइयों के रिजल्ट आ रहे हैं ना मिस्टर राहुल, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और इन दवाइयों की वजह से मरीजों को गड़बड़ हो रही है। सो आई एम सॉरी, आगे से तुम्हारी दवाइयां मैं नहीं लिख पाऊंगा।
0: डॉक्टर सलूजा, डॉक्टर साहब आप हमारी दवाइयों पे शक कर रहे हैं? डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर रावत और डॉक्टर अखिलेश, ये सब के सब हमारी कंपनी की दवाइयां लिख रहे हैं सर, और पेशेंट भी उनके पास बहुत ज्यादा है।
2: सो ठीक है ना मिस्टर राहुल, उन्हीं डॉक्टरों के पास जाइए आप। बट आई एम सॉरी, मैं आपकी दवाइयां नहीं लिख सकता।
0: ओके।
3: चल विजय, कहीं चलकर चाय पीते।
1: हाँ यार चलो।

0: यार राहुल, आज एक महीना हो गया हमें काम करते हुए और कहीं से भी अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। यार माँ ने अपने सोने के कंगन और हार बेचकर पैसे दिए थे, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब क्या होगा यार, इससे तो अपनी वो 15,000 की नौकरी अच्छी थी। काश समीर सर की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज अपना ये हाल ना होता। यार
1: दिल छोटा ना कर भाई, सब ठीक हो जाएगा यार। अब ऐसी बातें करेगा तो हिम्मत टूट जाएगी भाई। अब कंपनी खोली है तो इसे चलाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, करेंगे। अरे ये देखो, स्वाति और मधु भी होटल की तरफ आ रही
2: है। अरे वाह विजय, राहुल व्हाट अ सरप्राइज, अकेले अकेले चाय पी जा रही है। हम दोनों तुमसे ही मिलने आ रहे थे, अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गए।
1: क्यों, क्या कुछ खास बात है?
3: हाँ है तो खास बात। खुशी से उछल पड़ोगे।
1: बताओ क्या बात है?
3: बात ये है कि हमारी दोस्ती को काफी समय हो चुका है और अब मम्मी डैडी हमारी शादी की बात चला रहे हैं, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों भी अपने मम्मी डैडी से शादी की बात कर लो, क्या समझे?
1: इतनी जल्दी शादी?
2: ये जल्दी नहीं, सही समय है शादी का।
1: देखो स्वाति और मधु, शादी तो हमारी तुमसे ही होगी, है कि नहीं? बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए।
2: कितना वक्त चाहिए और क्यों चाहिए?
0: मधु बस सिर्फ 6 महीने, तुम दोनों हमारा साथ दे सकती हो क्या प्लीज?
3: तो हमें करना क्या होगा?
1: मैं बताता हूँ, बस एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपने इन खूबसूरत हाथों से डॉक्टर्स को गिफ्ट देना होगा। क्यों विजय, ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, बस और क्या, इतना छोटा सा काम है।
2: बस इतना सा काम, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं।

0: राहुल, ये कौन सी नई चाल है तेरी? जिनसे हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल डॉक्टर्स को रिझाने के लिए करेगा तू?
1: देख यार विजय, आज के इस दौर में जीना है तो कुछ नया जरा हट के करना पड़ेगा। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है कि नहीं?
0: ये क्या स्वाति और मधु इस काम में हमारा साथ देंगी?
1: देख भाई, स्वाति को मुझसे और मधु को अगर तुझसे शादी करनी है तो दोनों को हमारा साथ देना ही होगा, क्या समझे? अरे हम अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, ये आखिरी मौका है, वरना कोई हमें भीग भी नहीं देखा, समझे कि नहीं?
0: सही बात है।

0: मधु और स्वाति दोनों अपना काम समझ लो।
1: बताइए
0: कि आगे दोनों को करना क्या है।
1: क्या?
0: हाँ, बस एक अच्छी सी स्माइल के साथ डॉक्टर्स को ये बुके देना है और साथ में ये गिफ्ट देना है।
1: ठीक है।
0: हाँ, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना तुम दोनों।
1: क्या?
0: कि स्माइल इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि डॉक्टर्स तुम्हें देखते ही इम्प्रेस हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, बस इतना छोटा सा काम है, फिर देखना डॉक्टर कैसे हमारी कंपनी की दवाइयां लिखना शुरू कर देगा। ओके
1: ओके,
0: नाउ यू कैन गो एंड ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।

0: May I come in, doctor?
1: Yes, come in, please.
0: Hello, doctor. Dr. Saluja, ये हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी भेंट।
1: Ah, that's really beautiful. बिल्कुल आपकी ही तरह खूबसूरत हैं।
0: Thank you, doctor.
1: Your name?
2: जी, मैं मधु और ये स्वाति।
1: और कंपनी का?
2: जी, आरवी फार्मा कंपनी।
1: ओके, आरवी फार्मा कंपनी। मैं लिखूंगा आपकी कंपनी की दवाइयाँ।
2: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू
1: डॉक्टर। ओह, इट्स माय प्लेजर।

0: देखा विजय, देखा अपना फॉर्मूला हिट हो गया। स्वाति और मधु ने तो कमाल कर दिया यार। अब देखो कैसे ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहे हैं। और ये वही था ना डॉक्टर जो कहता था हमारी कंपनी की दवाइयां नहीं लिखे गए।
1: सच राहुल, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, वैसे भी अपनी मधु और स्वाति है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी डॉक्टर इनकी खूबसूरती से इंप्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकता।
0: रुको रुको, फोन लगाता हूँ। हेलो। हाँ स्वाति, कहाँ हो?
2: हाँ कॉलेज में हूँ। क्यों, क्या बात है?
0: अरे बात ही कुछ ऐसी है कि सुनकर खुशी से झूम उठोगे तुम।
2: ऐसी भी क्या बात है, अब जल्दी भी बताओ।
0: आज हमारी तरफ से तुम्हारी और मधु की पार्टी है।
2: पार्टी? हाँ। कहाँ पार्टी दे रहे हो जनाब?
0: अरे कहाँ मतलब क्या, होटल सरताज में और कहाँ।
2: सच राहुल, इतनी बड़ी होटल में? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना?
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, डालेंगे एकदम सच। बस तुम तैयार हो जाओ फटाफट। कम ऑन।

0: अजय, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे होटल सरताज को मैं अपने सपनों में देख रही हूँ।
1: मधु, अब सपने देखना बंद कर दो। अब तो सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है।
0: राहुल,

0: इतनी महंगी पार्टी देने की क्या जरूरत थी?
1: जरूरत तो थी। अगर तुम दोनों हमारा साथ न देती तो आज ये हमारी कंपनी बंद हो चुकी होती, क्या समझी? और सुनो, एक खुशखबरी और है।
0: क्या?
1: हम सब के लिए है।
0: वो क्या है? अरे जल्दी बताओ ना।
1: बताता हूँ। सुनो, हम कल एक बढ़िया सी लग्जरी कार खरीदने वाले हैं।
0: वाओ, कितना मजा आएगा ना, अपनी कार से घूमने का मजा ही कुछ और है। क्यों मधु, है ना?
2: हाँ, वैसे राहुल एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हो तो बहुत ही चालाक, अपना काम निकलवाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो।
1: क्या मतलब है तुम्हारा?
2: मेरा और स्वाति का क्या खूब इस्तेमाल किया है तुमने, हमें डॉक्टर्स के पास भेजकर हमारी खूबसूरती को बड़ी आसानी से कैश करा लिया, वरना होटल सरताज में पार्टी देने के तो तुम सोच भी नहीं सकते थे।
3: मधु, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
2: सच बता रही हूँ। अरे मैं तो राहुल की तारीफ ही कर रही हूँ।
1: हाँ, तारीफ। मधु मेरी तारीफ भी कर रही है और ताना भी मार रही है। इसे कहते हैं नैले पे दहला।
3: चलो कुछ खा भी ले।
0: हाँ, चल।
1: वेटर,

0: स्वाति, माँ को आज डॉक्टर को दिखाना है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है।
1: हाँ, माँ को तेज बुखार है। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ।
0: हाँ।
2: देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। माँ जी को हमने देख लिया है। आप बस ऐसा करिए कि ये जो दवाइयाँ इस पर लिखी हुई हैं, ये लाकर उनको दे दीजिए और उनको जल्दी ही आराम आ जाएगा।
0: जी माँ, ये दवाई खा लो।
1: अरे, दवाई खाते ही माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। माँ,
0: माँ, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी देखिए, माँ को क्या हो गया है?
1: माँ, क्या हो गया? माँ, माँ,
2: What happened? Oh shit! Nurse, get the oxygen, please. जल्दी लाओ।
1: क्या हुआ माँ को? माँ, डॉक्टर क्या हुआ माँ को?
0: डॉक्टर, माँ अभी तो अच्छी थी। माँ बोलो, क्या हुआ तुमको?
1: माँ,
2: calm down, calm down. आप लोग शांत रहिए और प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए।
1: मधु, मेरी बहन, माँ को क्या हो गया? देखो कैसे कर रही है माँ। हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करना।
0: क्या हुआ डॉक्टर? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है मेरी माँ को?
1: माँ, माँ, तुम बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो माँ? बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो, कुछ बोलो माँ, माँ।
2: I'm really sorry, Miss Swati. हम तुम्हारी माँ को बचा नहीं सके।
0: नहीं,
1: नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं, मेरी माँ मरी नहीं। डॉक्टर, तुम्हारी गलत दवाई से मेरी माँ मर गई। तुम कातिल हो मेरी माँ के। तुमने मेरी माँ को मारा है।
2: मिस स्वाति, आप होश में आइए। मिस स्वाति, डॉक्टर्स कभी किसी की जान नहीं लेते हैं। नर्स, कौन सा इंजेक्शन लगाया था आपने, मुझे लाके बताइए। ओह शिट, ये तो एकदम नकली दवाइयां हैं। इन नकली दवाइयों की वजह से ही तुम्हारी माँ की मौत हुई है। तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार हम नहीं है, यह आरवी फार्मा कंपनी है।
1: क्या कहा डॉक्टर? आर वी फार्मा कंपनी की दवाइयां?
2: जी हाँ मिस स्वाति, आरवी फार्मा कंपनी की ही दवाइयां हैं ये।
0: आरवी फार्मा कंपनी,
1: यानी वो राहुल और विजय दोनों हमारी माँ के कातिल हैं। इतना बड़ा धोखा।
3: स्वाति, क्या हुआ? क्या हुआ माँ को? कैसे तबीयत है बाकी?

0: स्वाति,
1: मेरी माँ के खातिर अब हमदर्दी दिखाने आए हो?
0: ये क्या कह रही हो स्वाति, हम तुम्हारी माँ के कातिल कैसे?
1: हाँ, तुम दोनों मेरी माँ के कातिल, तुम दोनों दवाइयाँ नहीं जहर बनाते हो, जहर। डॉक्टर यही दोनों आरवी फार्मा कंपनी के मालिक हैं।
2: I see. तो ये हैं जो नकली दवाइयों का धंधा करते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं, नहीं।

0: हेलो पुलिस स्टेशन।
1: हाँ जी कहिए, क्या बात?
0: मैं चंचल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, जल्दी आइए, यहाँ नकली दवा की डोज से एक मौत हो गई है।
1: आप कौन है?
0: जी मेरा नाम मधु है, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार आया था, उन्हें आरवी फार्मा कंपनी का इंजेक्शन लगाया जिससे उनकी मौत हो गई।
1: देखिए मधु जी, आप रोइए नहीं, हम आ रहे हैं। वो इंजेक्शन की शीशी और सिरिंज वगैरह सब वहीं रहने दीजिएगा, ठीक है?
2: ये क्या कह रही हो मधु? हमारा कोई कसूर नहीं है और हमारी तो शादी होने वाली है, हम क्यों तुम्हारी माँ को मारेंगे?
0: शादी? और वो भी मेरी माँ के कातिल से? शर्म नहीं आती? ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ के कातिल से शादी करेगी?
3: अब तुम दोनों को सलाहों के पीछे जाना होगा।
2: नहीं,
3: अमीर बनने का शौक था ना, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमने का बहुत शौक था ना।
4: स्वाति, स्वाति तुम भी शक कर रही हो मुझ पे। अरे मुझसे शादी करना चाहती हो और मुझे पर शक कर रही हो?
3: शक नहीं राहुल, यकीन है, यकीन कि तुम मेरी माँ के कातिल हो।
4: स्वाति,

0: आपने फोन किया था मैडम?
1: हाँ, हमने ही फोन किया था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर। ये नकली दवाइयाँ बनाने का कारोबार करते हैं।
2: नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ बोलिए, झूठ बोलिए।
3: नहीं इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपको सारी सच्चाई बता देंगे।
1: हाँ
0: जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनकी कंपनी में जो दवाइयाँ बनती हैं वो एकदम नकली दवाइयाँ हैं। इनकी दवाइयाँ खाकर किसी की भी जान जा सकती है, जैसे इन लड़कियों की माँ की जान चली गई।
4: डॉक्टर इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए।
0: ओके।
4: और हवलदार इन दोनों को अरेस्ट कर लो।
2: नहीं नहीं इंस्पेक्टर। स्वाति मधु ये क्या कर रही हो? कुछ तो रहम करो। अरे हमें भी तुम्हारी माँ के मरने का दुख है। प्लीज स्वाति, प्लीज मधु, मधु
5: हमें बचा लो, मधु हमें माफ कर दो। आई लव यू मधु, आई लव यू।
4: चलो अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना, समझे?
1: ले जाइए इंस्पेक्टर, इन दोनों कातिलों को हमारी नजरों के सामने से दूर ले जाइए। जो दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते।
2: स्वाति तुम मुझे कातिल कह लो कातिल, मगर प्लीज प्लीज मेरी मोहब्बत पे शक न करो। स्वाति प्लीज, स्वाति स्वाति।
3: विजय, आज हमने अपनी माँ को खोया है, मगर तुम दोनों ने लालच में आकर आज अपना सब कुछ खो दिया है, अपना मान सम्मान और अपना प्यार।
2: स्वाति।

अभी आप अलमासुद्दीन सिद्दीकी का लिखा नाटक सुन रहे थे, खो गया सब कुछ। इसके संयोजक थे राकेश ढौंडियाल। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार।

0: कार है राहुल विवेक सावरीकर, विजय योगेश उमाठे, बॉस अमन अहमद खां, डॉक्टर सलूजा मयंक खन्ना, इंस्पेक्टर अर्पित पांडे, स्वाति अनामिका सागर और मधु आद्या मुंशी। नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन। ये नाटक आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियोज में तैयार किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से ही किया जा रहा था।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक खो गया सब कुछ। लेखक थे अलमासुद्दीन सिद्दीकी, प्रस्तुतकर्ता थे चितेंद्र स्वरूप राजन। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में गत माह प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के दौरे, जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन और योग दिवस आदि प्रमुख घटनाएं चर्चा में रहीं। वहीं जून माह के आखिरी में शुरू हुई मॉनसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में बोनी का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने दो दिवसीय बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा आजीविका स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया, महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वसहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुकरू प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है। प्रवास के दौरान रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्रामीणों से आत्मीय भाव से खुले मिले। ग्रामीणों ने स्थानीय कुरकू भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। इसी बीच प्रदेशव्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत खेड़ी सावलीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल संचालन के लिए जिलेवासियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया। उधर खरीफ सीजन में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसानों को निर्धारित पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर जिले में कनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में आयोजित किया गया। आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पपेट शो रहा, जिसने स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में पेश किया। उधर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रतिमाह 9 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. जगदीश ठकोरे ने बताया कि जिले में 25 जून को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई और 222 हाई रिस्क चिन्हित कर 50 की सोनोग्राफी भी की गई। वह आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का 23 जून से 25 जून तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किशोर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। उधर शहर में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21

0: जून को जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पंवार उपस्थित थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सागर।

गीत सागर सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, डाइनिंग टेबल से लेकर बातचीत के तौर तरीकों तक हम शिष्टाचार यानी एटिकेट्स की बातें तो बहुत करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन हमारी जो 24 घंटे का साथी बन चुका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल स्क्रीन है, उसके जो है अनुशासन पर अक्सर हम बात ही नहीं करते, या उसका अनुशासन हम शायद बहुत कम जानते हैं। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर जुलाई के महीने को सेल फोन कर्टसी मंथ के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, आगे सब हम बातचीत करते चलेंगे। पहले ये सुन लेते हैं नगमा।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్.

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि मोबाइल पर बात करना, मोबाइल स्क्रीन के भी कुछ अनुशासन होते हैं और इसी वजह से जो है वो वैश्विक स्तर पर जुलाई मंथ यानी ये पूरा जुलाई मंथ को सेल फोन कर्सी मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि डिजिटल युग में दूसरों के प्रति सम्मान और बुनियादी शिष्टाचार को बनाए रखना है। आज अक्सर देखा जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज़ में बात अक्सर लोग करने लगते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम बाहर कहीं बैठे हुए हैं या लोग आसपास हैं, वो बस अपने मोबाइल पर जो है वो अपनी धुन में बातें करते चले जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो कुछ शिष्टाचार हैं, कुछ अनुशासन हैं जिन्हें बनाए रखना चाहिए। तो इसका जो है वो इसीलिए इस मंथ को जो है वो इसके मोबाइल कर्टसी के रूप में मनाया जाना जो है वो निश्चित किया गया है।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
4: फिर से?
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।

0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर, 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: गीत सागर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस वक्त। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना भी एक जो है वो उसका तरीका होता है, उसका भी एक अनुशासन होता है। तो डिजिटल कर्टिसी गाइड क्या है, इसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो जैसे कि मैसेज वगैरह हैं, जैसे संदेश को स्पष्ट संक्षिप्त रखें और भेजने से पहले एक बार दोबारा ज़रूर पढ़ें, उसके बाद जो है वो मैसेज को आप को जैसे भेजना है उसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कॉल को जब होल्ड करना हो तो दूसरा कि कॉल उठाने से पहले सामने वाले को बताएं और उनसे जो है वो बाकायदा अनुमति लें या बोलें कि हम आपका जो कॉल है वो अभी होल्ड पर रख रहे हैं और उसके बाद जो है वो हम कुछ अंतराल के बाद आपसे बात करेंगे। तो ये जो है वो अनुशासन होता है और ये एक तरीका होता है मोबाइल पर बात करने का।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सागर, और हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल पर बातचीत करने के शिष्टाचार क्या होते हैं। तो श्रोताओं, अगर हम कहीं बाहर हैं, सार्वजनिक स्थल पर हैं जहां भीड़भाड़ है या कुछ लोग बैठे हैं, तो हम वहां पर बातचीत करने के लिए हेडफोन का प्रयोग कर सकते हैं। हेडफोन का प्रयोग जो है वो करना जो है वो एक शिष्टाचार में आ जाएगा, क्योंकि उससे जो है वो बात आप धीमी आवाज़ में भी कर सकते हैं और आपकी बात जो है वो कॉलर जो आपको कॉल कर रहे हैं या आप जिन्हें कॉल कर रहे हैं उन तक जो है वो आसानी से पहुंच सकती है। तो इस बात का भी हम ध्यान रख सकते हैं। और अस्पष्ट या बहुत तेज़ आवाज़ में बात करना ये मोबाइल शिष्टाचार में नहीं आता है, और इसके लिए आप जो है वो अगर सार्वजनिक स्थल पर हैं आप, तो आप कम शब्दों में अपनी बात को जो है वो कह के सामने वाले को बताकर जो है वो आप बात को कम करके उसको फ़ोन को जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है वो मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं।

श्रोताओं, गीत सागर कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मोबाइल पर बातचीत करने के शिष्टाचार के बारे में। तो कभी कभी होता है कि जो है वो हम बात करते करते अचानक से कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं या काट देते हैं। तो कॉल कट जाए तो दोबारा कॉल करने की जिम्मेदारी जो है वो हमेशा जो है वो कॉल करने वाले यानी कॉलर की ही होनी चाहिए। यदि आपने किसी को कॉल किया है और बीच में बात करते करते आप किसी वजह से, नेटवर्क इश्यू की वजह से या किसी और वजह से कॉल अगर कट हो जाता है, तो आपने अगर किसी सामने वाले को कॉल किया है तो आप दोबारा से उसे कॉल करिए। ये जो है वो एक शिष्टाचार होता है। वहीं वीडियो कॉल से बचें। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल पर हैं तो वहाँ पर वीडियो कॉल करने से बचें, या किसी को भी कभी भी हम सोचते हैं कि चलो वीडियो कॉल कर देते हैं, तो ये भी तरीका सही नहीं है। किसी को भी सीधे वीडियो कॉल ना करें, पहले मैसेज भेजकर उसकी सहजता और अनुमति ले लें, उसके बाद ही आप उसे वीडियो कॉल करें।

श्रोताओं, बहुत ही ज़्यादा भावुक या पूरी तरह से जो निजी बातचीत है वो सार्वजनिक जगहों की बजाय हमेशा एकांत में ही करें। सार्वजनिक जगहों पर जो है वो लाउडस्पीकर पर गाने सुनना भी मोबाइल शिष्टाचार के अगेंस्ट होता है। तो इस तरह से जो है, आप कभी अगर सार्वजनिक जगह पर हैं और आपका गाने सुनने का मन हो रहा है तो उसे मोबाइल के लाउडस्पीकर पे ना सुने, क्योंकि उससे जो है वो आजू बाजू वालों को या किसी और को भी जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो इन बातों का आप ख्याल रख के मोबाइल शिष्टाचार को अपना सकते हैं।

जो तो हम बात कर रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के अनुशासन के बारे में, तो अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल जो है वो बार बार रिपीट ना करें, यानी यदि कोई आपका फ़ोन काट रहा है तो बार बार रिंग करने की बजाय एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें। वो जब भी फ्री होंगे या जब भी उनको टाइम मिलेगा वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं, या वो भी आपको मैसेज कर सकते हैं कि अभी हम व्यस्त हैं या कुछ कारण से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे जो है वो क्लियर हो जाता है। तो बार बार आप फ़ोन करते रहेंगे तो सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है, तो ये भी एक मोबाइल जो है वो शिष्टाचार में आता है।

श्रोताओं, कभी कभार हो जाता है कि सामने बैठे व्यक्ति को छोड़कर अचानक कॉल पर मशगूल हो जाना, लेकिन ये जो है वो मोबाइल स्क्रीन के अनुशासन नहीं है। सामने बैठे व्यक्ति को छोड़कर अचानक कॉल पर मशगूल होना रिश्तों में करवाहट लाता है। ज़रूरी कॉल आने पर हमेशा सामने वाले से अनुमति लें, ताकि सामने वाले के समय का जो है वो सम्मान हो सके और उसे भी लगे कि मेरी भी इम्पोर्टेंस है और मुझे छोड़कर सामने वाले ने कॉल पर बात करना शुरू एकदम से नहीं कर दिया। तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है।

तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा गीत सागर कार्यक्रम, और इसमें आज हमने बात की मोबाइल कर्टसी के बारे में कि डिजिटल जो कर्टसी है उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से हमें इजाज़त दें। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन और श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल व्यवहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। श्री अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसके लिए आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच 147 गाड़ियों के काफिले में 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। जत्थे के बालटल रूट के 2,312 लोग और पहलगाम रूट के 2,510 लोग शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। सूची में प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में

0: चयनित हुए हैं जिनमें रतलाम जिले के सांदीपनि विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और मौसम विभाग ने आज हरदा नर्मदापुरम रायसेन छिंदवाड़ा पांडुना और बालाघाट जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल इंदौर उज्जैन सहित 40 से अधिक जिलों में तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अगर धरती की धड़कनों को सुनना हो तो किसी जंगल के एकांत में कुछ पल बिताइए, किसी पेड़ की छाया में बैठकर देखिए, वहां हवा केवल बहती नहीं कितनी ही स्मृतियां साझा करती है कि कभी ऐसे ही अरण्य में ऋषियों के मुख से ऋचाएं फूटी थीं, वन के एकांत गीत में ही वेदों ने जन्म लिया था, कि कभी ऐसे ही अरण्य में श्री राम भटके थे अपनी सीता के लिए, कभी ऐसे ही वनों की नीरवता में ईश्वर को ढूंढते बुद्ध ने स्वयं को पा लिया था। वृक्षों की पत्तियां झूमती हुई समय के गीत गुनगुनाती हैं और जंगल का सन्नाटा इन वृक्षों के प्रति कृतज्ञ होता हुआ कहता है कि तपस्वियों की तरह धरती पर घोर साधना में लिप्त जान पड़ते हैं ये वृक्ष, जिनका सब कुछ दूसरों के लिए है। निश्चित ही ये वृक्ष वाल्मीकि, दुर्वासा या बुद्ध के वंशज होंगे, तभी तो ये ऋषिपुत्र जब भी लिखते हैं वसंत ही लिखते हैं। श्रोताओं, दरअसल पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं हैं, वो ऋतुओं के इतिहासकार हैं, पीढ़ियों के साक्षी हैं और आने वाले कल के सबसे विश्वसनीय प्रहरी भी। पेड़ों से ही हमारा कल, आज और कल है। श्रोताओं, हमारे देश में इन्हीं पेड़ों के उत्सव का सप्ताह होता है वन महोत्सव, जो जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती के लिए, हमारे आप के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार एक पौधा ही है, क्योंकि एक पौधा केवल आज को ही नहीं आने वाले कल को भी हरा भरा करता है। तो आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में हम और आप मिलकर वन महोत्सव मनाएंगे। बात करेंगे पेड़ों की, हरियाली की, पेड़ों से जुड़ी आपकी यादों की और आपके संकल्प की। बताइए हमें कि आपकी जिंदगी का वो एक पेड़ कौन सा है जिससे आपकी सबसे आत्मीय यादें जुड़ी हुई हैं। किसी पेड़ से आपका कोई खास रिश्ता हो तो बताइए हमें, और पेड़ों से जीवन का क्या रिश्ता है ये भी बताइए। साथ ही बताइए हमें कि वन महोत्सव आप कैसे मना रहे हैं, क्या संकल्प है आपका इस बरस। हमें उम्मीद है कि आपकी बात किसी न किसी के मन में हरियाली का एक नया बीज जरूर बोएगी। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं खेरोकला, ग्राम खेरोकला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ। बहन जी, कौन बोल रही हैं आप?
0: मैं सुनीता बोल रही हूँ।
1: अरे सुनीता सिंह, 2 साल से इंतजार किया है आपका, जो है सुनीता सिंह से बात हो जाए।
0: जी जी जी जी,
1: मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोगों को सच बोल रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं आपका जो है आवाज अच्छी लगती है बोलने की, और आपको बोलने का आइडिया भी बड़ा अच्छा है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश नायक जी, कैसे हैं?
1: ठीक है जी।
0: और मौसम कैसा है?
1: मौसम तो परसों बारिश हो गई काफी, अब तो बोनी भी चालू हो गई।
0: बिल्कुल, तो बारिश का मौसम आ गया है और आप जानते ही हैं कि जुलाई के महीने का जो पहला सप्ताह होता है उसे हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। बारिश के
1: जैसे आपने कहा

0: के पेड़ पौधे लगाइए, शासन भी सरकार भी इसी पर जोर दे रही है बहन जी।
1: जी जी,
0: पेड़ लगाना भी चाहिए और लगाए लोग बाग, उसकी परवरिश करें। जो नहीं कि पेड़ लगा दिया और फिर छोड़ दिया, परवरिश करें उसकी, जैसे जानवर ना खा पाए, पानी डालते रहे।
1: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सिर्फ पौधा लगा देना आपका दायित्व नहीं है, उसकी परवरिश भी करें, उसको संरक्षण भी दें। हम ये जानना चाह रहे थे रमेश जी कि पेड़ों से जुड़ी कोई आपकी याद हो, बचपन की कोई याद हो, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो पेड़ों के बीच खेलते भी हैं, पेड़ों पर चढ़कर भी खेलते हैं, है ना, तो कोई बचपन की याद हो, किसी पुराने पेड़ की याद हो तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं।
0: अब पेड़ की याद तो कुछ नहीं, पौधे तो लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं बहन जी, यहाँ के छोटे में बस वो पेड़ों पे चढ़ के खेला करते, गिल्ली डंडा कहीं कुछ, ये यही याद है। और पेड़ काटने वाले एक दो आदमी नहीं है, कई लोग काटते हैं। अब बताओ वन या जंगल कैसे रहे, और इसका बहुत जरूरी है, इसलिए शासन भी जो है इस पर गौर कर रही है कि पेड़ लगाओ, माँ के नाम लगाओ, उसकी परवरिश करो। ये लगा देने से कुछ नहीं होता है, उसकी परवरिश भी करने पड़ती, जानवरों से बचाया, बकरियों से, कहीं गाय भैंसों से, या उसकी जो है तारबारी भी करनी पड़ती है बहन जी, सुनीता जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो रमेश जी ये बताइए कि आपका क्या संकल्प है, आप कितने पेड़ लगाएंगे इस बार?
0: नहीं, हमने लगाए भी है और भी जो है लगाएंगे हम।
1: कौन कौन से पेड़ लगाए हैं?
0: ऐसे जगह छोटे मोटे पेड़ लगाना नहीं होता है, पेड़ तो लगा तो बड़ा का या पीपल का या महुआ का,
1: नीम,
0: ये ठोस पेड़ होते हैं।
1: तो आप कह रहे हैं कि नीम, पीपल, बड़, है ना, आंवला, इस तरह के अगर हम पौधे लगाते हैं तो आने वाले समय में
0: हो, जैसे ये खटाल पेड़ होते हैं, ये 100-100, 200-200 साल, 500-500 साल की उम्र होती है इनकी।
1: जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी उम्र भी लंबी होती है, तो आपके लगाने का जो फायदा है वो लंबे समय तक लोगों को मिलेगा।
0: जी जी जी जी, अब आज फार्मेसी प्रोग्राम तो है नहीं बहन जी।
1: नहीं, आज तो हमारी पसंद का गीत आप सुनेंगे, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा।
0: सुनीता जी
1: जी,
0: गीत हम ठीक नहीं, हम फरमाइश नहीं बता रहे, लेकिन कोई गीत सुनवाना तो रफी की आवाज हो या लता की आवाज हो, इनमें से कोई पुराना गीत सुनवा दे। एक मोहम्मद रफी, एक लता मंगेशकर, इनका कोई सानी नहीं है, ना कोई गायक हुआ है ना होगा।
1: बिल्कुल, तो रमेश जी आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: अम्बेडकर चौक टेबर वार्ड खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम। धन्यवाद
0: राम सखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के विषय पर? हम वन महोत्सव मना रहे हैं।
1: मैम। वन महोत्सव बहुत जरूरी है। वन महोत्सव इस बार हमारे क्षेत्र में खुरई विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पेड़ों का लगाना निश्चित हुआ तय हुआ है, जिनमें आपके फलदार वृक्ष ज्यादा रहेंगे। और हर साल तो लगते हैं, और हम व्यक्ति के तौर पे एक नीम का पेड़ हमने लगाया था भोपाल में। उस समय हम लोग भोपाल रहते थे,
0: जी जी
1: स्कूल थी 12 महल के पास।
0: जी
1: आज वो नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, फल फूल रहा है
0: क्या बात है
1: जी। और जी है मैम के नीम भारत का वेद है
0: जी जी क्या बात है
1: जी। नीम भारत का वेद है। नीम, आंवला और आपका वो जामुन का पेड़ जी लगाए तो बहुत अच्छा फलदार भी।

0: से 12 महल के पास
1: जी।
0: आज वो नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, फल फूल रहा है।
1: क्या बात है
0: जी। और जी है मैम के नीम भारत का वैद्य है।
1: जी जी क्या बात है
0: जी। नीम भारत का वैद्य है, नीम आंवला और आपका वो जामुन का पेड़ जी लगाए तो बहुत अच्छा फलदार भी है और आपकी लाभदायक भी है। एक पेड़ लगाया जामुन का लगा है हमारे यहाँ, 50 साल पुराना, जामुन के फल भी देता
1: जी,
0: है।
1: जी जी
0: तो जामुन के फल तो बहुत
1: गुणकारी होते हैं। बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो औषधीय पेड़ हैं, पौधे हैं, जैसे आपने नीम की बात की, आंवला, जामुन, इस तरह के अगर पेड़ लगाते हैं तो दोहरा लाभ हो जाता है ना
0: जी मैम।
1: बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो आप साझा कर सकते हैं।
0: बचपन की वही तो बता रही मैडम कि एक पेड़ लगाया था नीम का हम लोगों ने, अभी वो नीम का पेड़ है, एक जामुन का लगाया था, अभी जामुन का पेड़ भी है, बचपन की लगभग चल रहा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: 50 साल पहले हमारे पिताजी वगैरह ना लगा था,
1: आप लोगों ने मिलकर लगाया था।
0: आपके आंवला भी लगा है, नींबू भी लगा है,
1: बहुत सुंदर बात,
0: जामुन भी लगा है।
1: तो देखिए पिताजी ने पेड़ लगाया, उसके फल आप खाते हैं, आप जो पेड़ लगाएंगे आने वाली पीढ़ी उसका फल खाएगी, उसका लाभ लेगी। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम वृक्षारोपण जरूर करें। तो राम सखी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, सनी शर्मा, गंजवासोदा, राजनगर।
0: तो सनी जी कैसे हैं?
1: दीदी बढ़िया हैं।
0: अच्छे हैं। तो आज के विषय पर क्या कहेंगे? हम वन महोत्सव मना रहे हैं, पेड़ों का क्या महत्व है जीवन में, वनों का क्या महत्व है जीवन में, और पेड़ों से जुड़ी कोई याद अगर आपकी हो तो वो भी साझा कर सकते हैं आप।
1: पेड़ हमको फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और छाया देते हैं।
0: बिल्कुल। और जो पेड़ है वो बारिश को बुलाकर भी ले आते हैं।
1: जी जी जी
0: जी। और कितनी चीजें उनसे मिलती हैं, फल फूल लकड़ी सब कुछ पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ों से ही जीवन है ना? तो अभी जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं तो आप बताइए कि कौन सा पौधा लगाने का आपने निश्चय किया है?
1: नीम का।
0: नीम का पौधा लगाएंगे, किस लिए?
1: फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी
0: और ऑक्सीजन भी, है ना? बहुत गुणकारी पौधा है नीम का, जरूर लगाना।

0: चाहिए नीम का पेड़। और कोई याद अगर बचपन की हो, पेड़ों के साथ तो हमारा बचपन बीतता है, अगर खास तौर पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हों, है ना, तो बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ दीदी, पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों पर झूला डालना।
0: सावन के महीने में पेड़ों पर झूला डालना। हाँ
1: हाँ दीदी,
0: अभी भी डालते हैं,
1: हाँ दीदी, अभी भी डलता है।
0: क्या बात है। तो देखिए, पेड़ों के साथ एक आनंद है, जीवन का उत्सव है ना। तो हमें बहुत अच्छा
1: जी,
0: लगा सनी जी आपसे बात करके, और जो आपने कहा है कि आपका संकल्प है एक नीम का पौधा आप लगाएंगे, ज़रूर लगाइएगा। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि पौधा लगाने के बाद भूल मत जाइएगा, जैसे एक छोटे से बच्चे को परवरिश की ज़रूरत होती है, पेड़ों को भी परवरिश और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
1: रोज पानी डालना, खाद
0: जी
1: डालना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी,
0: रोज पानी डालना, खाद डालना और उसका संरक्षण करना कि उसे जानवरों
1: हाँ
0: से कोई हानि ना हो, जानवर उसे खा ना जाए, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार। जानकी गुप्ता, ग्राम भांगवन थानागा, जिला टीकमगढ़ मसदीर से बोल रहे।
0: जानकी जी टीकमगढ़ से बोल रही हैं, कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, और फोन लग जाता तो और अच्छे हो जाते।
0: बिल्कुल, बहुत देर से हमारे श्रोता प्रयास कर रहे होते हैं, और जब फोन लगता है तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत का फल मिल गया हो, है ना
1: हाँ, रोटी बना रहे थे, इसलिए
0: जी।
1: फोन लगाए थे,
0: हाँ
1: लग गया।
0: हाँ रोटियां बना रही थी आप।
1: हाँ, फोन
0: अच्छा
1: रखे थे पास में लगा।

0: हम बस आंसर डाल कर रहे थे कि लग गया।
1: बहुत अच्छी बात है कि काम के बीच भी आपको आकाशवाणी की सुध रही, याद रखा आपने।
0: रेडियो सुनते रहते। अरे
1: हाँ, तो आज के विषय पर क्या कहेंगी? वन महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं।
0: मैं भी कहना चाहती कि वृक्ष अपन को लगाने चाहिए, अपन को हवा भी देते हैं और फल भी देते हैं, और उस वृक्ष वृक्ष की सब बरसा भी होती है जहाँ वृक्ष ज्यादा लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल। तो आपके आसपास किस किस?
0: हमारे आसपास हमारे खुद दरवाजे के पास नीम लगी, बहुत बड़ा वृक्ष नीम का।
1: अच्छा, नीम का पेड़ है आपके घर के
0: हाँ, हम
1: पास?
0: अपने आंगन में लगाए, एक मीठी नीम का पेड़ लगाए, एक
1: हाँ
0: गुलाब का पेड़ लगाए।
1: जी। तो इस बरस वन
0: इस
1: महोत्सव
0: साल में
1: में
0: हम और दूसरा पेड़ लगाएंगे, और
1: कौन सा लगाएंगे?
0: नीम ही का लगाएंगे, एक और मीठी नीम का।
1: मीठी नीम। तो चलिए, ये तो छोटा
0: हाँ
1: सा पौधा हुआ, लेकिन अगर कुछ बड़े फलदार वृक्ष हम लगाते हैं या कुछ बड़े पौधे लगाते हैं जो कि आगे चलकर बड़े वृक्ष बनते हैं, जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप पीपल का कोई पौधा लगा दें, या
0: हाँ
1: आप।
0: मुझे सही कहीं लेके हमारे यहाँ ऐसी जगह है ना
1: अच्छा
0: लगाने
1: अच्छा
0: के।
1: जी। फिर भी गांव में सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से किसी एक स्थान
0: हाँ
1: पर भी
0: ऐसे
1: लगा
0: तो
1: सकते
0: बहुत
1: हैं।
0: पेड़ लगे हमारे ऐसे
1: हाँ
0: अगल बगल, बहुत
1: जी
0: ज्यादा मीठी नीम के लगे, पीपल के लगे,
1: जी
0: बरगद का लगा
1: तो
0: पेड़।
1: देखिए, किसी ने कभी लगाया था तो ये पेड़
0: हाँ
1: अभी
0: लगाया है
1: है ना, तो ये पेड़ आज
0: अभी अभी
1: आपके लिए
0: कुछ
1: हैं।
0: कुछ कुछ कुछ पेड़ के पीपल के छोटे छोटे भी हैं अभी।
1: तो उनको पानी देते रहिए, उनको संरक्षित करिए। और हम ये जानना चाह रहे थे जानकी जी, कि बचपन हमारा अगर ग्रामीण इलाके में बीता है तो पेड़ों से बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो कुछ याद अगर रोचक सी हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकती हैं
0: हाँ तो
1: हमसे।
0: वो चक्कर के जब छोटे थे हम, तो नीम के अमरूद के पेड़ है ना, उसको चढ़ते
1: हाँ। और अमरूद
0: हम
1: खाते
0: एक जाने के बगीचा में लगे थे,
1: थे जी।
0: जाते थे उस पर
1: हाँ,
0: चढ़ते थे, अमरूद खाते थे और छुपा छुपल खेलते थे पेड़ों पे।
1: वाह वाह वाह, पेड़ों पर आप मतलब
0: हाँ
1: छुपा छुपोवल खेलती थी, बहुत अच्छी बात है। और कई बार तो पेड़ पर बैठकर ही हम फल खाया करते थे अमरूद के,
0: हम
1: है
0: चढ़
1: ना?
0: जाते थे पेड़ों पे।
1: हाँ, मुझे तो याद है कि मैं अपने अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद भी खाती थी और वहीं पढ़ाई भी करती थी।
0: हाँ सही कह रही बात है।
1: तो चलिए, पेड़ों की अच्छी याद आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत
0: थैंक यू मैम।
1: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताएं।
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: अच्छा भागचंद साहू जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है?
1: मौसम बढ़िया है, गंज वासोदा में थोड़े बदल हो रहे हैं।
0: तो बारिश आ रही है और वन महोत्सव मनाया जा रहा है। मौसम को देखकर ही जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर कुछ कहें, अपने विचार रखें वन महोत्सव पर, वनों के महत्व पर, पेड़ों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं दीदी, देखो हर व्यक्ति को पेड़ों की कटाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बरसात, इसी के कारण से बरसात डिफरेंस हो रही है
0: जी।
1: है आदमी क्या है, वृक्ष वगैरह काट रहे हैं, पेड़ पौधे कम लगा रहे हैं, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं अपन ऑक्सीजन मिलेगी है और छाया भी मिलेगी एक प्रकार से, उनमें पानी समय समय पानी दें, उनकी छटाई करें,
0: उसकी परवरिश
1: करें। हमने
0: तो
1: एक नीम का पेड़ लगाया था दीदी।
0: अच्छा,
1: वो अभी लगा है।
0: अच्छा, कब लगाया था?
1: हमने दीदी कम से कम हो गए 20 साल हो चुके हैं उसको।
0: वाह, तो ये तो बड़ा हो गया होगा पेड़।
1: अरे बहुत बड़ा है दीदी, इतना अच्छी छांव है उसकी, गर्मी में वहीं बैठते हैं हम।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हाँ हाँ, नीम का पेड़ कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
0: बहुत अच्छा होता है, गुणकारी पेड़ है ना, कई औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। आप इस बरस कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं
1: दीदी? अब तो हम देखो अब उसका लगाएंगे, आम का पेड़ लगाना चाहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: आम का पेड़ लगाएंगे जिससे सबको फल भी मिले खाने के लिए।
0: हाँ,
1: और एक प्रकार से छाया भी मिले।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है भागचंद साहू जी कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले, और अब आप कह रहे हैं कि आम का पेड़ लगाएंगे जो कि फल भी देगा।
1: बिल्कुल, आम का एक पेड़ जरूर लगाएंगे, माँ के नाम लगाएंगे।
0: क्या बात है, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए।
1: बिल्कुल लगाएंगे जी, हमारा वादा।
0: तो भागचंद साहू जी, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले जो बहुत बड़ा हो गया है, छाया देता है, और इस बरस आप आम का पेड़ लगाने वाले हैं। तो इस संकल्प को बनाकर रखिए और अपने साथ और भी लोगों को जोड़िए। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: गोविंद पाटीदार।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मंदसौर जिले से।
0: मंदसौर जिले से। तो गोविंद जी, आज हम वन महोत्सव पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वनों का क्या महत्व है? जंगल कभी गए हैं आप?
1: जी हाँ।
0: तो किस तरह का?
1: वनों का तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है मैम। पहले के जमाने में इतने जंगल थे कि मतलब बिना कहे बारिश हो जाती थी। मतलब अपने आसपास का जो वातावरण रहता था वो बहुत ही शुद्ध और अच्छा रहता था।
0: जी जी, वन ज्यादा होते हैं तो पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते
1: हैं।
0: हाँ,
1: आकर्षित करते हैं। हाँ, सही बात।
0: और बारिश तो होती ही है, मिट्टी के कटाव को वो रोकते हैं। तो कौन सा पौधा लगाएंगे इस साल आप?
1: जी इस साल तो हम आम का पौधा लगाएंगे।
0: आम का? अच्छा
1: जी।
0: तो अकेले लगाएंगे या आपके साथ कुछ और दोस्त भी हैं?
1: जी हमारा तो खेती बाड़ी है जो हम तो बोले अकेले लगाएंगे। मैं हर साल हमारे तो पौधे लगाने का काम रहता, कभी नींबू का लगा लिया, कभी
0: जी जी जी
1: अपने फूलों के लगा लिया, कभी पीपल का लगा लिया, कभी नीम का लगा लिया, कभी इमली का लगा लिया।
0: अच्छा,
1: तो
0: बहुत
1: ये
0: अच्छी बात है।
1: वृक्ष भी रहते हैं मैम, और आगे अपने को फायदा भी है इनसे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी फायदा है, आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा है, इसलिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। अच्छा, बचपन की कोई याद हो आपको, अगर जंगलों से जुड़ी हुई, वनों से जुड़ी हुई या पेड़ों से जुड़ी हुई कोई याद हो?
1: मैम याद है, पहले बचपन में छोटे थे तब हमारे दादाजी आम का वृक्ष लगाते थे खेतों पे। तो वो छोटे छोटे वृक्ष जो रहते थे ना, तो उस समय हम वो कलम तारी का जो खेल होता था पहले, जो उस हिसाब से वो खेल याद है बचपन का, हम खेलते थे छोटे।
0: तो आप मतलब पेड़ों पर आप लोग खेलते थे?
1: जी हाँ।
0: बहुत अच्छी
1: वो
0: बात है।
1: खेल ही पेड़ के वृक्ष का ही था मैम।
0: तो क्या करते हैं इस खेल में?
1: अरे जैसे एक लकड़ी ले लेते हैं, वो चार पांच जो साथ में अपने मित्र लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऊपर वृक्ष पे चढ़ के उस लकड़ी को फेंकते थे, इतना दूर फेंकते थे कि जहाँ तक जा सके उसको फेंकते। तो वो एक जो लड़का जो रहता वो उसको लेके ने वापिस वृक्ष के नीचे रख देता उस लकड़ी को, और ऊपर पेड़ पे चढ़ के हम सबको पकड़ने के लिए आते थे।
0: क्या बात है।
1: एक एक करके जो नीचे कूद के ना उस लकड़ी को हाथ लगा रहे उसको तो पकड़ नहीं पाता, वो जो ऊपर रहते उनको पकड़ते थे।
0: तो चलिए, बड़ा ही रोचक सा ये खेल था। कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे भी इसको खेलें, उन्हें सिखाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी मेहनत होती होगी कि स्वास्थ्य भी बनता होगा इसमें, है ना? जी जी। तो गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारी मीठी सी याद भी आपने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम सुमत कुमार जैन, रिटायर्ड शिक्षक, पिंडरई जिला मंडला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: आज वन महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि आप एक शिक्षक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आप?
1: वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है मैडम। ये वन महोत्सव जो मनाया जा रहा है ये भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन से भरपूर, छांव से भरपूर जीवन जीने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: माताएं बहने कुछ वृक्षों की, जैसे बड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इनकी पूजाएं भी करती हैं और इनको बहुत महत्व भी देती हैं। तो मैं समस्त लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण और जीवन को सफल बनाएं।
0: तो बहुत ही सुंदर।
1: मैं अपने स्कूली जीवन में भी नीम के पेड़, पीपल का पेड़ और कंजी का पेड़, ऐसे पेड़ों को लगाते रहता था और उनकी देखभाल भी करता था और आज वो जीवित भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जैसा संदेश आपने दिया है, कुछ इसी तरह का आह्वान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, चाहे धरती माता के नाम या अपनी माता जी के नाम, एक पेड़ लगाने का आह्वान उन्होंने भी किया है देशवासियों से। तो इस बरस आप कौन सा पेड़ लगाएंगे?
1: मैं इस बार तो आम का पेड़ अभी लगाया हूँ, उनकी गोहियाँ जो है अच्छी प्रकार की गोहियाँ हैं, उनको मैंने अभी लगा दिया हूँ अपने घर के सामने। अब वो जब छोटा पौधा बन जाएंगे तो मैं उनको कहीं व्यवस्थित लगाने का प्रयास करूंगा मैडम।
0: तो आप कुछ
1: फलदार वृक्ष जीवन में सफलता, फलदार वृक्ष जीव, सब लोगों को खाने पीने का मौका भी मिलता है, पेड़ पशु पक्षियों को भी उसमें आवास बनाने की सुविधा मिल जाती है। जीवन में सफलता ही देते हैं मैडम। पेड़ पौधों को काटना या उनको नुकसान पहुंचाना हमारे मानव जीवन को खतरा पैदा करना है।
0: बिल्कुल। तो आपका संदेश लोगों तक पहुंचा सुमत कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जसराम जाटव,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला सीपी, गाँव का नाम जोराई।
0: जोराई से जसराम जाटव जी बोल रहे हैं। क्या कहेंगे वन
1: हाँ,
0: महोत्सव पर? किस तरह से आपके यहाँ वन महोत्सव मनाया जा रहा है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण किया जाता है इस सप्ताह में, तो वन महोत्सव में आप लोग क्या कर रहे हैं और पेड़ों का क्या महत्व है, आप क्या कहेंगे?
1: पेड़ों का मतलब ये है मैडम, क्या पेड़ लगाना चाहिए तो इससे छाया मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है मैडम, इससे बहुत अच्छा रहता है। हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: तो
0: आप कौन सा पेड़
1: मैडम,
0: लगाएंगे इस बरस?
1: या मैडम इस तरह पेड़ लगाएंगे, क्योंकि इस तरह पेड़ लगाएंगे तो बरसात आएगी तो अच्छा, अच्छे से हो जाएगा ना। टमाटर,
0: हाँ, ये तो महत्व की बात हो गई। आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं?
1: आम का पेड़ लगाने की सोच रहे हैं मैडम।
0: आम का पौधा लगाएंगे, और उसको जब लगाएंगे तो उसकी
1: हाँ
0: परवरिश भी कीजिएगा और उसको संरक्षण भी दीजिएगा, ताकि वो एक बड़ा पेड़ बन सके, है ना?
1: हाँ वो तो सही है।
0: तो कोई याद है बचपन की पेड़ों से जुड़ी हुई?
1: हाँ मैडम, क्या बचपन की याद है, वो क्या है, हम हमारे दोस्त के साथ में रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था, खेलना खेलना कूदना अच्छा लगता था मैडम हमको।
0: तो पेड़ों पर चढ़ के खेलते थे?
1: हाँ मैडम, जो क्या है, पहले पेड़ पे जो पेड़ वाला जो खेल नहीं होता है, वो खेल को खेलते थे पहले।
0: कौन सा खेल?
1: अरे जो पेड़ पे खेलती है ना, जो क्या बोलती है,
0: लुका छुपी?
1: उड़कदामन बोलती,
0: क्या बोलते हैं?
1: उड़कदामन बोलती थी मैडम। तो क्या है, इस पे डंडा, एक एक एक लकड़ी का डंडा लेते थे तो इस पे

0: फिर से चिल्का दी थी सी।
1: हम समझ गए, हमारे एक और श्रोता ने इस खेल का नाम बताया था, लुका छुपी की भी बात कुछ लोग करते हैं इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके आसपास इस तरह के खेल हैं जो पेड़ों से जुड़े हुए हैं और इन खेलों को आप खेलते हैं। आज के बच्चे भी खेलते हैं?
0: हाँ मैडम, क्या बच्चे भी खेलते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधों के साथ जब आप रहते हैं तो एक रिश्ता उनसे बनता है आपका, है ना? बचपन की एक याद आपके मन में है कि आप किस तरह पेड़ों के साथ खेलते थे। तो जसराम जी, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आम का पौधा जरूर लगाइएगा और कुछ लोगों को और प्रेरित कीजिएगा कि वो भी पौधे लगाएं। तो आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैम जी आपका स्वागत। मैं आपका नीमे सोता बोल रहा हूँ जी। जय नरसिंह देव FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: कमलेश कहार जी, आपने हमारा स्वागत किया जबकि स्वागत हमें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: सब कुशल है मैम जी। हरियाली के बीच में खड़ा हूँ मैम जी मैं आज।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे, वन महोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है?
1: अच्छा मैम जी, विषय यही है।
0: हाँ जी, विषय यही है, वन महोत्सव पे हम बात कर रहे हैं, वनों पर, पेड़ों पर।
1: तो मैं थोड़ा सा अपना माहौल, आंखों देखा हाल सभी श्रोताओं को और आपको सुनाना चाहूंगा आकाशवाणी के
0: जी
1: माध्यम से
0: जी
1: कि मेरे सामने चांदनी का वृक्ष लगा है जिसमें कि छोटे छोटे फूल लगे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और दूसरा वृक्ष कह सकते हैं नींबू के लगा है, बिही का लगा है जिसमें फल भी फले हैं बिही के, और कम से कम बिही के 10-12 वृक्ष ऐसे हैं जो फले हुए हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: और
0: तो ये बताइए कि वनों का क्या महत्व देखते हैं आप कमलेश जी?
1: देखिए, वनों का महत्व, यदि वन है तो हम है।
0: बिल्कुल।

0: ईमानदारी से बात की जाए, सचमुच में बिल्कुल हकीकत में जमीनी स्तर पे बात की जाए
1: जी,
0: तो वन के माध्यम से हमारा जीवन है, यानी जंगल और जीवन ये दोनों आवश्यक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यदि जीवन चाहिए तो जंगल जरूरी है। जंगल किसका? कंकीण का नहीं मैम जी, पेड़ पौधों का।
1: पेड़ पौधों का बिल्कुल, अगर वन है तो ऑक्सीजन है ना, वन है तो मिट्टी का कटाव रुकता है, वन है तो प्राकृतिक जो जीव हैं, जीव जंतु उनको भी आवास मिलता है, और हमें भी फल फूल लकड़ी औषधि सब वनों से प्राप्त होता है ना।
0: और वन के माध्यम से मैम जी देखिए बरसात है वो आकर्षित होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: देखिए मैम जी यही कह रहा था कि पौधे की बात हुई है तो मैं तो मैम जी सबसे ज्यादा पौधे छोटे रूप में पसंद करता हूँ। मैंने कभी बरगद का वृक्ष लगाया था जो कि आज वो पेड़ का रूप आकार ले चुका है, और एक नीम का लगाया था, उसकी नीम की छा में आज वर्तमान में लोग खड़े होते हैं।
1: क्या बात है, आपने दोनों बड़े महत्वपूर्ण पेड़ लगाए, बरगद और नीम जी।
0: मैम जी जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं ना, लोग ये महसूस करते हैं कि काश पेड़ होते हैं, लेकिन जब उस छाया से जब वो दूर चले जाते हैं तो उस पेड़ को काटने की भी सोचते हैं। तो ये दो प्रकार की गतिविधियां आती हैं मनुष्य के मानसिक रूप से।
1: जी जी, तो पेड़ों की रक्षा करनी है और पेड़ ना कटें इसके लिए प्रयास करना चाहिए हमें। तो कमलेश जी हम ये जानना चाह रहे थे कि बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई, कितने व्रत अनुष्ठान पेड़ों से जुड़े होते हैं, कितना खेल पेड़ों से जुड़ा हुआ होता है ना, तो इस तरह की कोई याद हो अगर आपके मन में बचपन की।
0: देखिए मैम जी बचपन में पेड़ों के साथ बहुत खेले, क्योंकि बिना पेड़ पौधे के मैं समझता हूँ जीवन अधूरा है, पहले ही कहा है।
1: जी जी,
0: तो बहुत से वृक्षों पे चढ़ते थे, फल भी तोड़ते थे, गिर भी जाते थे, पुनः फरोसी पर चढ़ते थे।
1: तो बिल्कुल,
0: उछल कूद पेड़ों के माध्यम से पौधों के माध्यम से हुई है, और वर्तमान में मेरे घर में भी छोटे छोटे पौधे लगे हैं फल फूल के, जिनको मैं स्पर्श करता हूँ रोज ही, कह सकता हूँ उनके चरण पड़ता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: फूल चढ़ाने की बात होती है तो फूल चढ़ाने से पहले मैं फूल वाले जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसके सचमुच में पेड़ पड़ता हूँ और स्वीकृति मांगता हूँ कि मैं एक दो फूल तोड़ लूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि जिन औषधियों को जब वैद्य तोड़ने जाते थे औषधियों को, तो पहले वो उस पेड़ की पूजा करते थे, उस पौधे की पूजा करते थे, अनुमति लेते थे और आभार के साथ वो औषधि वो लेते थे अपने दूसरे लोगों के इलाज के लिए। तो हमारी तो संस्कृति ही आभार की रही है। आपकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कमलेश जी, कि आप अगर एक फूल भी तोड़ते हैं तो आभार के साथ तोड़कर उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं।
0: और मैम जी आभार आपका भी है, बहुत ही अनुकूल वृक्ष दिशाएं रखा है, मेरे अलावा आपने अपनी बात भी रखी, अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे, आप तक भेजते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में ये सफर बेहद हरा भरा और खूबसूरत रहा। आपने केवल पेड़ों की चर्चा नहीं की, उनका महत्व ही नहीं बताया, बल्कि उनसे जुड़े अपने जीवन के वो अनमोल रिश्ते भी हमसे साझा किए जिनकी छाओं में यादें महकती हैं, संस्कार पनपते हैं और भविष्य मुस्कुराता है। याद रखिए, पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीते, वो खुद धूप सहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। वो बारिश को थामते हैं, पंछियों को घर देते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन को समृद्ध बनाते हैं। और ये भी याद रखिए कि वन महोत्सव का ये सप्ताह तभी सार्थक होगा जब हमारे आपके हाथों से लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले सालों में किसी राहगीर को छाया दे, किसी पक्षी को आश्रय दे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा का उपहार दे। आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उससे भी बढ़कर उसे वृक्ष बनने तक अपना स्नेह और संरक्षण देंगे। चलते चलते हमारी यही कामना कि धरती यूं ही हरी भरी रहे, नदियां गुनगुनाती रहें, पंछियों का कलरव यूं ही गूंजता रहे और आने वाली पीढ़ियां भी खिलखिलाती रहें, चहकती रहें, महकती रहें। इसी कामना के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता करेंगे। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले की सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसके लिए आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। जत्थे में बालटल और पहलगाम रूट के यात्री शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। आज भोपाल, इंदौर सहित उज्जैन और 40 से अधिक जिलों में तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत

है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमने ली है आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमीर, सुदामा, शेख मुनीर और इनके गांव के लोगों ने ये हमें ख़त लिखा है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, आप सभी ने हमें लिख भेजी है भीगी पलकें फिल्म के गाने की फरमाइश, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। तो आइए आपकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं भीगी पलकें फिल्म से ये गीत।

भाटरपारा दंतीर गीसे द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार जाविंद्र कुमार वर्मा बंडा बेले से लक्ष्मण रेकवार

विनीत रेकवार, वैशाली वैष्णवी अनशत हल्ले ऋषि रेकवार, आप सभी ने सुनना चाहा है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी के फरमाइश पर ये नगमा।

आइए सुनवाते हैं आप सभी के फरमाइश। लिखने वाले हैं साहू नगर से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतना, रोशनी और बेबी प्रियांशी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से नगमा, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा।

और करुणा वर्मा, आप सभी ने सुनना चाहा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से नगमा, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा।

मौसी राजपाल गजबी है, राधिका, बेबी अनिष्का और इनकी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फना फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं फना फिल्म से ये नगमा।

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राशि, रक्षित चित्रंजन, कमल उमेश, सरोज आरती, रेखा रितिका, रिचा स्वीटी, रिया रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य डोंगर का

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया।

जीने की राह फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन।

Rota Rotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण

0: İş yer dika, pokran dika. Miss World dikhi, World Cup dika. चंद्रयान दिखा, इंसेट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्वास्थ्य दर्पण हर सोमवार दोपहर 1:02 पर सुनिए सेहत और खुशियों की बातें, गीत संगीत के साथ विशेषज्ञों की मुलाकातें। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में प्रत्येक सोमवार दिन में 1:02 से। सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हंसना मना है धारावाहिक का पहला भाग।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। इसे यूं भी समझ लीजिए कि हमने आपकी नाक घुमाकर पकड़ने की कोशिश की। दोस्तों हंसना हंसाना अकेले में कभी अच्छा नहीं लगता, बस यही सोचकर हमने अपने साथ शामिल किया है राजेश मिश्रा, विनय जैन, गोपाल तिवारी, संजय गायकवाड़ और मकरंद बड़नेरकर को। ये सभी बारी बारी से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए तो हमारे साथ हंसिएगा जरूर, और ना पसंद आए तो भी जरूर हंसिएगा। दोस्तों आज के जमाने में हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आप हम सभी दिन रात लगे रहते हैं अलग अलग जोड़ तोड़ में, है ना, मगर हमारी जोड़ तोड़ है आपको हंसाने की। तो आइए शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम जो आपके लिए है, जिसका नाम है हंसना मना है।

एक ऐसे शहर की कहानी लेके आया हूँ आपके सामने जहाँ बहुत सारे तांगे चलते हैं, टैक्सियाँ भी हैं और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, मगर तांगे बड़े ज़बरदस्त हैं। तो तांगे पे सफ़र कर रहे थे एक महाशय जो पहली बार उस शहर में पहुँचे थे। तो सफ़र करते करते जहाँ उनको जाना था जा रहे थे, धीरे धीरे तांगा चला जा रहा था, अचानक उन्होंने दो चार गधे उस शहर में देखे। तो कुछ मजाक करने का उनका मूड आ गया, तो तांगे वाले से क्या बोलते हैं, क्यों तांगे वाले भाई, आपके शहर में गधे बहुत हैं? तो तांगे वाले ने जवाब नहले पे दहला दिया। उन्होंने सवारी से क्या बोला, हाँ साहब गधे तो खैर हैं लेकिन कभी कभी बाहर से भी आ जाते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से क्या कहा, अजी सुनते हो, मुन्ने को पकड़े रहना वरना गुम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनके पतिदेव क्या बोलते हैं, परवाह ना करो, नो प्रॉब्लम, एक बार कोलंबस गुम हो गया था तो उसने अमेरिका की खोज कर ली थी, अपना मुन्ना गुम हो गया तो किसी देश का उद्धार करेगा वो। एक बच्चे की माँ ने अपने बच्चे से पूछा, क्यों पप्पू तुम्हें जो भाषण कला में स्कूल में पहला इनाम मिला था ये खबर सुनकर तुम्हारे पापा ने क्या कहा? लड़का बोलता है, मम्मी उन्होंने कहा कि तेरी माँ के जो गुण हैं वो धीरे धीरे तेरे अंदर आ रहे हैं। एक फिल्म निर्माता ने पूरे दावे के साथ एक बात कही, वो क्या बोलता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूरे देश में भावनात्मक एकता है। तो लोगों ने बोला, भाई कैसे, ये बात आप कैसे बोलते हो? तो उन्होंने कहा, मेरी फिल्म महाराष्ट्र में पहुंची पिट गई, मध्य प्रदेश में पहुंच गई पिट गई, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, जहां मैंने अपनी फिल्म को प्रदर्शित किया वहां पर पिट गई। इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में भावनात्मक एकता है। एक फिल्म डायरेक्टर ने एक कलाकार को बुलाया और उससे कहा, हाँ तो तुम एक काम करो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ का रोल करोगे। लड़का बोलता है, किसका रोल करेंगे सर? ओहो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ कलाकार का रोल करोगे, तो सर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो डायरेक्टर बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जैसे दिखते हो बिल्कुल ठीक है फिट है रोल में। ट्रेन चल रही थी, लोग सफर कर रहे थे, मैं भी बैठा था, कुछ और भी लोग बैठे थे, कुछ माताएं बहनें बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे। जो चार पांच महिलाएं बिल्कुल आमने सामने जो बैठी थी वो आपस में बातचीत कर रही हैं। एक ने कहा, मेरी उम्र इस समय होगी करीब करीब 33। लगे बोला झूठ, उनकी उम्र 33 नहीं, उससे ज्यादा थी। तो सामने वाली बोलती, आपकी 33 से मेरी भी करीब कोई 31 होना चाहिए। जब

0: कि उनकी कम से कम 50 थी, लेकिन बोलती हैं 31 की। तो कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 28, कोई बोलता है कुछ। अचानक ये सब बातें सुनते सुनते, ट्रेन तो चली जा रही थी, तो एक लड़का छोटा सा ऊपर बैठा हुआ था, करीब करीब होगी उसकी उम्र 17-18 साल की, वो अचानक गिरा। वो नीचे कहाँ, वो जो माताएं बहनें बैठी थी उनके पास में जाके गिरा। तो एक महिला बोलती, अरे तू कहाँ से आया? तो लड़का बोलता, मेरा जन्म अभी अभी हुआ है। एक बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, उनके पिताजी उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, 8 2 6 56, 8 2 6 56, 8 2 6 56। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह वाह। लड़का फिर पढ़ा, 8 2 6 56, उनके पिताजी तारीफ किए जा रहे हैं। मैं अचानक उनके घर पहुंचा, और मैंने जब वो बच्चे को पढ़ते और उनके पिताजी को तारीफ करते देखा, तो मैंने ज़रा सा सोचा, विचार किया, फिर मैंने कहा, भाई साहब आपका बच्चा 8 2 6 56 बोल रहा है, जबकि ये गलत है, 8 2 16 होता है, आपको कम से कम अपने बच्चे को समझाना चाहिए, आप तो तारीफ किए जा रहे हो। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बच्चे के पिताजी बोलते हैं, हमको मालूम है 8 2 16 होता है, मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, वो बोल रहा है 8 2 6 56, मैं मानता हूँ कि वो गलत है, उसके बाद मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि कल में और आज में बड़ा फ़र्क है। मैंने कहा, साहब आपकी बात समझ में नहीं आई, यही बच्चा मेरा कल 8 2 96 बोल रहा था। क्यों लटोरे लाल, यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ। लटोरे मेरे पास आया, वो कहता है, नमस्ते बाबू जी, बोलिए। क्यों लटोरे, ये जो तुम कमीज पहने हो इसमें गांठ बंधी है, क्या बात, कुछ बंधा हुआ है क्या? नहीं बाबू जी, गांठ मतलब हमको याद रखने के लिए बांधी गई है। अच्छा, किसने बांधी? मेरी धर्मपत्नी ने ये गांठ बांधी है। क्यों भाई, ऐसा क्या है, क्यों बांधी? नहीं, उन्होंने कहा था हम जो तुमको चिट्ठी दे रहे हैं तुम जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देना, भूलना नहीं, इसलिए हम तुम्हारे कमीज में गांठ बांध रहे हैं। हमने, बहुत बढ़िया स्टाइल है भाई, तो वो चिट्ठी कहाँ है? वो हमारी धर्मपत्नी हमको देना भूल गई।
1: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है, मगर जब विनय जैन आ जाते हैं तब हंसी आए बिना कहाँ रुकती है।
2: दुनिया में तरह तरह के इंसान हुआ करते हैं, कुछ लोग आधी बात सुनकर उसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं और कुछ लोग आधी बात समझे बिना ही उसका मतलब निकाल लिया करते हैं। तो देखिए, आधी बात सुनकर और जो लोग बात दूसरी निकल आती है और उसका गलत अर्थ कैसे निकालते हैं या उसकी कैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, उसका नमूना देखिए। एक साहब अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिले और पूछा कि क्या बात है भाई बद्री, बहुत उदास दिख रहे हो। कोई बात नहीं है, कुछ तो बात है यार, तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, बचपन से हम तुम्हें जानते हैं, जरूर तुम बात छुपा रहे हो, अब तुम तो मेरे खास दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि हमारे घर में वो जानवर पालने का शौक घर वालों को रहा आया है, तो वो भैंस पाली थी तो उसके कारण थोड़ा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए मेरा मन खराब है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे गाय भैंस तो हमारे घर के लोग भी पाला करते थे। है, हाँ और क्या, फिर और क्या, एक बार हमारी भी भैंस की तबीयत खराब हो गई थी, अपन ने तो बस भैया वो आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दी थी। है और क्या, इतने में बात खत्म हो गई, दूसरी निकल आई, भैया की आधी बात रह गई, चले गए। दूसरे दिन मिले तो और उदास। बोले क्यों बद्री, क्या बात है? बोले यार गड़बड़ हो गया यार। गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया? बोले साहब जैसा आपके यहाँ आपकी भैंस की तबीयत नहीं खराब हुई थी तो आपने आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दिया था, हमने भी खिला दिया। हाँ फिर वो तो मर गई। हाँ वही तो, हमारी भी तो मर गई थी। और कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हुआ करते हैं, पूरी बात सुनने के बाद भी उसका अर्थ किस तरह निकालते हैं, इसका नमूना देखिए। दो साहब विदेश घूमने पहुंचे, एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे उनके पास एक गाइड आ जाता है और फौरन उनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मे आई हेल्प यू। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, गाइड समझता है कि शायद इनको अंग्रेजी ना आती हो तो वो उनसे हिंदी में सवाल करता है, महाशय जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं तो तीसरी बार वो चीनी भाषा में इनसे यही सवाल करता है। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो रशियन लैंग्वेज में गाइड उनसे यही बात पूछता है, ये फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो जैपनीज में पूछता है, दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, सबसे आखिरी में वो इनसे कौन सिर खपाए, निकल जाता है। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, जब वो चला जाता है तो एक

0: समझदार दूसरे समझदार से बोलता है, यार सत्ते अब ऐसा लगता है अपन लोगों को भी दो चार भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो दूसरा समझदार जवाब देता है, कोई मतलब नहीं है, उसको भी तो चार पांच भाषाएं आती थी, कोई मतलब निकला। एक मास्टर साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, जब भी अपनी विद्यालय में अपनी कक्षा में पढ़ाने जाते तो क्रिकेट की बातों का समावेश जरूर रहता था। अचानक उनके दिमाग में क्रिकेट भरा हुआ था और जैसे ही वो अपनी कक्षा में पहुंचे एक बच्चे को फौरन खड़ा कर दिया,
1: राजेंद्र खड़े हो जाओ, क्रिकेट का पहाड़ा सुनाओ।
0: लड़का घबरा गया, उसके बाद भी धीरे से चालू हुआ,
2: है ना क्रिकेट एक कम क्रिकेट, क्रिकेट दुनी विकेट, क्रिकेट दिया कैच, क्रिकेट चौकी मैच, क्रिकेट पंजे फील्डिंग, क्रिकेट छक्के बैटिंग, क्रिकेट सत्य सेंचुरी, क्रिकेट अट्ठे कमेंट्री, क्रिकेट नंबर डाउट, क्रिकेट धाम आउट।
3: हाँ भैया क्रिकेट धाम आउट, बहुत अच्छा पहाड़ा बनता तुमसे, बहुत हंस रहे, दांत निकाल के निबंध लिखो अंग्रेजी में, हमारी टोपी पर निबंध लिखो, चलो अंग्रेजी में निबंध लिखो, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो तो हमसे पूछ सकते हो, चलो निबंध लिखो इंग्लिश में, हमारी टोपी पर लिखना है। माफा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती, भेजा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती है।
4: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने, अगर यकीन ना हो तो सुनते हैं इन्हें।
5: एक विद्यालय में मैं गया तो बहुत बढ़िया एक बात देखी कि एक बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में डाले थे कि बच्चों से प्रार्थना के समय गुरु जी कहा करते, चलिए सावधान की स्थिति में आंखें बंद और सबसे पहले अपने अपने माता पिता और गुरु का ध्यान करेंगे, ये दो मिनट होगा, चलिए सावधान, सब बच्चे सावधान, आंखें बंद बंद, गुरु जी का ध्यान, माता पिता का ध्यान। मैं भी गया, मैंने देखा कि आंखें मैंने बंद नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कलाकार हूं तो ऑब्जर्व करना चाह रहा था। मैंने देखा कि बच्चे कुछ जो हैं आंखें बंद की थी और कुछ बच्चे जो हैं धीरे से देख रहे थे। हमने अलग अलग बच्चों से बाद में पूछा, हमने क्यों बेटा तुम आंखें नहीं बंद करे थे?
6: नहीं, हम ये तो मौका रहता है कि गुरु जी जब बोलते हैं आंखें बंद करो तो हम अपनी सहेली को देख लेते।
5: मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने बेटा ये बताए कि आप जब आंखें बंद करते हैं तो अस्थिर सा मन क्यों होता है आपका?
6: हमारा मन इसलिए अस्थिर होता है अगर सर कि इसलिए अस्थिर होता है क्योंकि जब हम आग बंद करते हैं ना तो ऋतिक रोशन देखता है।
5: अच्छा बेटा गुड़िया तुम ये बताओ कि तुम जब आंख बंद करती हो तो तुम्हें कैसा लगता है?
6: नहीं सर, मैं जब आंख बंद करती ना तो मुझे संजू याद आता है, इतना अच्छा लगता है ना स्वीट यू।
5: तो आंखें बंद करने का ये मामला साहब, और वैसे भी जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में पतिव्रता स्त्रियां अभी तक होती आई हैं और ये विश्व का रिकॉर्ड है। मैं एक बार विदेश यात्रा में गया तो मैंने देखा कि एक महिला कब्र के पास बैठी हुई पंखा चल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी सती देखी हैं, पतिव्रताएं देखी हैं, लेकिन पति के प्रति इतना प्रेम कि कब्र पर पंखा चल रही है, ये तो बहुत गजब बात हो गई। तो मैंने उससे पूछा, मैडम एक्सक्यूज़ मी, आप इतना चाहती थी अपने पति को कि उनकी कब्र पर पंखा चल रहे हैं? तो उसने कहा कि
6: नहीं, उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब तक हमारी कब्र सूख ना जाए दूसरी शादी ना करना।
5: एक और मामला के बड़े भैया ने छोटे भैया को आदेश किया कि
7: देखो तुम्हारा नाम छुट्टू।
5: जी भैया।
7: हम जा रहे थोड़ी शहर और तुम जो गैया है और बढ़िया गैया लगा के रखना और दूध बच्चों को दे देना और थोड़ा दूध उबाल के रख देना, समझ गया? नहीं समझ गया? बिल्कुल गैया ध्यान से लगा लेना।
5: छुट्टू ने क्या कहा? भैया हम गैया नहीं लगाएंगे।
7: क्यों क्यों नहीं लगाओगे?
5: बहुत एक नंबर के आलसी।
7: क्यों क्यों नहीं लगाओ गैया?
5: अरे हम गैया नहीं लगाए भैया, यार गैया बहुत लात फटकार।
7: तुम गैया क्यों नहीं लगाओगे?
5: भैया गैया लगाते हैं ना तो हमारा मुँह पर आता है। गैया लगाने में मुँह पर आता है? गैया हाथ से लगाना कि मुँह से लगाना है?
6: नहीं लगाना तो हाथ से है, लेकिन काय जब गैया लगाएंगे

0: लात फटकारेगी तो पुचकारना नहीं पड़ेगा। आ, आ, आ, आ, आ। दो मक्खियां शहर का दशहरा देखने आई, और दशहरा शहर जबलपुर का वैसे भी बड़ा प्रसिद्ध है। दशहरा देखने के पश्चात जब वे मक्खियां रात को शहर से लौट रही थीं, तो मक्खियों की जो आपस में चर्चा हुई वो एक चर्चा देखिए, कल्पना है ये, और देखिए मजा लीजिए। पहली मक्खी ने दूसरी मक्खी से कहा,
1: मतलब कि ऐसे लगो तो मतलब अरे खूब अच्छे लगो, हम तो चौपाटी तरफ निकल गए, सो हमने कहूँ चाट में बैठे, कहूँ चाइनीज में, और रसगुल्ला की ट्रे में बैठे तो ऐसे पंख ना चकवा गए, हाँ तो हमने पंखों का बिल्कुल खूब धो धाओ। और आजकल सुनो, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है शहर में, मतलब ऐसा मामला है कि गंदो पानी नहीं, वो पाउच को पानी पियो, हमने खूब मजा आए, हम तो खूब घूमे फिरे, खूब मजा आनंद लाओ। अच्छा एक चीज बताओ के तुमने दशहरा देखो, हाँ खूब देखो, राक्षस बड़ी बड़ी दुर्गा जी, और यहाँ सो पूरा मतलब बढ़िया देखा। अब जी बताओ कि घर कैसे चलो, तो कहीं काम करें कि अपन 407 में चलेंगे, यहाँ 407 में चले तो कहीं 407 में भीड़ जाए, लचर पचर हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करें, फिर एक काम करें कि अपन ऑटो रिक्शा में चले, कहीं यहाँ ऑटो रिक्शा वाले 5:25 बता रहे, खूब लूट हमारी मचाए हैं। तो फिर काश्चनिक काम करे कि अपन रिक्शा कर लें, कई रिक्शा तो कर लेते लेकिन अपना वजन देखो, रिक्शा देखो कहीं अपन बैठे और रिक्शा लचर पचर होगा। तो अब तो मैं बताओ मतलब कैसे चले, साल कलम बैठ जाए, नहीं साल कलम कैसे बैठो भाई, डंडा पे बैठो पर दिक्कत हो बैठवे में, तो बताओ काश चले, कई एक काम करो, क्या करें, कुत्ता कर ले कान में बैठ के निकल चले।
2: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है।
3: मैं नगर विकास योजना समिति का सदस्य हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये बात दो लोगों के बीच में हो रही है, जिससे बोला गया वो बोलता है, कहले साहब बहुत अच्छा साहब, आप नगर विकास योजना समिति के सदस्य हैं, वो बहुत राइट टाइम साहब आप हमारे घर में आए। क्या है कि शादी के बाद हमारी योजना थी एक लड़का और एक लड़की, है ना, तो योजना अधिकारी बोलते हैं आप मुझको गलत समझ रहे हैं साहब, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं परिवार नियोजन से आया हूँ, मैं परिवार नियोजन का से नहीं आया हूँ, मैं योजना अधिकारी हूँ, नगर विकास योजना अधिकारी। खैर चलिए ठीक है, वैसे आपके बच्चों की संख्या पूछ लेता हूँ, क्या दो लिख लूँ, तो वो सज्जन बोलते हैं फिर तो आप एक काम करो 7 लिखो, ये हमारी योजना का परिणाम है, हमें लड़के की प्रतीक्षा है। एक होटल में लिखा था आइए खाइए पैसा मत दीजिए, मतलब इसका ये हुआ कि आप जो भी कुछ खाएंगे आपको पैसा नहीं देना होगा, आपका पोता पैसा देगा, यानी आपके लड़के का लड़का। अरे साहब तो मजे वाली बात हो गई, पहुंच गए दो चार लोग, खाना खाने लगे, खूब जम के खाया, मिठाई भी आने दे, रोटी भी आने दे, पूड़ी भी आने दे, सब्जी भी आने दे, कौन पैसा देना है, देगा पोता। सब खा पी के जब बढ़िया मजा आ गया, उठने लगे तो एक बिल आ गया, बिल में लिखा था 990 रुपये 40 पैसे। तो जो खा रहे थे उन्होंने होटल के नौकर से पूछा, क्यों भाई आपने तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो भी कुछ खाएंगे उसका पैसा पोता देगा है, तो ये बिल काय का है? तो नौकर बोलता है ये आपके दादा का है। एक चोर पकड़ा गया, अदालत में पहुंचा, जज साहब ने पूछा, यहां वहां की चर्चाएं हुई और कहा तो तुमने रोटियां चुराई हैं, हैं? तुमको 500 रुपये तुम्हारे ऊपर जुर्माना किया जाता है। लेकिन वो जो रोटी चुराने वाला था बड़ा गरीब था, कहाँ से देता 500 रुपये। तो जज साहब बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने 500 रुपये स्वयं निकाले और उसके जुर्माने बतौर भर दिए। कितनी अच्छी बात है। लेकिन जज साहब ने एक और बहुत अच्छा काम किया, अदालत में जितने भी लोग बैठे थे सबके ऊपर 10-10 रुपये जुर्माने कर दिए। वो काय के लिए कर दिए कि वे जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसे समाज के लोग हैं जहां पे लोग रोटी के लिए चोरी करते हैं।
2: बहुत देर हुई, विनय जैन कहाँ हैं, बड़े खामोश हैं, जरा देखें तो इतनी देर में उन्होंने क्या कुछ नया बना लिया।
4: एक विवाह योग्य बालक ने इंटरनेट पर शादी के लिए अर्जी लगाई, जल्द ही हो गई सुनवाई, 15 मिनट में ही खुशखबरी आई, मामला फिट है, बिल्कुल हिट है, और इंटरनेट पर ही हो गई शादी, और कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर ही हो गया विधिवत डाइवोर्स, लड़का लड़की दोनों खुश, चलो इसी बहाने हो गया।

0: कंप्यूटर का कोर्स। दोस्तों कोर्स कंप्यूटर का है, लेकिन बात हंसने हंसाने की है। बहुत अच्छी बात आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले एक दिमाग की डॉक्टरों के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा हुआ एक मरीज, जिससे डॉक्टर द्वारा किया गया एक जरूरी सवाल कि साहब क्या समस्या है, और जैसे ही डॉक्टर साहब का सवाल सुना इन्होंने कि क्या समस्या है, आपका जवाब समस्या, कैसी समस्या, कौन सी समस्या, कोई समस्या नहीं है, हम बादशाह अकबर हैं। अरे भला बादशाह सलामत की कोई समस्या हो सकती है, समस्या तो मैडम जोधा बाई की है। क्या समस्या है आपकी मैडम की, ये अपने आप को मिसेस भटनागर समझती है। एक महिला रेलगाड़ी के एसी के डिब्बे में बैठ के सफर कर रही थी, और उनकी गोद में उनका एक बच्चा जो काफी देर से खेल रहा था, और वो बच्चे को खिलाती हुई महिला और अपने कहीं पानी पीती हुई, कहीं बच्चे को पानी पिलाती हुई अपने सफर को लगातार जारी किए थी। अचानक वो देखती है कि सामने की बर्थ पर बैठा हुआ नवयुवक उनके बच्चों को बड़ी देर से घूर कर देख रहा है। जब महिला से रहा नहीं गया, काफी देर तक ये बात नोटिस करने के बाद उस युवक से उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप काफी देर से मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो सामने वाले सज्जन जवाब देते हैं, मैडम मैंने जीवन में पहली बार इतना बदसूरत बच्चा देखा है। अपने बच्चे के बारे में इतनी भद्दी बात सुनकर महिला को क्रोध आ जाता है, थर थर कांपने लगती है और फौरन कंडक्टर को तलब करती है, कंडक्टर इस आदमी को फौरन मेरी सीट के सामने से उठा दिया जाए और इसको मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए, इस आदमी ने मेरी भारी तोहिन की है। कंडक्टर साहब फौरन आ जाते हैं और बोलते हैं, मैडम ये रेलवे का रिजर्वेशन है, हो सकता है सामने वाले यात्री ने आपके साथ कोई अशिष्टता की हो, मैं इसके लिए रेलवे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, और ये रिजर्वेशन के कारण इसको इसकी बर्थ से तो उठा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको आपकी मौजूदा सीट से बेहतर सीट दिलवाने का इंतजाम करता हूँ, और जबकि मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ डाइनिंग कॉर में चलिए, तो मैं आपको रेलवे की तरफ से एक फटाफट गर्मा गर्म कॉफी पिलवाता हूँ, ताकि आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और आपकी गोद में जो ये बंदर है मैं इसे एक केला ला के देता हूँ।
1: अपनी कहानी अखबार में छपे, इस चक्कर में लेखक महोदय ने अपनी कहानी तो अखबार को भेज दी, साथ में एक लेटर भी डाल दिया संपादक को, उसमें लिखा था मेहरबानी करके आप जहां चाहें उचित समझें विराम चिन्ह वगैरह लगाकर मेरी कहानी पूरी छापें। संपादक ने उनकी कहानी तो नहीं छापी, लेकिन एक लेटर जरूर लिख दिया, उसमें क्या लिखा, आप भविष्य में केवल विराम चिन्ह दिया करें, कहानी हम लिख देंगे। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोलता है,
2: पापा पापा हमारी शादी कब होगी,
1: तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी शादी होगी, तो लड़का बोलता है,
2: जब हम 21 साल के हो जाएंगे तब तो हमारी शादी होगी पापा, लेकिन हमको हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे,
1: तो लड़के का बाप बोलता है, आप हमको क्यों अपनी शादी में ले जाएंगे, तो लड़का बोलता है,
2: क्यों इसलिए हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप भी हमको अपनी शादी में नहीं ले गए थे।
0: एक ऐसे पतिदेव जो अपनी पत्नी की हर चीज में नुक्स निकाला करते थे, अचानक खाते खाते नाश्ते की प्लेट में उन्होंने एक आवाज लगाई,
3: सुनो
4: जी अभी आई,
3: ये सूजी में शक्कर कम है,
4: ये सूजी नहीं उपमा है,
3: हाँ हाँ मालूम है उपमा में नमक ज्यादा है।
0: सुबह नाश्ते के समय अचानक श्रीमती जी ने आमलेट और कॉफी का नाश्ता सामने रखा, तो पतिदेव की भ्रकुटी तन गई, आमलेट देख के फौरन पत्नी से बोले,
3: इधर आओ तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम नहीं हमको बिल्कुल आमलेट पसंद नहीं है, कॉफी के साथ आप आमलेट बना के ले आई, आज हमारा बिल्कुल आमलेट खाने का मन नहीं है, कुछ भी अपने मन से करती रहती हो, हटाओ ये आमलेट फामलेट सामने से हमारे।
0: श्रीमती जी निराश हो गई कि पतिदेव को पसंद नहीं आमलेट। दूसरे दिन नाश्ते में वो उबले हुए अंडे लेके आ गई, पतिदेव को उबले अंडे ज्यादा पसंद थे, जैसे उन्होंने उबले अंडे देखे तो भ्रकुटी फिर तन गई,
3: तुम्हारा पता नहीं दिमाग पर कहाँ रहता है, हैं? आज हमको आमलेट खाने का मन हो रहा था तो तुम अंडे उबाल के ले आई,
0: बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ही नहीं। श्रीमती जी को बहुत दुख होता है कि पतिदेव कोई बात उनकी समझते ही नहीं है, और तीसरे दिन अचानक उसका मूड इस तरह का बन जाता है कि वो

0: आधे अंडे उबाल के और आधे अंडों का ऑमलेट बना के ले आती हैं, तो जैसे ही दोनों प्लेट देखते हैं पतिदेव फौरन भ्रकुटी तन जाती हैं। पता नहीं तुम्हें कवा का लाएगी, जो अंडों को उबालना था उनका ऑमलेट बना लाई और जो उनका ऑमलेट बनाना था उनको उबाल लाई। एक साहब हाथ दिखाने के बहुत शौकीन थे, जहाँ देखो वहीं अपना हाथ लिख के बैठ जाते। एक पंडित जी को देखते ही से उन्होंने फौरन अपना हाथ दिखाया और पंडित जी को प्यार से बुलाकर, पंडित जी हाथ देख के बताइए कैसा है। पंडित जी थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में हाथ देखें और धीरे से बताया, बोले साहब आपकी तो बहुत अच्छी आयु है और आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और सुंदर नजर आता है। पंडित जी हाथ में खुजली भी होती है? पंडित जी बोले बेटा खुजली होती बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब धन आता है, ओम लक्ष्मी कमिंग। पंडित जी इस वाले हाथ में भी होती है? बेटा यही तो गड़बड़ है, यहाँ से धन आता है यहाँ से निकल जाता है, ये तो गड़बड़ है। पंडित जी इसका कुछ उपाय? उपाय तो सब चीज़ का है। पंडित जी पैर में भी होती है खुजली? अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, पैर में अगर खुजली होती है इसका मतलब तुम भारत भ्रमण पर जाओगे, इंडिया टूर करोगे। पंडित जी जी वाले पाँव में भी होती है? भैया बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड टूर करोगे, सारे संसार भ्रमण करोगे। पंडित जी पीठ में भी होती है? बोले भैया तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें खुजली है।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की पहली कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: अब भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है और क्षत्रिय धान को GI टैग मिल गया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यावहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने EPF योजना 2026 को 29 जून से प्रभावी कर दिया है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में EPF अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि GST को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और श्री अमरनाथ जी की यात्रा कल से शुरू हो रही है। आज यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ। 147 गाड़ियों के काफिले में बालटाल रूट के 2312 लोग और पहलगाम रूट के 2510 लोग यात्रा पर हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सखी अमृत। बहनों, तेज धूप, गर्मी, घबराहट से परेशान आप हम सभी अब धीरे धीरे हो रहे मौसम के बदलाव यानी बारिश का आगाज करने को तैयार हैं। ठंडक, ताजगी और सुकून का एहसास कराती बारिश की बूंदें हमारे मन में प्रसन्नता ला रही हैं। बहनों, बारिश की बूंदों से न केवल हम और आप खुश हैं बल्कि प्रकृति ने भी अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। नीरस होते पेड़ पौधे सभी जैसे हरे भरे होने को तैयार हैं। बारिश की बूंदें उन पर पड़ते ही नई नई कोपल आ गई हैं। धीमे धीमे चलती हवा जब पेड़ पौधों को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है मानो कि पेड़ पौधे भी खुशी से झूम रहे हैं। आसमान में बादलों का छाना, ठंडी हवा का चलना और पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू मन को बहुत ही शांति देती है और अपने आप ही हम आप तनाव मुक्त होते हैं और प्रसन्नता का एहसास कराती हैं बारिश की बूंदें। लेकिन बहनों, इसके साथ ही हमें बारिश के मौसम में ही स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। न केवल अपना बल्कि बच्चों और बुजुर्गों का तो और भी ध्यान रखना होता है। बच्चों को बारिश में भीगना तो पसंद होता ही है, लेकिन ज़्यादा भीगना नुकसानदायक भी हो सकता है। इस मौसम में नमी की अधिकता के कारण जीवाणु कीटाणु भी जल्दी बढ़ते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। हमेशा पूरी तरह से सूखे कपड़े ही पहने, गीले कपड़े या जिन कपड़ों में नमी सी लग रही हो तो उन कपड़ों को बिल्कुल भी ना पहने। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा व पका हुआ गर्म भोजन ही करें। स्वच्छ पीने के पानी का विशेष ध्यान रखें और आजकल तो बाज़ार में बहुत तरह के वाटर प्यूरिफायर मिलने लगे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्राचीन तरीके हैं जो हमारी दादी नानी करती आई हैं, यानी पानी उबाल कर पिएं या फिटकरी से साफ करके पिएं या छान कर पिएं। इसके अलावा इस मौसम में हमारी पाचन क्रिया थोड़ी धीमी भी हो जाती है, इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन करें। अपने आहार में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें और जहाँ तक हो बाहर के खाने से बचें। मैंने बारिश का मौसम बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आता है। अगर हम जागरूक रहें, सतर्क रहें तो बीमारियाँ हमारे पास भी ना आएंगी। किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए अपने शरीर को हमेशा साफ और सूखा रखें। लेकिन फिर भी बारिश की शुरुआती रिमझिम फुहारों में भीगने का मन तो करता ही है, तो आइए इस गीत के माध्यम से ही बारिश की रिमझिम फुहारों में भीगते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वरना जब बारिश होगी तो सेहत की बात तो होगी ही। तो बारिश में भीगने से सर्दी जुकाम हो या गला खराब हो या कान में पानी चला जाए या दर्द हो, लेकिन इलाज तो सबका है। स्वास्थ्य भेंट वार्ता में आज है जानकारी नाक कान गला में होने वाले सामान्य रोग लक्षण व उपचार। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव और उनसे बातचीत की है डॉक्टर बैजनाथ गौतम ने। तो आइए सुनते हैं ये स्वास्थ्य भेंट वार्ता।
1: सेहत की बात कार्यक्रम में अखिल जी आपका स्वागत है हमारे श्रोताओं के बीच में। हम ये जानना चाहेंगे कि नाक कान गला में सामान्य रोग किस तरह से क्या क्या होते हैं।
2: ये बदलता हुआ मौसम है
1: जी,
2: तो इस बदलते हुए मौसम में आम तौर पे जुखाम बहुत होता है और इसलिए हम सबसे पहले नाक से संबंधित या सर्दी जुखाम से संबंधित बीमारियों पे चर्चा कर ले। सर्दी जुखाम का लक्षण हम सबको पता है, नाक का बहना, नाक बंद हो जाना, इसके साथ में थोड़ा बुखार हो सकता है, ये आम लक्षण है
1: जी।
2: ज़्यादातर दवा या इलाज नहीं भी करें तो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं
1: जी,
2: पर यदि 2-3 दिन हो गए हैं और हमारे को ये कष्ट बने हुए हैं
1: जी,
2: ऐसी स्थिति में हमको एक विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्दी जुखाम के साथ यदि हम कान में दर्द महसूस कर रहे हैं तो हमको बिना देर करे एक नाक कान गला के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि नाक कान और गला आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सर्दी जुखाम का इन्फेक्शन कान तक जाएगा
1: जी,
2: कान में जैसा हमारे नाक से पानी बन रहा है इसी प्रकार से वहां पे पानी बनना शुरू होता है और वो मवाद का रूप ले लेता है। अब बाहर आने के लिए उसको जगह चाहिए
1: जी,
2: कान में सब तरफ हड्डी सपोर्टेड रहती है, कान का पर्दा एकमात्र ऐसी झिल्ली है

0: जो नाजुक होता है
1: जी,
0: और उस मवाद के प्रेशर में आके वो फट सकता है। तो वो एक ऐसा लक्षण है जिसमें हमको बिना देर करे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कुछ खाने पीने से सर्दी होती है
0: जी,
1: ये खा लोगे तो सर्दी हो जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: हम लोगों के दिमाग में इतना गहरा बसा हुआ है ये चीज़
1: जी,
0: कि हम किसी न किसी चीज़ को किसी न किसी चीज़ से लिंक करते हैं या उसको
1: जी
0: जिम्मेदार ठहराते हैं। साइंटिफिकली या मेडिकली बात करें
1: जी,
0: तो जो चीजें छूने में ठंडी हैं, जिनका तापमान कम है, फ्रिज में रखा हुआ पानी, ठंडी बर्फ वाली लस्सी, ऐसा यदि जो चीज छूने में ठंडी है वो हम यदि लेते हैं
1: जी,
0: तो कुछ देर के लिए हमारे गले वाला जो इसके आसपास का हिस्सा जितना उसके संपर्क में आता है
1: जी,
0: उसका रक्त का प्रवाह कम हो जाता है ठंडे से संपर्क में आने के कारण,
1: और उसमें खराश जैसे महसूस होता
0: है। एग्जैक्टली, और उतनी देर हमारी समझ लीजिए कि बॉडी में गश्त नहीं हो रही, पुलिस गश्त पे नहीं है, और कीटाणु मौका पाके वहां पे अपराध कर सकते हैं
1: जी।
0: तो कुछ हद तक तो ये सच है कि जो चीजें छूने में ठंडी हैं
1: जी,
0: वो हमको थोड़ा सा सर्दी जुखाम

0: आसपास का हिस्सा जितना उसके संपर्क में आता है
1: जी
0: उसका रक्त का प्रवाह कम हो जाता है ठंडे से संपर्क में आने के कारण,
1: और उसमें खराश जैसे महसूस होना।
0: एग्जैक्टली, और उतनी देर हमारी समझ लीजिए कि बॉडी में गश्त नहीं हो रही, पुलिस गश्त पे नहीं है, और कीटाणु मौका पाके वहां पे अपराध कर सकते हैं।
1: जी,
0: तो कुछ हद तक तो ये सच है कि जो चीजें छूने में ठंडी हैं
1: जी
0: वो हमको थोड़ा सा सर्दी जुखाम पैदा कर सकती है कि हमको सर्दी जुखाम हो जाए।
1: जी,
0: खट्टा खाना मैं नहीं समझता मेरी जानकारी में कि बहुत फर्क पड़ता होगा, पर खट्टी चीजें ज्यादातर एलर्जी जैसे
1: जी
0: लक्षण पैदा करती हैं
1: जी,
0: तो खट्टा डायरेक्टली मैं बहुत जिम्मेदार नहीं समझता
1: जी,
0: पर हाँ जो चीजें छूने में ठंडी हैं
1: जी
0: वो हमको नाक कान गले से संबंधित कष्ट दे सकती हैं, और बदलते हुए मौसम में यदि हम थोड़ा सा परहेज से रह लें तो शायद बेहतर होगा।
1: जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि वो एकदम से कोई सुबह उठा और खुली हवा में थोड़ा ठंडे में और उसको लगातार छींके आ रही हैं, तो उसको जैसे लगता है कि ठंड से उसको एलर्जी है।
0: जी,
1: ये क्या है?
0: असल में एलर्जी का ही एक रूप है।
1: जी,
0: जैसा मैंने कहा था बदलते मौसम में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये मौसम रहता है जिस समय वातावरण में बहुत सारे परागण होते हैं
1: जी,
0: एलर्जन जिसको हम बोलते हैं,
1: जी,
0: ये परागण जो होते हैं परागण ये ज्यादातर एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं।
1: जी,
0: इस मौसम में वातावरण में बहुत ज्यादा इनकी मात्रा पाई जाती है।
1: जी,
0: तो जो व्यक्ति साल भर जैसे कोई व्यक्ति नाक की एलर्जी से पीड़ित है,
1: जी,
0: साल भर यदि वो कंफर्टेबल रहा है तो इस समय उसको एलर्जी के लक्षण दोबारा हो सकते हैं।
1: जी,
0: इसको हम मेडिकल भाषा में सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं।
1: जी,
0: कि एलर्जी का वो प्रकार जो किसी एक खास मौसम में अपना असर दिखाता है।
1: जी जी,
0: तो हमको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा एक एलर्जी होती है सडन, यदि टेम्परेचर का चेंज होता है कि हम बहुत ठंडे कमरे में थे और हम अचानक बाहर आ जाते हैं।
1: जी,
0: तो ये जो तापमान का सडन परिवर्तन है ये भी हमारे को
1: जी
0: कुछ हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण हमको एलर्जी जैसे लक्षण ये पैदा कर सकता है।
1: जी,
0: तो ये सच है कि सुबह उठ के यदि हम अचानक बिस्तर से बाहर निकल आएं
1: जी
0: तो हमको छींकों का दौर शुरू हो सकता है। इसके लिए बचाव का एक ही उपाय है कि जब हम उठ जाएं
1: जी
0: कुछ समय जागृत अवस्था में बिस्तर पर ही बिताएं। जब हम बिस्तर से बाहर उतर रहे हैं, फर्श पे पैर रख रहे हैं, तो उस समय कोशिश करें कि नंगे पैर हम फर्श को ना छुएं, ठंडे फर्श। वो कहा जाता है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। हमको कोशिश करना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे हो
1: जी,
0: सामान्य तापमान, या कुनकुना पानी पीना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा
1: जी, अगर ऐसे लक्षण हैं।
0: हाँ, हम मेरे ख्याल से हम सबको ख्याल रखना चाहिए इन सब चीजों का।
1: अक्सर जब ऋतुएं बदलती हैं लोग परेशान हो उठते हैं और कुछ ना कुछ एलर्जी उनको सर्दी खांसी जैसे ही, यही सबसे ज्यादा मतलब हो, तो कभी कभी तो वायरल जैसी भी चीजें हो जाती हैं। ये इसके बारे में बताइए ना।
0: बदलती ऋतुओं में जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं
1: जी,
0: तो कुछ नए कीटाणु को पनपने के लिए मौका मिलता है। तो ये वो कीटाणु हैं
1: जी
0: जो अभी तक वातावरण में नहीं थे
1: जी,
0: और हमारा शरीर जो था
1: जी
0: उन कीटाणुओं के लिए अभ्यस्त था जो पिछले मौसम में थे। नई ऋतु, नए कीटाणु उत्पन्न होंगे और हमारा शरीर हो सकता है उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और परेशानियां पैदा करते। तो बदलती ऋतुओं में डेफिनेटली थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि उस समय कुछ नए कीटाणु वातावरण में पैर जमाते रहते हैं जो हमको बीमार करते।
1: कुछ लोगों का गला बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है।
0: ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का स्रोत गले में ही होता है। टॉन्सिलाइटिस एक आमतौर पे होने वाला गले का कष्ट है। ज्यादातर लोग इस टर्म से परिचित भी हैं कि हमको तो टॉन्सिल हो जाता है, टॉन्सिल हो जाता है
1: जी।
0: यदि आपका गला साल भर में 3 बार से अधिक खराब होता है इतना कि हमको दवाई खानी पड़ती है
1: जी,
0: ये एक संकेत है कि हमको विशेषज्ञ से मिलना चाहिए
1: जी,
0: और हो सकता है हमारे को टॉन्सिल्स के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े
1: जी। कुछ लोग जैसे कि कहा कि तेल गरम करके, मैं ऐसे मिथक की बात कर रहा हूँ जो जुबानी चलते हैं लोगों के, और ये नुस्खे घरों के नुस्खे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों को कान में तेल डाल दो।
0: देखिए बहुत पुरानी परंपरा है
1: जी,
0: और मेरी जानकारी उसके बारे में कितनी, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम पीढ़ियों से सदियों से करते आ रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक बेसिस रहा है
1: जी।
0: पर मुझे ऐसा लगता है कि कान में तेल डालना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है
1: जी,
0: शरीर ने खुद ही वहाँ पे एक वैक्स नामक एक चीज का शरीर खुद ही निर्माण करता है कान के अंदर, जो उसको वहाँ उतना नमी बना के रखता है या चिकनापन जितनी आवश्यकता है
1: जी।
0: हर चीज में कान में तेल डालना नहीं सही है और नहीं डालना चाहिए मुझे लगता है। कृपया कान में दर्द है, उसको गंभीरता से लीजिए और डॉक्टर से मिल लीजिए। कान के दर्द को कृपया एक दिन भी नजरअंदाज ना करें।

0: तो क्या ये जो हमारे कान हैं, गला है, इनको साफ सफाई की क्या मतलब, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: इसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि यदि जरूरी है
0: जी
1: तो ही मिलना चाहिए, कुछ लक्षण है तो, नहीं तो पुलिस से, डॉक्टर से और वकील से दूरी रहना चाहिए मेरे ख्याल से। आवश्यकता पड़ने पर इनके पास जाना
0: जब
1: चाहिए।
0: लक्षण देखें।
1: लक्षण,
0: हाँ
1: यदि कष्ट है
0: जी
1: तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। जब
0: जी
1: कभी कष्ट हो रहा है, मतलब वो हमारा ऑटोमेटिक मोड काम नहीं कर रहा है,
0: जी
1: उस समय शायद हमको।
0: अमूमन ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चे तो बोल नहीं पाते
1: जी
0: हैं, वो
1: जी हाँ
0: बेचारे
1: जी
0: अपना कष्ट किसी को नहीं बता
1: जी
0: पाते
1: हाँ
0: हैं। जब वो कभी कान मलते हैं,
1: एग्जैक्टली।
0: हैं, तो उससे क्या।
1: यदि बच्चा कान मल रहा है या कान पकड़ के रो रहा है
0: अच्छा
1: तो उसको 100% कान में कष्ट है।
0: जी
1: कान में दर्द होने पर ही बच्चा ऐसा करेगा। और छोटे बच्चों में, 1 वर्ष से कम बच्चों की शारीरिक रचना ऐसी होती है कि उनको कान के इन्फेक्शन औरों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हो सकते
0: ज्यादा
1: हैं।
0: हो सकते हैं।
1: कान का दर्द, हम फिर वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि
0: जी
1: कृपया कान के दर्द को गंभीरता से लें। यदि आपका
0: जी
1: बच्चा कान पकड़ के रो रहा है, कान को बार बार हाथ लगा रहा है, बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलिए।
0: बच्चे को दांत निकलते समय अधिक इन्फेक्शन
1: जी हाँ
0: वो
1: जी,
0: कान में और गले में,
1: हो जाता
0: उस
1: है।
0: समय के लिए आप क्या कहेंगे।
1: देखिए क्या होता है, जब बच्चे के दांत निकलते रहते हैं तो उसको मसूड़े में एक अजीब सा सेंसेशन होता रहता है,
0: जी
1: और मसूड़ों में एक अजीब सी एहसास होने के कारण बच्चा हर चीज मुंह में डालता है और मसूड़ों से
0: जी
1: उसको चबाने की कोशिश करता है। ये एक स्वाभाविक कसरत है जो भगवान ने उसको बनाया हुआ, क्योंकि जितना हम मसूड़ों को इस्तेमाल करेंगे
0: जी
1: उतना आसानी से हमारे दांत बाहर निकलते हैं।
0: जी
1: तो ये तो उसका अच्छा वाला पार्ट हो गया।
0: जी
1: खराब वाला पार्ट ये है कि बच्चा कुछ भी मुंह में डालता है तो
0: जी
1: इन्फेक्शन जरूर शरीर के अंदर पहुंचेगा। कभी-कभी ये उल्टी दस्त की वजह बन जाता है। सर्दी जुकाम को अपन इससे डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, पर हाँ हमको कोशिश करना चाहिए कि यदि छोटा बच्चा घर में है तो साफ सफाई इतनी होनी चाहिए, गंदी चीजें बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए आसानी से, क्योंकि उस समय बच्चा जो भी उसके हाथ में आएगा उसको मसूड़ों में दबाएगा ही दबाएगा।
0: क्या योग से, प्राणायाम वगैरह से भी ये नाक कान गले में।
1: 100% योग हमारे शरीर की हर बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है,
0: जी
1: जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस।
0: जी
1: योग जो भी व्यक्ति उचित तरीके से कर रहा है
0: जी
1: उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ज़्यादा अच्छी होगी उस व्यक्ति की अपेक्षा जो योग नहीं करता है।
0: जी
1: तो योग भगाए रोग एक आम तौर पे बोली जाने वाली चीज़ है, और ये 100% सही।
0: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के बीच में आप आए और आपने महत्वपूर्ण तीन अंगों के बारे में, नाक कान और गला के बारे में सामान्य रोगों की जानकारी दी। निस्संदेह इससे लाभान्वित होंगे।
1: गौतम,
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी सेहत की बात में बहनें सुन रही थीं नाक कान गला में होने वाले सामान्य रोग लक्षण व उपचार। इस विषय पर डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव से डॉक्टर बैजनाथ गौतम की बातचीत। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद बारिश के साथ हल्की हल्की ठंडक के साथ अब सभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे भी तैयार हैं स्कूल जाने को। तो हम आप उनको यही बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ खेल मस्ती, अब रोज़ जाओ स्कूल और मन लगाकर करो पढ़ाई। लेकिन अब स्कूलों में केवल कॉपी किताबों के साथ पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है और इसके लिए स्कूलों में मैदान में खेलने के साधन भी होते हैं। साथ ही खेल प्रशिक्षण के लिए टीचर भी होते हैं जो बच्चों की क्षमता अनुसार खेल का प्रशिक्षण देते हैं। और आज बहुत से लोग अलग अलग खेलों में अपना कैरियर बना रहे हैं। खेल से संबंधित कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें आगे चलकर कैरियर बनाया जा सकता है। आजकल तो हर समय प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चलते रहते हैं और उसकी खबर आप हम तक आसानी से पहुंच जाती है। और ये खबर पहुंचाने का काम करते हैं हमारे खेल पत्रकार, जो खेलों में विशेष रुचि तो रखते ही हैं, साथ ही संबंधित खेलों की पूरी जानकारी भी रखते हैं। नए बनने वाले रिकॉर्ड की बात हो या फिर पुराना कोई रिकॉर्ड, बड़ी ही आसानी से बताते हैं खेल पत्रकार। सखियों, आज हम मना रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। इसकी शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और खेल पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना। खेल पत्रकारिता खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का भी काम करती है।

खेल पत्रकारिता का महत्व केवल खेलों की रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आज का दिन यानी 2 जुलाई दुनिया भर के खेल पत्रकारों के अथक प्रयासों और उनके काम के प्रति समर्पण को सम्मान देने के लिए समर्पित है। 2 जुलाई खेल पत्रकार दिवस के लिए इसलिए चुनी गई क्योंकि 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर के खेल पत्रकारों को एक मंच पर लाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और खेल पत्रकारिता में गुणवत्ता, पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देना है। खेल पत्रकार न केवल खेलों की जानकारी, विश्लेषण और कहानियां प्रस्तुत करते हैं, बल्कि खेलों के बारे में लोगों को जागरूक भी करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। खेल से खेल भावना विकसित होती है, आपस में मित्रता बढ़ती है, एकता की भावना आती है। और आइए बहनों, चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: श्रोताओं एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव पुण्य कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव पुण्य कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन समय एक बार पुनः सुन लीजिए, 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारे फ़ोन नंबर 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: अरे वाह श्रोताओं, 90 साल हो गए, गीत गजल कहानियां और ढेर सारी यादें, हर जनरेशन की धड़कन।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे नीलम कुलकर्णी के गाए लोकगीत।

नीलम कुलकर्णी की गाई इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। ये कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मानस रॉय चौधरी के गाए भजन और गीत।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत यादों की बारात। पहला गीत इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

लव इन टोक्यो कार्यक्रम का अंतिम गीत इस फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी का गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों का परिचय कराया। दोनों नेता 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ताकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करके अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VBG रामजी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। कार्यक्रमों में नागरिकों को 125 दिवस रोजगार गारंटी, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की जानकारी दी जा रही है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने

की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक शाह का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहा भोपाल में आयोजित 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। अब घर खरीदने, निर्माण, मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई और विवाह जैसे खर्चों के लिए भी धन निकाला जा सकेगा। EPFO जल्द ही UPI और WhatsApp के माध्यम से भी सेवाएं शुरू करने जा रहा है।

अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहब भोपाल में आयोजित 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। अब घर खरीदने, निर्माण, मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई और विवाह जैसे खर्चों के लिए भी धन निकाला जा सकेगा। EPFO जल्द ही UPI और WhatsApp के माध्यम से भी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। पौधरोपण आज से शुरू हो गया है और BSF परिसर में सर्वाधिक पौधे लगाए जाएंगे। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह अभियान केवल पौधरोपण नहीं बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की सभी 78,000 से अधिक शालाओं ने इस रेटिंग में सहभागिता की थी। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। विश्व चैंपियन डी गुकेश एक हार और एक जीत के बाद छठे स्थान पर रहे। वहीं फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 5 अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर बने हुए हैं। टूर्नामेंट में अब सुपर रैपिड के 6 राउंड और खेले जाने बाकी हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर में कल तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्र ने सुश्रुत कॉमन एंडो ट्रेनर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह सुविधा लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी और जटिल सर्जरी का सुरक्षित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। निवाड़ी में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत UN वीमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने परियोजना से जुड़ी बालिकाओं से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। डिंडौरी में डेंगू निरोधक माह के अवसर पर डेंगू से बचाव और जन जागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में नए छात्र छात्राओं के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी

0: संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025

0: का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण

0: पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजिए नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। कबाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने। इन सब ने सुनना चाहा है सीता और गीता फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें आशा भोंसले और किशोर कुमार की हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव फरमन ने।

आशा भोंसले की आवाज़ में सुनिए समाधि फिल्म का ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है आर डी वर्मन ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं समाधि फिल्म का ये गीत।

जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरथ रेखवार, लल्लू ऋषि रेखवार, कंवर कॉलोनी पड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। आप सबने सुनना चाहा है मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चित्तर और साथियों की आवाज़ में शोर फिल्म का ये गीत, बोल राजकपि इंद्रजीत सिंह के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत है और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राजे मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार ने। तो सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

विक्टोरिया नंबर 203। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस फिल्म का गाना सुनिए। वर्मा मलिक का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा ने। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

पिया का खैर कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए इस फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतला राजेश। घंटाघर छुक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया ने।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VBG रामजी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ हुआ। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साह का उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को अपने खाते में कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 8:15। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00। 6:30 आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर ऋतु पांडे से ली गई भेंटवार्ता। विषय है वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे 10:10 और 9:30 फिल्म संगीत। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल

मैच का आंखों देखा हाल हम रात 10:30 बजे से आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत सुगम संगीत। लोक संगीत में आप सुनेंगे नीलम कुलकर्णी के गाए लोकगीत और सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे मानस राय चौधरी के गाए गीत और भजन। पहले सुनते हैं लोक संगीत में नीलम कुलकर्णी को।

कुलकर्णी के गाय इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ और सुगम संगीत में अब सुनिए मानस राय चौधरी के गाए भजन और गीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत मोम की गुड़िया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए पाकीज़ा फिल्म का ये नगमा। कै भोपाली के लिखे गीत की धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा जंजीर फिल्म सी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, गुलशन बाबरा का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। मौसम विभाग ने आज के लिए हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए अलमासुद्दीन सिद्दीकी का लिखा नाटक खो गया सब कुछ। प्रस्तुत करता है चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
2: प्रस्तुत है नाटक खो गया सब कुछ। इस नाटक के लेखक हैं अलमासुद्दीन सिद्दीकी, संयोजक राकेश ढोंडियाल और प्रस्तुतकर्ता हैं चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: विजय, बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूँ।
1: क्या हुआ राहुल?
0: यही कि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक फार्मा कंपनी की दवाइयां बिकवाने कभी इस डॉक्टर तो कभी उस डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना?
1: हाँ यार, ये टाई लगाकर हाथ में बैग लेकर चलना कभी कभी तो बोरियत जैसा लगता है यार।
0: और जब देखो तब बॉस समीर का फोन आ जाता है।
1: अरे बाप रे बाप, क्या कहा पे तूने? ओए 10:30 बज गए, जल्दी तैयार हो, फोन आता ही होगा उसका।
0: ओ
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: राहुल 10:30 बज गए हैं, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे।
4: सर सर, रास्ते में हूँ, बस अभी पहुंच रहा हूँ।
2: राहुल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
4: क्या हुआ सर?
2: मैंने तुम्हें लैंडलाइन पे फोन किया है, अभी तक घर पर हो? क्या सारी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे?
0: सॉरी सर।
2: व्हाट सॉरी? और ये विजय कहाँ है?
3: सर विजय भी मेरे साथ है। हा?
2: सुनो, तुम दोनों जल्दी से ऑफिस पहुंचो।
3: यस सर।
1: ये रामू को देखो, हमें देखकर ऐसा मुस्कुरा रहा है जैसे कह रहा हो आज तो आप दोनों की खैर नहीं, समीर सर आज बहुत गुस्से में हैं।
0: तो क्या हुआ? अगर समीर सर सख्त हैं तो हम भी मस्त हैं, एकदम ठंडा कर देंगे, ठंडा, क्या समझे। चलो चलते हैं बॉस के चैम्बर में।
1: हाँ चलो।
2: यस कम इन।
5: गुड मॉर्निंग सर।
2: क्यों, ये टाइम है ऑफिस आने का? कब तक तुम दोनों को बचाता रहूं मैं? अरे मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है।

0: ए
1: सॉरी सर, सर वो क्या है ना, आप तो जानते ही हैं सर कि अब हम दोनों की उम्र शादी के लायक हो गई है।
0: ये क्या बकवास कर रहे हो?
2: अरे सर, आपने भी तो हमारी जितनी उम्र में कुछ उल्टा सीधा किया ही होगा ना सर, मस्ती की होगी। अब हमारे खेलने कूदने के दिन है तो हमें क्यों रोकते हैं सर, एंजॉय करने दीजिए ना।
1: सर क्या है ना, सच बताऊं सर, आज हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें मिलने का टाइम दिया था सर, और वही टाइम ऑफिस आने का था सर। क्या करते सर, बस दिल के हाथों मजबूर थे हम।
0: देखो तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो वरना पछताओगे।
2: समीर सर, हम माना कि हम ऑफिस 1 घंटा लेट आए हैं, तो क्या हुआ, हम 1 घंटा देर तक काम कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है
1: सर
2: सर।
1: आप ही तो हैं जो हमें समझ सकते हैं, वरना आज तक हमारे डैडी हमें नहीं समझ सके।
0: क्या?
1: कुछ नहीं सर, कुछ नहीं।
0: देखो ये लास्ट वार्निंग है, तंग आ चुका हूं तुम दोनों की हरकतों से। अरे अब तो डॉक्टर्स भी परेशान हैं तुम्हारे झूठ बोलने से।
2: अरे सर नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। क्या क्या है?
0: फिर वही झूठ। अरे सच्चाई का सामना करना सीखो, समझे? और अब डॉक्टर्स की लिस्ट बनाओ जिन्हें आज विजिट करना है, और फिर मुझे दिखाओ।
1: यस सर।
2: जी सर।
1: विजय, लंच टाइम हो गया यार, चलो साथ में लंच करते हैं।
2: यार राहुल, यार कब तक अब हम ये 15,000 रुपए की नौकरी करते रहेंगे यार? वही घिसे पिटे दिन, क्या कभी अच्छे दिन भी आएंगे हमारे?
1: चल चल, पहले खाना खाते हैं फिर सोचते हैं। यार एक आइडिया है।
2: कौन सा आइडिया?
1: क्यों ना हम अपनी फार्मा कंपनी खोल लें?
2: अबे क्यों मजाक कर रहा है यार? अबे पैसे हैं तेरे पास, कंपनी खोलेगा?
1: पैसे की चिंता छोड़ विजय, बस तू हाँ कर, पार्टनरशिप में काम करते हैं। अबे पैसा कमाएंगे, लाखों बनाएंगे।
2: अच्छा प्लान तो बेटा, क्या प्लान है तेरा?
1: देख, मेरी पहचान की एक लैब है, वहां दवाइयां बनती हैं, वहीं से हम थोक में दवाइयां खरीदेंगे और अपनी कंपनी का लेवल लगाकर मार्केट में सप्लाई करेंगे। और वैसे भी सारे डॉक्टर्स तो हैं ही अपनी पहचान के, रातों रात अमीर हो जाएंगे यार, ऐश करेंगे ऐश।
2: यार राहुल, नकली दवाइयों के चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए?
1: नहीं यार, पैसा सबको दबा देता है, माल होना चाहिए जेब में, बस यूं समझ लो कि दुनिया अपनी मुट्ठी में है।
2: अगर ऐसी बात है तो मिलाओ हाथ और आज ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं।
1: यब्बा।

0: हेलो सर।
1: क्यों विजय, डॉक्टर बंसल ने तुम्हें मिलने का टाइम दिया था?
0: हाँ सर, आज डॉक्टर बंसल से 2 बजे का अपॉइंटमेंट है।
1: और अभी क्या बजा है?
0: 3 बजा है सर।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें? एक डॉक्टर के वक्त की कीमत नहीं समझते हो?
0: सॉरी सर।
1: अभी डॉक्टर बंसल का फोन आया था मेरे पास।
0: क्या कहा सर उन्होंने?
1: यही कि राहुल और विजय को अब कभी मेरे पास मत भेजना। मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी, अब टर्मिनेट करता हूं तुम दोनों को। नालायक, झूठे, मक्कार कहीं के।
0: सॉरी सर। सर बस सर एक चांस और सर, प्लीज सर।
2: क्या हुआ, क्या हुआ विजय?
0: नौकरी गई और क्या।
2: यानी दवा की फार्मेसी खुल गई विजय, नाम होगा RV फार्मा।

0: विजय,
1: कब से तुम दोनों को फोन लगा रही हूँ? घंटी बज रही है, फिर भी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
2: अरे बस यूं ही स्वाति, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इस दुनिया में आए हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, है ना स्वाति?
1: क्या मतलब तुम्हारा?
2: देखो, जो लोग रिस्क उठाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कामयाबी उनके कदम चूमती है, दौलत उनके पीछे भागती है।
1: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? रिस्क, कामयाबी, दौलत, क्या है ये सब?
0: विजय तुम बताओ बात क्या है?
3: मधु, बड़े शहरों में रहने वाले छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्या समझी?
0: तो सच नहीं बताओगे, क्या हो गया है तुम दोनों को?
3: अरे हम दोनों ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है।

0: नौकरी छोड़ दी हमने।
1: क्यों, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ दी क्यों?
2: डार्लिंग, ये रिस्क हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम दोनों टेंशन मत लो।
1: तो अब क्या करोगे?
0: अरे हम तो अपनी फार्मा कंपनी खोल चुके हैं। अब तुम देखना, हमारा घोड़ा सबसे आगे होगा और बाकी सब पीछे। ये रिस्क हमने तुम दोनों के लिए लिया है। हम नहीं चाहते शादी के बाद तुम दोनों पैसों के लिए तरसो।
3: अरे हम चाहते हैं कि जिस चीज पे तुम हाथ रख दो वो तुम्हारे पास चल कर आ जाए, समझी डार्लिंग?
4: जो भी करो सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो पूरे के चक्कर में सब कुछ गवा बैठो।

0: बधाई हो विजय, बधाई हो, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। आज वो खुशी का दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था।
1: हाँ यार राहुल, आज हम अपनी फार्मा कंपनी की दवाइयां लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: ए चलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग
0: डॉक्टर साहब। लास्ट टाइम हमने दवाई के कुछ सैंपल्स दिए थे, लेकिन सर मार्केट में कोई डिमांड अभी तक नहीं आई।
2: ओ यस, आपकी कंपनी की जो दवाइयों के रिजल्ट आ रहे हैं ना मिस्टर राहुल, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और इन दवाइयों की वजह से मरीजों को गड़बड़ हो रही है। सो आई एम सॉरी, आगे से तुम्हारी दवाइयां मैं नहीं लिख पाऊंगा।
0: डॉक्टर सलूजा, डॉक्टर साहब आप हमारी दवाइयों पे शक कर रहे हैं? डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर रावत और डॉक्टर अखिलेश, ये सब के सब हमारी कंपनी की दवाइयां लिख रहे हैं सर, और पेशेंट भी उनके पास बहुत ज्यादा है।
2: सो ठीक है ना मिस्टर राहुल, उन्हीं डॉक्टरों के पास जाइए आप। बट आई एम सॉरी, मैं आपकी दवाइयां नहीं लिख सकता।
0: ओके।
3: चल विजय, कहीं चलकर चाय पीते।
1: हाँ चलो।

0: यार राहुल, आज एक महीना हो गया हमें काम करते हुए और कहीं से भी अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। यार माँ ने अपने सोने के कंगन और हार बेचकर पैसे दिए थे, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब क्या होगा यार? इससे तो अपनी वो 15,000 की नौकरी अच्छी थी। काश समीर सर की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज अपना ये हाल ना होता। यार
1: दिल छोटा ना कर भाई, सब ठीक हो जाएगा यार। अब ऐसी बातें करेगा तो हिम्मत टूट जाएगी भाई। अब कंपनी खोली है तो इसे चलाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, करेंगे। अरे ये देखो, स्वाति और मधु भी होटल की तरफ आ रही है।
2: अरे वाह विजय, राहुल व्हाट अ सरप्राइज, अकेले अकेले चाय पी जा रही है। हम दोनों तुमसे ही मिलने आ रहे थे, अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गए।
1: क्यों, क्या कुछ खास बात है?
3: हाँ है तो खास बात। खुशी से उछल पड़ोगे।
1: बताओ क्या बात है?
3: बात ये है कि हमारी दोस्ती को काफी समय हो चुका है और अब मम्मी डैडी हमारी शादी की बात चला रहे हैं, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों भी अपने मम्मी डैडी से शादी की बात कर लो, क्या समझे?
4: इतनी जल्दी शादी?
2: ये जल्दी नहीं, सही समय है शादी का।
1: देखो स्वाति और मधु, शादी तो हमारी तुमसे ही होगी, है कि नहीं? बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए।
2: कितना वक्त चाहिए और क्यों चाहिए?
0: मधु बस सिर्फ 6 महीने, तुम दोनों हमारा साथ दे सकती हो क्या प्लीज?
3: तो हमें करना क्या होगा?
1: मैं बताता हूँ, बस एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपने इन खूबसूरत हाथों से डॉक्टर्स को गिफ्ट देना होगा। क्यों विजय, ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, बस और क्या, इतना छोटा सा काम है।
2: बस इतना सा काम, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं।

0: राहुल, ये कौन सी नई चाल है तेरी? जिनसे हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल डॉक्टर्स को रिझाने के लिए करेगा तू?
1: देख यार विजय, आज के इस दौर में जीना है तो कुछ नया जरा हट के करना पड़ेगा। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है कि नहीं?
0: ये क्या स्वाति और मधु इस काम में हमारा साथ देंगी?
1: देख भाई, स्वाति को मुझसे और मधु को अगर तुझसे शादी करनी है तो दोनों को हमारा साथ देना ही होगा, क्या समझे? अरे हम अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, ये आखिरी मौका है, वरना कोई हमें भीग भी नहीं देखा, समझे कि नहीं?
0: सही बात है।

0: मधु और स्वाति दोनों अपना काम समझ रहे।
1: बताइए
0: कि आगे दोनों को करना क्या है।
1: क्या?
0: हाँ, बस एक अच्छी सी स्माइल के साथ डॉक्टर्स को ये बुके देना है और साथ में ये गिफ्ट देना है।
1: ठीक है।
0: हाँ, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना तुम दोनों।
1: क्या?
0: कि स्माइल इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि डॉक्टर्स तुम्हें देखते ही इम्प्रेस हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, बस इतना छोटा सा काम है, फिर देखना डॉक्टर कैसे हमारी कंपनी की दवाइयां लिखना शुरू कर देगा। ओके
1: ओके,
0: नाउ यू कैन गो एंड ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।

0: May I come in, doctor?
1: Yes, come in, please.
0: Hello, doctor. Dr. Saluja, ये हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी भेंट।
2: Ah, that's really beautiful. बिल्कुल आपकी ही तरह खूबसूरत हैं।
0: Thank you, doctor.
2: Your name?
3: जी मैं मधु और ये स्वाति।
2: और कंपनी का?
3: जी आरवी फार्मा कंपनी।
2: ओके आरवी फार्मा कंपनी, मैं लिखूंगा आपकी कंपनी की दवाइयां।
3: थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू डॉक्टर।
2: ओह इट्स माय प्लेजर।

0: देखा विजय, देखा अपना फॉर्मूला हिट हो गया। स्वाति और मधु ने तो कमाल कर दिया यार। अब देखो कैसे ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहे हैं। और ये वही था ना डॉक्टर जो कहता था हमारी कंपनी की दवाइयां नहीं लिखे गए।
1: सच राहुल, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, वैसे भी अपनी मधु और स्वाति है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी डॉक्टर इनकी खूबसूरती से इंप्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकता।
0: रुको रुको, फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो
2: हेलो।
0: हाँ स्वाति, कहाँ हो?
2: हाँ कॉलेज में हूँ। क्यों, क्या बात है?
0: अरे बात ही कुछ ऐसी है कि सुनकर खुशी से जूं उड़ोगे तुम।
2: ऐसी भी क्या बात है, अब जल्दी भी बताओ।
0: आज हमारी तरफ से तुम्हारी और मधु की पार्टी है।
2: पार्टी? कहाँ पार्टी दे रहे हो जनाब?
0: अरे कहाँ मतलब क्या, होटल सरताज में और कहाँ।
2: सच राहुल, इतने बड़े होटल में? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना?
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, डालेंगे एकदम सच। बस तुम तैयार हो जाओ फटाफट। कम ऑन।

0: हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है।
1: राहुल, इतनी महंगी पार्टी देने की क्या जरूरत थी?
2: जरूरत तो थी, अगर तुम दोनों हमारा साथ न देती तो आज ये हमारी कंपनी बंद हो चुकी होती, क्या समझी? और सुनो, एक खुशखबरी और है,
1: क्या?
2: हम सब के लिए है।
1: वो क्या है? अरे जल्दी बताओ ना।
2: बताता हूँ। सुनो, हम कल एक बढ़िया सी लग्जरी कार खरीदने वाले हैं।
1: वाओ, कितना मजा आएगा ना, अपनी कार से घूमने का मजा ही कुछ और है। क्यों मधु, है ना?
3: हाँ, वैसे राहुल एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हो तो बहुत ही चालाक, अपना काम निकलवाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो।
2: क्या मतलब है तुम्हारा?
3: मेरा और स्वाति का क्या खूब इस्तेमाल किया है तुमने, हमें डॉक्टर्स के पास भेजकर हमारी खूबसूरती को बड़ी आसानी से कैश करा लिया, वरना होटल सरताज में पार्टी देने के तो तुम सोच भी नहीं सकते थे।
0: मधु, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
3: सच बता रही हूँ। अरे मैं तो राहुल की तारीफ ही कर रही हूँ।
2: हाँ, तारीफ। मधु मेरी तारीफ भी कर रही है और ताना भी मार रही है। इसे कहते हैं नहले पे दहला।
0: चलो कुछ खा भी ले।
1: हाँ, चल।
2: वेटर,

0: विजय, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे होटल सरताज को मैं अपने सपनों में देख रही हूँ।
1: मधु, अब सपने देखना बंद कर दो। अब तो सपनों को हकीकत

0: स्वाति, माँ को आज डॉक्टर को दिखाना है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है।
1: हाँ, माँ को तेज बुखार है। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ।
0: हाँ।
2: देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। माँ जी को हमने देख लिया है। आप बस ऐसा करिए कि ये जो दवाइयाँ इस पर लिखी हुई हैं, ये लाकर उनको दे दीजिए और उनको जल्दी ही आराम आ जाएगा।
0: जी माँ, ये दवाई खा लो।
1: अरे, दवाई खाते ही माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। माँ,
0: माँ, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी देखिए, माँ को क्या हो गया है?
1: माँ, क्या हो गया? माँ, माँ,
2: What happened? Oh shit! Nurse, get the oxygen, please. जल्दी लाओ।
1: क्या हुआ माँ को? माँ, डॉक्टर क्या हुआ माँ को?
0: डॉक्टर, माँ अभी तो अच्छी थी। माँ बोलो, क्या हुआ तुमको?
1: माँ,
2: calm down, calm down. आप लोग शांत रहिए और प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए।
1: मधु, मेरी बहन, माँ को क्या हो गया? देखो कैसे कर रही है माँ। हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करना।
0: क्या हुआ डॉक्टर? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है मेरी माँ को?
1: माँ, माँ, तुम बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो माँ? बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो, कुछ बोलो माँ, माँ।
2: I'm really sorry, Miss Swati. हम तुम्हारी माँ को बचा नहीं सके।
0: नहीं,
1: नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं, मेरी माँ मरी नहीं। डॉक्टर, तुम्हारी गलत दवाई से मेरी माँ मर गई। तुम कातिल हो मेरी माँ के। तुमने मेरी माँ को मारा है।
2: मिस स्वाति, आप होश में आइए। मिस स्वाति, डॉक्टर्स कभी किसी की जान नहीं लेते हैं। नर्स, कौन सा इंजेक्शन लगाया था आपने, मुझे लाके बताइए। ओह शिट, ये तो एकदम नकली दवाइयां हैं। इन नकली दवाइयों की वजह से ही तुम्हारी माँ की मौत हुई है। तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार हम नहीं है, यह आरवी फार्मा कंपनी है।
1: क्या कहा डॉक्टर? आरवी फार्मा कंपनी की दवाइयां?
2: जी हाँ मिस स्वाति, आरवी फार्मा कंपनी की ही दवाइयां हैं ये।
0: आरवी फार्मा कंपनी,
1: यानी वो राहुल और विजय दोनों हमारी माँ के कातिल हैं। इतना बड़ा धोखा।
3: स्वाति, क्या हुआ?

0: क्या हुआ माँ को? कैसे तबीयत है बाकी? स्वाति,
1: मेरी माँ के खातिर अब हमदर्दी दिखाने आए हो?
0: ये क्या कह रही हो स्वाति? हम तुम्हारी माँ के कातिल कैसे?
1: हाँ, तुम दोनों मेरी माँ के कातिल। तुम दोनों दवाइयाँ नहीं, जहर बनाते हो, जहर। डॉक्टर यही दोनों आरबी फार्मा कंपनी के मालिक हैं।
2: आई सी, तो ये हैं जो नकली दवाइयों का धंधा करते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं।

0: हेलो, पुलिस स्टेशन।
1: हाँ जी, कहिए, क्या बात है?
0: मैं चंचल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, जल्दी आइए, यहाँ नकली दवा की डोज से एक मौत हो गई है।
1: आप कौन है?
0: जी, मेरा नाम मधु है। मेरी माँ को बहुत तेज बुखार आया था, उन्हें आरवी फार्मा कंपनी का इंजेक्शन लगाया जिससे उनकी मौत हो गई।
1: देखिए मधु जी, आप रोइए नहीं, हम आ रहे हैं। वो इंजेक्शन की शीशी और सिरिंज वगैरह सब वहीं रहने दीजिएगा, ठीक है?
2: ये क्या कह रही हो मधु? हमारा कोई कसूर नहीं है और हमारी तो शादी होने वाली है, हम क्यों तुम्हारी माँ को मारेंगे?
0: शादी, और वो भी मेरी माँ के कातिल से? शर्म नहीं आती? ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ के कातिल से शादी करेगी?
3: अब तुम दोनों को सलाहों के पीछे जाना होगा।
2: नहीं,
3: अमीर बनने का शौक था ना, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमने का बहुत शौक था ना।
4: स्वाति, स्वाति, तुम भी शक कर रही हो मुझ पे। अरे, मुझसे शादी करना चाहती हो और मुझी पर शक कर रही हो?
3: शक नहीं राहुल, यकीन है, यकीन कि तुम मेरी माँ के कातिल हो।
4: स्वाति,

0: आपने फोन किया था मैडम?
1: हाँ, हमने ही फोन किया था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर। ये नकली दवाइयां बनाने का कारोबार करते हैं।
2: नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ बोलिए, झूठ बोलिए।
3: नहीं इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपको सारी सच्चाई बता देंगे।
1: हाँ
0: जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनकी कंपनी में जो दवाइयां बनती हैं वो एकदम नकली दवाइयां हैं। इनकी दवाइयां खाकर किसी की भी जान जा सकती है, जैसे इन लड़कियों की माँ की जान चली गई। डॉक्टर इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए।
4: ओके।
0: और हवलदार, इन दोनों को अरेस्ट कर लो।
2: नहीं नहीं इंस्पेक्टर। स्वाति, मधु, ये क्या कर रही हो? कुछ तो रहम करो। अरे हमें भी तुम्हारी माँ के मरने का दुख है। प्लीज स्वाति, प्लीज मधु, मधु
5: हमें बचा लो, मधु हमें माफ कर दो। आई लव यू मधु, आई लव यू।
0: चलो अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना, समझे?
1: ले जाइए इंस्पेक्टर, इन दोनों कातिलों को हमारी नजरों के सामने से दूर ले जाइए। जो दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते।
2: स्वाति, तुम मुझे कातिल कह लो कातिल, मगर प्लीज प्लीज मेरी मोहब्बत पे शक न करो। स्वाति प्लीज, स्वाति स्वाति।
3: विजय, आज हमने अपनी माँ को खोया है, मगर तुम दोनों ने लालच में आकर आज अपना सब कुछ खो दिया है, अपना मान सम्मान और अपना प्यार।
2: स्वाति।

अभी आप अलमासुद्दीन सिद्दीकी का लिखा नाटक सुन रहे थे, खो गया सब कुछ। इसके संयोजक थे राकेश।

0: ढौंडियाल। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: राहुल विवेक सावरीकर, विजय योगेश उमाठे, बॉस अमन अहमद खां, डॉक्टर सलूजा मयंक खन्ना, इंस्पेक्टर अर्पित पांडे, स्वाति अनामिका सागर और मधु आद्या मुंशी। नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन। ये नाटक आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियोज में तैयार किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से ही किया जा रहा था।
1: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।
2: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: यह आकाशवाणी डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की पहली कड़ी।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। इसे यूं भी समझ लीजिए कि हमने आपकी नाक घुमाकर पकड़ने की कोशिश की। दोस्तों हंसना हंसाना अकेले में कभी अच्छा नहीं लगता, बस यही सोचकर हमने अपने साथ शामिल किया है राजेश मिश्रा, विनय जैन, गोपाल तिवारी, संजय गायकवाड़ और मकरंद बड़नेरकर को। ये सभी बारी बारी से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए तो हमारे साथ हंसिएगा जरूर, और ना पसंद आए तो भी जरूर हंसिएगा। दोस्तों आज के जमाने में हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आप हम सभी दिन रात लगे रहते हैं अलग अलग जोड़ तोड़ में, है ना, मगर हमारी जोड़ तोड़ है आपको हंसाने की। तो आइए शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम जो आपके लिए है, जिसका नाम है हंसना मना है।

एक ऐसे शहर की कहानी लेके आया हूँ आपके सामने जहाँ बहुत सारे तांगे चलते हैं, टैक्सियाँ भी हैं और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, मगर तांगे बड़े ज़बरदस्त हैं। तो तांगे पे सफ़र कर रहे थे एक महाशय जो पहली बार उस शहर में पहुँचे थे। तो सफ़र करते करते जहाँ उनको जाना था जा रहे थे, धीरे धीरे तांगा चला जा रहा था, अचानक उन्होंने दो चार गधे उस शहर में देखे। तो कुछ मजाक करने का उनका मूड आ गया, तो तांगे वाले से क्या बोलते हैं, क्यों तांगे वाले भाई, आपके शहर में गधे बहुत हैं? तो तांगे वाले ने जवाब नहले पे दहला दिया। उन्होंने सवारी से क्या बोला, हाँ साहब गधे तो खैर हैं लेकिन कभी कभी बाहर से भी आ जाते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से क्या कहा, अजी सुनते हो, मुन्ने को पकड़े रहना वरना गुम हो गया।

0: तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
1: तो उनके पतिदेव क्या बोलते हैं, परवाह ना करो, नो प्रॉब्लम। एक बार कोलंबस गुम हो गया था तो उसने अमेरिका की खोज कर ली थी, अपना मुन्ना गुम हो गया तो किसी देश का उद्धार करेगा वो। एक बच्चे की माँ ने अपने बच्चे से पूछा, क्यों पप्पू तुम्हें जो भाषण कला में स्कूल में पहला इनाम मिला था ये खबर सुनकर तुम्हारे पापा ने क्या कहा? लड़का बोलता है,
0: मम्मी उन्होंने कहा कि तेरी माँ के जो गुण हैं वो धीरे धीरे तेरे अंदर आ रहे हैं।
1: एक फिल्म निर्माता ने पूरे दावे के साथ एक बात कही, वो क्या बोलता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूरे देश में भावनात्मक एकता है। तो लोगों ने बोला, भाई कैसे, ये बात आप कैसे बोलते हो? तो उन्होंने कहा, मेरी फिल्म महाराष्ट्र में पहुंची, पिट गई, मध्य प्रदेश में पहुंच गई, पिट गई, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, जहां मैंने अपनी फिल्म को प्रदर्शित किया वहां पर पिट गई। इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में भावनात्मक एकता है। एक फिल्म डायरेक्टर ने एक कलाकार को बुलाया और उससे कहा, हाँ तो तुम एक काम करो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ का रोल करोगे। लड़का बोलता है, किसका रोल करेंगे सर? ओहो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ कलाकार का रोल करोगे, तो सर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो डायरेक्टर बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जैसे दिखते हो बिल्कुल ठीक है, फिट है रोल में। ट्रेन चल रही थी, लोग सफर कर रहे थे, मैं भी बैठा था, कुछ और भी लोग बैठे थे, कुछ माताएं बहनें बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे। जो चार पांच महिलाएं बिल्कुल आमने सामने जो बैठी थी वो आपस में बातचीत कर रही हैं। एक ने कहा, मेरी उम्र इस समय होगी करीब करीब 33। लगे बोला झूठ, उनकी उम्र 33 नहीं उससे ज़्यादा थी। तो सामने वाली बोलती, आपकी 33 है, मेरी भी करीब कोई 31 होना चाहिए, जबकि उनकी कम से कम 50 थी, लेकिन बोलती हैं 31 की। तो कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 28, कोई बोलता है कुछ। अचानक ये सब बातें सुनते सुनते ट्रेन तो चली जा रही थी, तो एक लड़का छोटा सा ऊपर बैठा हुआ था, करीब करीब होगी उसकी उम्र 17-18 साल की, वो अचानक गिरा, वो नीचे, कहाँ, वो जो माताएं बहनें बैठी थी उनके पास में जाके गिरा। तो एक महिला बोलती, अरे तू कहाँ से आया? तो लड़का बोलता, मेरा जन्म अभी अभी हुआ है। एक बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, उनके पिताजी उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, 8 2 6 56, 8 2 6 56, 8 2 6 56। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह वाह। लड़का फिर पढ़ा, 8 2 6 56, उनके पिताजी तारीफ किए जा रहे हैं। मैं अचानक उनके घर पहुंचा और मैंने जब वो बच्चे को पढ़ते और उनके पिताजी को तारीफ करते देखा तो मैंने जरा सा सोचा, विचार किया, फिर मैंने कहा, भाई साहब आपका बच्चा 8 2 6 56 बोल रहा है जबकि ये गलत है, 8 2 16 होता है, आपको कम से कम अपने बच्चे को समझाना चाहिए, आप तो तारीफ किए जा रहे हो। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बच्चे के पिताजी बोलते हैं, हमको मालूम है 8 2 16 होता है, मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, वो बोल रहा है 8 2 6 56, मैं मानता हूँ कि वो गलत है, उसके बाद मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि कल में और आज में बड़ा फ़र्क है। मैंने कहा, साहब आपकी बात समझ में नहीं आई, यही बच्चा मेरा कल 8 2 96 बोल रहा था। क्यों लटोरे लाल, यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ। लटोरे मेरे पास आया और कहता है, नमस्ते बाबू जी, बोलिए। क्यों लटोरे, ये जो तुम कमीज पहने हो इसमें गांठ बंधी है, क्या बात, कुछ बंधा हुआ है क्या?
0: नहीं बाबू जी, गांठ मतलब हमको याद रखने के लिए बांधी गई है।
1: अच्छा, किसने बांधी?
0: मेरी धर्मपत्नी ने ये गांठ बांधी है।
1: क्यों भाई, ऐसा क्या है, क्यों बांधी?
0: नहीं, उन्होंने कहा था हम जो तुमको चिट्ठी दे रहे हैं तुम जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देना, भूलना नहीं, इसलिए हम तुम्हारे कमीज में गांठ बांध रहे हैं।
1: हमने, बहुत बढ़िया स्टाइल है भाई, तो वो चिट्ठी कहाँ है?
0: वो हमारी धर्मपत्नी हमको देना भूल गई।
2: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है, मगर जब विनय जैन आ जाते हैं तब हंसी आए बिना कहाँ रुकती है।
3: दुनिया में तरह तरह के इंसान हुआ करते हैं, कुछ लोग आधी बात सुनकर उसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं और कुछ लोग आधी बात समझे बिना ही उसका मतलब निकाल लिया करते हैं। तो देखिए, आधी बात सुनकर और जो लोग बात दूसरी निकल आती है और उसका गलत अर्थ

0: कैसे निकालते हैं या उसकी कैसी स्थितियां बन जाती हैं उसका नमूना देखिए। एक साहब अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिले और पूछा कि क्या बात है भाई बद्री, बहुत उदास दिख रहे हो। कोई बात नहीं है, कुछ तो बात है यार, तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, बचपन से हम तुम्हें जानते हैं, जरूर तुम बात छुपा रहे हो। अब तुम तो मेरे खास दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि हमारे घर में वो जानवर पालने का शौक घर वालों को रहा आया है, तो वो भैंस पाली थी तो उसके कारण थोड़ा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए मेरा मन खराब है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे गाय भैंस तो हमारे घर के लोग भी पाला करते थे। है हाँ और क्या, फिर और क्या, एक बार हमारी भी भैंस की तबीयत खराब हो गई थी, अपन ने तो बस भैया वो आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दी थी। है और क्या, इतने में बात खत्म हो गई, दूसरी निकल आई, भैया की आधी बात रह गई, चले गए। दूसरे दिन मिले तो और उदास। बोले क्यों बद्री, क्या बात है? बोले यार गड़बड़ हो गया यार। गड़बड़ हो गया? कैसे गड़बड़ हो गया? बोले साहब जैसा आपके यहाँ आपकी भैंस की तबीयत नहीं खराब हुई थी तो आपने आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दिया था, हमने भी खिला दिया। हाँ फिर वो तो मर गई। हाँ वही तो, हमारी भी तो मर गई थी। और कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हुआ करते हैं, पूरी बात सुनने के बाद भी उसका अर्थ किस तरह निकालते हैं इसका नमूना देखिए। दो साहब विदेश घूमने पहुंचे, एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे उनके पास एक गाइड आ जाता है और फौरन उनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मे आई हेल्प यू। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। गाइड समझता है कि शायद इनको अंग्रेजी ना आती हो तो वो उनसे हिंदी में सवाल करता है, महाशय जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं तो तीसरी बार वो चीनी भाषा में इनसे यही सवाल करता है। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो रशियन लैंग्वेज में गाइड उनसे यही बात पूछता है, ये फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो जैपनीज में पूछता है, दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, सबसे आखिरी में वो इनसे कौन सिर खपाए निकल जाता है। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। जब वो चला जाता है तो एक समझदार दूसरे समझदार से बोलता है, यार सत्ते अब ऐसा लगता है अपन लोगों को भी दो चार भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो दूसरा समझदार जवाब देता है, कोई मतलब नहीं है, उसको भी तो चार पांच भाषाएं आती थी, कोई मतलब निकला। एक मास्टर साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, जब भी अपनी विद्यालय में अपनी कक्षा में पढ़ाने जाते तो क्रिकेट की बातों का समावेश जरूर रहता था। अचानक उनके दिमाग में क्रिकेट भरा हुआ था और जैसे ही वो अपनी कक्षा में पहुंचे एक बच्चे को फौरन खड़ा कर दिया, राजेंद्र खड़े हो जाओ, क्रिकेट का पहाड़ा सुनाओ। लड़का घबरा गया, उसके बाद भी धीरे से चालू हुआ,
1: है ना क्रिकेट एक कम क्रिकेट, क्रिकेट दुनी विकेट, क्रिकेट दिया कैच, क्रिकेट चौकी मैच, क्रिकेट पंजे फील्डिंग, क्रिकेट छक्के बैटिंग, क्रिकेट सत्य सेंचुरी, क्रिकेट अच्छे कमेंट्री, क्रिकेट नंबर डाउट, क्रिकेट धाम आउट।
0: हाँ भैया क्रिकेट धाम आउट, बहुत अच्छा पहाड़ा बनता तुमसे, बहुत हंस रहे, दांत निकाल के निबंध लिखो अंग्रेजी में, हमारी टोपी पर निबंध लिखो, चलो अंग्रेजी में निबंध लिखो, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो तो हमसे पूछ सकते हो, चलो निबंध लिखो इंग्लिश में, हमारी टोपी पर लिखना है। माफा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती, बैठ जाओ, फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती है।
2: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने, अगर यकीन ना हो तो सुनते हैं इन्हें।
3: एक विद्यालय में मैं गया तो बहुत बढ़िया एक बात देखी कि एक बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में डाले थे कि बच्चों से प्रार्थना के समय गुरुजी कहा करते, चलिए सावधान की स्थिति में आंखें बंद और सबसे पहले अपने अपने माता पिता और गुरु का ध्यान करेंगे, ये दो मिनट होगा, चलिए सावधान, सब बच्चे सावधान, आंखें बंद बंद, गुरुजी का ध्यान, माता पिता का ध्यान। मैं भी गया, मैंने देखा कि आंखें मैंने बंद नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कलाकार हूं तो ऑब्जर्व करना चाह रहा था। मैंने देखा कि बच्चे कुछ जो हैं आंखें बंद की थी और कुछ बच्चे जो हैं धीरे से देख रहे थे। हमने अलग अलग बच्चों से बाद में पूछा, हमने क्यों बेटा तुम आंखें नहीं बंद करे थे?
4: नहीं हम, ये तो मौका रहता है कि गुरुजी जब बोलते हैं आंखें बंद करो तो हम अपनी सहेली को देख लेते।
3: <laughs> मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने बेटा ये बताएं कि आप जब आंखें बंद करते हैं

0: हैं, तो अस्थिर सा मन क्यों होता है आपका?
1: हमारा मन इसलिए अस्थिर होता है अगर सर कि इसलिए अस्थिर होता है क्योंकि जब हम आग बंद करते हैं ना तो ऋतिक रोशन दिखता है।
0: अच्छा बेटा गुड़िया, तुम ये बताओ कि तुम जब आंख बंद करती हो तो तुम्हें कैसा लगता है?
1: नहीं सर, मैं जब आंख बंद करती ना तो मुझे संजू याद आता है, इतना अच्छा लगता है ना स्वीट यू।
0: तो आंखें बंद करने का ये मामला साहब, और वैसे भी जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में पतिव्रता स्त्रियां अभी तक होती आई हैं और ये विश्व का रिकॉर्ड है। मैं एक बार विदेश यात्रा में गया तो मैंने देखा कि एक महिला कब्र के पास बैठी हुई पंखा चल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी सती देखी हैं, पतिव्रताएं देखी हैं, लेकिन पति के प्रति इतना प्रेम कि कब्र पर पंखा चल रही है, ये तो बहुत गजब बात हो गई। तो मैंने उससे पूछा, मैडम एक्सक्यूज़ मी, आप इतना चाहती थी अपने पति को कि उनकी कब्र पर पंखा चल रहे हैं? तो उसने कहा कि
1: नहीं, उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब तक हमारी कब्र सूख न जाए दूसरी शादी न करना।
0: एक और मामला के बड़े भैया ने छोटे भैया को आदेश किया कि देखो तुम्हारा नाम छुट्टू।
2: जी भैया।
0: हम जा रहे थोड़ी शहर और तुम जो गैया है और बढ़िया गैया लगा के रखना और दूध बच्चों को दे देना और थोड़ा दूध उबाल के रख देना, समझ गया? नहीं समझ गया? बिल्कुल गैया ध्यान से लगा लेना।
2: छुट्टू ने क्या कहा, भैया हम गैया नहीं लगाएंगे।
0: क्यों क्यों नहीं लगाओगे?
2: बहुत एक नंबर के आलसी।
0: क्यों क्यों नहीं लगाओ गैया?
2: अरे हम गैया नहीं लगाए भैया, यार गैया बहुत लात फटकार।
0: तुम गैया क्यों नहीं लगाओगे?
2: ये गैया लगाते हैं ना तो हमारा मुँह पर आता है।
0: गैया लगाने में मुँह पर आता है? गैया हाथ से लगाना है कि मुँह से लगाना है?
2: नहीं लगाना तो हाथ से है, लेकिन काय जब गैया लगाएंगे तो वो लात फटकारेगी तो पुचकारना नहीं पड़ेगा। आह आह आह।
0: दो मक्खियां शहर का दशहरा देखने आई, और दशहरा शहर जबलपुर का वैसे भी बड़ा प्रसिद्ध है। दशहरा देखने के पश्चात जब वे मक्खियां रात को शहर से लौट रही थीं तो मक्खियों की जो आपस में चर्चा हुई वो एक चर्चा देखिए, कल्पना है ये, और देखिए मजा लीजिए। पहली मक्खी ने दूसरी मक्खी से कहा,
1: मतलब क्या से लगो? तो मतलब अरे खूब अच्छे लगो, हम तो चौपाटी तरफ निकल गए, सो हमने कहूँ चाट में बैठे, कहूँ चाइनीज में, और रसगुल्ला की ट्रे में बैठे तो ऐसे पंख ना चकवा गए, हाँ तो हमने पंखों के बिल्कुल खूब धो धाओ। और आजकल सुनो, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है शहर में, मतलब ऐसा मामला है कि गंदो पानी नहीं, वो पाउच को पानी पियो, हमने खूब मजा आए, हम तो खूब घूमे फिरे, खूब मजा आनंद लाओ। अच्छा एक चीज़ बताओ कि तुमने दशहरा देखा? हाँ खूब देखो, राक्षस बड़ी बड़ी दुर्गा जी और यहाँ से पूरा मतलब बढ़िया देखा। अब जी बताओ कि घर कैसे चलो? तो कहीं काम करें कि अपन 407 में चलेंगे। यहाँ 407 में चले तो कहीं 407 में भीड़ जाए, लचर पचर हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करें? फिर एक काम करें कि अपन ऑटो रिक्शा में चले। कहीं हाँ ऑटो रिक्शा वाले 5:25 बता रहे, खूब लूट हमारी मचाए हैं। तो फिर का चलिए काम करें कि अपन रिक्शा कर लें। कई रिक्शा तो कर लेते लेकिन अपना वजन देखो, रिक्शा देखो। कहीं अपन बैठे और रिक्शा लचर पचर होगा। तो अब तुम्हें बताओ मतलब कैसे चले? साल कल में बैठ जाए? नहीं साल कल में कैसे बैठो भाई, डंडा पे बैठो, बड़ी दिक्कत हो बैठने में। तुम बताओ काश चले। कही एक काम करो, क्या करें? कुत्ता कर लें, कान में बैठ के निकल चले।
3: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है।
4: मैं नगर विकास योजना समिति का सदस्य हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये बात दो लोगों के बीच में हो रही है। जिससे बोला गया वो बोलता है, कहले साहब बहुत अच्छा साहब, आप नगर विकास योजना समिति के सदस्य हैं और बहुत राइट टाइम साहब आप हमारे घर में आए। क्या है कि शादी के बाद हमारी योजना थी एक लड़का और एक लड़की, है ना? तो योजना अधिकारी बोलते हैं, आप मुझको गलत समझ रहे हैं साहब, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं परिवार नियोजन से आया हूँ। मैं परिवार नियोजन का से नहीं आया हूँ, मैं योजना अधिकारी हूँ, नगर विकास योजना अधिकारी हैं। खैर चलिए ठीक है, वैसे आपके बच्चों की संख्या पूछ लेता हूँ, क्या दो लिख लूँ? तो वो सज्जन बोलते हैं, फिर तो आप एक काम करो 7 लिखो, ये हमारी योजना का परिणाम।

0: हमें लड़के की प्रतीक्षा है। एक होटल में लिखा था, आइए खाइए, पैसा मत दीजिए। मतलब इसका यह हुआ कि आप जो भी कुछ खाएंगे आपको पैसा नहीं देना होगा, आपका पोता पैसा देगा, यानी आपके लड़के का लड़का। अरे साहब, तो मजे वाली बात हो गई। पहुंच गए दो चार लोग, खाना खाने लगे, खूब जम के खाया, मिठाई भी आने दे, रोटी भी आने दे, पूड़ी भी आने दे, सब्जी भी आने दे, कौन पैसा देना है, देगा पोता। सब खा पी के जब बढ़िया मजा आ गया, उठने लगे तो एक बिल आ गया। बिल में लिखा था 990 रुपये 40 पैसे। तो जो खा रहे थे उन्होंने होटल के नौकर से पूछा, क्यों भाई, आपने तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो भी कुछ खाएंगे उसका पैसा पोता देगा, है तो ये बिल काय का है? तो नौकर बोलता है, ये आपके दादा का है। एक चोर पकड़ा गया, अदालत में पहुंचा, जज साहब ने पूछा, यहां वहां की चर्चाएं हुई और कहा, तो तुमने रोटियां चुराई हैं, हैं? तुमको 500 रुपये तुम्हारे ऊपर जुर्माना किया जाता है। लेकिन वो जो रोटी चुराने वाला था बड़ा गरीब था, कहाँ से देता 500 रुपये। तो जज साहब बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने 500 रुपये स्वयं निकाले और उसके जुर्माने बतौर भर दिए। कितनी अच्छी बात है। लेकिन जज साहब ने एक और बहुत अच्छा काम किया, अदालत में जितने भी लोग बैठे थे सबके ऊपर 10-10 रुपये जुर्माने कर दिए। वो काय के लिए कर दिए कि वे जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसे समाज के लोग हैं जहां पे लोग रोटी के लिए चोरी करते हैं।
1: बहुत देर हुई, विनय जैन कहाँ हैं, बड़े खामोश हैं, जरा देखें तो इतनी देर में उन्होंने क्या कुछ नया बना लिया।
2: एक विवाह योग्य बालक ने इंटरनेट पर शादी के लिए अर्जी लगाई, जल्द ही हो गई सुनवाई, 15 मिनट में ही खुशखबरी आई, मामला फिट है, बिल्कुल हिट है, और इंटरनेट पर ही हो गई शादी, और कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर ही हो गया विधिवत डाइवोर्स, लड़का लड़की दोनों खुश, चलो इसी बहाने हो गया कंप्यूटर का कोर्स। दोस्तों, कोर्स कंप्यूटर का है, लेकिन बात हंसने हंसाने की है, बहुत अच्छी बात आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले एक दिमाग की डॉक्टरों के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा हुआ एक मरीज, जिससे डॉक्टर द्वारा किया गया एक ज़रूरी सवाल कि साहब क्या समस्या है, और जैसे ही डॉक्टर साहब का सवाल सुना इन्होंने कि क्या समस्या है, आपका जवाब, समस्या कैसी समस्या, कौन सी समस्या, कोई समस्या नहीं है, हम बादशाह अकबर हैं। अरे भला बादशाह सलामत की कोई समस्या हो सकती है? समस्या तो मैडम जोधाबाई की है। क्या समस्या है आपकी मैडम की? ये अपने आप को मिसेस भटनागर समझती है। एक महिला रेलगाड़ी के एसी के डिब्बे में बैठ के सफर कर रही थी और उनकी गोद में उनका एक बच्चा जो काफ़ी देर से खेल रहा था, और वो बच्चों को खिलाती हुई महिला और अपने कहीं पानी पीती हुई, कहीं बच्चों को पानी पिलाती हुई अपने सफ़र को लगातार जारी किए थी। अचानक वो देखती है कि सामने की बर्थ पर बैठा हुआ नवयुवक उनके बच्चों को बड़ी देर से घूर कर देख रहा है। जब महिला से रहा नहीं गया, काफ़ी देर तक ये बात नोटिस करने के बाद उस युवक से उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी देर से मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो सामने वाले सज्जन जवाब देते हैं, मैडम मैंने जीवन में पहली बार इतना बदसूरत बच्चा देखा है। अपने बच्चे के बारे में इतनी भद्दी बात सुनकर महिला को क्रोध आ जाता है, थर थर कांपने लगती है और फौरन कंडक्टर को तलब करती है, कंडक्टर इस आदमी को फौरन मेरी सीट के सामने से उठा दिया जाए और इसको मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए, इस आदमी ने मेरी भारी तौहीन की है। कंडक्टर साहब फौरन आ जाते हैं और बोलते हैं, मैडम ये रेलवे का रिजर्वेशन है, हो सकता है सामने वाले यात्री ने आपके साथ कोई अशिष्टता की हो, मैं इसके लिए रेलवे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और ये रिजर्वेशन के कारण इसको इसकी बर्थ से तो उठा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको आपकी मौजूदा सीट से बेहतर सीट दिलवाने का इंतजाम करता हूँ, और जबकि मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ डाइनिंग कॉर में चलिए, तो मैं आपको रेलवे की तरफ से एक फटाफट गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलवाता हूँ ताकि आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और आपकी गोद में जो ये बंदर है मैं इसे एक केला ला के देता हूँ।
0: अपनी कहानी अखबार में छपे, इस चक्कर में लेखक महोदय ने अपनी कहानी तो अखबार को भेज दी, साथ में एक लेटर भी डाल दिया संपादक को, उसमें लिखा था, मेहरबानी करके आप

0: जितना चाहें उचित समझें, विराम चिन्ह वगैरह लगाकर मेरी कहानी पूरी छापें। संपादक ने उनकी कहानी तो नहीं छापी, लेकिन एक लेटर जरूर लिख दिया। उसमें क्या लिखा? आप भविष्य में केवल विराम चिन्ह दिया करें, कहानी हम लिख देंगे। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोलता है,
1: पापा पापा हमारी शादी कब होगी?
0: तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी शादी होगी। तो लड़का बोलता है,
1: जब हम 21 साल के हो जाएंगे तब हमारी शादी होगी पापा, लेकिन हमको हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे।
0: तो लड़के का बाप बोलता है, आप हमको क्यों अपनी शादी में ले जाएंगे? तो लड़का बोलता है,
1: क्यों? इसलिए हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप भी हमको अपनी शादी में नहीं ले गए थे।
2: एक ऐसे पतिदेव जो अपनी पत्नी की हर चीज में नुक्स निकाला करते थे, अचानक खाते खाते नाश्ते की प्लेट में उन्होंने एक आवाज लगाई,
3: सुनो।
4: जी अभी आई।
3: ये सूजी में शक्कर कम है?
4: ये सूजी नहीं, उपमा है।
3: हाँ हाँ मालूम है, उपमा में नमक ज्यादा है।
2: सुबह नाश्ते के समय अचानक श्रीमती जी ने आमलेट और कॉफी का नाश्ता सामने रखा तो पतिदेव की भ्रकुटी तन गई। आमलेट देख के फौरन पत्नी से बोले,
3: इधर आओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम नहीं हमको बिल्कुल आमलेट पसंद नहीं है। कॉफी के साथ आप आमलेट बना के ले आई, आज हमारा बिल्कुल आमलेट खाने का मन नहीं है, कुछ भी अपने मन से करती रहती हो, हटाओ ये आमलेट फामलेट सामने से हमारे।
2: श्रीमती जी निराश हो गई कि पतिदेव को पसंद नहीं आमलेट। दूसरे दिन नाश्ते में वो उबले हुए अंडे लेके आ गई। पतिदेव को उबले अंडे ज्यादा पसंद थे, जैसे उन्होंने उबले अंडे देखे तो भ्रकुटी फिर तन गई।
3: तुम्हारा पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है, है? आज हमको आमलेट खाने का मन हो रहा था तो तुम अंडे उबाल के ले आई,
2: बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ही नहीं। श्रीमती जी को बहुत दुख होता है कि पतिदेव कोई बात उनकी समझते ही नहीं है, और तीसरे दिन अचानक उसका मूड इस तरह का बन जाता है कि वो आधे अंडे उबाल के और आधे अंडों का आमलेट बना के ले आती हैं। तो जैसे दोनों प्लेट देखते पतिदेव फौरन भ्रकुटी तन जाती हैं। पता नहीं तुम्हें कवाकल आएगी, जो उन अंडों को उबालना था उनका आमलेट बना लाई, और जो उनका आमलेट बनाना था उनको उबाल लाई।
5: एक साहब हाथ दिखाने के बहुत शौकीन थे, जहाँ देखो वहीं अपना हाथ लिख के बैठ जाते। एक पंडित जी को देखते ही से उन्होंने फौरन अपना हाथ दिखाया और पंडित जी को प्यार से बुलाकर, पंडित जी हाथ देख के बताइए कैसा है। पंडित जी थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में हाथ देखें और धीरे से बताया, बोले साहब आपकी तो बहुत अच्छी आयु है और आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और सुंदर नजर आता है। पंडित जी हाथ में खुजली भी होती है? पंडित जी बोले, बेटा खुजली होती बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब धन आता है, ओम लक्ष्मी कमिंग। पंडित जी इस वाले हाथ में भी होती है? बेटा यही तो गड़बड़ है, यहाँ से धन आता है यहाँ से निकल जाता है, ये तो गड़बड़ है। पंडित जी इसका कुछ उपाय? उपाय तो सब चीज़ का है। पंडित जी पैर में भी होती है खुजली? अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, पैर में अगर खुजली होती इसका मतलब तुम भारत भ्रमण पर जाओगे, इंडिया टूर करोगे। पंडित जी जी वाले पाँव में भी होती है? भैया बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड टूर करोगे, सारे संसार भ्रमण करोगे। पंडित जी पीठ में भी होती है? बोले भैया तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें खुजली है।
0: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

हंसना मना है। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने इस धारावाहिक का पहला भाग सुना। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है, प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में जनजाति बाहुल्य 25,892 घर अब तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम और आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता
1: और मैं हूं मेघा। तो तैयार हो जाइए इस खूबसूरत शाम को और भी मजेदार, खुशनुमा और यादगार बनाने के लिए,
0: क्योंकि हम लेकर आए हैं ढेर सारी नई दिलचस्प और

0: देती है।
1: इसके मूल उद्देश्य क्या हैं, ये भी हमारे युवाओं को बताएं आप।
0: व्यावसायिक पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय, उद्योग या कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें तथा व्यक्ति अपनी निजी आजीविका कमाने योग्य बन सके।
1: डॉक्टर साहब, ये भी बताएं हमारे सुनने वालों को कि व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए व्यापक ज्ञान प्रदान करना है। इसमें भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास और इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। यह शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य किसी विशेष व्यवसाय, उद्योग या कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक व्यवहारिक और तकनीकी कौशल विकसित करना है, ताकि व्यक्ति रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सके। यह शिक्षा कौशल और रोजगार केंद्रित होती है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का क्या स्थान रहा है?
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को

0: रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सके, यह शिक्षा कौशल और रोजगार केंद्रित होती है।
1: ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का क्या स्थान रहा है?
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ना और विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना है।
1: जी
0: इस नीति में इस वर्ष तक लगभग 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
1: जी
0: इस नीति में व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, ताकि विद्यार्थी केवल डिग्रीधारी ना बने बल्कि कौशल युक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए तैयार नागरिक बन सकें।
1: जी आज के डिजिटल युग में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व क्यों बढ़ा है, ये भी बताएं।
0: डिजिटल युग में नई तकनीक जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी
1: जी
0: और डिजिटल डेटा मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल कर्मियों की आवश्यकता बढ़ी है। इन
1: अच्छा
0: क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। कंपनियों को सैद्धांतिक ज्ञान की ही नहीं बल्कि कार्य कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा कम समय में रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करती है और बदलते परिवेश के अनुरूप हमें तैयार करती है।
1: व्यावसायिक शिक्षा से उद्यमिता को डॉक्टर साहब कैसे बढ़ावा मिलता है?
0: हाँ, यह शिक्षा विद्यार्थियों को किसी विशेष क्षेत्र में तकनीकी और व्यवहारिक दक्षता प्रदान करती है, जिससे वे स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें।
1: जी
0: साथ ही साथ नौकरी खोजने की बजाय नौकरी के सृजन करने के लिए भी यह शिक्षा प्रेरित करती है। इस
1: अच्छा
0: शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी नई तकनीकों और विचारों का उपयोग करके नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर सकते हैं। इस
1: जी
0: शिक्षा से व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का व्यवसाय भी प्रारंभ करता है और यह शिक्षा व्यक्तियों में आवश्यक कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान करके एक सफल उद्यमी बनने व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाती है।
1: विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका डॉक्टर साहब क्या हो सकती है?
0: ये प्रश्न भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उचित है।
1: जी
0: यह शिक्षा केवल रोजगार स्वरोजगार का माध्यम नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास का आधार भी है। यह
1: अच्छा
0: विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान, कौशल एवं कार्य अनुभव प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनाती है। विद्यार्थी सामाजिक रूप से जिम्मेदार व जागरूक होता है। जब विद्यार्थी अपने कौशल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करता है
1: जी
0: तो उसमें आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है।
1: जी
0: व्यवहारिक ज्ञान से वह अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल कर पाता है। इसके अंतर्गत वह प्रोजेक्ट कार्य करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है और ग्रुप डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज के जरिए वो लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजरियल स्किल विकसित करता है। इस प्रकार के गुणों के विकास से विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास होता है।
1: अच्छा जी, आपने साइबर की बात की, तो ये जो साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम करने में विद्यार्थियों को क्या फायदा होता है, ये भी बताएं।
0: जी, आजकल ये साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम बहुत ही पॉपुलर पाठ्यक्रम है। आज के डिजिटल युग में
1: जी
0: साइबर सुरक्षा का महत्व निरंतर बढ़ रहा है।
1: अच्छा
0: इंटरनेट,
1: जी
0: ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, डिजिटल सेवाओं के बढ़ते प्रयोग से
1: अच्छा
0: साइबर अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
1: जी
0: इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों में डिजिटल सुरक्षा, तकनीकी दक्षता, रोजगार के अवसर, उद्यमिता की संभावनाएं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान की क्षमता प्रदान करना है।
1: अच्छा व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थियों को डॉक्टर साहब क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी बताएं आप।
0: व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख ज्ञान व कौशल प्रदान करती है। इससे वह जीवन और अपने करियर की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।
1: जी
0: इसमें रोजगार के बेहतर अवसर, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
1: जी
0: यह केवल नौकरी पाने के योग्य का योग नहीं है
1: हाँ हाँ
0: बल्कि जीवन में सफल, सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करती है।
1: इंटर्नशिप का इसमें क्या महत्व हो सकता है?
0: इंटर्नशिप का यदि मैं देखूं तो इंटर्नशिप के माध्यम से विद्यार्थी एक सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ
1: जी
0: व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है।
1: हाँ हाँ
0: वो उस स्थान पर जाके अपने सैद्धांतिक ज्ञान को वहाँ पे व्यावहारिक रूप में प्रयोग करता है, जिसमें उसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है।
1: अच्छा जी, डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा कैसे लागू?

0: प्रद है।
1: ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। यह शिक्षा ग्रामीण विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल प्रदान करके उनको निरंतर आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, हस्तशिल्प, कंप्यूटर, अन्य तकनीकी क्षेत्र संबंधित ज्ञान व कौशल प्रदान करके इनको रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे हमारा ग्रामीण विकास तीव्र गति से आगे होता है।
2: जी, अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर। इससे विद्यार्थियों को कैसे लाभ प्राप्त होता है, ये भी बताएं आप।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रही है।
2: जी,
1: इसमें विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति, कौशल विकास, शोध, नवाचार और करियर निर्माण का एक सशक्त माध्यम है।
2: जी,
1: इसका सही और नैतिक प्रयोग विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सक्षम बनाता है।
2: चर्चा के अंत में और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे युवाओं से?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के प्रतियोगी और तकनीकी युग में व्यावसायिक पाठ्यक्रम केवल विकल्प नहीं है,
2: जी,
1: बल्कि आवश्यकता बन चुके हैं।
2: जी,
1: मैं युवाओं को कौशल, आत्मविश्वास, रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं ये पाठ्यक्रम। यदि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। युवा शक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है और व्यावसायिक शिक्षा उस शक्ति को सही दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है।
2: व्यावसायिक पाठ्यक्रम आज की आवश्यकता, इस विषय पर डॉक्टर साहब आपने हमारे सुनने वालों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था व्यावसायिक शिक्षा आज की आवश्यकता। विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र कुमार शुक्ल, इनसे बातचीत की थी रविंद्र दुबे ने। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, यारिया 2 फिल्म से विशाल मिश्रा और नीति मोहन की आवाज में।

0: अंकिता, लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना, जब हमें समझने, हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे फैमिली, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मेघा, हमारे सपने पूरा करने में हमारे अपनों का ही तो हाथ होता है। और इतना ही नहीं, अगर लक्ष्य क्लियर और दूसरों की भलाई से संबंधित हो तो इसे पूरा करने में सहायता हमारे देश की सरकार भी करती है।
0: हाँ, आज के युवा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्री पोस्ट मैट्रिक, नई मंजिल, नया सवेरा और जन विकास जैसे कार्यक्रमों की मदद से लोगों के जीवन को और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: और दोस्तों, सरकार के ऐसे कई प्रयास अल्पसंख्यक वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर भी किए जा रहे हैं,
0: जिससे युवा वर्ग में समानता की भावना जागृत करने में भी मदद मिल रही है। आज हर वर्ग, हर क्षेत्र का व्यक्ति एक समान है और हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिसमें सभी को अपने जीवन के लिए समान अधिकार प्राप्त है।
1: दोस्तों, उम्मीद है आप सभी इन योजनाओं से, सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ने का और दूसरों को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे।
0: इन्हीं बातों के साथ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, फिल्म फैंटम से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: ये तो हमारा पहला प्रश्न था, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही जवाब है 9 मई 2015 को।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था, महाराष्ट्र की पहली इनोवेशन सिटी किस शहर के पास विकसित करने का प्रस्ताव है? इसका उत्तर है मुंबई सिटी। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अंकिता।
0: और मैं हूँ मेघा।
1: फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

अभी यह वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए वारिस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने इस गीत को गाया है। वर्मा मलिक के लिखे गीत को संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने।

और लीजिए अब सुनिए चांदनी फिल्म का गीत आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी।

फहीम अब्दुल्ला ने इस गीत को गाया है, इरशाद कामिल ने गीत लिखा है और गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

कार्यक्रम के आखिर में दोस्ताना फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले ने गीत गाया है, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। गठिया रोग और अर्थराइटिस रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन और समय एक बार पुनः सुन लीजिए। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच फ़ोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं।

करते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में जनजाति बाहुल्य 25,892 घर अब तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है।
2: और
0: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन

0: से बने होते हैं
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।

0: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
0: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
2: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
0: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
4: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
8: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
4: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
8: महामंत्री।

0: मंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
1: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
4: गाड़ी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा
3: है।
1: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को

0: करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा
4: गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा
3: है
4: तो करेगा।
1: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
5: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
6: महाराज की जय हो।
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
10: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की।

0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
1: सूर्य ग्रह है या तारा?
0: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
2: अच्छा सर।
3: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
4: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
3: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
3: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
4: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
3: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
4: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
3: सर मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
3: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
3: सर एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
4: सर आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।

0: साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
1: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: उमंग, अभी आपने एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए तुमको मेरी कसम फिल्म का गीत। नीति मोहन और पपून की आवाज़ें हैं, श्वेता बोथरा की शब्द रचना और प्रतीक वालिया का संगीत।

चित चोर, इस फिल्म का गीत सुनते हैं येसुदास की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

नादानिया फिल्म का गीत सुनिए सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है, अनजान के लिखे गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने और फिल्म है याराना।

धूमधाम फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सिद्धांत कौशल ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं क्लिंटो सरेजो और बैंका गोम्स, और इस गीत को गाया है विशाल ददलानी ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इश्क विश्क रिबाउंड फिल्म का गीत। दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने इस गीत को गाया है। संगीतकार हैं रोचक कोहली और गीत लिखा है गुरप्रीत सैनी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: नमस्कार,

मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कलिरानी

0: के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है कार्यक्रम विवरण के लिए। तो आइए पहले आज के शेष कार्यक्रम हम आपको बता दें। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में, आपकी फरमाइश का समय रहेगा 10 बजे। आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर ऋतु पांडे से की गई भेंटवार्ता, वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद सलाह। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल में का आंखों देखा हाल आज रात्रि 10:30 पर दिल्ली से रिले किया जाएगा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

और अब जानकारी लीजिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय है 9:15।

ज़िले की चिट्ठी सुनिए 10 बजे। 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें हम सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर आप सुनेंगे पद्मावती शालिग्राम का गायन, राग होगा देसी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 12 बजे। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए हंसना मना है इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी। हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में कल सुनेंगे दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां छतरपुर केंद्र की होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6 बजे। 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, 9:30 पर खेल जगत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। इसमें सुनेंगे अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम के खिलाड़ी

अंश बहुत्रा से बातचीत। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। कल शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता। आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीरामजी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता किया। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और आर्थिक जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अलनीनो के प्रभाव को देखते हुए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षों की कार्य योजना के तहत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा समग्र विभिन्न मिशन की भी समीक्षा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और जल संवर्धन करना है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत जीरामजी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी।
0: वहीं प्रदेश में भी विकसित भारत जीरामजी योजना आज से मनरेगा का स्थान ले चुकी है। सभी जिलों में आज जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और

0: चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहा 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2548 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद सहायिकाओं के लिए हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में

0: प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों से डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह के तहत लगाई गई है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों और महिला स्वसहायता समूहों को सिलाई मशीन सहित टूल किट भी वितरित किए। ये प्रदर्शनी 4 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने आज पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 70 फीट नीचे उतरकर टनल के भीतर पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब तक 25,892 जनजातीय घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सर्वाधिक 13,058 घरों को विद्युतीकृत किया है। ये योजना आदिवासी बाहुल्य गांवों में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 40% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के लिए 1 जुलाई से EHRMS का ई लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस दौरान 63,81,00,000 यात्रियों ने रेल यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन के कसरावद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें और खेत जलमग्न हो गए। शाजापुर के अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। वहीं मानसून ने 24 जून को प्रदेश में एंट्री की थी और 9 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर में इस बारिश में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। BSF परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया। रायसेन जिले के 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला 2 का समापन उत्सव का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदही की छात्रा पद्मा मर्सकोले ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश पाकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। देवास जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों में 1,84,000 से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों के लिए टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती को लेकर एक विशेष किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भिंड में फसल बीमा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम के तहत कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और AI क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली VB जीराम जी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की

गारंटी और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवे बारी हमारी प्यारी प्यारी बहनें भौजी काकी हरे पुष्पा बहन की स्वीकार राम राम जी जी हरो बस करो लग गओ है। सो हम सब जो ही चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहो, निरोग रहो, खुश रहो। और ई वर्षा काल के समय में तो देखो जी जी हरो कैसे हैं कि ध्यान रखबो बहुत ही जरूरी है। तो ई वर्षा काल में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करने हैं, ये बात को खूब ही ध्यान रखने पर है। और जब आप स्वस्थ रहे हो तभी तो घर परिवार और बेटा बेटी हरों की देख रेख अच्छे से कर पाओ। तो देखो जी जी हरो ये पे तो अपन चर्चा कर हैं बाद में, तो कायना कार्यक्रम की शुरुआत करें लोकगीत से। सो आनंद लेते हैं मल्हार गीत को, स्वर है मंजू मिश्रा को।

तो जीजी हरो आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारों के संगे हम हैं पुष्पा सिंह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता भई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते करे। श्री मोदी ने कही है कि दोनों देशों ने एआई क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी करो है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता करो। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करे जे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखत भए आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक लई। उन्हें संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन करो। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा भई। डॉक्टर शाह 28वीं EOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होबे के लाने भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2-4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पे आयोजित करो जा रहा है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी विकसित भारत जी राम जी को आज प्रदेश व्यापी शुभारंभ करोगा। ये योजना 1 जुलाई से देश भर में मनरेगा को स्थान ले चुकी है। प्रदेश के सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित करे गए। योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जे है। साथ ही भुगतान एक सप्ताह के भीतर सीधे बैंक खाते में भेजो जे है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों को ऐलान कर दो है। नामांकन दाखिल करवे की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को हुई है, जबकि 3 अगस्त को मतगणना हुई है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलवे के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होवे की वजह से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में ई वर्षा ऋतु में 21 लाख पौधे लगाए गए हैं। बीएसएफ परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण हुई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से मां के सम्मान में कम एक पौधा लगाने की अपील करी। नगर निगम के वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देवे किला ने रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे अनुदान देवे की भी घोषणा करी है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करवे किला ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2548 पदों पर भर्ती करी जे है। इनमें 781 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद सहायिकाओं के लाने हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दीजिए है। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार हुई है। दोनों पदों के लाने 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित करी गई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव करोगा है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखने हुई है। अब घर खरीद वे निर्माण मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई, विवाह जैसे खर्चों के लाने भी धन निकालो जा सकत है। EPFO जल्द ही UPI और WhatsApp के माध्यम से भी सेवाएं शुरू कर भी जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जाबरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त करो। प्रदेश के 78,000 से अधिक शालाओं ने ई रेटिंग पर सहभागिता करी हती। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपया को प्रोत्साहन राशि दीजिए है। अब बात

0: मौसम की प्रदेश में आज मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लो है। भोपाल, पांडुना, सीहोर, रतलाम, ग्वालियर और दमोह में अच्छी बारिश दर्ज करी गई है, जबकि दमोह में नदी नाले उफान पे हैं। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट में अति भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी करो है। जी जहरो बुंदेली समाचार समाप्त भाई।
1: बुंदेली समाचार
0: देखो जी जीहरो जैसे ही बस कारो लगो सुखेत लह लहान लगत हैं। मनो देखो बाग बगीचों में खूब हरियाली छा जाऊ थे और मनो जो बस कारो संग में कई तरह की बीमारियां सोई ले आऊ थे। खूब मच्छर पनपन लगत हैं, फफूंद लग जाते हैं, पेट की खराबी, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी सोई में सब में हो जाते हैं। सो ध्यान रखने हैं और घबराने नहीं है, सावधानियां रखने हैं और ज़्यादा पानी में भीगने नहीं है और पानी जहाँ तक हो सके तो उबाल के पीने का है कि बारिश में कुआं हैंडपम्प को पानी बहुत ही गंदो हो जाते हैं। सो पानी उबाल के पियो और कई तरह की देखो पेट की बीमारी से बची रहो। कहते हैं कच्चो पानी पीवे से 10 तरह की बीमारी हो जाए और उबलो पानी पीवे से तन मन सुखी रह जाए और पानी में भीगवे से बचने और यदि देखो भीग भी जाओ जी जीहरो तो तुरंत ही कपड़ा बदलो, नहीं तो देखो खुजली हो जाए, छाले हो जाते हैं। और साफ सफाई को खूब ध्यान रखियो, गंदगी तो बिल्कुल न रखियो घर में न बाहर। हरी सब्जी भाजी गर्म पानी से धोके खइयो बनाइयो और खूब साबुन से हाथ पांव धोइयो और का खाना बना समय और खाना खास समय। और जी जीहरो मच्छरों को घर में पनपे से रोकने हैं, कूलर टायर गमलों में पानी जमा नहीं होने देने, डेंगू मलेरिया से बचाव के लाने संजबरिया नीम की पत्ती धुआं करियो और सो समय मच्छरदानी जरूर लगाइयो ताकि बीमारियों से बची रहो। और हम तो कह रहे खूब ताजो खाना बनाओ, बासो खाना तो बिल्कुल नहीं खाइयो। और देखो जी जीहरो और आज बहुत ही अच्छी जानकारी सुनने तो तनकाइयो रुक जाओ, डॉक्टर रितु पांडे दे हैं अच्छी जानकारी, सो ध्यान से सुनियो। और आप सुन लेते हैं लोकगीत, गारी है और स्वर है समूह स्वर को।

0: जी जी हरो, हम सब चाहत हैं कि आप सभी हर मौसम में स्वस्थ रहो और वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहवे के लाने आयुर्वेद की का सलाह है, सुनत है महत्वपूर्ण जानकारी। और डॉक्टर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋतु पांडे, और ऋतु पांडे जी से बातचीत कर रहे हैं मनोज सक्सेना भैया। सो हमारी बहनें ध्यान से सुने और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें।
1: किसान भाइयों, वर्षा ऋतु में बहुत सारे कृषि कार्य होने के साथ साथ हम सबकी यह जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपनी खेती किसानी को तो सलामत रखें, ठीक रखें, व्यवस्थित रखें, पर अपने आप को भी स्वस्थ रखें। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वर्षा काल में बहुत सारे संक्रामक रोग होने की संभावना बनी रहती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ऋतु पांडे जी को, जो कि आयुर्वेदिक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे बहुत सारी आज बातें करते हैं और जानते हैं कि वर्षा ऋतु में हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमारा विषय है कि वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य के प्रति हमें जो सावधानियां रखना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखना होगा?
2: वर्षा ऋतु में बेसिकली हमें अपने खाने पीने का, हमारी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु के समय क्या होता है कि वातावरण में नमी बढ़ती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान रख के हमें या तो ओपन जो फूड मिल रहा है, स्ट्रीट फूड मिल रहे हैं, उन चीज़ों को बड़े सोच समझ के खाना चाहिए कि कहाँ सही है कहाँ नहीं है। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए हमें। और जब हम घर में भी जो चीज़ खाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दिन के समय हम उचित आहार ले लें और रात्रि के समय हमें अल्प आहार लेना चाहिए और बिल्कुल लघु सुपाच्य आहार लेना चाहिए।
1: जी जी। अब जैसा कि वर्षा काल में आपने बहुत अच्छी बात कही कि फल भी अगर मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें धोकर और गर्म पानी से साफ करके खाना ही चाहिए। सभी तरफ ये बात कही जाती है कि वर्षा काल में अगर पानी भी आप पी रहे हैं तो उबला हुआ पिए। इस बात का हमेशा हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं, पर जो आहार है ये आहार कैसा होना चाहिए?
2: इस समय जब हम वर्षा ऋतु में क्या होता है कि हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हमें ताज़ा खाना जो भी घर में बन रहा है वो खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच सके। और पानी के लिए हमने बात की ही है कि उबाल कर पानी पीना चाहिए।
1: जी जी।
2: ठीक है, नदी नालों से पानी, नदियों से सीधे पानी, आज बारिशों में मना किया जाता है कि बरसात के समय नदियों से पानी नहीं पीना चाहिए सीधा। जो हरी सब्जियां मिल रही हैं, जैसे इस समय गिलकी, भिंडी, तोरई, ये सारी चीजें मिलती हैं, इन सब्जियों का सेवन हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, हरी सब्जियों को ऐसा कहा जाता है कि बारिश के दिनों में जो हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं उनमें कीट बहुत होते हैं।
2: पत्तेदार सब्जियां थोड़ा मना किया जाता है, अगर हम प्रॉपर उनको क्लीन करके सफाई से उसको चुनकर अच्छे से उसका चॉपिंग करके फिर हम कुक करें, प्रॉपर कुक्ड हो, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। बट क्या होता है कि उनको क्लीन करना ज़्यादा प्रॉब्लम बात होती है, इसलिए मोस्टली मना कर दिया जाता है कि पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा नहीं खानी।
1: अच्छा, जो ये सड़क किनारे हम देखते हैं ना कि दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इन दिनों, जामुन मिल रही है, भुट्टे भी मिलना शुरू हो गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चाट पकौड़ियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, उसको किस तरीके से आप देखेंगे?
2: देखिए, जामुन हैं, भुट्टे हैं, इन्हें तो हम सेवन कर सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं, बस एक बार प्रॉपर हमने परचेज कर लिया, उसके बाद उसको साफ कर लिया अच्छे से और फिर सेवन करें। भुट्टे क्योंकि आग के संपर्क में आए हुए होते हैं, बॉयल्ड अगर मिल रहे हैं बॉयल्ड भी, और अगर सेक कर दिए जा रहे हैं तो आग के संपर्क में है, तो जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो चुके हैं, तो उनका सेवन किया जा सकता है। चाट पकौड़ियाँ, गोलगप्पे, फुल्की, ये सारी चीज़ें, ये क्योंकि उतने हाइजीन नहीं होते हैं, उतना हाइजीन का ध्यान नहीं रखता है बनाने वाला भी और उनको सर्व करने के लिए भी, जब यूज़ किया जाता है वही हैंड्स डिप करके वही पानी सर्व किया जाता है, तो इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए।
1: जी, मैं उन सवालों की तरफ आता हूँ जो हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं उनके मन में चल रहा होगा। बारिश के दिनों में फंगस, फफूंदी बहुत आती है, घर में रखे हुए भोजन में फफूंदी आ जाती है, बाजार से जो आ रहा है उसमें भी फफूंदी हो सकती है, हमें नहीं मालूम है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम बीमार पड़ गए तो हमें फिर सबसे पहली सावधानी क्या रखना होगी?
2: पहली चीज़ तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन ही नहीं करना है। कोई भी सामान, कोई भी अनाज, जो भी घर में खाना बन रहा है, सुबह का हमें शाम को भी नहीं खाना है, इवन वो भी बासी कहलाता है। आयुर्वेद यह कहता है कि जिस समय बना है, गर्म भोजन है,

0: उसी समय आप उसका सेवन कर लें, वो ठंडा हो गया तो उसमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर फंगस की बात कर रहे हैं आप, जैसे आजकल जो हम फर्मेंटेड फूड की बात करते हैं, ब्रेड बहुत कॉमन लिया जाता है, अगर थोड़ा भी फंगल हाइफे आपको उसमें विजिबल लग रहा है तो आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कर लिया है और उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त, ये सारी चीज़ें अगर लग रही हैं तो तुरंत आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए
1: जी।
0: क्योंकि कई बार छोटी चीज़ें अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो उसकी वजह से फिर आगे जाके बहुत बड़ी समस्या आ जाती है
1: जी। जैसे बारिश के दिनों में सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम कपड़े सुखा नहीं पाते हैं। अब जब कपड़े गीले हैं, बहुत दिनों तक कपड़े धूप के संपर्क में नहीं आते हैं, तो उनमें भी एक अलग टाइप की वो महक आने लगती है, जिसे हम फफूंदी की महक भी कह सकते हैं। अब वह गीले कपड़े पहनने के बाद शरीर में खुजली होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा?
0: ऐसी स्थिति में जब कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं तो उन्हें हमें बिल्कुल हॉट आयरन से या प्रेस से सुखा लेना चाहिए। गीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए क्योंकि बाहर भी नमी है और हमारे शरीर से भी पसीना लगातार निकलता रहता है। ये जो मौसम है, यहाँ मौसम तो ठंडा लगता है बट थोड़ा भी अगर बारिश ना हो तो तेज धूप भी बहुत तेज होती है, उसकी वजह से शरीर के अंदर से भी पसीना निकलता है, तो वो कपड़े कभी सूख ही नहीं पाएंगे। जो थोड़े बहुत फंगस थे, आप जो स्मेल आ रही थी, वो हमारे शरीर के कॉन्टैक्ट में आके और ज़्यादा पूरा स्किन इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी मेरा सलाह यही रहेगी, एक तो अपने शरीर को साफ रखें, सूखा रखें, और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।
1: जी जी। अब जैसे आपने बहुत अच्छा लगा ना कि गीले कपड़े हैं तो हमें अब सूखा कर ही पहनना है।
0: बिल्कुल।
1: किसान लोग हैं, काम करते हैं खेत में, और बहुत देर तक गीले कपड़े में रहना पड़ता है उनको, जूते भी हैं तो वो अंदर पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, कांटा लग जाता है, कोई जख्म अगर हो गया, बारिश का मौसम है और मिट्टी तो जाएगी ही पैरों में। अब यहाँ स्थिति में मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि जख्म है और काम करने के दौरान उसमें मिट्टी लग गई है तो उसकी क्लीनिंग कैसे करें, सफाई कैसे करें कि जिससे आगे उसमें कुछ दिक्कत ना आ सके?
0: उसको जब भी आपको कभी तुरंत में चोट लगी है, जो आपने जूते पहने हैं उसके बावजूद अगर चोट लगी, तो तुरंत आपको पानी से बाहर आकर अपने पैरों को साफ करना है, स्वच्छ पानी से, और उसको साफ कपड़े से पोंछ के रखना है
1: जी।
0: फिर अगर उसमें से ब्लड आ रहा है तो जब तक ब्लड नहीं रुकता है आपको गीले उसमें नहीं जाना है, मिट्टी में वापस नहीं जाना है
1: जी जी।
0: और प्रॉपर एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करवानी है। अगर घर में ऐसा है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ भी आती है बारिश में रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर घर में ही आप एक देसी नुस्खा है कि घी को थोड़ा गर्म करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका जो पेस्ट है वो जरूर लगा लें,
1: वो लगा लें, है ना?
0: पुराना है बट ये हमेशा काम
1: आता है। हाँ बिल्कुल, हमने बहुत हमारी दादी नानी के द्वारा हमने सुना है, उसे हम लोग कड़का भी कहते हैं कि उसमें रुई गर्म करके उसमें तेल, सरसों का और हल्दी का सिखा होता है। ककड़ी, खीरा, इसको खाने के लिए क्या बारिश में मना किया जाता है?
0: नहीं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने के लिए मना किया जाता है, थोड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल खाना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं कि बड़ी देर से पचते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है, जब पचेंगे नहीं तो अगले खाने का वक्त हो जाएगा, हम खाना खा लेंगे, पहले का नहीं डाइजेस्ट हुआ है और ये ऊपर से और खा लिया तो उससे वॉमिटिंग वगैरह, उल्टी की समस्या शुरू हो जाती है। अपच होती
1: ये
0: है।
1: जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर परिवार में, उन बच्चों के लिए फिर क्या करना होगा? ककड़ी खिलाई ना जाए या कुछ उसकी जगह और ऐसा जो फूड है जो अच्छा लगे?
0: अब बच्चों को सलाद अगर हम दे रहे हैं, ककड़ी सलाद के फॉर्म में ही यूज की जाती है, तो उनके वजन के हिसाब से जबरदस्ती उनको फोर्स ना किया जाए।
1: अच्छा,
0: जितना वो खा सके, ये है उन्हें सिखाना है कि आपको खाना है, ये हेल्दी फूड है और खाना है, क्योंकि आजकल बच्चे हेल्दी फूड, जंक फूड, इनमें डिफरेंस करना भूल गए हैं। तो उन्हें पहले तो ये बताना है कि ये बिल्कुल हेल्दी फूड है और ये आपको खाना है। क्वांटिटी पे उसके हिसाब से, उसके शरीर के हिसाब से बच्चा जितना एक्सेप्ट करे उतना देना है। बाकी सीजनल जो फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं आप। अलग से ककड़ी का सलाद नहीं ले रहा है बच्चा तो उसको फ्रूट चाट बना के दे दें, उसमें आम भी आप डाल दें, उसमें सेब भी डाल दें, उसमें जितनी भी चीज़ें, चीकू डाल दें, वो फिर मिक्स करके सब कुछ खा ले,
1: खा सकते हैं उसको। अब चूंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आपसे ये सवाल तो पूछना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, बारिश के दिनों में वाकई बहुत मेहनत करती हैं, खेतों में भी जाना होता है उनको, घर में भी काम होता है, और गर्भावस्था के दौरान इस बरसात के मौसम में उन्हें किस बात का ध्यान रखना होगा?
0: बिल्कुल, ये

0: आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि इस पे मुझे चर्चा बहुत ज़रूरी था
1: जी
0: करना।
1: जी
0: क्या होता है कि गांव में अभी भी हमारे पास कच्चे घर हैं, और आंगन, हमारे घरों का जो ट्रेडिशन है वो ऐसे बनते हैं कि चारों तरफ घर रहता है, बीच में आंगन रहता है जो खुला है, वहाँ बारिश हुई स्लिपरी हो जाता है। तो सबसे पहले महिलाओं को ये ध्यान रखना है उनका पैर ना स्लिप हो पाए,
1: वाह
0: क्योंकि वो माँ और बच्चे दोनों की जान के लिए खतरा बन सकता है ऐसी
1: जी
0: स्थिति। दूसरा, उनको अपने आहार का ध्यान रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उनको हमेशा एक साथ अवेलेबल मिले,
1: जी
0: तो जो भी घर में मिल रहा है उसमें उनको खाने में ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी रहे, फैट भी रहे, सारा बैलेंस न्यूट्रिशन करके चलना है। हमारे घर में जितनी चीज़ें होती हैं ये सब का कॉम्बिनेशन उनमें रहता है। प्रोटीन के लिए वो दालें ले सकते हैं, ठीक है, पनीर हो सकता है ना मिले, बट दालें तो हर जगह अवेलेबल रहेंगी। कार्बोहाइड्रेट के लिए आलू है, चावल है, ये सारी
1: जी
0: चीज़ें ली जा सकती है,
1: जी जी
0: शकरकंद लिया जा सकता है, ठीक है। फैट के लिए घी अपने रूटीन में उन्हें शामिल करना चाहिए। कई महिलाएं क्या करती हैं कि पति को, सास ससुर सबको तो घी लगा कर देंगी बट खुद नहीं खाएंगी, जबकि उन्हें अपना ध्यान
1: सच
0: रखना
1: बात
0: चाहिए,
1: सच
0: खुद को
1: बात।
0: भी लेना चाहिए, दूध ज़रूर लेना चाहिए।
1: वैसे भी आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे जुमले कहे जाते हैं, जैसे मुझे कभी याद आ रहा है कि कुंवर करेला कातक मही,
0: बिल्कुल
1: मर हो नो तो पढ़ो सही।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्या इस महीने में, बारिश के महीने भी कुछ ऐसा है कि उन चीज़ों को खाना जो है निर्देशित है?
0: बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों के लिए है कि जितनी भी गरिष्ठ चीज़ें हैं, जैसे हम इस रीजन में हैं, मालवा निमाड़ का जो एरिया कहलाता है,
1: बिल्कुल
0: यहाँ
1: बिल्कुल
0: हमारे यहाँ गरिष्ठ भोजन में हम दाल बाफले बहुत खाते हैं, बारिश में ये चीज़ें मना की गई हैं। गुरु
1: अच्छा
0: आहार
1: अच्छा
0: स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि गुरु आहार का सेवन नहीं करना है, आपको लघु आहार ही लेना है। लघु में क्या, लौकी, जिसे आजकल बीमारों का खाना बोला जाता है, वही
1: जी
0: खाना
1: जी
0: सर
1: जी जी
0: खाना चाहिए सबको।
1: आज डायबिटीज़ गांव गांव में पैर पसार रही है, लेकिन किसान जो श्रम करता है उसे भी डायबिटीज़ होने लगी है, क्यों हो रही है ये?
0: देखिए, डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हैं, उनमें एक आनुवंशिक है,
1: ओके
0: ये फैमिली हिस्ट्री चली है। अगर किसी को है हमारी फैमिली में, तो एक जनरेशन दो जनरेशन में कई बार नहीं एक्सप्रेस होते वो जीन, तीसरी जनरेशन में जाके एक्सप्रेस होने लग जाते हैं।
1: ओके
0: दूसरा, आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम किसान, हम किसको बोलते हैं कि जो 24 घंटे खेत में मेहनत कर रहा है, ठीक है, पर आज हम लोग हाईटेक हो चुके हैं,
1: लग्जरियस लाइफ जीते
0: लग्जीरियस
1: हैं।
0: लाइफ। हर किसान के पास अपना 4 व्हीलर है, वो पैदल खेत तक नहीं जाता,
1: नहीं जाता।
0: ठीक है, खेत में वो हल खुद नहीं चलाएगा, कोई और उसके पास रहेगा कि वो हल चलाएगा, ठीक है। घर में आके नॉर्मल खाने की जगह छोटे बच्चे कभी कभी डिमांड कर देते कि आज केक खाना है, आज पिज्ज़ा खाना है, बर्गर, तो किसान भी बोलता है कि चलो आज मैं भी थोड़ा सा स्वाद तो ले ही लूँ। ये सारी चीज़ें, और इनसे ज़्यादा ज़रूरी, डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेद में बोला है कि जो नया अन्न होता है, जैसे इसी सीज़न का गेहूं निकला है और वो आप अभी खाना शुरू करो, अभी गेहूं निकला और उसको आटा बनाकर चपाती करके आप
1: खा
0: अभी
1: लिए।
0: खाओ, ये सारे डायबिटीज़ करने वाले कारण बताए हैं।
1: अच्छा
0: दही
1: अच्छा
0: खाना बहुत ज़्यादा, खाकर तुरंत सो जाना, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना, क्योंकि उतना एनर्जी आपके शरीर में यूज़ नहीं हो रहा है,
1: जी
0: तो ये सारे फैक्टर्स डायबिटीज़ करते हैं।
1: वाकई आपने जो बोला ना मुझे याद आया, मेरी दादी भी जो है जब नया अनाज आता था तो वो कहती थी इसको रखो पुराना खाना है, और कभी इत्तफाक ऐसी स्थिति बनना है कि हमें जो नया अनाज खाना है तो उसको पहले धोया जाता था, ठंडा किया जाता था, सुखाया जाता था, उसके बाद खाया जाता था।
0: बिल्कुल,
1: जो
0: उनमें
1: आज आपकी बातचीत से ये पता चला कि डायबिटीज़ का कारण बनता है। श्रोताओं, मैं समझता हूँ कि आज की इस बातचीत को सुन के आपको यह बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस बारिश के दौर में हमें किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। आप अगर स्वस्थ हैं तो सारे काम काज सब नियमित रूप से सुविधाजनक तरीके से संचालित होते रहेंगे। अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत सारा नुकसान होना है, पैसा भी लगना है, समय खराब भी होता है और काम भी बिगड़ता है। तो आपसे बस मेरा यही निवेदन है कि हमने जो बातचीत की है इस पर ध्यान देते हुए बारिश के दिनों में अपने आप का पूरा ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
2: बिल्कुल मनोज भैया ने साची कह दई कि जान है तो जान, और हम भी जई कहें कि पहलो सुख निरोगी काया। वर्षा ऋतु में स्वस्थ रह भी किलाने आयुर्वेद की सलाह है आप सभी ने सुन ली, और हम उम्मीद करते हैं हमारी बहनों से कि अपने अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें। विशेषज्ञ थी डॉक्टर ऋतु पांडे और बातचीत कर रहे थे मनोज।

भैया तो हम तो जाके हैं जी जी हरो बस करे में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करने हैं आप सब ने खूब अच्छे से सुन ली। और अब बात आउ थे खान पान की आहार की। सो हम तो जय के हैं कि मोटे अनाजों को खूब बनाओ और उनके पोषण से हमारी बहनें रहे स्वस्थ निरोग। और हमारी दादी नानी ज्वार बाजरा कोदो कुटकी रागी को आहार में शामिल करा था थी। अब हम उनको मोटे अनाज कह रहे हैं श्री अन्न भी कहते हैं। सो बात है सांची अपन देसी खान पान बिल्कुल भूल गए हैं जबकि सच्ची ताकत है मोटे अनाज में। ज्वार बाजरा की रोटी बहुत ही पोषण से भरपूर है और खूब ही ताकतवर है और मोटे अनाजों में कैल्शियम आयरन तो भरपूर है और हमारी गर्भवती बहनें यदि खाएँ तो खून की कमी ने ये हड्डियां मजबूत रहें और जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। तो देखो जी जी हम तो जाके हम सोई मीठे भुट्टे के हलवा विधि बता देते हैं आपको कि आपको सोई बनाने हैं और खूब खाने हैं। सामग्री है मीठो भुट्टा और 4 से 5 ले लियो और दूध है 1 गिलास लेने और चीनी या गुड़ डाल सका तो 25-50 ग्राम और घी 3 बड़े चम्मच इलायची 3-4 नागो किशमिश काजू बादाम डाल लियो। और बनावे की विधि सोई बता दी थे। सबसे पहले भुट्टों के दाने निकाल लियो यदि सिलबट्टा होए तो दरदरो पीस लियो और नहीं है तो मिक्सी में पीस लियो दरदरों सो। और फिर कढ़ाई धीमी आंच पर चढ़ा लियो और एक ही बार घी डालियो और फिर देखो जब किसो भाव जो भुट्टा है वो डाल दियो धीमी आँच पर भूनियो और चलात खूब रहियो अच्छी खुशबू जब आन लगे तो दूध खुंडार दियो और धीमी आँच पर रख भी से चम्मच से चलात रहो ताकि चिपके ने और साथ में चीनी और गुड़ को बूरा डाल दियो और चलात रहियो जब तक के गाढ़ो ने हो जाए और फिर इलायची किशमिश काजू बादाम डाल दियो और फिर बन जे है मीठे भुट्टों को हलवा। सो हमारी बहनों ने देखो भुट्टा तो खूब सेंक के खाए हुई हैं और आज हम बता रहे हैं मीठे भुट्टों को हलवा। सो देखो आपने सुना ही ला हो और सामग्री भी सुन ली और जी जी हरो हलवा बनाइयो जरूर। और देखो अब खेतों में खूब भुट्टा हो रहा है सो भुट्टा है ही और भुट्टा में रहते खूब फाइबर और संग में घी दूध सो बहुत ही हो जाए पौष्टिक। तो देखो जी जी हो गई खान पान की बात सो खूब स्वस्थ रहियो। और आप सुन लेते हैं उमा सक्सेना को गाओ भाव जो लोकगीत।

तो ऐसी बन जात है कि ऐसा लगत है कि देखते ही रहें। मनो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बस कार्य में पेड़ पौधा लगाऊने हैं जहाँ हरियाली ऐसे ही बनी रहे। सो हमारी बहनें घर परिवार को संवारत, रसोई से लेकर खेत तक हमारी बहनें संवारत हैं और ये धरती भी अब तुम्हारे हाथ में है। सो देखो आंगन में ठंडक बनी रहे, शुद्ध हवा मिलत रहे और संग में फल फूल औषधि छाया मिलत रहे। और हम तो जय कहें कि वृक्षों बिना बदरा भगें, पानी खो तरसाएं और फिर पानी के बिना फसल कैसे उगाएं। और जड़ी बूटियां फूल फल शीतल मंद बयार और बिना स्वार्थ हम पे करें झाड़ पेड़ उपकार। और वृक्ष करोड़ों रूप के करो धरा गुलजार, उमड़ घुमड़ के बदरा फिर करन लगे बौछार। और वृक्षारोपण के बिना नैया को नंग तोड़, चेत सको तो चेत लो रोपो वृक्ष करोड़। तो देखो भैया खूब वृक्ष लगाओ ई बस कार्य में। और आप जात जात सुन लेते हैं गारी स्वर है रजनी अर्जरिया को।

जी जी हर रोज आजाद कल के कार्यक्रम बता दें। कल कृषि चर्चा में सुनियो सोयाबीन में बीज उपचार एवं टीकाकरण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रतनदीप सोनी और ग्राम सभा में संजय विनिया सुनियो आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। तो अब जी हरो हो रही है जाबे की बेरा, तो हम तो जाके हैं कि ये बस कार्य में अपने संग संग पशुओं को भी ध्यान रखियो, जा नहीं कि अपना ध्यान रखें पशुओं को न रखें। कैसे ही बस कार्य में पशुओं को बिल्कुल पेड़ों के नीचे नहीं बांधने आए, बिजली चमकत है गरजत है, सो उनको पशुशाला में बांधियो हैं, उनको ध्यान रखियो खान पान को और पानी को। और आप पुष्पा बहन को देव आज्ञा, राम राम।

0: ग्रामलक्ष्मी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोधकी।
2: अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 16th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं। वर्तमान में लगातार अनिश्चित और बदलते वैश्विक माहौल में आप दोनों देशों के बीच के आपसी रिश्ते को कितना अहम मानते हैं?
3: पिछले 2-3 साल से जो विश्व देख रहा है कि विश्व में जो भी सामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं, दो देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, और इस सब बैकग्राउंड में भारत और जापान के जो संबंध हैं वो बहुत स्थिर हैं, बहुत स्टेबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, और एक बहुत ही सशक्त नींव के ऊपर ये रिश्ते खड़े हुए हैं। जो जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची जी भारत में हैं और ये 16वीं भारत जापान की एनुअल समिट है, जो ये दिखाती है, ये बतलाती है कि 2001 से समझ लीजिए या उससे पहले भी आज तक जापान में भी प्रधानमंत्री बदले हैं। ये शायद हमारे प्रधानमंत्री के 4th या 5th जापानी प्रधानमंत्री से बातचीत है, भारत में भी प्रधानमंत्री बदले, पर भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है, वो प्रगाढ़ है और उसकी नींव बहुत मजबूत है और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का और विश्व में शांति और सद्भावना का एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र बिंदु है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची की मौजूदगी में कई MOUs पर हस्ताक्षर हुए। आपके हिसाब से भारत और जापान दोनों के नजरिए से सबसे अहम समझौते कौन से हैं?
3: जिस कगार पर इस समय विश्व खड़ा हुआ है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी और उसके जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हो या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, वो आगे चलने में बहुत ही अहम मुद्दे भारत और जापान के सामने रहेंगे
2: जी।
3: तो जो 3 MOUs तो बहुत कई साइन हुए हैं और उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत अहम है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में उभर के सामने आया है और हर देश उससे जूझने का प्रयत्न कर रहा है, एनर्जी रेजिलियंस, ये जो पिछले साल देखा और जो फरवरी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई
2: जी।
3: और उससे पूरे एशिया पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसमें भी भारत और जापान आगे मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करेंगे।
2: आज की जो ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं और एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझी प्राथमिकता है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
2: अम्बेसडर तायल, जैसा भी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इस समिट का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पीस बनकर उभरा है, तो और भारत और जापान ने आज AI की फील्ड में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत और जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज AI और एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
3: देखिए, अगर आप पीछे देखें तो जापान ने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक

0: बहुत ही अच्छा योगदान किया है, चाहे वो हम मेट्रो देखें,
1: जी
0: सुजुकी कार इन्वेस्टमेंट देखें, पूरा जो बॉम्बे अहमदाबाद ट्रेन बन रही है वो
1: जी
0: देखें, पर अब जो नया भारत बन रहा है और विश्व में जिस तरह से प्रगति हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है, और जो देश टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे वो विश्व में आगे बढ़ेंगे। यहाँ भारत और जापान में कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं। जापान प्रिसीजन इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में दुनिया में बहुत आगे, और भारत सॉफ्टवेयर में, टैलेंट में, स्किल्स में बहुत आगे है, और भारत और जापान की ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जापान और इंडिया की एक साझी प्राथमिकता है। इसी तरह नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की दिशा में कोशिश करने की बात कही थी। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के इन बयानों को कैसे देखते हैं?
0: इस समय जो विश्व में स्थिति है, कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध रशिया यूक्रेन का, उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे विश्व की, खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है, और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक की बात करते हैं, सी लाइंस की बात करते हैं, उस पर कोई देश उसमें खलल न डाले, ये बहुत ही आवश्यक है, और हर देश का आर्थिक प्रगति इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। पर जो 28 फरवरी के बाद युद्ध हुआ पश्चिम एशिया में और अमेरिका और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद की गई, पूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उस पे आंच आई, इस सब के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हर देश
1: जी
0: एक मूल्य को समझे, एक वैल्यू को, कि फ्री और ओपन सी लाइंस, कि कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी मतभेद हो, पर विश्व में जो व्यापार है, जो शिप्स का आना जाना है, वो जहां से भी जाते हैं उन पर कोई भी देश खलल न डाले। मैं समझता हूं कि भारत और जापान और सभी देश जो हम एशिया के हैं और विश्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का, और इसमें भारत और जापान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि दोनों
1: बिल्कुल
0: देश गल्फ कंट्रीज से काफी तेल भी आयात करते हैं, गैस भी आयात करते हैं, और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और जापान के लिए है।
1: इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला सवाल करूं, आइए पहले सुनते हैं कि आज की जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में जापान के प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। चलिए उसको सुनते हैं।
2: You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean.
1: भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक जॉइंट रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके जरिए उनका मकसद सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल्स सहित कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करना है। ये देखते हुए कि भारत के पास कई क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा रिजर्व है और जापान के पास मेटलर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज है, क्या आप कहेंगे कि दोनों देशों के लिए जो इकोनॉमिक हमने सिक्योरिटी रोडमैप तैयार किया है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, खासकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए?
0: जी हाँ बिल्कुल, जापान का ये अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल में कि कई बार जब उनके

0: चाइना से कुछ मतभेद हुआ तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात जापान के लिए रोक दिया। जापान ने पहले ही उसमें प्रयास किया है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं और मलेशिया में उनको रिफाइन कर रहे हैं। और जिस तरह से दुनिया ने देखा पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि एक ही देश चाइना का बहुत ही डोमिनेंस है, बहुत मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी, मैग्नेट्स वगैरह पर, उसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में और भारत जापान मिलकर काम करें। और इस तरह क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हैं बहुत, पर उनको रिफाइन करना ये एक मेटलर्जी का विषय है और उसमें जापान को एक्सपर्टीज है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुख्य समझौता भारत और जापान के बीच में, दोनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ है। और कैसे दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हों, फार्मास्यूटिकल्स की हों, उनको ऐसे बढ़ाया जाए कि किसी एक देश का उस पर बहुत अधिक मोनोपोली ना रहे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय अब दोनों प्रधानमंत्रियों ने आज लिया।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे भी आप कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। इस संदर्भ में आप आज नई दिल्ली और टोक्यो के बीच साइन किए गए इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, बायोगैस और जितना भी, चाहे वो तेल हो और लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, उसको किस तरह एक उनका स्टॉक किया जाए, उनको किस तरह, जिससे कि अगर कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई डिसरप्शन हो तो एकदम उसका प्रभाव खरीदारों पर ना पड़े जो उसका इस्तेमाल करते हैं, उन पर ना पड़े। तो इसमें दोनों देशों की कंपनियों को साथ काम करना पड़ेगा। और बायोगैस और लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस,
1: जी
0: इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों देशों ने साथ काम करने के लिए अच्छे निर्णय आज लिए हैं।
1: जी जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। आज की जो दोनों मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद जापान द्वारा भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लेज ली गई। इसके साथ ही दोनों ने अगले एक दशक में जापान से भारत में ₹10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट और भारत में काम करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को दुगना करने का एक टारगेट रखा है। ये देखते हुए कि भारत और जापान एशिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो लक्ष्य सेट किया गया है, इससे ना सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा?
0: जी, बहुत फायदा होगा। ये पिछले वर्ष एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था भारत और जापान का, जब हमारे प्रधानमंत्री 15वीं समिट के लिए जापान गए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि ₹10 ट्रिलियन
1: जी
0: जापान भारत में निवेश करेगा अगले 10 वर्षों में। और आज करीब 120 MOU साइन हुए हैं, जिसमें उनका अगर पूरी उसका देखा जाए तो शायद $12 बिलियन के करीब वो निवेश जापानीज कंपनियां भारत में करेंगी। एक जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीटिंग भी है, जिसमें 150 जापानीज कंपनी आके यहाँ पर उसमें भागीदारी करेंगी। तो जिस तरह भारत और जापान को एशिया में आर्थिक प्रगति का एंजिन होना चाहिए,
1: जी
0: एक स्रोत होना चाहिए, और अगर बड़ी इकोनॉमी जापान, इंडो पैसिफिक में चाइना के बाद जापान आता है या फिर भारत है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और दोनों की आर्थिक प्रगति होगी तो पूरे रीजन में, क्योंकि देखिए निर्यात आयात, आजकल कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था केवल अकेले काम नहीं करती है,
1: बिल्कुल
0: वो सब देशों से, कहीं से आयात होता है, कहीं से निर्यात होता है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमीज का। और उसमें भारत और जापान की आर्थिक प्रगति अगर तेजी से होगी तो पूरे रीजन को उससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।
1: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: सुर्खियों में
4: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए विधाता फिल्म का गीत। इसे गाया है सुरेश वाडकर और अनवर ने। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

इस गीत के बाद आइए सुनते हैं तेरी कसम फिल्म का गीत। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीतकार आर डी बर्मन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। शक्ति फिल्म के लिए इस गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

महेंद्र कपूर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एस एच बिहारी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत उमंग फिल्म से।

0: से प्यार का बादल बरसे, आँख से प्यार का बादल बरसे, दुनिया
1: बोलो
0: तुमको
1: हाँ हाँ
0: देखे
1: क्या
0: तरसे
1: जा जा।

ये गीत आप सुन रहे हैं जानी दुश्मन फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों ने इस गीत को गाया है। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है छोटे से अंतराल का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना

0: 20 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान

0: की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
1: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ

0: चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी
4: एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches

मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने एक

0: ये मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज़, मस्नूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई तकाइची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ़ुज़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज़ पेश की थीं ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आज़ाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे ज़खीरे का ऐलान करने और ताउन को फ़रोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाइची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज़, अदविया और मस्नूई ज़हानत के शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हममनसब सनाई तकाइशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस वाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ वाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आज़ाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज़ और इक्तिसादी तहफ्फुज़ समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाई तकाइची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इकतसादी

0: गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है, इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी अहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट्स पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए आरएफआईडी ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, पश्चिम महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2-3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में है। पहचान फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार शंकर जयकिशन।

सुहाना सफ़र। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बरसात की रात फिल्म का गीत। मन्ना डे, आशा भोसले, बतेश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ें। साहिर ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं रोशन।

बरसात की रात फिल्म की इस कव्वाली के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। कार्यक्रम में पहला फरमाइशी गीत जिस फिल्म के लिए है, उस फिल्म का नाम है नौकर। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। मजरूह ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश की है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर। अगली फरमाइश पटेल नगर मलोट पंजाब से है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने इस गीत की फरमाइश की है। कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय।

मयंक रेडियो श्रोता संघ नवाबगढ़ कटई से फरमाइश की है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। अगली फरमाइश है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम।

गुड़िया और शोएब ख़ान की। आप सभी ने फरमाइश की है कामचोर फिल्म के गीत की। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। इंदिवर ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, घंटाघर चौक खंडवा से फरमाइश की है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया ने। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं धर्मवीर फिल्म का गीत, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और मुकेश ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आपकी कसम, इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश की है योगेश कुमार चौरसिया, श्रीमती संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया और कान्हा चौरसिया ने गोटे गांव से। अगली फरमाइश है बरेली कैंट रेलवे के चनहेटी बरेली से दिनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने फरमाइश की है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

कार्यक्रम का आखिरी गीत तेरी मेहरबानियां फिल्म से, शब्बीर कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें, SH बिहारी के बोल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रोबिन।

अब आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: आई रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन आया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
1: कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द

0: 7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आवर्जन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके।

0: प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह
1: कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाज़ों में आपने सुना ये पारंपरिक।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: Because remember, this is a World Cup semi-final. Sometimes it can come down to a run or two to decide who the winner is. And therefore, the umpires want to be very sure. After going through a bazillion replays, they've decided to give it as two runs. So well done, Nadine Clerk. You have saved a couple of runs for your team. Anyhow, Wyatt Hodge prepares to face what will be the last ball of the second over. The slip fielder has moved a little bit wider, and once again it's a bottom edge which takes the ball towards backward square leg. The keeper runs towards her left, picks it up and throws it at the striker's end. She doesn't hit the stumps, and that allows the batters to cross over for a single. It was a good length delivery, angled in towards the stumps. Wyatt Hodge was looking to work it towards the offside but got a thick bottom edge which allows a single. 20 for 1 after 2.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो दोनों टीमों की ओर से अपने अपने हिसाब से अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि शबनम स्माइल जब आई तो उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत के पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो पिछला ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। तो इस बार स्टेप आउट किया है, हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव है, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में इनफैक्ट फील्डर मौजूद हैं। मैरिजन कैप आई हैं नया ओवर लेकर के। रन रेट, रन बनाने की रफ्तार 9.23 है और पिछला ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित हुआ। डैनी वियाट हॉज, कुछ मिसक्यूड शॉट्स भी थे उनके बल्ले से निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ मायने ये रखता है कि आपके खाते में रन कितने आ रहे हैं और विकेट अगर बचे हुए हैं तो फिर उसे सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद बॉल्ड हो गई है, बेहतरीन कामयाबी, डैनी वियाट हॉज को आउट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। कट करना चाहती थी, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी और देखना पड़ेगा कि क्या गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ था। लगा तो ऐसा कि डायरेक्ट इंपैक्ट था स्टंप्स के ऊपर, लेकिन मैरिजन कैप जो कि एक ब्रेक थ्रू देने के लिए जानी चाहती हैं, उन्होंने डिफेंस को पियर्स कर दिया। गेंद और बल्ले के बीच में काफ़ी, इनफैक्ट बैट और पैड के बीच में अच्छा खासा फासला था और इंग्लैंड को लगता हुआ ये जोर का झटका 2.2 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
0: A good length delivery which after pitching jagged back in sharply, and that inward movement is what caught Danny Wyatt Hodge off guard. She has done very little wrong throughout this tournament. 294 runs in totality in this tournament, which includes a century, includes a couple of half centuries, and even here she had started off in good manner. She had already hit a couple of boundaries in the previous over. However, Marizaan Karp, the heartbeat of this South African team, delivers a telling blow once again. Danny Wyatt Hodge has now been replaced by Alice Capsey in the middle. So Capsey and Natsiva Brunt out there in the middle. And this is where I think we need to have a conversation about Sophia Dunkley.

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से।
1: कोई बात नहीं, अगर वो लॉस्ट भी हुआ तो भी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत या बहुत खराब डिसीजन था।
2: A leg bye was also stolen, by the way. Next delivery from Shabnam Ismail. Another shout for LBW. This time, Jacqueline Williams raises her finger. So does Shivendra in the commentary box of Akashvani. This looks plum. However, Alice Capsi now has the opportunity to use DRS. She walks down 22 yards, has a conversation with her captain at the other end, who shakes her head. That means Alice Capsi will have to turn around and take the long walk back. Shabnam Ismail has picked up another wicket. England have lost 3 in 3.2 overs. They are struggling. They are huffing and puffing. 23 for 3. South Africa in the driver's seat.
1: इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती थी साउथ अफ्रीका के लिए। शबनम इस्माइल, जैसा हमने कहा था कि उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत आज, जब वो रिटायरमेंट से वापस आई हैं इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए, और उनके लिए

0: score currently, and South Africa, we believe, are in the driver's seat.
1: Definitely, South Africa is in the driver's seat as far as this semi-final is concerned. Or जो गेंदबाजी उनकी टीम की ओर से हुई है और आउटफील्ड में भी बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है सभी खिलाड़ियों का अभी तक, तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां इस समय साउथ अफ्रीका के पक्ष में जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि तीन जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। शबनम स्पाइल ने इस बार उनके बाईं ओर गेंद आई थी, हालांकि वो राइट हैंडर हैं, बाईं ओर डाइव लगाई उन्होंने और सुनिश्चित किया कि गेंद को रोक लें, लेकिन इसी क्रम में कई मरतबा ऐसा होता है कि खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाते हैं। थोड़ी सी मुश्किल में दिखी थी, लेकिन फिलहाल खड़ी हो गई हैं अपने स्थान पर। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर है 4.3 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, स्टेप आउट किया था सेवर ब्रेंट ने। बड़े ही प्रभावशाली, बड़े एकाधिकार के साथ बल्लेबाजी करती हैं, बड़े कमांडिंग अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं, और इस बार एक लेग बाई का इशारा किया है जैकलिन विलियम्स ने। इस्माइल, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, लगातार 51 विकेट ले चुकी हैं T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में। मेगन शर्ट के नाम पर 48 विकेट हैं। एलिस पैरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, 44 विकेट। आना शपसोल, जिनके नाम पर 41 विकेट हैं। और मैरिजन कैप 39 विकेट लेकर के पांचवें पायदान पर हैं T20 इंटरनेशनल में। वर्ल्ड कप में जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस बार पैड के सहारे खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, आसानी के साथ एक रन मिलेगा। जो दूसरा ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए थे इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि परिस्थितियां यकायक बदल गई। हालांकि तब भी एक विकेट गिर चुका था, एमी जोन्स आउट होकर के पेविलियन वापस लौट चुकी थी। तब रन बनाने की रफ्तार 9.34 के आसपास थी, इस समय रन बनाने की रफ्तार है 6.62 रन प्रति ओवर। ओवर की आखिरी गेंद लेकर के आई थी मैरिजन कैप, ऑन साइड में खेला गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा। जब तक थ्रो आएगा तब तक दोनों बैटर छोर बदल लेंगे। 5 ओवर के बाद स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So the first quarter of the first innings of this semi-final has belonged to South Africa. Marizaan Kaap has completed her spell. She has delivered 3 overs in which she gave away only 9 runs and picked up the all-important wicket of Danny Wyatt-Hodge. 9 out of the 18 deliveries she sent down were dot balls. So once again, 50% dot balls. 33 for 3 England after 5 overs, and looks like Shabnim Ismail is going to be given a third over in the power play as well. Remember, this is exactly what they did against Australia too in the first match and were criticized for it. However, Shabnim Ismail creates another opportunity. There's a big, big appeal for LBW, vehement shout. However, umpire Jacqueline Williams is unmoved. Laura Wolfart walks up to her bowler. Chloe Tryon joins the confab. So does Nadine de Klerk. They are having a discussion, and by the looks of it, I think it was Chloe Tryon who ran in from mid-off, who suggested that the ball was a little too high and therefore we should not take the review. But once again, we saw that Wolfart was entrusted because the batter in question was Nat Sivabrant. She moved back and across to stand on the off stump, and this delivery was on a good length. However, it generated some extra bounce and hit her not on the pad but on the thigh guard. Next delivery, this time alters her length. Does Shabnim Ismail delivers it on a full length in line with the middle stump. The batter presses forward and dinks it back towards the bowler. Ismail quickly moves towards her right to clean it up. And an interesting reading on the speed gun, 118 kilometers per hour, which is pretty quick as far as women's cricket is concerned. The ball tracker replay is on our monitors and it tells us that whatever Chloe Tryon was suggesting was indeed correct. The ball was indeed high and would have missed the stumps. The next delivery, it's a short delivery from Shabnam Ismail. The perfume ball, as they call it, not too far from the off stump. Sivabrant did shape up for a pull shot. However, the ball went whistling past her face and in the end she had to bail out. 3 dot balls to start the final over of the power play. England struggling. Nat Sivabrant not quite able to find her mojo. 33 for 3 is the score after 5.3. 3 balls remaining in the power play.

0: तीन डॉट डिलीवरीज शबनम स्माइल के बारे में उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खेलना चाहती थी ऑफ साइड में, नैट सेवर ब्रांड बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। ऐसा कितनी बार आपने सुना या देखा होगा कि उनके जैसे कैलिबर की बैटर, उनके जैसे कैलिबर की खिलाड़ी और वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही हो और उनकी टीम के तीन टॉप बैटर्स पावर प्ले में ही पवेलियन में विश्राम कर रहे हो। आज सोफिया डंकली को मैच से बाहर किया गया, टीम से बाहर किया गया, क्योंकि नैट सेवर ब्रांड जो कि टीम की कप्तान है और वो स्वस्थ होकर के, फिट होकर के मुकाबले में वापस आई हैं। आज उनके कंधों पर दोहरी तेहरी जिम्मेदारी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक बार ऑन साइड में, इस बार मिडल और लेग स्टंप की दिशा में थी गेंद, मोड़ा गया है, एक रन से संतुष्ट होंगी। तो चार डॉट डिलीवरीज के बाद एक सिंगल आया है। इस पावर प्ले का अब अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती तो सिर्फ एक गेंद फेंकी जानी शेष है। 5.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबलों में जो कहानी रही है इंग्लैंड के साथ, खासतौर पर सेमीफाइनल में जब 2014 में 9 विकेट से हारे थे साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनको 5 रन से हार झेलनी पड़ी थी 2020 में। इसी बीच अगली गेंद खेला गया, उसे बाउंड्री लाइन पर, तब तक 1 रन लेने में कामयाबी। 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स का समय है।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 35-3 at the end of the power play. England, after being asked to bat first, are in a spot of bother. Amy Jones, Danny White-Hodge and Ali Skapsey, the three batters who have been dismissed. The two most experienced batters of this team now, Nat Sivabrant and Heather Knight, are out in the middle, but both are scoring at a strike rate which is less than 100. Obviously not ideal. However, the situation demands them to be a bit watchful, a little bit circumspect, and it demands them to rebuild the situation. It demands them to steer the ship away from the rocks. Anyhow, Shivendra was telling you about England's record in the T20 World Cup semi-finals, and Jatin Sood has handed me an elongated list which tells me that England made it to the semi-finals in 2009. Of course, that is when they went on to lift the trophy. That's when they defeated their arch rivals Australia by 8 wickets. Then they defeated New Zealand in the 2012 edition. They defeated South Africa in the 2014 edition but lost to Australia in the 2016 edition, won against India in the 2018 edition, and in the 2020 edition the match was abandoned. It was England versus India in the semi-final, and India advanced to the final because they had a better position in the group stage. And then of course the 2023 semi-final where South Africa defeated England. May we add one more entry to that list? I know 2025 was the 50 over World Cup, but it was the more recent one where these two teams met in Guwahati, and once again England suffered a one-sided rubbing. South Africa scored 319 runs batting first. Laura Wolfart scored 169 in that game, and Marizaan Kapp picked up 5 wickets. Here again, what we see is Marizaan Kapp has pretty much wrecked the top order. Marizaan Kapp picked up the wicket of Danny White-Hodge. Shabnam Ismail picked up 2 wickets, and therefore England are struggling at 35-3.
0: तो दो जो बैटर इस समय क्रीज पर हैं, दोनों बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, और ख़ासतौर पर अगर नैट सेवरब्रंट का जिक्र किया जाए, नैट सेवरब्रंट इनफैक्ट जापान में उनका जन्म हुआ था, टोक्यो में, और उनकी माता जी वो एक करियर डिप्लोमेट थी और अलग अलग देशों में उनकी तैनाती होती थी। तो बचपन में पोलैंड में रहीं जहाँ पर लीग स्तर पर फुटबॉल खेला, उसके बाद नीदरलैंड में उन्होंने बास्केटबॉल का रुख किया था, लेकिन अंततः उन्होंने क्रिकेट को चुना। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। मैरिजन कैप अपनी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और 4th ओवर है ये उनका। 9 रन सिर्फ उन्होंने खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है साउथ अफ्रीका की ओर से, और इससे बढ़िया टॉस तो कोई जीता जा ही नहीं सकता था। अभी तक की जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख करके तो ओवल के मैदान

0: पर ऐसा ही लग रहा है साउथ अफ्रीका के जो फैंस हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, धीमे से पुश किया है, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में पहुंची है, एक रन लिया गया, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया। और नेट्स पर ब्रंट और हैदर नाइट दोनों का अब इस समय प्रयास ये है कि संभल करके बल्लेबाजी की जाए और एक के बाद एक जो झटके लगे हैं टीम को उनसे उबरा जाए। और ख़ासतौर पर ये जो मिडल ओवर्स हैं, सातवें ओवर से लेकर के 13-14 ओवर तक, वहाँ पर इंग्लैंड को अपनी जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ेगा। और बदलाव यही होगा कि विकेट को बचा करके रखा जाए, क्रॉस बैटर स्ट्रोक्स या फ्लैम्बॉयंस ज़्यादा ना दिखाया जाए। इस बार गेंद हवा में उछली थी लेकिन शॉर्ट पॉइंट विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लॉरा वॉलवर्ट थी संभवतः, वहाँ पर गेंद को रोकने में या कैच करने में कामयाबी नहीं मिली। हालांकि डीप से बैकअप था, एक रन लेने में दोनों ही बैटर्स को कामयाबी, छोर बदल लिया गया तो धीमे धीमे भाई ही सही, लेकिन इंग्लैंड के खाते में रनों का इजाफा हो रहा है। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विकेट्स को बचा करके रखना अब उनकी पहली प्राथमिकता है। 9 रन बनाए हैं नेट सेवर ब्रंट ने, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में है और हैदर नाइट इस समय यॉर्क करने की कोशिश है, कलाइयों का इस्तेमाल करके फाइन लेग की दिशा में मोड़ा गया है उबंगा खापका जहां पर मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, तब तक एक रन लेने का मौका दोनों बैटर्स के पास, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर सिंगल्स। लेकिन ये जो इस समय स्थिति परिस्थिति है उसमें जाहिर सी बात है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अगर इंग्लैंड के बैटर्स सिंगल केवर ले रहे हैं और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं उनके लिहाज से एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है, लेकिन अगर केवल सिंगल लेने में कामयाब हो रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका के लिहाज से तो ये बेहतर स्थिति है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट की दिशा में, गेंद चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: थोड़े इंतजार के बाद आया लेकिन अच्छा आया चौका, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर थी, एक कदम आगे बढ़ाया, हाफ वॉली पर लिया और बड़ा कमांडिंग प्रभावशाली स्ट्रोक खेला, चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था, हालांकि मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी लेकिन गेंद उनसे दूर काफ़ी तेज़ रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। लेकिन कुल मिलाकर के केवल ये चौथा चौका इस बार लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई मैरिजन कैप, और क्या पैड से टकराई है या बल्ले से लगी है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वाइड उसे करार नहीं दिया गया। 7 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 42 3 विकेट के नुकसान पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में,
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: 42 for 3 after 7 overs are England, and the big news is that Marizan Karp has bowled out her 4 overs. Laura Wolfart gave her the 4th over on a trot, which is an interesting move. She was going for the kill. She realizes that the wicket of Siva Brunt and Heather Knight is as good as gold for South Africa right now, and therefore she did not hold Karp back, but they won't have her services for the remaining part of the innings. Now Ayobanga Kaka has been given the ball in hand, the first change in bowling. They are not going to bowl out Shabnam Ismail just yet. Kaka, who bowls right arm medium, runs into bowl this one from over the wicket, with the wicketkeeper Sinalo Jafta up to the stumps, delivers this one on a good length outside the off stump, and the batter flays her hands away from the body. The ball hits the bat and then runs towards deep third, where Molaba was stationed before Molaba could pick it up and throw it back to the wicketkeeper. A comfortable single was added to Heather Knight's score. She moves to 7 and England are 43 for 3 after 7.1. Natsivar Brunt now on strike. Here comes Ayobanga Kaka to deliver what will be the second ball of her first over. Delivers this one on a good length. Once again, there is width on offer, and therefore Siva Brunt is allowed to free her arms. She plays it in a deft manner, and the ball goes meandering towards the deep point region, where Tasmin Brits does the fielding and ensures that the batter cannot get more than a single. 44 for 3 then, the score after 7.2 overs. Ayobanga Kaka usually used to take the new ball, but since Shabnam Ismail has come back, she has switched her role to that of a first change bowler. Next delivery outside the off stump, opens the face of the plate, does Heather Knight. The timing on that is good enough to beat

0: Lalaba in the deep, 4 runs.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Delivered on a good length, but once again there was width on offer that allowed Heather Knight to throw her hands at it. She threw an angled face at it and the timing was good enough to beat Malaba towards her right, running from deep third. And therefore, another delectable boundary has been scored. 5 boundaries in the innings so far. Heather Knight moves to 11. The next delivery, and this time she's beaten due to extra bit of bounce. Tell you what, this delivery pitched in pretty much the same spot. Heather Knight shaped up for the same shot, because why not? However, this one, perhaps because it landed on the seam, got up steeply and therefore went over the bat. Good take from Jafta, but that extra bounce surprised Knight.
2: जी हाँ, बिल्कुल यकायक ऐसा लगा कि बॉल में बाउंस अच्छा खासा आया था. और इस बार हालांकि बढ़िया फील्डिंग है अपने बाईं ओर डाइव लगाते हुए डीप में स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, डेफिनेटली 2 रन तो बचाए गए. हालांकि 2 रन लेने से नहीं रोक सकी इंग्लैंड के बैटर्स को. तो 3 जो गेंदबाज हैं साउथ अफ्रीका की, मैरिजन कैप, शबनम स्माइल और आया बोंगा खाका, उन्होंने इस विश्व कप में 25 विकेट हासिल किए थे इस मुकाबले से पहले. और जतिन सूद बता रहे हैं कि बेस्ट इकोनॉमी इस विश्व कप में रहा है वो जॉर्जिया वेयरहैम का रहा है ऑफकोर्स, लेकिन मैरिजन कैप भी उनसे बहुत पीछे नहीं है. 6 मैचेस में 23 ओवर फेंकते हुए उन्होंने 8 विकेट हासिल किए हैं और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 5 का है, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम का इकोनॉमी रेट है 4.5 का. तो साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीता. दोनों टीमों में एक एक बदलाव. सुनील लूस का आगमन साउथ अफ्रीका की टीम में हुआ है, जबकि इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकले की जगह पर नेट सिबल ब्रंट आई हैं, जो कि इस समय बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं. और इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ख़राब रही. डैनी वियर्ट हॉग, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी 3 बैटर हैं जो कि पवेलियन में विश्राम कर रही हैं. और 50 रन भी नहीं बने. इनफैक्ट पावर प्ले में 6 ओवर में 35 रन बनाए गए 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की बैटर्स के द्वारा. तो इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर था जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, आज वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया. और यही कारण है कि मिडल ऑर्डर में नेट सिबल ब्रंट और हैदर नाइक, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, 50 रन हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड के. इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है. मलाबा एक पहले स्पिन गेंदबाजी आक्रमण के तौर पर आई हैं. पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का उपक्रम किया था नेट सिबल ब्रंट ने. और एक रिव्यू ऐसे बेकार हो चुका है, क्या पैड से टकराई है गेंद? और जी हाँ, लॉरा वुलवर्ट ने रिव्यू के लिए इशारा कर दिया है और एम्पायर के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वो तीसरे एम्पायर के पास जाएं, क्लियर पोलोसाक के पास. एलॉयस शेरिडन ने इशारा किया है थर्ड एम्पायर के लिए और मलाबा अपना स्पेल की ही शुरुआत कर रही थी. हालांकि ऐसा लगा दर्पण कि खुद गेंदबाज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी.
0: Tell you what, they are desperate to see the back of Nat Sivabrant. Once again, the batter in question is Nat Sivabrant, and that's why Laura Wolfart was so eager to show the tee, because from where we saw it, it appeared as if there was bat involved. Malaba, the left-arm spinner, delivered this one from around the wicket. The ball drifted in towards the middle pole and it pitched on a good length. Sivabrant loves to play behind square. She is known for those lapse shots, those scoop shots. The nutmeg, where she threads the ball from between her legs, is a very famous shot of hers. She thrives on playing those kind of shots. So her playing the reverse sweep on the first ball doesn't come across as a surprise. But the ball did hit her pad in front of the middle stump. However, we all felt that there was an inside edge before the ball went on to hit the pad, and that is exactly what Ultra Edge has also confirmed. And yes, South Africa have burnt another review. They are now out of reviews. They have used up both their reviews. This will be an interesting ploy going forward.
2: मलाबा ओवर के अगली गेंद बैक फुट पर जाकर ड्राइव किया. मिडऑन की दिशा में खिलाड़ी डीप में लॉन्ग ऑन में तैनात हैं. तब तक एक रन मिलेगा. दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है. रन बनाने की रफ्तार 6.1 2 रन प्रति ओवर पर पहुंचती हुई 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर. तो 50 रन भी बमुश्किल तमाम आए हैं. और नेट सिबल ब्रंट, हालांकि मलाबा को देखने से तो ऐसा लगा कि जैसे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी नहीं, लेकिन जैसा दर्पण बार बार इशारा कर रहे थे कि एक जो टेंडेंसी है खासतौर पर लॉरा वुलवर्ट की, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश हैदर नाइट की.

0: और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थी, गेंद को उन्होंने फील्ड किया। फील्डिंग आउटफील्ड में बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय रही है दक्षिण अफ्रीका की अभी तक का जो मुकाबला खेला गया है, और उसमें कहीं पर कोई ब्लेमिश नज़र आया नहीं है। और ये दोनों ही जो बैटर हैं, नैटसेवर ब्रंट या फिर हेदर नाइट, वो हेजिटेट नहीं करती अनकन्वेंशनल गैर परंपरागत स्ट्रोक्स खेलने में। जो जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, इस बार स्क्वायर लेग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला गया था, डीप में प्रोटेक्शन था, एक रन लिया गया दोनों बैटर्स के द्वारा। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर, पहली गेंद वो थी जहां पर रिव्यू लिया गया था साउथ अफ्रीका की ओर से, और वो रिव्यू बेकार गया, यानी उनके दोनों ही रिव्यू बेकार हो चुके हैं। और मलाबा की अगली तीन गेंदों पर एक एक रन लेने में कामयाबी मिली है। तो इनिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है नैटसेवर ब्रंट और हेदर नाइट के द्वारा। चार खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, इस बार हाफ वॉली पर लेकर फाइनल लेग की दिशा में खेला गया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है चार रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: तो बढ़िया चौका लंबे अंतराल के बाद आता हुआ इंग्लैंड के खाते में, हेदर नाइट के खाते में जाएगा ये, और अपनी टीम के लिए उन्होंने चार आकर्षक रन जोड़े हैं। हालांकि डीप में फील्डर तैनात थे, ऑन साइड में इनफैक्ट तीन खिलाड़ी हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। इस बार मलाबा की अच्छी वापसी, मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद जरूर थी, धीमे से पुश किया और इसको भांपते हुए कि खिलाड़ी डीप में थे, एक रन लेने में कामयाबी। नौ ओवर समाप्त हो चुके हैं, नौ ओवर के बाद इंग्लैंड ने बनाए 58 रन तीन विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: Folks, this is an important, important stage in the game. Don't go away from your radio sets because the upcoming phase might as well decide which way this match will go. Why are we saying that? I'll tell you that in a bit. Nadine de Klerk, meanwhile, has been given the ball in hand. She bowls right arm medium. It will be interesting to see if she tells the keeper to stand on the stumps or does she tell her to stand back? No, she has asked Sinolo Jofta to be on the stumps. They want to keep Heather Knight in her crease. Now remember, this is a partnership which is brewing. 36 runs have been added by Siver Brunt and Heather Knight, and the reason why I say that the upcoming phase is going to be important is because I sense that both the batters have got their eye in. The first delivery from Nadine de Klerk from over the wicket ends up straying onto the pads. It was delivered on a good length, however, since it was on the pad line, it allowed Heather Knight to use her wrists to turn the ball towards deep backward square leg where Marizan Kopp did the fielding. A single was comfortably taken. 59 for 3 England after 9.1 overs. They will be looking to attack. The second important thing to note is that Kopp is now done. Ismail is now out of the attack, and therefore now you are looking at the second string of bowlers. And there we go. There comes the attacking shot from Natsiva Brunt, and it gets her a boundary.
1: ये लगा आभा का चौका।
6: Natsiva Brunt's third boundary and probably the most convincing of them all, a tad shorter than the previous one, and that was all that Siver Brunt required. She picked it from in front of the off and middle, didn't quite go onto the back foot, she stood on the front foot and swished her bat across the line with vehemence. The ball went scampering away and bisected the gap between deep backward square leg and deep mid wicket. Let's see what Nadine de Klerk's response is going to be. She responds by trying to dart the ball into the block hole. However, Natsiva Brunt has been able to dig it out and play it towards deep mid wicket. And before the fielder over there can converge, pick the ball up, throw it back to the 22-yard playing strip, two runs have been taken. Yes, the oval has big pockets, but watch out for Natsiva Brunt's running. This is what she thrives on. She loves to hair between the wickets, and that is exactly what she exhibited on that occasion. Now, backs away to the leg side. This is delivered on a good length at the middle stump, and Natsiva Brunt brings out the short arm pull to play towards deep mid wicket, where once again Anuri Dirksen does the fielding. A single has been added. That takes England's score to 66 after 9.4 overs at the loss of 3 wickets. Suddenly, can you sense that urgency that Natsiva Brunt and Heather Knight

0: are showing in their running between the wickets. This is exactly what I was talking about. They are now looking to up the ante against the second string of bowling. Next delivery on a drivable length outside the off stump, and the Heather Knight lunges towards it and then plays a deft drive, a measured drive towards deep cover. A comfortable single this time has been taken, taking the score to 67 after 9.5. So, in the next 4-5 overs, we are going to see a lot of it, and therefore South Africa have to be on their toes. Next delivery on a full length at the middle pole has been whipped away towards the right of long on, and Shabnam Ismail moves quickly to keep them down to a single. 10 overs are done. 68 for 3.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 2026 का T20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है और टूर्नामेंट अपने बिजनेस एंड में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा करके फाइनल में जगह बना ली है और आज दूसरा सेमीफाइनल ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इंग्लैंड मेजबान टीम है और मैच के शुरू होने के पहले कहा जा रहा था कि उनका कागज पर पलड़ा भारी है। इसी बीच गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है। क्लिव ट्रायन का आगमन हो रहा है, जिन्होंने कि अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम की ओर से की है। एक ऑलराउंडर की भूमिका में आती हैं, बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी का दायित्व संभालती हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत, आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता लॉरा वॉलबर्ट ने और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमों में एक एक बदलाव था। सोने लूज साउथ अफ्रीका की टीम में आई, नैट सिवरब्रांट इंग्लैंड की टीम में आई। इस बार खराब डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी थी, स्टेप आउट किया ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है नेट सिवरब्रांट ने गेंद को 4 रनों के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: यकायक परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और जैसा दर्पण इशारा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बैटर्स की आंखें जम चुकी हैं और एक जो गेंदबाजी अटैक था उसमें पूरी गेंदबाजी में जो धार होनी चाहिए, अगली गेंद एक बार फिर से उसे फाइन लेग बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दिया गया है।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियां किस तरीके से बदलती हैं इसका नमूना पेश करते हुए नैट सिवरब्रांट और हेदर नाइट, पर्टिकुलरली नैट सिवरब्रांट लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट डिलीवरी, लगातार दो गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज। पिछले ओवर में 10 रन बनाए गए और पलक झपकते ही इन दोनों बैटर्स ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली है। एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है ड्राइव करने के अंदाज में, हालांकि वहां पर शबनम स्माइल मौजूद थी। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, एक रन का इजाफा, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिंगल, 45 गेंदों में 54 रन इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा जोड़े गए हैं, जिनमें नैट सिवरब्रांट का योगदान है 31 रन का और हेदर नाइट का योगदान है 21 रनों का। 77 3 विकेट के नुकसान पर इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी। अंतिम क्षणों में अपने स्ट्रोक को चेक किया, धीमे से पुश किया और स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़ी थी नैट सिवरब्रांट और हेदर नाइट और नैट सिवरब्रांट के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, एक जो साझेदारी जिस तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रही है, वो साउथ अफ्रीका के लिए एक डेंजरस सिग्नल हो सकता है। मिडिल और लेग स्टंप पर ऑन साइड में मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी डीप में बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात है, बड़ी आसानी के साथ रन मिलेगा। 11 ओवर के बाद 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
7: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Last two overs have produced 21 runs. Heather Knight and Nat Sivabrant have shifted gears. South Africa need to be careful or this game will slip out of their hands. Ayobonga Khaka comes back into the attack, delivers this one on a good length. However, it goes down the leg side and Nat Sivabrant has helped it along to the fine leg boundary for 4.
3: Ye laga, Abha ka choka.
0: Yes, a poor ball, but not Siva Brunt. After the ball had left the bowler's hand, she squared up in her stance and then played the scoop shot or the lap shot, as they call it.

0: these days, and the ball went to the right of the short fine leg fielder. Excellent placement. That is why she's so highly rated. Next delivery, what is Kaka's response going to be? She shortens her length, delivers it in line with the stumps, and there comes out the short arm pull from Natsiva Brunt. And before the ball is fielded in the deep mid wicket region, once again the batters hustle quickly between the wickets to take two runs. Once again, good hustle, good running between the wickets. This is what they are known for. Remember, folks, Siva Brunt was out with a calf injury, yet she's running as if her life is on stake. This is what good athletes do when the stakes are high, when it is the semi-final, when it is the big stage. Slower delivery this time around from Kaka, outside the off stump, on a foolish length. However, Siva Brunt was able to press towards it and then use her wrists to whip it towards long on and pick up a comfortable single. And just like that, Siva Brunt has moved to 41 in just 31 balls. That strike rate now, Shivendra, is giving a handsome reading.
1: 2023 ke baad se Nat Siva Brunt ne ek aankda hamare screen par aaya tha jisme ye reflect ho raha tha. Isi beech back foot par jaakar cut kar diya. Third man boundary ke baar ja chuki hai gain 4 runon ke liye. Heather Knight ke balle se nikla hai behtareen chauka.
2: Ye laga Abha ka chauka.
1: 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद. और जतिन सूद बता रहे हैं कि नैट सिवर ब्रांट और हेदर नाइट के बीच आयरलैंड के खिलाफ 64 रनों की साझेदारी हुई थी इसी विश्व कप में, जबकि आयरलैंड के खिलाफ टीम खेल रही थी. और आज तो खैर ऐसी साझेदारी की बहुत ज़्यादा शिद्दत से तलाश थी. 41 रन 31 गेंदों में नैट सिवर ब्रांट, 22 गेंदों में 26 रन हेदर नाइट, 11 चौके पारी में लगाए जा चुके हैं. पहली गेंद पर चौका, उसके बाद कपल एक सिंगल और उसके बाद फिर से चौका. परिवर्तन के तौर पर आया बोंगा खाका की ये गेंद डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई बाउंड, उसको फॉलो थ्रू में ही फील्ड किया गया था उनके द्वारा. रन बनने की कोई संभावना नहीं थी. तो ये दोनों खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्रण कर रखा है, निश्चय कर रखा है कि आज हम इंग्लैंड के नैया को पार लगाएंगे.
0: एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट द टीम नीड्स, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ इंग्लिश cricket fan base is expecting from them. This delivery on a full length on the pads has been flicked away towards deep square leg for a comfortable single. That single takes Heather Knight to 27. We come to the end of the 12th over. 91 for 3 is what the score is, and this over was once again an expensive one from South Africa's perspective. It produced 4 plus 2 plus 1, if my math is right, about 12 runs out of it. So 33 runs in the last 3 overs. The momentum has shifted. South Africa desperately need a wicket, or else they will see England running away with this match. Let us tell you, folks, that the average first inning score in the 6 women's T20Is played at the Oval is 152. However, in the England-New Zealand match that was played here last week, we saw New Zealand score 164 and England chased it down with 16 balls to spare. So it's a good track for batting. Malaba delivers this one on the pads. It has been flicked away towards square leg, and before the fielders in the deep can converge and throw the ball back, once again the two batters have haired back and forth and converted this into a couple. Once again, fabulous, enthralling running between the wickets. Watch out for it. Malaba gets ready to deliver what will be the second ball of the 13th over. Delivers this one on the shorter side of good length, outside the off stump. Has been chopped towards extra cover where Laura Wolfart does the fielding. No runs to be had of that ball. However, what South Africa need is a wicket.
1: 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर मलाबा की गेंद, स्टेप आउट किया, हाफ वॉली बल्ले कर इनसाइड आउट के अंदाज में खेला है. हालांकि फील्डर डीप में तैनात थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: हेदर नाइट एंड नैट सिवर ब्रांड, दे आर ऑन फायर. उन्होंने प्रण कर रखा है कि आज कुछ खास करके दिखाना है. और साथ ही एक और ख़ास बात देखने को मिल रही है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो डेप्थ है उसका आज नमूना पेश किया जा रहा है मिडल ऑर्डर में इन दोनों बैटर्स के द्वारा.
0: द लास्ट बाउंड्री दैट वॉज हिट बाय हेदर नाइट बिफोर द बॉल हिट द बाउंड्री कुशंस, और सो वी फेल्ट, नदीन डी क्लर्क रैन अक्रॉस फ्रॉम लॉन्ग ऑफ, पुट इन अ बिग डाइव टुवर्ड्स हर राइट एंड ट्राइड टू फ्लिक इट अवे फ्रॉम द बाउंड्री कुशंस. वी फेल्ट दैट द

0: Mall had already hit the boundary cushions, and now comes the confirmation from umpire Aloysius Sheridan, albeit it comes after a delay because a boundary check was happening. It has been signalled a 4, 97 for 3 after 12.3 overs. Next delivery, Malaba this time delivers it with a slightly flatter trajectory so that the batter cannot step out on a good length around the off stump, and once again brilliant use of wrist from Heather Knight, who tucks it away into the gap between long on and deep mid-wicket, and once again these two running like two cheetahs between the wicket convert it into a couple. 99 for 3 after 12.4 overs. The running between the wickets has been exhilarating.
1: 28 गेंदों में 35 रन पर पहुंच गई है हेदर नाइट, और बड़ा संयोग वाली बात यह है कि काफी देर से नेचुरल ब्रंट को बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही है। उन्होंने 31 गेंदें खेली हैं, 41 रन पर पहुंची है, और 29 गेंदों में 35 पर पहुंच गई है हेदर नाइट, और चौथे विकेट के लिए 58 गेंदों में 76 रन इन दोनों बैटर्स द्वारा जोड़े जा चुके हैं। क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है, 99 रन इस बार, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्टेप आउट किया, ऑन साइड में खेला और मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन। इसके साथ ही 13 ओवर के बाद 100 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के 13 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Last four overs have produced 42 runs. South Africa need a breakthrough. They go to Nadine D. Clerk, who is obviously an experienced campaigner. Hasn't done a lot of things with the ball in this tournament. However, here she induces an LBW appeal. However, the impact to my untrained eye seem to be outside the off stump. It was Heather Knight, the batter in question, and the umpire has turned Nadine D. Clerk's appeal down. She ran in from over the wicket, delivered this one on a full length. The replay on my monitor suggests that she released it with a cross seam grip, and Heather Knight had planted her foot outside the off stump before trying the cross batted swish. She missed the ball, the ball hit her pad, and the umpire showed no interest. Let us remind you, South Africa ran out of reviews very early because they burnt two reviews wastefully. Anyhow, the next delivery outside the off stump on a full length has been driven towards deep cover for a comfortable single, which takes Heather Knight to 37 and brings Natsiva Brunt back on strike. This losing of reviews, we told you that it is going to be an interesting subplot in this story. Next delivery, a low full toss, flicked away for 4.
6: Ye laga Abha ka choka.
0: De Klerk was probably searching for a yorker, ended up drifting on the pads, failed to land this one, and Natsiva Brunt, who is now watching the ball like a football, was quickly onto it and flicked it away towards the deep backward square leg boundary to pick up 4. Next delivery, again a very full length delivery. This time Nadine De Klerk pretty much lands it where she wanted it to, outside the off stump, and Natsiva Brunt squeezes it towards the backward point fielder. Anari Dirksen will ensure that the ball doesn't pass her. A dot ball for our scorer Sunil Dighe to mark.
1: Dirksen ne is gain ko roka zarur, lekin aisa laga ki haath jhatakti hui nazar aayi, shayad is baar scoop karne ki koshish, aur koshish kamyab hoti hui. Wicket keeper ke sir ke upar se gain boundary line ke bahar ja chuki hai 4 ranon ke liye.
6: Ye laga Abha ka choka.
1: Natsiva Brunt की जितनी तारीफ की जाए कम है। बड़े संकट की घड़ी में वो आई थी जब इंग्लैंड की हालत ख़राब थी और 3 विकेट गिर चुके थे। इनफैक्ट 6 ओवर के बाद 35 रन बने थे 3 विकेट के नुकसान पर। अब पिछली 3 गेंदों में उन्होंने 2 चौके लगा दिए हैं और 49 पर पहुंच गई हैं, और इसके साथ ही अगली गेंद को इन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला है। 2 फील्डर्स को बायसेक्ट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
6: ये लगा आभा का चौका।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: Nat Sivabrant with that boundary has completed a half century. 53 and 35 balls, out of which 9 came, 9 boundaries were scored, all in enthralling fashion, all in riveting fashion. It's been a captain's knock, as Shivendra was just talking. She came out to bat when England were in a deep, deep spot of bother. However, she exhibited maturity, responsibility at the start, provided sturdiness to the innings, but once she got her eye in, she started exhibiting what she's known for, those innovative shots behind the square, that quick, lightning quick running between the wickets, and it has been a joy to watch and call this innings live. England 113 for 3 at the end of the 14th over. Drinks are currently on the field, and I believe, Shivendra, South Africa will be scratching their heads because they need to find a way to get this partnership broken.
1: ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है पूरी तरीके से डेरेल हो चुकी है, और अगर थोड़ा सा अगर वैगन व्हील हमारे पास सामने आएगा तो उससे लगता है, ऐसा दर्पण पता चलेगा कि मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदों को, गेंदबाजी को केंद्रित किया गया है, और नैट सिवरब्रंट ने खासतौर पर उसका बेहतरीन भरपूर मजा लिया है। उन्होंने स्कूप शॉट्स खेले हैं, उन्होंने मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक्स खेले हैं, जब जब शॉर्ट डिलीवरीज आई हैं तब उन्होंने पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक्स खेले हैं। 19वां अर्धशतक है T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करती हैं। 4वां अर्धशतक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप में उनका 8वां अर्धशतक है। ये आंकड़े जतिन सूद ने हम तक पहुंचाए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा, और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नैट सिवरब्रंट, आज सोफिया डंकली की जगह पर उनको टीम में शामिल किया गया था। हालांकि सोफिया डंकली का जो प्रदर्शन था पिछले मुकाबले में वो कहीं से भी ख़राब नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब टीम में वापसी हुई है नैट सिवरब्रंट की, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों उनको लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है, और उन्होंने बड़ी सेवा की है। उनके साथ साथ हैदर नाइट, जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद हैं, 4वें विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अविस्मरणीय साझेदारी निभाई है। और साउथ अफ्रीका का जो गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें मैरिजन कैप आई, शबनम स्माइल आई, इनफैक्ट अयाबोंगा खाका भी उस तिकड़ी की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, मलाबा इसी बीच नया ओवर लेकर के आई हैं, और लगातार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदबाजी की जा रही है। ये अलग बात है कि इस बार स्ट्रोक अच्छे से खेल नहीं पाई हैदर नाइट, लेकिन 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है, 15वां ओवर प्रगति पर है।
0: दैट डिलीवरी stayed low from where I saw it, Shivendra. It was drifting on the pads and Heather Knight went for a cross-batted swipe, but it stayed low and struck her pad. Next delivery, this one generates a bit of extra bounce. This time Heather Knight was looking to go for the reverse swish or the reverse sweep, but the ball passed over the bat. The previous one went under the bat, this one goes over the bat, hits her body. There's an appeal for LBW, but shakes her head, does umpire Aloysius Sheridan. Next delivery, steps out Heather Knight, takes this one, converts this one into a full ball, and then whips it towards long on to pick up a comfortable single. So that tells me, Shivendra, that there is some uneven bounce on this wicket.
1: है ज़रूर, लेकिन जिस तरीके से उस बाउंस को या गेंदबाजी की विविधता आक्रमण को नेगोशिएट किया है नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट ने, वो सराहना के काबिल है। अगली गेंद पर एक और सिंगल ले लिया गया, चूँकि खिलाड़ी डीप में तैनात हैं और क्लोजिंग फील्डिंग का लगभग कोई ज़्यादा खिलाड़ी देखने को मिल नहीं रहे। गेंदबाजी आक्रमण भी छितरता बिखरता सा नजर आ रहा है। मलाबा गेंदबाजी कर रही हैं, एक बार फिर से लेग स्टंप की दिशा में, हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में खेला गया है। डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन का और इजाफा, पहली दो गेंदें डॉट डिलीवरी, और उसके बाद 3 गेंदों पर सिंगल। पारी का 15वां ओवर, 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर में 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद के ओवर्स में 78 रन बिना किसी नुकसान के बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। ओवर की समाप्ति 116 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: The last over produced only 3 runs. Shivendra was accurate in his

कोई मुश्किल नहीं इसे नेगोशिएट करने में। ऑन साइड में खेला, हालांकि गेंद बाउंस करती हुई हवा में थी लेकिन फील्डर के पास नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई। बड़ी आसानी के साथ रन दिए गए और नैट सिवरब्रंट ने जिस अंदाज में चौके लगाए हैं, खासतौर पर उन्होंने ऑन साइड में मिडिल और लेग स्टंप पर जब उनको गेंद फेंकी गई है, कुल शॉट बहुत ही बेहतरीन खेलती है, लेकिन इस बार डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग। दो रन तो खैर मिल ही जाएंगे और जहां सिंगल आ रहे थे, एक रन को दो रन में बदला है, दो को तीन में बदला है, खराब गेंदों को चौकों में बदला है। और इंटरेस्टिंग बात एक और है, दर्पण की पूरी पारी में एक भी ओवर बाउंड्री या एक भी छक्का नहीं आया है। ये भी जाहिर करता है कि बल्ले को बड़ी सावधानी से गेंद के साथ कनेक्ट किया गया है। और ओवर बाउंड्रीज कई बार ऐसा भी होता है कि मिसक्यूट शॉट की बदौलत भी आ जाती हैं, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। पारी का 17वां ओवर चल रहा है और रन बनाने की रफ्तार 7.70 रन प्रति ओवर। ओवल के मैदान पर यह मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जा रहा है। दूसरा सेमीफाइनल है महिला T20 विश्व कप का, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आया बोंगा खा

0: बाउंड्रीज कई बार ऐसा भी होता है कि मिस्क्यूट शॉट की बदौलत भी आ जाती हैं, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। पारी का 17वां ओवर चल रहा है और रन बनाने की रफ्तार 7.70 रन प्रति ओवर। ओवल के मैदान पर यह मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जा रहा है। दूसरा सेमीफाइनल है महिला T20 विश्व कप का, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आया बोंगा खाका की गेंद, लो फुल टॉस पर, और ऐसा लगता है कि हैदर नाइट ने हमारी बात सुन ली थी। लो फुल टॉस पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है 6 रनों के लिए। पहला छक्का
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: जी हां, पारी में लगने वाला पहला छक्का 42 गेंदों में 52 रन पर पहुंच गई है। हैदर नाइट 123 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट।
2: हर 10th T20I 50. She also has 100 to her name and the first against South Africa in this long illustrious career of hers. And now unfurls a delectable inside-out drive which fetches her another 4.
1: Ye laga Abha ka choka.
2: This was a slower delivery, perhaps the attempted leg cutter from Ayobonga Khaka outside the off stump, however on a drivable length. Nat and Heather Knight pressed backwards so that she could get underneath the ball, and then whilst flaunting that high elbow of hers, unfurled that delectable inside-out drive towards the extra cover region. She moves to 56, England 137 for 3, looking at a score perhaps in the excess of 175 from here on in. Another slower delivery, this time it has been driven along the carpet in the same direction, in the deep extra cover region. It will be fielded by Nadine de Klerk, who runs towards her left to cut it off. 138 for 3 at the end of 17.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: इंग्लैंड की टीम एक समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। सेमीफाइनल में 23 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जो शुरुआती 3 बैटर्स थी डैनी वियर्ट हॉज, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी थी, लेकिन उसके बाद नैट सिवर ब्रंट और हैदर नाइट का आगमन हुआ क्रीज पर। 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्कोर है। एडीन डी क्लार्क नए ओवर को लेकर के आई हैं, स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसका ड्राइव किया लॉन्ग मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। पारी का ये कुल मिलाकर के 18वां ओवर है और नदीन डी क्लार्क अपना 3रा ओवर लेकर के आई हैं। तो शबनम स्माइल ने अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, मैरिजन कैप ने गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है। आयाबोंगा खाका, दरअसल ये जो टिकरी है जिसने इस मैच से पहले 25 विकेट हासिल किए थे, आज आयाबोंगा खाका बहुत ही निष्प्रभावी रही। इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में डिस्पैच कर दिया है सिवर ब्रंट ने 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: तो चौकों की बरसात हो रही है ओवल के मैदान पर। खराब ओवरऑल गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है। ओवर पिच डिलीवरी एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को डिस्पैच किया गया 4 रनों के लिए। 143 3 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ओवर बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट किया है 6 रनों के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: दोनों बैटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। 18 चौके और 2 छक्के लगाए जा चुके हैं नैट सिवर ब्रंट और हैदर नाइट। तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी दोहराते हुए, और दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है कि कौन स्कोरिंग के मामले में दर्पण एक दूसरे से आगे निकलेगा।
2: दैट सिक्स वाज ह्यूज, 85 मीटर्स far the ball went. Oh, Nat Siva Brunt has not only shifted into the top gear, might as well add that she has now turned on the nitro boosters. 149 for 3 England in 17.3 overs. Looks like she smacked the ball so hard that it has gone out of shape. The two umpires have converged and they are having a close look at the ball. Nat Siva Brunt, this is why they were so desperate to play her. Remember, she missed the ODIs against New Zealand played earlier. She missed the T20Is played against New Zealand earlier. And then she featured in the practice matches. featured in the first couple of games they played in this tournament. However,

0: However, after that, she had to sit out due to an injury. Yet, in this big match, on the big stage, they brought her in because they know the value that she brings to this 11. The fans who have been following WPL also know how important a cog in the wheel she has been for the Mumbai Indians, who she represents in the WPL. She is an excellent, excellent player, one of the most consistent performers over the years. Meanwhile, reserve umpire Candice Labode is out there in the middle with a box of spare balls. We are going to have a change in ball, and South Africa will hope, their fans will hope, that the change in ball brings about a change in fortunes for them, because currently it's all going England's way. We still have 15 legal balls to go, and in those 15 legal balls, they want to limit the damage as much as possible.
1: पिछले पांच ओवर में 56 रन बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा. रन बनाने की रफ्तार रही है 11.20 रन प्रति ओवर. नदीन डिक्लार्क की गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला है उसे, और गेंद चार रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के, तो कहां तो टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी और कहां ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की जो धार है वो तार तार हो चुकी है, पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है. डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में लंबा फासला था. इस बार यॉर्क करने की कोशिश, अच्छी वापसी नदीन डिक्लार्क की. लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, एक रन मिलेगा 154 तीन विकेट के नुकसान पर. इस ओवर में दो चौके, एक छक्का और दो कपल, यानी कुल मिलाकर के 16 रन बनाए जा चुके हैं दोनों बैटर्स के द्वारा. रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन के आसपास पहुंचती हुई, 8.64 रन प्रति ओवर टू बी प्रसाइज. 17.5 ओवर के बाद 154 तीन विकेट के नुकसान पर नैट सेवर ब्रंट 45 गेंदों में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं. हेदर नाइट के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन बनने की संभावना नहीं. 46 गेंदों में 58 रन उनके नाम पर. 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 154 तीन विकेट के नुकसान पर.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: 12 balls to go, 156 for 3 England, beg your pardon, 154 for 3. How many more can they get? This partnership, which is now worth 131 runs, is the highest ever in a knockout fixture in the T20 World Cup, as far as the women's are concerned. The next delivery, it's going to be bowled by Malaba, the left-arm spinner, who will be bowling her final over of the evening. Delivers this one on the shorter side of good length, angles it towards the body. Natsiva Brunt hangs back and then lofts it, chips it towards deep backward square leg to pick up a couple of runs. Next delivery, she goes for the big slog sweep, hasn't quite got it in the middle of the bat, and it will be caught at deep mid wicket. Finally, this partnership has come to an end. Natsiva Brunt is out for 75, which happens to be the second highest score by a captain in the history of the ICC Women's T20 World Cup. Only person ahead of her is Amy Watkins of New Zealand, who scored 89 not out. Natsiva Brunt is out for a score of 75, and she will get a standing ovation, not just from the England dugout, but also from all the spectators that are present at the Oval. 75 of 47, which included 11 attractive fours and one huge 85-meter six. England are 156 for four.
1: नैट सेवर ब्रंट ने अपना काम कर दिया है और उन्होंने इंग्लैंड को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वो इस मुकाबले में जीत की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है. हालांकि क्रिकेट गौरवमयी अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी कहना इस समय जल्दबाजी होगी. प्रिया कैम का आगमन हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा में चली गई थी. हालांकि विकेट कीपर भी उसको रोक नहीं पाई, गैदर नहीं कर पाई, लेकिन अच्छी बात है कि बैकअप था. शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक रन का इजाफा.
0: Yes, that has been signalled as byes by the on-field umpire. That takes England's score to 157. Heather Knight once again back on strike.

0: Alaba at the top of her mark, running into ball. What will be the fourth ball of the over? Steps out, does Heather Knight, and completely miscues it. An easy catch for Laura Wolfart at extra cover, and both set batters have now been dismissed. This was a clever piece of bowling from Malaba. Just 70.4 kilometers per hour is the reading on the speed gun, which tells us that she slowed it up, hung it up, allowed the batter to come forward, but eventually Heather Knight got deceived in the flight. She was probably looking to hit it more towards long off, but ended up slicing it, and an easy catch for the South African skipper. Yes, Heather Knight has done her job with this excellent, responsible, mature 58 of 47. However, the fact that England have lost both the set batters with still about 8 deliveries to go means it could be a difference of nearly 10 runs, if not more, in their final score. And that sometimes can be the difference in the end. Danny Gibson is the new batter.
1: ये जो दो बैटर अब दर्पण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दो बेहतरीन बैटर्स के पवेलियन लौटने के बाद, फ्रेया कैंप ऑलराउंडर हैं, 173 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और डैनी गिब्सन 163 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये दोनों बहुत ही सक्षम क्रिकेटर हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहाँ शायद सिर्फ सिंगल होना चाहिए था उसे कपल में कन्वर्ट किया दोनों बैटर्स ने, फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन। तो ये भी एक संयोग है, क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार देखने को ऐसा मिलता है कि जब दो बैटर्स, बड़ी साझेदारी होती है, उसके बाद जैसे गेंदबाजी एक पेयर में की जाती है, कई बार क्या होता है कि जो बल्लेबाजों का आगमन क्रीज की ओर होता है या पवेलियन की ओर होता है, वो भी एक साथ होता है। 19 ओवर फिलहाल समाप्त हो चुके हैं, 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड।
0: Malaba finishes off with 2 for 25 in her 4 overs. Excellent bowling figures, courtesy that brilliant final over. Before that, her penultimate over also yielded 3. So it was an expensive start from her. But again, it is not about how you start, it is about how you end. South Africa did not start this tournament on the right note. They started off with a drubbing against Australia. But can they finish on the right note? That is the question. England did not start this innings on the right note, but can they finish on the right note? A slow over penalty has been applied. South Africa have not bowled their overs in time, which means now they will have to have an extra fielder inside the 25-yard circle, which means they can only have 3 boundary riders, deep backward square leg, deep mid wicket, and long on are currently those 3 fielders. Ayobonga Khaka, who has been expensive today, 35 runs off her 3 overs, is going to be bowling the final over. The keeper is up to the stumps. Danny Gibson, who's known for those big hits, is currently on strike. Delivers this one on a very full length, does Ayobonga Bongo Khaka, ensuring that the batter cannot get underneath it and hence cannot get the elevation. She does swing the bat hard and the ball goes skipping away towards deep mid wicket, where Nadine de Klerk does the fielding, and she ensures that there is no more than a single to be had. 161 for 5, 5 balls to go in the innings.
1: Ayobonga Khaka अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के आई हैं, 36 रन उन्होंने खर्चे हैं, पहली सफलता की तलाश है। मलाबा का पिछला ओवर साउथ अफ्रीका के लिहाज से बड़ा सुनहरा ओवर कहा जा सकता है, जहां उन्होंने 2 विकेट हासिल किए थे। फिलहाल फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन क्रीज पर हैं। कैंप ने अभी सिर्फ 1 गेंद खेली है, रन बनाने का सिलसिला उनको शुरू करना है। और जैसा हमने जिक्र किया, दर्पण बता रहे थे कि जो स्लो ओवर पेनल्टी है उसके लिहाज से केवल 3 खिलाड़ी 25 गज का जो घेरा है, सर्कल है, उसके बाहर तैनात किए जा सकते हैं, अन्यथा आमतौर पर सामान्य स्थिति में आप 4 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर तैनात कर सकते थे। 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर, रन बनाने की रफ्तार 8.40 रन प्रति ओवर, अच्छी वापसी करते हुए Ayobonga Khaka ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को केंद्रित रखा है, हल्का सा मूवमेंट भी, स्लैश करना चाहती थी उसको, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। और ऐसे समय पर कोई डॉट डिलीवरी, जिसका मोल जो है वो सोने के भाव से तो कम हो नहीं सकता, और वो डॉट डिलीवरी डाली गई है Ayobonga Khaka के द्वारा 161 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जब इनिंग्स ब्रेक होगा, स्टूडियो से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जहां पर विशेषज्ञ मौजूद होंगे और आप उनसे उनका विवेचन सुन सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पारी आगे बढ़ी है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। कैंप इस समय शून्य पर क्रीज पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, सामने हैं गिब्सन। तीन गेंदों में चार रन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड की अपील करते हुए जैकलिन विलियम्स ने अपने दोनों हाथ हवा में समानांतर उठा दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आया

0: कहूंगा खाका की ये गेंद, उसे वाइड करार दिया गया है। और पिछली गेंद भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इस बार उससे भी ज्यादा बाहर। एक जो बाउंड्री लाइन है जहां पर वाइड का निर्धारण होता है, ब्लू लाइन, उसके बाहर टिप्पा गेंद खाती हुई। तो अभी भी अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी है 10, इंग्लैंड 162, 5 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है, एक रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर्स। साउथ अफ्रीका के लिहाज से दर्पण अच्छी वापसी कही जा सकती है।
1: यू कैन सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। खाका इज ट्राइंग टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम फ्रेया कैंप्स आर्क। फ्रेया कैंप इज नोन फॉर that bat swing of hers. She is known to unfurl those golf swings. She might not appear as the most powerful person, but this youngster can strike the ball big due to her bat swing. However, she was able to shuffle across and work that one towards the leg side on the previous occasion. Next delivery, Gibson this time shuffles to the leg side. However, very intelligently, Khaka delivers this one outside the off stump of the right-hander, and therefore, in the end, even with a stretch, Gibson can not reach the ball. Yet another dot ball, intelligent bowling from Khaka. Next delivery, this time she delivers it in line with the leg stump. Gibson swings the bat hard, gets a top edge, the ball comes swirling down towards Chloe Tryon, who was running towards her left from shot third, and looks like she hasn't quite been able to catch it. Also in her peripheral vision was Malaba, who ran in from fine leg, and both of them converged. However, it looks like the ball has hit the hands of Chloe Tryon and then spilled. And Tryon also tells Malaba, it was my catch, you did not need to be as close. Two runs meanwhile were taken. Next delivery, which was the final delivery of the innings, it is outside the off stump and looks like Danny Gibson has got an edge. No, she hasn't. Jacqueline Williams says that it is a bye. The ball trickles away to fetch England four more.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: It was a good length delivery in line with what would have been the tram line for the umpire to decide it was a wide ball. However, the batter shuffled towards it and hence it hasn't been signaled a wide. Eventually, Gibson was looking to guide it towards third using an open face, but she could not lay bat on ball. The ball went past her, past the wicketkeeper as well, and trickled over into the fence. That means England have ended their innings, ended their quota of 20 overs with 169 for 5. They lost 3 wickets very early. However, then Natsiva Brunt and Heather Knight with an excellent partnership were able to forge a recovery. We will meet you after the innings break. For now, we will head to the studios of Akashwani for a very special program called Free Hit 20.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: Having lost 3 wickets for 23 runs, England staged a comeback with a stand of 133 of 90 for the 4th wicket between current and former captains Natsiva Brunt and Heather Knight, but subsequently South Africa striking back as England score 169 for 5. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha, and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
8: Ji, aur hamare sath mehman hai hamare Khyati Gulani, purv cricketer, Jishanul Yaqeen, purv cricketer, aur G Rajaraman, varishth khel patrakar. राजा, ये जो 169 रन बनाया है इंग्लैंड ने, क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गई इंग्लैंड की टीम? क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही थी उन पावर प्ले के ओवर्स के बाद, ऐसा लग रहा था कि 180-185 तक स्कोर जा सकता है।
9: 180 तो बनता था, लेकिन दोनों विकेट जो सेट बल्लेबाज थे, दोनों एक साथ आउट होना, एक ही ओवर में आउट होना, शायद वो थोड़ा सा भारी पड़ा है। लेकिन इंग्लैंड के पास रन काफ़ी है। मुझे लग रहा था शुरुआत में, मुझे लग रहा था कि 150 का स्कोर डिफेंडेबल स्कोर होगा। 169 काफ़ी है उनके पास, और इंग्लैंड के पास वो गेंदबाज है जो साउथ अफ्रीका को रोक सके।
7: क्या थी इंटरेस्टिंगली दैट स्टैंड ऑफ 130 बिटवीन करंट एंड फॉर्मर कैप्टन्स, बट ऑन आइदर साइड ऑफ इट नॉट मच कॉन्ट्रीब्यूशंस।
10: या डेफिनेटली द वे दे हैव स्टार्टेड

0: and like losing 3 wickets in just 23 runs is like something odd for this big game. But after that, the way this Catherine Brunt and Heather Knight have played, and the way they have stood up, it's amazing. It's commendable.
1: और जिशान, क्या यहाँ पर रणनीतिक चूक हुई है थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के कप्तान से? क्योंकि अगर पावर प्ले की बात करें तो उनके जो फ्रंट लाइन गेंदबाज थे, दोनों के तीन तीन ओवर समाप्त हो चुके थे और कैप का चौथा ओवर सातवें ओवर तक समाप्त हो चुका था. इसके बाद ही इंग्लैंड ने अपनी जो पारी है वो बिल्ड किए है, क्योंकि तीन विकेट तो उन्होंने पावर प्ले में ही गंवा दिए थे.
2: बिल्कुल, थोड़ी सी कमी तो रही है साउथ अफ्रीका की, खासकर जो फील्डिंग को भी मैं देख रहा था कि उनका जो फील्डिंग का सेट करने का जो भी जगह होती है वो नहीं किया उन्होंने. आई डोंट नो कैसे क्या स्ट्रेटजी उनकी रही आपस में, उन लोगों के कैप्टन की क्या सोच थी, क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने ज़्यादातर रन जो बनाए हैं दोनों जो बैटर हैं, उन दोनों ने जो ज़्यादातर रन बनाए हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के एरिया में और स्वीप करके इसी लेग साइड में ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने. तो उनको कहीं ना कहीं वो एक सोच होनी चाहिए थी कि या तो ये है कि तीन विकेट उन्होंने ले लिए थे पावर प्ले में, तो उस वजह से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ उन्हें, या उस तरह की कोई चीज़ हुई जहाँ वो मेंटल लैक किया उन्होंने वहाँ पर अपने उन चीज़ों को स्ट्रैटेजी में. उनको वो ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए था कि चाहे दोनों बैटर जो थे उनके जो बैट आ रहे थे, अगर आप वॉच करेंगे उनकी बैटिंग को, तो जो भी बैट उनके आ रहे थे वो मिड विकेट के एरिया की तरफ ज़्यादा उनकी कोशिश थी मारने की. और उनका जो बिल्ट है दोनों का ही, एक लंबी है, उनका जो रेंज उनको मिल रहे थे वो भी बहुत आराम से उनको मिल जा रहे थे रेंज, तो वो हमेशा कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की तरफ मार के रन बनाने के लिए. तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं समझा बैटर को, जब तो बाय द टाइम वो समझते समझते उन्होंने, या तो इनको ये करना चाहिए था कि बीच में ही स्पिनर को कोशिश करनी चाहिए थी एक बार और एक ओवर और डाल करके, एक ओवर और उनको रोकना चाहिए था, दो ओवर कराना चाहिए था, दो ओवर बीच बीच में ऐसे करके कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड टीम को 140-150 के आसपास रोक सकते थे जहाँ तक बॉलिंग साइड की बात है. लेकिन जहाँ तक बैटिंग साइड की बात है, ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन दोनों ने बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका को उन्होंने उनकी जो बॉलिंग अटैक था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उन लोगों ने. अब यहाँ पे यह था कि एक कोई बैटर को रहना चाहिए था, देखा था जब उन्होंने कि वो आउट हो गए हैं तो दूसरे एक को रहने की कोशिश करनी चाहिए थी आखिरी बॉल तक. अगर वो रहते तो हो सकता है कि वो जो 10-15 रन का जो लैक किया है वो भी आता और 180 और 185 के आसपास स्कोर होने चाहिए थे, जो कमी है. लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट है. अगेंस्ट इंडिया साउथ अफ्रीका ने 170 प्लस कुछ रन किए थे, इंडिया को रोका था उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको एक जो माइंड सेट है साउथ अफ्रीका बैटर्स का कि 170-180 रन बनाने का जो उनका अपना है, वो अगर थोड़ा सा वो करेंगे तो एक मैच बहुत अच्छा बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा आखिर तक मेरे ख्याल से.
3: Now, in fact, extending Zeeshan's point, overwhelming number of runs were scored on the leg side, all variants of sweeps and then flicks being used, Raja.
4: I think they played some creative shots. You can't, I will not blame the captain too much, because they were moving outside the off stump and playing the sweep or playing the reverse sweep. And you can't be setting fields for unorthodox shots, so it's tough. And I think what England did was played very smart. After they lost the 3 wickets, they stayed at the wicket and they played out the one big bowler that South Africa had. In fact, two of them. They played them out very carefully and went after the others. And I think South Africa bowlers did not have a plan, or maybe they had a plan and they were not able to execute it. The other bowlers, the new ball bowlers, did a fantastic job for South Africa, but they needed somebody to back that up. And England was just biding its time and knew that it can go after the other bowlers, and they did a fabulous job of that.
1: जी, और ख्याति अगर बात करें इंग्लैंड की इस पारी की, कप्तान नैट सीवर ब्रंट की वापसी, जिस तरह से वो पिछले कुछ मैचों से बाहर थी और उसके बाद ये पारी, क्या आपको लगता है कि मैच का सबसे निर्णायक पहलू साबित हो सकता है?
0: डेफिनेटली काफ इंजरी के बाद वो वापस आई हैं और उन्होंने जिस तरीके की ये पारी खेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीग स्टेज में भी खेलना इस टाइप की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉकआउट्स में जहाँ हर गेम इंपॉर्टेंट होती है, अगर वहाँ पर अगर आप अपनी नर्व्स का कंट्रोल

0: करके अपनी जो भी इंजरी है पास्ट की उसको भूल के इस तरीके से अगर कंट्रीब्यूट करें और जहाँ पे आपके जो टॉप थ्री बैटर्स लीग स्टेज में अच्छी प्रदर्शन देते हुए और यहाँ आके अगर जब वो फेल हो जाएं और आपकी ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज दिख गया.
1: They do exhibiting what value experience holds in such games where nerves are involved at a very high intensity. Now turning our attention to the second innings, and we've talked about experience. Zeeshan Wolfart बहुत time से runs नहीं आए उनके बल्ले से, considering कि विश्व कप से पहले कितने शानदार धुआंधार फॉर्म में थी.
2: बिल्कुल, देखिए क्रिकेट है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैच है आज के दिन में, तो मुझे उम्मीद है कि वो वापस रन बनाने का उनका आज का दिन हो सकता है कि आज का दिन उनका हो जाए. बहुत बार ही ऐसा देखने को मिला है कि कोई एक बैट्समैन या एक कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक सर्टेन जगह पे जहाँ पे ज़रूरत टीम को होती है वहाँ पे वो परफॉर्म करके अपनी टीम को निकाल के लिए. तो आज उनका हो सकता है कि वो आज दिन वापस आए और साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी पारी खेल करके साउथ अफ्रीका को लेकर के जाएं. लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि टीम उनकी अच्छी है, बैटर्स उनके पास भी अच्छे हैं साउथ अफ्रीका के पास में. और जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इंडियन बॉलर्स भी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उसके बावजूद उनके जो बैटर्स थे उन्होंने 170 प्लस रन किए थे इंडिया के अगेंस्ट में. तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें दिक्कत होगी करीब तक जाने में इस मैच में. इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये एक मैच ज़रूर से एक बेहतरीन मोड़ की तरफ. हाँ, ये ज़रूर है कि शुरुआत के जो 6 ओवर हैं वो बहुत डिपेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के जीत और हार के ऊपर में.
3: राजा, 170 रन का लक्ष्य, पिच में आपको ऐसा कुछ अभी दिखा है जिससे परेशानी हो सकती है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को?
4: बाउंस कुछ खास नहीं है और मुझे लगता है कि फिरकी गेंदबाज उसका पूरा फायदा उठाएंगे. देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, हमारे कमेंटेटर्स हमें सुनाएंगे कि पिच में जो बाउंस, एक आध बॉल जो बाउंस हुआ था उसमें विकेट ज़रूर मिला था दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन यू विल सी दैट इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पे.
1: खास करके एक्लिप्सन हमने देखा है कि विश्व कप में अपना ए गेम लेकर आती हैं, शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में भी अब तक उनका रहा है.
0: जी बिल्कुल, ये अब कॉन्टेस्ट अब सेकेंड इनिंग में इट विल बी बिटवीन द बैटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द स्पिनर्स ऑफ इंग्लिश टीम. डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट एंड लॉरा वुलवर्ट एंड ब्रिट्स एंड मैरिजन काप और एलिस कैप्सी, एक्लिस्टन और सारा ग्लेन के बीच में कॉन्टेस्ट होगा. बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतता है.
3: तो जीशान, क्या रहेगा पहला लक्ष्य इस समय साउथ अफ्रीकन टीम की जब बल्लेबाजी आएगी, वो क्या चाहेंगे? पार प्ले में कम विकेट गंवाएं, कम रन भले बने, कोई बात नहीं.
2: देखें, आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर मैं कहूं तो ये है ज़रूर कि वो कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में 6 ओवर में हम 50-55 रन बना लें और कुछ विकेट भी ना गिरे, वो कोशिश रहती है उन लोगों की, स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है. लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये विकेट ऐसा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है, इस विकेट में स्लो विकेट है. इस स्लो विकेट के हिसाब से अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को मेहनत करेंगे, अगर रन दौड़ के बनाने की वो जो कोशिश होती है एक सिंगल और डबल और उस, तो वो अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसके ऊपर में, तो मुझे लगता है कि वो इस जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए वो काबिल होंगे. लेकिन अगर वो जाएंगे बिग हिट करने के लिए, तो आपने फर्स्ट इनिंग में भी देखा है कि जो टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप की, जिन्होंने 100 भी किया है, उन्होंने रन नहीं कर पाए हैं वो. तो बेहतर होगा हमारे ख्याल से कि जो शुरू का 6 ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि शुरू का 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैच में खासकर. जैसे जैसे ये मैच एंड की तरफ जाएगा, साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो विकेट कम गिराएं, आखिर तक जाने की कोशिश करें. अगर आखिर तक जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा.
1: South Africa chased down 158 against India and collected two crucial points in the group stage. Now, Dixon, we've seen her bat at number 3 in this World Cup, barring that game against India where she couldn't open her account. She's been chipping in with important runs.
4: So, this is a game where everybody has to contribute. It's not a small score, chasing 170 to win. everyone has to contribute, and if the top orders, the top

0: three can get those runs, well and good for South Africa. It's going to be a challenge, Megha. I think no matter what your form is, the pressure of the scoreboard, that is going to be weighing very heavily on the batters' minds. Normally, you would want to get about 45 runs in the first six overs without losing wickets. But South Africa will push for to make the best use of the new ball and to make the best use of power play and to try and get a good score. Try and get 50, 55 runs on board, and in the process they will lose wickets. And that's the nature of the beast of T20. And I think we will get to see a very fascinating contest, with England being smart, England playing the strategic game better than South Africa at this point of time.
1: Khyati, England ki kaptan ne to apna kaam kar diya hai. Ab bari hai South Africa ki kaptan ki. Unki achhi pariyan abhi tak aayi nahi hai. कितना अहम रोल होगा इस बड़े रन चेज में?
2: डेफिनेटली उनको थोड़ा सा पिच इन करना होगा आज के मैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज ही उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अच्छा स्कोर है, अच्छा टोटल है. अब देखिए वो किस तरीके से इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती हैं.
3: एंड राजा, वी हैव सीन लॉरेन बेल बारिंग वन गेम इन द ग्रुप स्टेज गिव साउथ अफ्रीका रादर इंग्लैंड अर्ली विकेट्स.
0: अगेन दिस इज अ बिग गेम, सेमीफाइनल, दे विल हैव टू play at their best and think of contributing to the team. If you can pick up a few early wickets, nothing like that for England, but they've got a good score to defend.
3: Absolutely, 170 is what South Africa would be out in the pursuit of. Thanks a lot to each one of you for your analysis. As we turn our attention to the second innings, now South Africa are eyeing third successive finals, England looking to win the World Cup at home.
4: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
5: ओवल का मैदान, जहां पर फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद T20 महिला विश्व कप के मुकाबले में, जिसका आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है. लॉरा वॉलवर्ट साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तान, और उनके साथ हैं तैस्मिन ब्रिट्स दूसरे छोर पर. और इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड ने इनफैक्ट 169 रन बनाए, तो साउथ अफ्रीका के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया है इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने के लिए. ओवर की दूसरी गेंद, लिंसे स्मिथ आई हैं गेंदबाजी करने के लिए, और उनकी गेंद को पंच किया गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में. एक रन के लिए छोर बदला है. लॉरा वॉलवर्ट ने स्कोरिंग की शुरुआत की है. तैस्मिन ब्रिट्स अब स्ट्राइक पर होंगी. तैस्मिन ब्रिट्स एक बहुत ही करिश्माई क्रिकेटर हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत ही करिश्माई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा. उनके बारे में ज़रूर हम जिक्र करेंगे. अच्छी गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप की लाइन में अंदर की ओर आती हुई, दाहिने हाथ के बैटर के लिए लो रहती हुई, और बल्ला अंतिम क्षणों में अड़ाया था तैस्मिन ब्रिट्स ने. हालांकि गेंद पहले ही टिप्पा खा चुकी थी, लेकिन एक तरीके से सवाल तो बहुत गंभीर पूछा गया था लिंसे स्मिथ के द्वारा तैस्मिन ब्रिट से. एक रन बिना किसी नुकसान के 170 रन का लक्ष्य इस सेमीफाइनल में, जिसका विवरण आज तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के माध्यम से. कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं शिवेंद्र, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, हमारे स्कोरर सुनील दीघे और स्टैटिस्टिशियन जतिन सूद. और हम ये जो दक्षिण अफ्रीका की पारी है, इसका संपूर्ण विवरण आप तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से पारी आगे बढ़ती है. साउथ अफ्रीका इनफैक्ट आज टॉस जीते थे ओवल के मैदान पर, और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया था. शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बैकफुट पर जाकर के पुल करने के अंदाज में खेला है तैस्मिन ब्रिट्स ने. एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा उनको. एक ओवर के बाद साउथ अफ्रीका की धीमी शुरुआत, दो रन बिना किसी नुकसान के.
6: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
7: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
6: तुम हो ही भुलक्कड़.
7: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
8: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
7: आभा
8: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं, और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
9: A probing over from Lindsay Smith. As such, he's a left-arm spinner who should usually be spinning the ball away from the right-hander. But what she did in the previous over, she bowled those in-swingers. Can't even call them

0: length to Laura Wolfart, who punched it towards cover. So a single and a dot ball after the boundary, which means at the end of the second over, 11 without loss are South Africa. Next over will be bowled by Lindsay Smith, who starts off with a delivery which is wide off, and it has been flayed away through the backward point region for four.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: So Tasmin Brits on the prowl. This time around, the ball did not swing in with that release of hers as it had been doing in the first over. This one spun away and Brits was ready, went onto the back foot and slashed it away to the boundary. The next delivery on a good length, this time closer to the off stump, and therefore drives it off the back foot. Does Brits picks up a single, moves to 13, and what a story it has been. That Shivendra was telling you, she was very close to playing in the 2012 London Olympics. Of course, that did not materialize, but here in that same country, in the city of London, today she has the opportunity to do good for South Africa.
2: Strike par hai captain Laura Wolfart, 3 gunon mein 1 run, step out kiya, middle or off stump ki line par gain thi, mid wicket ya long on ki disha mein khelna chahti thi, gain theek tarike se balle par aayi, lekin ek achhi baat ye hai ki carpet ke sare gain ludakti hui dur gayi thi, aur लिंसे स्मिथ कई सवाल पहले ओवर में पूछती हुई नजर आई थी दोनों बैटर्स से. दूसरे ओवर में अभी तक अपेक्षाकृत कामयाब नहीं हुई. पहली गेंद पर चौका, बाद की दोनों गेंदों पर सिंगल, यानी कुल मिलाकर के 6 रन 3 गेंदों में बनाए जा चुके हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले पर लिया, ड्राइव किया डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री की ओर गेंद जा रही है, दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: लिंसे स्मिथ का ये ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित होता हुआ, फुल लेंथ डिलीवरी हाफ वॉली पर लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पंच किया था. दो फील्डर प्रयास कर रहे थे, प्रयास असफल रहा और कामयाब हुई बैटर. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में लगभग 18-19 मीटर का फासला था, उस गैप का इस्तेमाल किया तैस्मिन ब्रिट्स ने. 12 गेंदों में 17 रन पर पहुंच चुकी हैं. एक बार फिर से इस बार पैर से टकराई है उनकी गेंद, थोड़ी सी मुश्किलों में तो हैं क्योंकि एक बार गेंद उनके थाई पैड के आसपास लगी थी, तब थोड़ा सा मुश्किल में दिखी थी, ऐसा लगा था एब्डोमेन की साइड में बॉल लगी थी. इस बार पैर पर लगी थी, स्ट्रेट बल्ले से इस बार खेला, मिड ऑफ की दिशा में गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंचती हुई. तो डॉट डिलीवरीज जो भी आती हैं वो उनका मोल सोने से कम नहीं होता है, और ख़ासतौर पर ऐसे मुकाबले में जहां फाइनल में पहुंचना दांव पर लगा हुआ हो. और 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष, लेकिन उन्होंने अच्छी सधी हुई शुरुआत की है ये कहा जा सकता है. और जब तक साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है अगर वो डिलीवर करता है, जिसके लिए डिलीवर करना आज बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, तभी फाइनल की उनकी राह कुछ आसान हो सकती है.
0: Right, 21 without loss after 3 overs. Tasmin Brits has done the bulk of scoring. She has been the chief aggressor so far. 17 of 14 deliveries against her name. 3 boundaries has been hit, and she has been hit on the body a couple of times as well. In the previous over, there was an occasion where she inside edged one ball onto her boot and then hobbled, but she's a tough nut to crack, and that is exactly what she's exhibiting. Meanwhile, the next delivery from Lauren Bell, the first of the fourth over, is down the leg side, and very deftly Wolfart tries to get a tickle on it. She even gets a tickle on it. However, Amy Jones, the wicketkeeper, moves to her left in order to cut it off and end the possibility of any sort of a run. So dot ball to start off with. The next delivery onto the stumps on a fuller length, and a delectable on drive from Laura Wolfart, which has been cut off superbly by Sophie Eccleston at mid-on, who moves towards her left and puts in a nimble slide in order to ensure that the South Africans do not get any more than a single. Now remember folks, England lost to South Africa in the semi-final of the 2025 World Cup. They lost to South Africa in the semi-final of the 2023 T20 World Cup as well. And there was a commonality between those two games. What it was, I'll tell you after this ball. The next delivery on a fuller length in line with the middle pole and nudges it towards mid-wicket. Does Tasmin Brits to pick up another single. That takes the score to 23 without loss in 3.5 overs. In both those matches, Laura Wolfart and Tasmin Brits were the heavy scorers. Wolfart scored 169 and Brits scored 45 in the ODI World Cup semi-final. And in the 2023 T20 World Cup semi-final, Wolfart scored 53, Brits scored 68. And just as I say that, Laura Wolfart picks up her first boundary.
1: Ye laga, abha ka choka.

0: delivered on the fuller side of good length. In fact, I would say it was a full delivery in the channel outside the off stump, and Laura Wolfart pressed forward and then unleashed a robust off drive. Nat Siva Brunt moved towards her right and put in a dive at mid off. However, she wasn't able to stop the ball. Such good was the timing of the bat of the South African skipper, who has now moved to 7. Next delivery, Lauren Bell pulls her length back to a good length, angles this one in towards the leg stump, 114 kilometers or thereabouts on the speed gun, and a defensive dab from Laura Wolfart. So both Wolfarts and Brits in both those semi-final victories for South Africa were the heavy scorers, which means England cannot take them lightly. They need to get them out as soon as possible. It goes without saying, doesn't it? Fourth overs, last ball. Lauren Bell runs in over the wicket and Laura Wolfart steps out. And after seeing her step out, Bell adjusts into a short ball, delivers this one outside the off stump. However, Wolfart was also able to adjust to the steeply rising delivery. She ends up cutting it towards deep backward point and picks up a comfortable single to mark the end of the fourth over. 28 without loss.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष। उन्होंने बनाए हैं 28 रन 4 ओवर के समाप्त होने के बाद, यानी रन बनाने की रफ्तार है 7 रन प्रति ओवर। और टॉरा वुडवर्ट और टेस्मिन ब्रिट्स बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए। चार्ली डीन का आगमन हुआ है, आते ही उनका स्वागत किया गया। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। 4 रनों के लिए लॉरा वुडवर्ट के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: शानदार अंदाज में बल्लेबाजी इन दोनों बैटर्स पर, कितना दारोमदार है। अभी दर्पण ये डेटा आपके साथ साझा कर रहे थे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार ड्राइव किया गया, स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर 2-3 कदम आगे बढ़ते हुए लॉरा वुडवर्ट बेहतरीन फॉर्म में दिख रही हैं। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनके बल्ले ने वो आग नहीं उगली है जिसके लिए वो जानी जाती हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीकन फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि वो डिलीवर करेंगी। मिड विकेट की दिशा में अगली गेंद को खेला गया है, दोनों बैटर छोर बदलेंगे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी गेंद पर सिंगल। और टैस्मिन ब्रिट्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन्होंने कि पूर्व जैवलिन थ्रोअर हैं और उन्होंने 2007 में 16 वर्ष की आयु में विश्व युवा एथलेटिक्स में जैवलिन का गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए। पूरा परिवार खेलों को समर्पित है। अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी थी, क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है या देखना दिलचस्प होगा रिप्ले में। लेकिन न केवल बैटर बल्कि विकेट कीपर एमी जोन्स भी पूरी तरीके से बीट हुई इस पर और बाई करार दिया गया, यानी गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन बड़ा नजदीकी मामला था और गैदर भी नहीं कर पाई थी एमी जोन्स विकेट के पीछे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका को क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की जो टेंडेंसी है वो फटाफट क्रिकेट का संस्करण है उसमें आमतौर पर देखने को मिलती है। कई मरतबा उसे लाजमी भी समझा जाता है क्योंकि आपको किसी भी तरीके से रन्स बनाने हैं, जो स्कूप शॉट है या पैडल स्वीप है उस अंदाज में। ख़ासतौर पर कुछ खिलाड़ी तो जाने ही जाते हैं, जैसे नैट सेवर ब्रंट की बल्लेबाजी में हमने देखा आज। चार्ली डीन के ओवर की अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी बैक टू द बॉलर ड्राइव फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। 5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 36 रन बिना किसी नुकसान के।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Charlie Dean's last over produced 6 runs and now looks like Lindsay Smith is going to be bowling the final over of the power play, which is interesting because her previous over was a little bit expensive. However, Nat Siva Brunt has trusted her, starts off with that arm ball which pitches outside the off stump and then angles in towards the stumps. However, Tasmin Brits brings out her own

0: version of the reverse sweep. It's not quite a conventional reverse sweep, if there is anything conventional about the reverse sweep. It's her own version where she doesn't really crouch, doesn't really touch her knee on the floor, but in a half crouch position swishes it away towards deep third and picks up a couple. That takes her beyond 20. Next delivery angled in towards the stump off a good length, and this time Brits stays beside the line of the ball and elevates it towards mid wicket, where Danny Gibson is stationed at the boundary. She runs across towards her left in order to mop it up, and a couple, beg your pardon, only a single has been taken, which means that this is some good work from the fielder. She was able to save what should have been two runs. Next delivery, Laura Wolfart steps out, puts her dancing shoes on and lots it over long on. One bounce and over the ropes for four.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Has Lindsay Smith become just a little bit predictable with her length? On a good length, not too far from the off pole, Wolfart jumped out of her crease and lofted it over mid-on. Currently, long off and deep mid-wicket are the two fielders outside the 25-yard circle. Once again, steps out, and this time she won't be able to clear the mid-on fielder. Sophie Eccleston has leaped towards her right and caught this. Laura Wolfart's innings has been cut short. South Africa lose their first wicket.
2: जोर का झटका लगता हुआ दक्षिण अफ्रीका को. कप्तान लॉरा वुल्फर्ट आउट होकर के पेविलियन का रुख करेंगी. पिछली गेंद पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था. सिंगल बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी. इस बार भी उन्होंने सर्कल को क्लियर करने की कोशिश की. मिडॉन की दिशा में सोफी एक्लिस्टन तैनात थी. गेंद हालांकि हवा में थी, अच्छी खासी हाइट थी, लेकिन अपने स्थान पर उछलते हुए छलांग लगाते हुए एक्लिस्टन ने ये बहुत ही दर्शनीय कैच लिया. 15 गेंदों में 17 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से वो रन बनाए थे लॉरा वुल्फर्ट ने, और वो उन्होंने पवेलियन का रुख किया है. और एक बहुत बड़ा विकेट है ये. साउथ अफ्रीका को बहुत जोर का झटका, इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी सफलता, और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये विकेट मिला है. तो 6 ओवर के बाद 35 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने, और दक्षिण अफ्रीका की टीम इस समय एक प्राइज्ड विकेट गंवा चुकी है.
0: दे आर 43-1 विद द 2 डिलीवरी स्टिल रिमेनिंग इन द पावर प्ले. ड्रिंक्स हैव बीन कॉल्ड ऑन द फील्ड, एंड जतिन सूद टेल्स मी दैट द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप फॉर साउथ अफ्रीका इन दिस वर्ल्ड कप हैज नॉट एग्जैक्टली बीन वेरी प्रोडक्टिव. दे स्कोर 2 रन्स फॉर द फर्स्ट विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द ओपनिंग गेम, 11 अगेंस्ट पाकिस्तान, 25 अगेंस्ट इंडिया, 121 against Netherlands, but after that 0 against Bangladesh, and here again 43 runs, which is a decent return but not exactly an overwhelming return. It's a decent platform that has been set. Anari Dirksen has walked out to bat at number 3, but here the bottom line is that Nat Siverbrant's move to give Lindsay Smith that extra over in the power play has brought fruits. Remember, her second over was slightly expensive. She had delivered a probing first over where she had given away only 2 runs, but in her second over she was hit for 2 boundaries and ended up giving away 10 runs in totality. Despite that, Siverbrant stuck to Smith and it yielded rewards. South Africa currently need 127 more of the remaining 86 balls.
2: तो परिस्थितियां बहुत आसान नहीं, लेकिन साथ ही कुछ भी असंभव नहीं. क्रिकेट के मैदान पर न जीत न हार, और जाहिर सी बात है कि प्रयास तो करने होंगे दक्षिण अफ्रीका को. जिस तरीके से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, बेहद ख़राब शुरुआत हुई, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इनफैक्ट 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद क्या साझेदारी हुई नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट के बीच में, और इन दोनों ही बैटर्स ने उसी क्रम में अपने अर्धशतक पूरे किए. इंग्लैंड की टीम को 169 के स्कोर पर पहुंचाया. हालांकि दोनों खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक आउट हुई, और अपनी टीम की ओर से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा. नैट सिवरब्रंट ने 75 रन बनाए 46 गेंदों में, और हैदर नाइट ने 58 रन बनाए 47 गेंदों में. एंडी डक्सन का आगमन हुआ है, 6 पारियां खेली हैं इस विश्व कप में. और जैसा हम इशारा कर रहे थे कि दर्पण ने भी इस ओर इशारा किया कि जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उतनी ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई नहीं साउथ अफ्रीका की ओर से जितनी उम्मीद की जा सकती है. नई बल्लेबाज डक्सन हाफ वॉले पर लेकर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. नैट सिवरब्रंट के पास गेंद पहुंची है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, और रन बनने की तो कोई संभावना है नहीं. एक अजीबोगरीब शॉट खेला.

0: गया था। हालांकि बात वही है, अगर सर्किल क्लियर हो जाता तो शायद परिस्थितियां डिफरेंट हो सकती थी। सिमिलर डायरेक्शन में जाती हुई बॉल रन के लिए नहीं। 6 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 43 एक विकेट के नुकसान पर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 43-1 at the end of the power play, which means South Africa have had a better return than what England had of their first 6 overs. As Shivendra was telling you, they scored 35 for the loss of 3 wickets in their batting innings. However, the big wicket of Laura Wolfart has just fallen. And we are saying it's a big wicket because all of you remember what she did in the 50-over World Cup. All of you must remember what she even did in the 2023 T20 World Cup semi-final. Anyhow, England go to who is arguably their best bowler, or renowned so throughout the world. Sophie Eccleston, the left-arm spinner, begins her spell, delivers the first one on a drivable length in line with the stumps that allows Tasmin Brits to press forward and push the ball towards long on and pick up a comfortable single. So a single to start off what is the 7th over. 44-1 are South Africa in pursuit of 170. Anuri Dirksen now on strike. The next delivery is slightly flighted and the catch has been dropped. Looks like it's Charlotte Dean who has put this one down. Yes, indeed, it is the England vice captain. Flighted delivery from Eccleston, inviting the big shot from Anuri Dirksen. Dirksen went for the lofted drive over mid-off and stationed at the edge of the circle. Charlotte Dean backpedaled a couple of steps before leaping up in the air. She got one hand on the ball, but the ball did not stick. So an opportunity goes down and a single has been added. Next delivery on a good length from Eccleston has been drilled down to long off for a single, which takes Brits to 24 in South Africa. 46-1 after 6.5 overs. A big opportunity has just been squandered.
0: इस तरीके के जो मौके आते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो अगर इस तरीके के अवसर गंवाए जाते हैं तो कई मरतबा आपको पछताना भी पड़ सकता है। इस बार मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ टेन डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर के पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा बड़ी आसानी के साथ। तो लॉरा वॉलवर्ट का विकेट 6th ओवर में लिया गया। लिंसे स्मिथ की गेंद पर वो आउट हुई। सोफी एक्लिस्टन का आगमन हुआ है। इस बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद है, लगभग फुल लेंथ डिलीवरी है और उसे मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहती थी। टैडमिन ब्रिट्स भाग्यशाली हैं कि गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, कोई मिसक्यूट शॉट नहीं गया। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 22 गेंदों में 24 रन बना करके खेल रही हैं। डॉट डिलीवरी 1-4 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में। पारी का 7वां ओवर है। इस बार बैकफुट पर जाकर के कट किया, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 47 रन एक विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मेरी मत जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: South Africa need another 123 runs to win in 78 balls. Big news, Anuri Dirksen was dropped, was given a lifeline when she was on zero. She has moved to 2 now. At the other end is Tasmin Brits batting on 24 of 23. And looks like Freya Kemp has been given the ball in hand. Freya Kemp, left arm seamer, so provides a bit of variety in this particular attack. She starts off over the wicket with the keeper up to the stumps, delivers this one on the middle stump on a good length, and Dirksen was looking to flick it away towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. The leading edge takes the ball into the cover region and allows a comfortable single. However, Dirksen will not be happy with the way things have started for her. That was not a convincing shot. Now remember, Sune Luse is a part of this playing 11 today, who used to open for South Africa.

0: are 49 for 1. The previous over fetched 4 runs, which included one drop catch before that. The successful over which produced Wolfart's wicket fetched only 7 runs. So a quiet face for England this. And there comes another miscued shot from Dirksen. This time the catch will be taken. It is the experienced palms of Heather Knight which complete the catch in the backward point region. A length delivery which was angled away towards outside of, slanting away from the right-hander. Annerie Dirksen pressed forward and swung her bat with ambition, only to connect with the outer half of it, and the ball went flying towards backward point, where Heather Knight had ample time to settle herself underneath it and eventually complete the catch. She is as safe as a bank, and that scratchy knock from Annerie Dirksen comes to an end, 49 for 2 after 7.3.
1: निश्चित तौर पर एक खराब स्ट्रोक खेला गया एनी डक्सन के द्वारा, और ऐसे समय जब इतने हाई स्टेक्स हों, देखने में ये आ रहा था कि पिछली 2-3 गेंदों पर भी उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले थे वो उतने कन्विंसिंग नज़र नहीं आए थे, और तारीफ करनी पड़ेगी कैंप की कि उन्होंने आते ही अपनी टीम को एक अच्छी सफलता दिलाई है, और बहुत ही शानदार अंदाज में शुरुआत की गई थी साउथ अफ्रीका की ओर से, जबकि एक तरफ खेल रही थी टैस्मिन ब्रिट्स और दूसरी ओर थी कप्तान लॉरा वुलवर्ट। उसके बाद लॉरा वुलवर्ट के आउट होने के बाद अभी अभी कुछ देर पहले एक दूसरा विकेट गिरा, और अब मैरिजन कैप का आगमन हुआ है। मैरिजन कैप 5 पारियों में 119 रन बनाने में कामयाब हुई हैं इस विश्व कप में, और चूंकि बातले समाप्त हो चुके हैं तो 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात किए जा सकते हैं, सर्किल के बाहर इनफैक्ट तैनात किए जा सकते हैं। कैम्प को अपनी तीसरी गेंद पर विकेट मिला है मिडल और लेग स्टंप की दिशा में, शॉर्ट ऑफ लेंथ कलाइयों का इस्तेमाल करके मोड़ा उसे फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी डीप में तैनात थी, जब तक आए गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें एमी जोन्स के पास, तब तक एक रन लेने का मौका। दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, और ख़राब स्ट्रोक था, क्रॉस बैटेड बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद टकराई थी, लेकिन अच्छा कैच लिया गया, और कैंप को मिलती हुई ये पहली सफलता, इंग्लैंड को मिलती हुई दूसरी सफलता। टैस्मिन ब्रिट्स 24 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रही हैं। स्लोअर डिलीवरी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास था, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया था। 88-89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कैंप के द्वारा, बाएँ हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। जेंटल मीडियम पेस है, लेकिन यहाँ पर स्लोअर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई। 25 गेंदों में 25 रन, साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट डिलीवरी थी, फाइन लेग की दिशा में खेला है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थ्रो आ रहा था बॉलर सेंड पर, कैंप हालांकि थोड़ा एडवांस कर गई थी, लॉरेन बेल ने बड़ी तेज रफ्तार में थ्रो किया था, एक रन लेने में कामयाबी। 8 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 51 2 विकेट के नुकसान पर।
0: राइट, 119 more needed of the remaining 72 balls. However, in the last 3 or 4 overs, you can't help but feel that England have tightened their grip on this particular context, on this particular contest. The last boundary came in the 6th over, which means we have had 15 deliveries without any boundary now, and the momentum seems to be shifting towards the home team. Remember, England have won every World Cup that they have ever hosted. It goes back to 1973, the first World Cup in the sport of cricket that was ever organized was a Women's World Cup. They won it. They won it in 1993. They won it in 2017. These are obviously the 50-over World Cups. And they won the inaugural T20 World Cup in 2009 too. Good length delivery from Sophie Eccleston, who begins her second over in line with the off stump. The batter advances and drills it down towards long off to pick up a comfortable single. That single takes Brits to 27 and brings Marizan Karp back on strike. Marizan Karp prepares to face what will be the second ball of the 9th over. Fuller delivery from Eccleston in line with the middle pole has been warded off to mid on. So a single and a dot ball to start the proceedings. Next delivery, slightly shorter, outside the off stump, opens the face of the blade, does Marizan Karp. She was looking to thread it through the gap between short third and backward point. However, the fielder at point moved swiftly to her left in order to cut it off. Looks like it was Danny Wyatt Hodge who

0: did the fielding, and that keeps the batters down to one. Next delivery backs away to the leg side. The Stasmin Brits picks it off the stumps, drives it towards the deep point boundary. Lindsay Smith, who was stationed at cover, runs towards the fence and then puts in a dive. And whilst she goes over the ropes, she ensures that on her way she is able to flick the ball away from the boundary cushion. Brilliant piece of fielding this. This is the modern way of fielding. You do not go around the ball and slide it, thereby saving yourself a fraction of a second. Some people like to call it the Brendan McCullum way, but this has become very, very common. She saved a run for her team. Only three is what South Africa got of that delivery. Well done, Lindsay Smith. Next delivery, slightly fuller than the previous one on the pads, and this has been tucked away, clipped away neatly towards deep backward square leg. Another single to be added. So this over has thus far produced six runs, one ball remaining in it. But the most important thing, South Africa have still not found the boundary. Next delivery, it has been drilled down to long on. In fact, jackhammered down to long on, should I say. That's how hard the batter hit it on that occasion. In fact, the non-striker was lucky to get out of the way. It was Tasmin Brits who fetches a single to herself with that. And that marks the end of the ninth over, 58 for 2.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: मेरी मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य है 170 रन बना करके इस मैच को जीतने का, सेमीफाइनल जीतने का, फाइनल में प्रवेश करने का। और इंग्लैंड की ओर से कैंप आई है नया ओवर लेकर के। हालांकि उनकी पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर है, पैड से टकराई है। सामने है टैस्मिन ब्रिट्स, विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड की टीम रिव्यू के लिए जाएगी, क्योंकि कैंप जिन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट हासिल किया था और जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, काफ़ी सवाल पूछते हुए मैदान पर उत्सव सा माहौल है। और ख़ास तौर पर इंग्लिश खेमे में इस समय काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। कैंप की गेंद इस बार शॉर्ट डिलीवरी ऑन साइड में पुल करने के अंदाज में खेला, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। ब्रिट्स के स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद छिटक करके रह गई, एक रन लेने का अवसर दोनों बैटर्स के पास। तो जो गेंद की रफ्तार है उसमें कैंप बहुत ही चतुराईपूर्ण परिवर्तन करती हुई नजर आती हैं, और इसी का परिणाम है कि उनकी गेंदों पर आज़ादी के साथ दोनों बैटर्स, चाहे मैरिजन कैप हो जो अभी अभी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और टैस्मिन ब्रिट्स जो कि सलामी बैटर के तौर पर आई थी, दोनों ही खुलकर खेल नहीं पा रही हैं। इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है। बाउंड्री लाइन पर लिंसे स्मिथ मौजूद थी, अंदर की ओर दौड़ी और एक रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगी दोनों बैटर्स को। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है सातवें ओवर से लेकर के 14 ओवर के बीच का, जहां पर इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन, उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था। और इस समय जब दो विकेट दो टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की ओर से, मैरिजन कैप बहुत ही अनुभवी और उनके साथ टैस्मिन ब्रिट्स, उनकी कोशिश होगी कि वो पारी को सजाएं सवारे। अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। 61 रन स्कोर हुआ है दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 170 रन का जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में न तो आसान कहा जा सकता है ना ही कठिन कहा जा सकता है। इवन स्टीवंस मामला लग रहा है, अगर हम स्कोर के लिहाज से कंपैरिजन देखें तो भी लगता है कि दोनों टीमें लगभग बराबरी की स्थिति में हैं। इस बार एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, ऑफ साइड में धीमे से पुश भर किया गया था गेंद। हालांकि स्ट्रोक जरूर खेलना चाह रही थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मैरिजन कैप, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, एक रन लेकर के उन्होंने छोर बदल लिया। तो स्ट्राइक तो रोटेट हो रही है, 108 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 61 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। भले ही कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो, टैस्मिन ब्रिट्स 32 गेंदों में 33 रन बना करके सामने हैं। इस बार बहुत जल्दी गेंद की लाइन को पढ़ लिया था, शॉर्ट डिलीवरी थी। हालांकि जो डिजायर्ड रिजल्ट था, यानी जो बाउंड्री तलाश रही थी ब्रिट्स, वो तो नहीं मिली, लेकिन सिंगल के साथ उन्होंने ओवर समाप्त किया। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड के सामने जब 169 रन उन्होंने बनाए थे और 10 ओवर के समाप्त होने के बाद दो विकेट गंवाए

0: चुकी है टीम साउथ अफ्रीका की, थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है और इन दोनों बल्लेबाजों पर, इन दोनों बैटर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अभी भी 100 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाना बाकी है। 8 विकेट ऑफकोर्स सुरक्षित हैं लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जैसा हम कहते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। 6.3 रन प्रति ओवर के औसत से टीम रन बना रही है।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: No boundaries for 27 balls and just as I say that, steps out of a crease and flares it towards the extra cover region. Does Tasmin Brits picks up a 4.
3: ये लगा आभा का चौका।
2: Charlie Dean, the English vice captain, starting the 11th over with a good length ball outside the off stump. Brits put her dancing shoes on, converted this into a half volley and punched it towards the left of long off and picked up a boundary. The next delivery, a full toss, and it has been bunted back towards the bowler who collects it on a bounce. So a couple of really loose balls from Charlotte Dean to start this over. Next ball, she shortens the length and the batter tries to go cross-batted swipe. Tries to go for a cross-batted swipe and doesn't quite make the connection that she desired. The ball goes aerial and falls in no man's land in the forward square leg region and a single has been added. So 4-0-1 to start off the 11th over. Next delivery, this time Marizan Kapp steps out, miscues, and she has been caught in the extra cover region. Natsima Brunt completes the catch and there's an explosion of joy in the English camp. They have got the big fish. Marizan Kapp has been dismissed. 68-3 are South Africa, and Charlotte Dean's over, which did not begin on the right note, has produced something invaluable for South Africa. All the Indian fans know how important Marizan Kapp is. She played that magnificent innings to knock India out of the competition. And over here, however, she has not been able to deliver. She scores only 5 of 7 balls. She jumped out of her crease. However, Dean saw her coming and hence went wider, hung it up on a length. Eventually, Kapp had to put her left leg across and try and work it towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. I wonder if she would have rather looked to play it on the offside. The option would have been a better one. But she rather tried to drag it from outside off towards the leg side. And in that, ended up miscuing it completely. Easy peasy catch for Natsiva Brunt, who's too good a fielder to drop opportunities of those kind. South Africa in a spot of bother. Suneluz has come to the crease.
0: 10.4 ओवर के बाद 68 रन, लेकिन अब 3 विकेट के नुकसान पर चार्ली डीन की गेंद सुनेलूस के लिए। रक्षात्मक अंदाज में खेला, शॉर्ट पर विकेट की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। इंग्लिश जो खिलाड़ी हैं, जो फील्डर्स हैं या जो गेंदबाज हैं, उनके चेहरे पर इस समय उल्लास बिल्कुल साफ पढ़ा जा सकता है। चार्ली डीन इस बार ऑफ स्टंप की दिशा में लाइन थी, गेंद थी, लेकिन उसको स्वीप करने के अंदाज में खेला। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची है। 1 रन का इजाफा 11 ओवर के बाद 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
7: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: 101 runs, 101 runs still needed, 9 overs remaining. Yes, South Africa have 7 wickets in hand. Yes, they have batters like Chloe Tryon, Nadine de Klerk to follow in the order, who can tonk the ball, which means they are not out of it. However, it won't be wrong to say that the climb is now looking stiff. England make a change in bowling. They introduce Danny Gibson into the attack. This is the 6th bowler that England are using today. The introduction of the 6th bowler means that when we head towards the

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: मुश्किल परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका, और जैसा हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, 170 रन का लक्ष्य था उनके सामने, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर्स में इस दूसरे सेमीफाइनल में, जो कि इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। और सामने है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच जब भी मुकाबले हुए हैं तो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अंत समय में ही फैसला हुआ है। और यहाँ पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार वापसी की है। पहले उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छी वापसी की हैदर नाइट और नैट सेवर ब्रंट की बदौलत। नैट सेवर ब्रंट ने 75 रन बनाए, हैदर नाइट ने 58 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया नैट सेवर ब्रंट ने। हैदर नाइट ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए और शतकीय साझेदारी ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी हुई, जिसके बदौलत इंग्लैंड पहुंचे 169 रन पर। 170 रन के लक्ष्य की तलाश में जब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई तो विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। कप्तान लॉरा वॉलवर्ट आउट हुई, टैजमिन ब्रिट्स एक छोर से संभाले हुए हैं पारी को, लेकिन अभी सोनेलूस कुछ देर पहले आउट होकर के पवेलियन वापस लौटी हैं। और चौथा विकेट तो 6 ओवर के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पर, 7 से 14 ओवर के बीच में सिर्फ 48 रन बनाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। और इसी परिस्थिति में यानी 7 से 14 ओवर के बीच में इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन और उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था। और ये वो मौका था, ये वो कंसोलिडेशन स्टेज थी जहां पर नैट सेवर ब्रंट और हैदर नाइट इंग्लैंड की पारी को सजाने संवारने का काम कर रहे थे। और वही जो सजाना संवारना था 7 से 14 ओवर के बीच में, ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया है दक्षिण अफ्रीका की इस पारी में, जहां मैरिजन कैप आउट हो चुकी हैं, सोनेलूस आउट हो चुकी हैं और कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तो सबसे पहले आउट होकर पवेलियन वापस लौटी थी। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी के रोटेशन की, जिस अंदाज में अपने बॉलर्स को रोटेट किया गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लिश कैप्टन नैट सेवर ब्रंट के द्वारा। आज टीम में उनका आगमन हुआ था और जैसा हम आपको बता रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, 48 रन बनाए हैं 7 से 14 ओवर के बीच में साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। चार्ली डीन का आगमन हो रहा है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है। 79 रनों की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीका को 36 गेंदें फेंकी जानी शेष है, 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 91 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। टैजमिन ब्रिट्स 43 गेंदों में 47 रन बनाकर के खेल रही है, बैकफुट पर जाकर के पंच किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: इसके साथ ही टैजमिन ब्रिट्स का अर्धशतक पूरा हुआ, 44 गेंदों में 51 रन बनाकर के वो क्रीज पर हैं, 115 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। तो क्या अकेला चना कुछ कर सकता है टैजमिन ब्रिट्स? इसका जवाब देने के लिए फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक और मिसक्यूट शॉट है, गेंद हवा में उछली है, मिड ऑफ की दिशा में कैच लिया गया है, वहां पर कप्तान नैट सेवर ब्रंट मौजूद है और इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को लगता हुआ ये पांचवां झटका, 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चार्ली डीन को एक और सफलता, टैजमिन ब्रिट्स की पारी का भी अंत हो चुका है।
3: द होप्स आर ड्विंडलिंग, द टारगेट ऑफ 170 लुक्स फर्दर एंड फर्दर अवे, लुक्स लाइक साउथ अफ्रीकाज वेट for that elusive ICC trophy in women's cricket will continue if they continue to bat like this. Tasmin Brits, who scored her 16th 50 in T20Is and is the second leading run scorer, consumed 45 deliveries, and just when the required rate was getting to intolerable levels, she tried to go big, stepped out, tried to go for a ambitious swing of the bat, completely miscued it, and an easy catch for Nat Siva Brunt. South Africa are 95 for 5. Two batters who are yet to face a ball are out in the middle, albeit two very credible batters to very credible lower order hitters. Chloe Tryon.

0: And Nadine De Klerk, Chloe Tryon is currently on strike, and we have seen both these batters pull South Africa out of dire situations before, and they need it more than ever today. Charlotte Dean continues, delivers this one on a good length, the ball spinning in towards the middle end leg. The batter Chloe Tryon presses forward and then uses her wrists to turn it towards mid-wicket and picks up a comfortable single. We saw the wicket of Sunil Loose in the previous over, where a shot ball from Lauren Bell got too big on Sunil Loose, and Loose went for that pull shot which she wasn't able to control. A good catch was taken by Sophie Eccleston at short fine leg. After that, in this over, we saw the wicket of Tasmin Brits, who had scored a half century. Flatter trajectory this time around from Charlotte Dean, delivers this one on a good length in line with the off and the middle stump. Nadine De Klerk gets a stubborn full face behind the ball and blocks it. Of course, she will need a couple of balls to get her eye in, to gauge what the surface is doing. You can't expect her to explode from ball one. Next delivery onto the pads, it has been nudged in a deft manner, bunted away almost towards the front of square leg. There is no fielder there, and hence Charlie Dean runs across to field the ball herself and ensures that the batters do not get more than a single. So it has turned out to be a good over for England once again. The required rate going over 14 and over. South Africa need boundaries and need plenty of them. Good length delivery on the middle stump, which Chloe Tryon gets forward to and bunts it towards long on. Picks up a single, end of the 15th, 98 for 5.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 15 ओवर के बाद 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है 170 रन का, यानी अभी भी 72 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को अगर ये मैच जीतना है, और 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है बशर्ते कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है। 15 ओवर के बाद 98 रन 170 रन का लक्ष्य पहाड़ सा दिख रहा है, और नैडिन डी क्लर्क और क्लोई ट्रायन इस समय मैदान पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही बैटर्स ने 2 और 3 गेंदें खेली हैं, यानी दोनों ही नए बैटर्स हैं इस समय क्रीज पर, और दक्षिण अफ्रीका पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब होते हुई इंग्लिश टीम। नैटसिबर ब्रंट ने न केवल आज बल्लेबाजी बेहतरीन की है, बल्कि उन्होंने गेंदबाजों को भी बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया है, जिसका सुपरिणाम उनको मिला है, और 2 कैच भी उन्होंने लिए हैं। मेडलो लेग स्टंप की दिशा में गेंद, लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जैकलिन विलियम्स की ओर निगाहें जा रही थी कि क्या वो वाइड करार देंगी इस बॉल को, और काफ़ी विस्मृत से दिख रही हैं, अचंभित से दिख रही हैं क्लोई ट्रायन, क्योंकि उन्होंने एम्पायर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद इसे वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन एम्पायर का फैसला कि संभवतः पैड से या किसी तरीके से बॉल का कनेक्शन हुआ था और इस वजह से उसे वाइड करा नहीं दिया गया। अगली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे बल्ले से टकराने पर दिया, कोई अटैकिंग स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, 1 रन के लिए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। चार्ली डीन आज जो विकेट ले चुकी हैं उसको मिला करके लीडिंग बॉलर्स की कैटेगरी में वो 5वें पायदान पर आ गई हैं। उन्होंने 9 विकेट अब तक हासिल किए हैं इस T20 विश्व कप में। 3 गेंदें उन्होंने इस ओवर की डाली हैं और काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी रही है। 71 रन अभी भी चाहिए, 27 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर बाएं हाथ से जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं। पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची थी, नैडिन डी क्लर्क के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक, लेकिन रन के लिए नहीं। कैंप इस समय गेंदबाजी कर रही हैं, जिनका हमने जिक्र किया था कि जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उनकी गेंदबाजी में नहीं है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, लगभग 7-8 कदम का उनका रन अप यॉर्क करने की कोशिश थी, लो फुल टॉस पर उसे पिक किया गया है नैडिन डी क्लर्क के द्वारा। 1 रन मिलना चाहिए। पारी का ये 16वां ओवर है और 100 रन पूरे हो गए हैं, हालांकि तालियों से उसका अभिनंदन किया जा रहा है ओवल के मैदान पर मौजूद दर्शकों के द्वारा, साउथ अफ्रीका के डगआउट में भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय परिस्थितियां बहुत ही

0: खराब और गंभीर कही जा सकती हैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज कैंप के, और इस बार फिर से वो लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई गेंद पैड से टकराई है। दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 16 ओवर्स के समाप्त होने के बाद स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 69 रन चाहिए 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। कैंप ने एक बहुत ही प्रभावशाली ओवर समाप्त किया, 3 ओवर उन्होंने फेंके हैं, सिर्फ 11 रन खर्चे हैं और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मुकाबले अब तक होते रहे हैं, कुछ अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें नॉकआउट मुकाबलों के बारे में, तो 2017 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत को हरा करके इंग्लैंड ने मुकाबला जीता था, आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था। तब से जो कंप्लीट मैचेस हुए हैं, 6 कंप्लीट होने वाले नॉकआउट मैचेस में इंग्लैंड ने 4 हारे थे और 2 जीते थे, लेकिन आज लग रहा है कि वो उस आंकड़े को बेहतर करने की ओर अग्रसर हैं, और देखना होगा कि बाकी बचे हुए 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की पारी कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल 69 रन चाहिए 24 गेंदों में।
1: Charlie Dean to bowl her final over. It's now or never for South Africa. First delivery from over the wicket on a good length, drifting in towards the middle pole. Chloe Tryon steps out of a crease and then drives it along the carpet towards the long on fielder. Picks up only a single. But I, at the risk of sounding like a broken record, will reiterate that ones and twos are not going to hurt England. Next delivery, slightly flatter trajectory on a length at the stumps. De Klerk backs away to the leg side and then flays her hands away from the body to push it towards the cover region and picks up a couple before Natsiva Brunt chases it down. Interestingly, Natsiva Brunt has been running around like a free spirit right throughout this match, even when she was batting, even when she's fielding. The reason why I point that out is because, remember, she is recovering from a calf injury and we were assuming that she might not be 100% fit, but she has laid all those demons to the bed. Around the wicket, this time around from Charlotte Dean, delivers this one in line with the body of Nadine De Klerk, who had backed away to the leg side. In the end, De Klerk was only able to adjust into a dink towards mid-wicket, picks up a single. Next delivery back over the wicket, and Chloe Tryon unfurls a big shot and gets a boundary.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: A quicker delivery from Charlie Dean. She fired this one in at the stumps on a foolish length. However, the batter, almost as if she was anticipating it, shuffled to the onside in order to give herself the room to swing her arms, went inside out over extra cover, and the ball bounced only once in the outfield before crossing the ropes. Changes her angle once again, as Charlie Dean will be looking to bowl in line with the body, exactly what she does, and there's a misfield which produces another boundary for South Africa.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: As soon as the bowler changed her angle, Tryon was expecting it to be delivered in line with her body. She shuffled half a step towards the onside only after the ball had left the bowler's hand, and thereby there was no opportunity for Dean to adjust. She drilled it towards long off, where it should have been an easy stop for Lindsay Smith. However, she fumbled and allowed a boundary. Next delivery in line with the body. Tryon crouches and swishes across, ends up finding Lauren Bell at short fine leg. No runs to be had. 17 done. South Africa still needing 57 more to win.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली. जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: 17 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर, इस बार हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट शो खेला, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की पर दिशा में जा रही है गेंद, डीकला के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत चौके से की है. स्टेप आउट किया था, 2-3 कदम हाफ वॉली पर पिक किया था बॉल को, सर्कल को क्लियर किया था. 3 खिलाड़ी जो कि ऑफ साइड में सर्कल के अंदर तैनात हैं,

0: चार रनों का इजाफा डी क्लर्क के स्कोर में। लोफल टॉस पर ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग, सर्कल के मुहाने पर अच्छा बैकअप भी आता हुआ। कैंप बहुत ही सक्षम क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, तो थोड़ी कोशिश हो रही है फ्लरिश की, कुछ रनों की रफ्तार बढ़ाने की, लेकिन परिस्थितियां बड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि आधी टीम पेवेलियन में है। हालांकि इस समय दोनों जो बैटर क्रीज पर मौजूद हैं वो काफ़ी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को खेला गया है और जब बॉलर देख रही हैं कि बैटर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो शफल करें, लेग स्टंप के बाहर निकल जाएं, ऑफ स्टंप के बाहर जाएं, स्टेप आउट करें, कुछ रिदम जो है उसको तोड़ने की कोशिश करें गेंदबाज का, तब उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश भी हो रही है गेंदबाजों के द्वारा। क्लोए ट्रायन 10 गेंदों में 12 रन बनाकर के क्रीज पर हैं। बोल्ड हो गई हैं, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, स्ट्रेटिश डिलीवरी। तारीफ करनी पड़ेगी सोफी एक्लिस्टन की, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि सफलतम गेंदबाज है इंग्लैंड की ओर से। पहली गेंद पर चौका लगा जरूर था लेकिन उसके बाद क्या शानदार वापसी की है, स्ट्रेटिश डिलीवरी बाएं हाथ से, राउंड विकेट गेंदबाजी, थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ट्राई किया, गेंद की लाइन में आए बगैर और बोल्ड हो गई है। तो ट्रायन, उनकी पारी का अंत हो चुका है। 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद ट्रायन ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके उनकी पारी में शामिल और अब साउथ अफ्रीका के डगआउट में सिर्फ और सिर्फ निराशा पढ़ी जा सकती है और इसके लिए जरूर निश्चित तौर पर डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट तारीफ करनी पड़ेगी नैट सिबर ब्रंट के करिश्माई प्रदर्शन की, जिन्होंने आज, जिनका आगमन हुआ इंग्लैंड की टीम में, उन्हें शामिल किया गया। काफ इंजरी से जूझ रही थी, पिछले 3 मुकाबले खेली नहीं थी, उसके पहले दोनों मैचेस खेली थी, लेकिन आज आते ही उन्होंने चमत्कार किया। जब इंग्लैंड पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर था, चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई हैदर नाइट के साथ। अब जैफ्टा का आगमन हुआ है जो कि मूल रूप से एक विकेटकीपर हैं, लेकिन विकेटकीपर बैटर के तौर पर उनको जाना जाता है। एक्लेस्टन की गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर तेजी से रन चुराने का प्रयास था, कामयाब होती हुई जैफ्टा, उन्होंने स्कोरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर, एक हताशा में खेला गया स्ट्रोक कहा जा सकता है, जहाँ पर आपकी कोशिश होती है कि आड़ा तिरछा कोई भी स्ट्रोक खेल करके रन बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है। थ्रो आता हुआ विकेटकीपर के पास 18 ओवर के बाद 119 रन, दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: It's nearly 9:30 p.m. in London. The sun went down 10 minutes ago. And looks like at the same time the sun went down for South Africa too. 12 balls remaining. They need an improbable 51 runs to win. England have plenty of options. They go to Lauren Bell for the penultimate over. It's Sinalo Jafta on strike. 119 for 6 South Africa. And the over starts with a comical incident, slower delivery from Lauren Bell, but almost as if Jafta was expecting a pace on delivery. She swished into a horse straddling stance, stood outside the off stump waiting for the ball to arrive and play the lap shot, but the ball never arrived. It was a slower ball. She kept on waiting, and then eventually when she played her shot, she was still early into it. So a dot ball to begin the penultimate over. Next delivery, another slower one, possibly the leg cutter from Lauren Bell. It finishes outside the off stump. Jafta was looking to drive it on the up, possibly through the cover region, but wasn't able to lay bat on ball. Two dot balls means 51 runs now needed off 10 balls. If my math serves me right, that's 5.1 per ball. It is getting out of South Africa's reach. Next delivery, another slower ball. By now, Jafta should be anticipating it. Oh, she's got run out. She pushed it towards Danny Wyatt-Hodge at backward point and set off for the run. Wyatt-Hodge took her time, aimed for the bullseye at the striker's end and then scored a direct hit. She punches the air in delight.

0: She wasn't able to contribute with the bat in her hand in the manner she has been doing in the group stages, but she has contributed in the field. Danny Wyatt-Hodge effects that run out. Sinalo Jafta, after an innings which lasted four balls, she scored one run, and now she's walking back to the dugout. South Africa in dire straits, 119 for 7. It won't be wrong to say that they are on the brink of elimination.
1: Yeah, bilkul. Dakshin Africa ke fans jo hain, unhone oval maidan se ab prasthan karna bhi shuru kar diya hai. और इबारत ऐसा लग रहा है कि लिखी जा चुकी है दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर और इंग्लैंड जीत की दहलीज पर. ओवल के मैदान पर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आयाबोंगा खाका का आगमन हुआ है, जो कि मूल रूप से एक गेंदबाज हैं. बल्ले से क्या कुछ खास योगदान रहा है, उनका स्ट्राइक रेट है 61 का और सर्वोच्च स्कोर है 12 नाबाद रन जो उन्होंने बनाए थे. दूसरे छोर पर नेडिन डी क्लार्क हैं, 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं. लॉरेन बेल ओवर की अगली गेंद लेकर, दो डॉट डिलीवरीज हैं. पिछली गेंद पर एक रन आउट आया था, बहुत ही बढ़िया स्लोअर डिलीवरीज का कितना बेहतरीन इस ओवर में उन्होंने इस्तेमाल किया है. और डैनी वियाट-हॉज, जैसा कि दर्पण बता रहे थे कि भले ही बल्ले से योगदान नहीं कर पाई हो, लेकिन जो एक कंप्लीट टीम बनती है, क्रिकेट कहते हैं कि टीम गेम है, फ्लैशेज ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन जब कंप्लीट टीम, हर खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में अपने अपनी तरफ से योगदान देता है, तब वो सूरत हाल निभर कर सामने आती है जो इस समय इंग्लैंड के इस मुकाबले में उनकी ओर से उभर करके सामने आ रही है. पटकी हुई गेंद थी, आंख मून करके खेला गया स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर के गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं था आयाबोंगा खाका को. पटकी हुई गेंद थी, कंधे की ऊंचाई तक आई थी और उन्होंने आगे बढ़ करके ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का उपक्रम किया था. हालांकि गेंद की लाइन से हट गई थी, अपना चेहरा भी उन्होंने दूसरी ओर घुमा लिया था. और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर नेडिन डी क्लार्क जो खड़ी हुई हैं, उनका भी बल्ला गिर गया. तो काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है. नेडिन डी क्लार्क, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में कहीं बहुत दर्द होगा कि आज भी टीम उनकी कामयाब नहीं हो पाई है. यॉर्क करने की कोशिश थी, परफेक्ट यॉर्कर लॉरेन बेल ने बोल्ड कर दिया है आयाबोंगा खाका को. और 19 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर अब पहुंच चुका है 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर, यानी सिर्फ 2 खिलाड़ियां ने बाकी. लॉरेन बेल की कितनी तारीफ की जाए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस पर्टिकुलर ओवर में उन्होंने की है. बैक ऑफ द हैंड से फेंकी गई उनकी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, एक माइटी हीव का प्रयास मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. आयाबोंगा खाका की इस पारी का अंत हुआ जहां पर एक मिस्क्यूड चौका उनके बल्ले से निकला था. 3 गेंदों में 4 रन बना करके वो पवेलियन वापस जा चुकी हैं. और अब कह सकते हैं, वैसे क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जीत दर्पण सिर्फ एक औपचारिकता इंग्लैंड की टीम के लिए.
0: Of course, 47 needed of the final over. Let's do the math. It's not possible, you know it. 123 for 8 South Africa, and possibly for the last time in international cricket, Shabnim Ismail makes her way to the 22-yard playing strip, albeit as a batter. She's not in the side for her batting. She announced her retirement in 2023, came back specifically for this tournament, but it looks like South Africa will not be able to go all the way. Semi-final coming to fruition. Last 6 deliveries remaining. South Africa need an improbable 47 to win. And Nadine de Klerk is on strike. Lindsay Smith to bowl the final over. Starts off with an arm ball slanted in towards the leg stump off a good length. The batter backs away and then works it through the gap between backward point and cover. And Freya Kemp, who was stationed at cover, runs across to the boundary and then puts in a slide to pick up the ball and keep the batters down to 2. 125 for 8, 5 deliveries remaining, and South Africa need a bazillion runs to win. Only going through the motions here. 5 balls before the match comes to an end.

0: There comes a slog sweep from Nadine de Klerk. The ball's in the air and it will land safely. Danny Gibson ran in from the mid-wicket boundary and could not get to the ball. A comfortable single taken. However, it's not going to haunt England. 126 for 8 after 19.2.
1: 19.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है इंग्लैंड की ओर से, यानी आखिरी चार गेंदें फेंकी जानी शेष हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। और जैसा हमने पिछले ओवर के आखिर में कहा कि जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही है इंग्लैंड के पक्ष में, और वो T20 विश्व कप जो कि उनकी ही मेज़बानी में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है, फाइनल में पहुँचने की दहलीज पर हैं। अगली गेंद जिस पर शबनम स्पाइल ने ऑन साइड में धीमे से खेला है गेंद को, एक रन के लिए दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है। और इस मुकाबले में मैरिजन कैप ने सबसे ज़्यादा डॉट डिलीवरी डाली थी, लेकिन लॉरेल बेल ने उनको मैच कर लिया है। 12-12 डॉट डिलीवरीज डाली गई हैं दोनों गेंदबाजों के द्वारा। लिंसे स्मिथ आई हैं इस पारी का आखिरी ओवर लेकर, फ्लैटिश डिलीवरी है, अंदरूनी किनारा लिया है, लॉरेल बेल के पास पहुंची है, शॉर्ट फाइनल की दिशा में। रन बनने की कोई संभावना नहीं, 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 4 रन बने ज़रूर हैं लेकिन मुकाबला लगभग समाप्त। और मैच के समाप्त होने के बाद आप सुनेंगे स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम हीरो 2020।
0: नेक्स्ट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ऑन अ गुड लेंथ गोज फॉर अ लॉफ्टेड शॉट। डज नदीन डी क्लर्क फाइंड्स एब्सोल्युटली नोवेयर नियर द डिजायर्ड टाइमिंग। द बॉल लैंड्स वेल शॉर्ट ऑफ द लॉन्ग ऑफ फील्डर एंड बिफोर द फील्डर कैन पिक इट अप थ्रो इट बैक टू द 22 यार्ड प्लेइंग स्ट्रिप अ कंफर्टेबल सिंगल हैज बीन टेकन दैट टेक्स द स्कोर टू 128 एंड दैट ब्रिंग्स शबनम इस्माइल ऑन स्ट्राइक। Final ball of the second semi-final. The result is a foregone conclusion, but possibly for the last time in international cricket, we will see Shabnam Ismail in action. Here comes the arm ball, which pitches outside the leg stump and then moves towards the stump. Ismail tucks it towards backward square leg, picks up a single, and just as the ball becomes dead, the celebrations begin in the England dugout. 129 for 8 is what South Africa have managed. There's a sonic explosion in the stands at the Oval as the home crowd celebrates the victory of their women's team. England's men's team's former World Cup winning skipper Owen Morgan, who's in attendance, gives the women's team a standing ovation. They won this match by 40 runs and moved one step closer to achieving that dream which they have waited for a while now. It was in 2017 last time England's women's team achieved an ICC trophy. Will they be able to do it in 2026? The last time they won a T20 World Cup was back in 2009 under the captaincy of Charlotte Edwards, who's currently on the park hugging and delivering handshakes, congratulating the English players. She's the head coach of the team currently. And with these joyous scenes, it is time for us to say goodbye here from the Akashwani commentary box. You were listening to Darpan Tikya in English, Shivendra Chaturvedi in Hindi. We had the company of scorer Sunil Dige and statistician Jatin Sood, who provided you intriguing facts from around the game. The final would be played on 5th of July between ARC rivals England and Australia at the Lords. With that, we leave you. However, don't go too far because our special program Hero 20 is coming up next.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: Player of the match.
7: England continue with their ruthless run to hand South Africa a 40-run loss in the second semi-final, which now means that two unbeaten teams would be facing off in the summit clash, Australia and England. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
8: And Megha, our guest, Khyati Gulani, former cricketer, Jishanul Yaqeen, former cricketer, and G. Rajaraman,
5: वरिष्ठ खेल पत्रकार

0: राजा शुरुआत फिर से आपसी से करते हैं। कंडीशन का बेहतर फायदा उठाया इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले, क्योंकि गेंदबाजी भी देखें बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार हुई, जो फील्ड थी उसके अनुसार गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, कप्तान ने धीमी गति के गेंदबाजों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में रहा।
1: बहुत चालाक अप्रोच था, बहुत ही चतुर अप्रोच था, आई थिंक सेंसिबल और स्मार्ट है कि गेम जीतना है आपको और उसके लिए जो करना है इंग्लैंड ने वो सारी चीज़ें की है सिवाय टॉस जीतने वाली बात। देखिए टॉस में भी इंग्लैंड की कप्तान बोल रही थी कि वो भी गेंदबाजी करना चाह रही थी पहले, लेकिन उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि जैसे जैसे मैच चलता गया पिच और धीमी होती गई एंड बॉल वॉज कीपिंग लो, तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। 40 रन बहुत ज़्यादा होते हैं सेमीफाइनल में, 180 और 140 की बात हम कर रहे थे, लेकिन 40 रन से काफ़ी आसानी से जीता है। वन साइडेड मैच रहा, फैंस निराश रहेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा निराश तो साउथ अफ्रीका होगी कि दो बार लगातार फाइनल खेलते हुए तीसरी बार हैट्रिक नहीं कर पाए, लेकिन दे ओनली हैव देमसेल्फ टू ब्लेम।
2: Kathy, continuing that conversation about England's bowling attack, all-round show from the bowlers, every bowler contributed their bit in creating pressure on the batters.
3: Yeah, definitely. If you see this Eccleston and they Lauren Bell, they have participated really well, and their batters as well. And if we talk about fielding also, I mean they are far ahead from the other team. And the bowlers like Lauren Bell, she brings little flavor in that. Eccleston, she's known for her breaking the partnerships. I think it was a very good performance by the bowlers.
0: Aur Jishan, agar hum baat karte hain ballebazi ki, jo South Africa ki ballebazi rahi, khas taur par kaptan Wolfhard अच्छे टच में आज दिखाई दे रही थी, पावर प्ले के जो ओवर्स चल रहे थे उसमें ठीक ठाक रन भी आ रहे थे, आपको लगता है कि थोड़ा सा वक्त उनको और बिताना चाहिए था क्योंकि सब कुछ उस समय तक उनके हक में जा रहा था?
4: बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास यही दो बैट्समैन थे जो कि परफॉर्म करते आ रहे थे शुरू से, और साउथ अफ्रीका के जीत में सबसे बड़ा अहम किरदार जो था इन्हीं दोनों का था खासकर, तो मेरे ख्याल से इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज लेनी चाहिए थी, इसलिए कि ये एक बड़ा मैच था सेमीफाइनल। एक किसी भी बैट्समैन को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो आखिर तक लेकर के मैच को जाना चाहिए था, बाकी बैट्समैन जो भी बैटर्स थे उन बैटर्स को उनको चाहिए था कि उनको वो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूटिलाइज करके उनसे रन निकाल करके मैच को जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग्स जो उनकी थी या जो कुछ भी था, या ये आप कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा ज़रूर प्रेशर इनके ऊपर डेवलप करता चला गया, जैसे बातें हो रही थी हम लोगों की पीछे भी कि जैसे जैसे ओवर गुजरता जाएगा और रन का जो एवरेज है वो अगर इनके ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो वो मुश्किल होएगी इनको रन बनाने में, और वो ही डेवलप होता चला गया। ख़ासकर जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, जो उन्होंने बैटिंग की है, शुरुआत एक अच्छी की थी, आखिर का जो ओवर था हमारे ख्याल से वो छठा ओवर था पावर प्ले का, उसमें वो सेकंड एक दो बॉल बचे हुए थे उनको, और उसके पहले एक चार भी उन्होंने लगाए थे, उसके बाद वो आउट होकर के अगर चली जाती उस तरह से, ठीक है एक अच्छा कैच पकड़ा जो फील्डर थी उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको वो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि अगर 5-6 रन आ गए थे तो वो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक किया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका टीम जो है वो पीछे की तरफ जाती चली गई और ये कंडीशन हुआ कि 40 रन से हार देखना पड़ा है।
2: Raj, you had been talking about the conditions and how they got progressively slower for batting. We saw in the first innings, there were two half centurions, not much contributions from the others. In the second innings as well, Brits scored a half century. Probably as a set batter, would have wanted to shoulder more responsibility. In the meanwhile, we have the player of the match ready, and it's none other than the captain of the English team, and that's Nat Sivabrant.
5: 75 from 47, 11 fours and 1-6, striking at nearly 160. Firstly, welcome back. What were your feelings coming into this match, knowing what a crucial match it was to return?
6: I guess I'm obviously nervous. Probably the occasion gets quite big as well, so that increased the nerves as well, and I missed a few games as well. I guess there was a lot of emotion pre-game, but I suppose as soon as the warm-up started,

0: do the damage. So I suppose Heather and I wanted to nullify the threat and make sure that we were then in and able to capitalise on the other bowlers. And yeah, I suppose with our experience, we put our heads together and yeah, got the job done.
1: It's usually a good surface here, but it was the third game played on this wicket. How did you find the conditions and how did you manage your game out there?
0: Yeah, a little bit of variable bounce. So I guess we had to be really strong on the stumps and I guess be very clear on where you wanted to score. And yeah, I suppose when you're in for a period of time, it does get a little bit easier. And yeah, I guess it was difficult for new batters coming in. So yeah, the partnership was obviously crucial.
1: Well, congratulations tonight. Our player of the match, Nat Silverbrant.
2: Talking about Brits, but turning our attention once again to Nat Silverbrant, Raj, captain stepping up on the big stage in this clutch game.
3: I think it was important for her to score those runs. England was down, three wickets had been lost, and if they didn't get that partnership, England might have lost the game completely. But this is what leadership is about, to play smart, sensible cricket. The kind of shots that she played, she found the gaps so easily. I think credit to her, because she was also creative, that kind of creativity you didn't see in the South African innings, and people were just playing those traditional, conventional strokes and getting out to conventional strokes as well. When they tried to innovate a little bit, they were getting out. But I think England managed their batting really well, and that the result of this game hinged entirely on how England came back from losing those three wickets and had that amazing fourth wicket partnership.
4: So, Khyati, England ki team ne apni batting ko manage kiya, aur wahi management साउथ अफ्रीका की टीम से नहीं हो पाई, क्योंकि कप्तान जब आउट हुई तो उसके बाद लगा कि पूरी टीम बिखर गई है। हाफ सेंचुरी ज़रूर ब्रिट्स की तरफ से आई, लेकिन कोई उसमें बल्लेबाजी में लय नहीं दिख रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रही हैं। लगातार विकेट गिर रहे थे, लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा था।
5: डेफिनेटली आई मीन बेटर प्लान के साथ आना चाहिए था। आई एम श्योर दैट मैनेजमेंट से बात हुई होगी ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम एज वेल। ऐसे कोई सजेशंस आई एम श्योर दिए होंगे, प्लान ए होगा, प्लान बी होना चाहिए, बट हाँ द अप्रोच वॉज नॉट आई मीन अप्रोप्रिएट फॉर दिस बिग गेम। इससे बेटर अप्रोच की उम्मीद थी। आई थिंक इंग्लिश प्लेयर्स यहाँ पे ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आए थे और दे न्यू द कंडीशंस एज वेल। उनको पता है कि कौन सा किस तरीके से आपको कौन से स्ट्रोक्स यहाँ पे आपके ऑन रहेंगे, कौन से स्ट्रोक्स आपको रोकने हैं, और बॉलर्स भी बहुत अच्छा यूटिलाइज करते, अपने फील्ड सेटिंग बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट द वे द फील्डर्स वर फील्डिंग वॉज ऑल्सो कमेंडेबल।
2: जीशान, अपेरेंटली प्लान ए बी सी साइमल्टेनियसली लेकर चल रही थी साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि एक सवाल जो लगातार उठ रहे थे, क्योंकि फाइनल्स सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई तो शायद फिर वो सवाल कम हो गए थे, वो ये था रोल क्लैरिटी का, क्योंकि खिलाड़ियों को एक सेट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, एक सेट रोल वहाँ पर नहीं दिया जा रहा था।
6: बिल्कुल, देखें मैं क्रिकेट का एक बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, और मुझे नहीं मालूम कि उनके जो सपोर्ट स्टाफ हैं या जो कोई भी उनको समझाते होंगे कि कैसे खेलना है क्या है, वहाँ मुझे नहीं लगा कि कहीं कोई उनको कोई गाइडेंस मिल रहा था, इसलिए कि जो भी बैटर आ रहे थे वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, मुझे नहीं लगा कि कोई कहीं से गाइड करने की उनको कोई दी जा रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्लान ए ख़राब होता है कि कैप्टन अगर उनकी शुरू में आउट हो जाती हैं और एक बैटर अगर खेल रही है, तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ज़्यादा ये होना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा कि अगर इस मैच को जीतना है तो इनको रोटेट करना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ कर रन बनाने पड़ेंगे। अगर ये कोशिश करेंगे ये कि हम चार से और छः से कोशिश करके और निकालेंगे मैच को, तो वो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि इनके जो बाकी जो बैटर रहे हैं उनके जो परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में है बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। यही दो जो ओपनर्स थे इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं और बैटिंग करके अपनी टीम को जिताने की कोशिश की है। जब इन्होंने देखा कि इनके कैप्टन आउट हो गए हैं, तो इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो एक तरफ अगर वो खेल रही थी तो उनको ये कोशिश करना चाहिए थी कि वो हिट करती, दूसरा जो बैटर आता उससे ये बात करना चाहिए था कि इनको रोटेट करो। ये प्लान बी होने चाहिए थे, जो कि नज़र नहीं आए मुझे यहाँ पर कहीं से भी कुछ भी। वो एक बिखरी सी टीम नज़र आ रही थी, और वो बिखरी सी टीम अगर सेमीफाइनल जैसे स्टेज पे आने के बाद से ऐसे बिखर जाना, थोड़ा सा मुझे अफसोसनाक ये रहा।

0: innings. We know how much depth South Africa have with the bat. It felt like a bit of a gamble, that six over in the power play with Lindsay Smith coming back on. You got the wicket of the captain. Charlotte Edwards ran onto the field. Was there a plan behind that?
1: Yeah, to get three overs from the same bowler is pretty tough in T20. Lindsay's done a brilliant job for us in the power play, but I suppose tactically for us to be able to have four overs of Sophie in the middle, that has been a huge benefit for our team. But obviously Lindsay taking that wicket of Hall Fart in the power play was so key. We had the plan set out right, and we stuck to our guns really when she'd hit one over the top, the delivery before. Lindsay and I looked at each other and thought, let's go again.
0: Yeah. The crowd, just incredible. Did you have a chance to kind of take it all in? We heard them banging out Adele at one point.
1: yeah, very, very tuneful. The crowd has been so good throughout this tournament. I managed to take it in a little bit, walking out to bat and walking off, and a few of the wickets as well. It's just infectious playing with this team, and in front of the home crowd has been so special. I cannot wait to do it again at Lord's.
0: How's the calf?
1: Calf's good.
0: The old enemy at Lord's. How big of an occasion is that going to be?
1: Massive. What an occasion it'll be. Finding out there's a home World Cup, it was a dream to be in that final. What an opposition to be facing. Obviously, a really, really talented side that have had a huge success. We'll see what happens down at Lord's.
0: Is it coming home?
1: Hopefully.
0: Okay, we'll leave it at that. Well done this evening, Nat. Congratulations on your own performance to Heather as well, and for the overall team performance. All the best on Sunday.
1: Thank you.
2: तो साउथ अफ्रीका पर 40 रन की जीत के साथ इंग्लैंड की टीम पांचवीं बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है और चौथा ऐसा मौका होगा जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से उसका सामना होगा। 2012, 2014 और 2018 में भी इन दोनों टीमों के बीच फाइनल हुआ था। परिणाम राजा बिल्कुल उसी अनुरूप है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा था इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कि फेवरेट टीमों में ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी।
3: ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही होती है। आई थिंक ऐसा कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो नहीं सकता जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का महिला टीम आप उनको फेवरेट ना माने। साउथ अफ्रीका का चैलेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड घर पर खेल रहा है और वो दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम, तो इंग्लैंड वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट टू मेक इट टू द फाइनल। और यही देखने मिला है कि दो अच्छे टीम होंगे फाइनल में, और उम्मीद यही कर सकते हैं फैन बन के फाइनल अच्छा मुकाबला हो। क्रिकेट डिजर्व्स गुड कॉन्टेस्ट, नॉट वन साइडेड मैचेस, खास करके T20 में जब आप 40 रन से जीत रहे हो और दोनों सेमीफाइनल काफ़ी वन साइडेड रहे हैं, तो होपफुली फैंस विल गेट अ गुड फाइनल।
2: और श्रोताओं, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ, सवाल कोई करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय है आपकी, तो हमें कॉल कर सकते हैं 0112342108 और 0112342108 पर। और हमारे इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी अरविंद जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी जी, और सवाल कोई आपका? जी, ये बहुत अहम सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बड़े मौकों पर अक्सर जो है फिसल जाती है, हालांकि पिछले दो मौके ऐसे ज़रूर रहे ख्याति जब इंग्लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने शिकस्त दी थी, लेकिन ये एक बार फिर ऐसा मौका आया जहां साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ाई और फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
4: जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड की जो टीम है वो पूरे प्रॉपर प्लान के साथ आई थी, हर चीज़ का उनका एक प्लान रेडी था, बॉलर्स के लिए प्लान ए प्लान बी था, सेम वे उनका बैटर्स के लिए भी प्लान है,

0: प्लान बी था, तो वो वहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी चूक हुई है साउथ अफ्रीकन टीम से, जो होती ही रही है. थोड़े बेटर होमवर्क के साथ वो आ सकते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में पहुँचते हैं तो आपको किस टाइप का गियर लगाना है और कि आपके कौन से प्लेयर्स आपको एज अ बॉलर्स यूज़ करने हैं अगर कोई अच्छी पार्टनरशिप बन रही है. इतने अच्छे 3 विकेट स्टार्टिंग में लेने के बाद जो पेसर्स ने काफ़ी अच्छा आई थिंक प्रदर्शन दिया, उसके बाद जो उनके स्पिनर्स उतना पिच इन नहीं कर पाए.
1: 2011 के विश्व कप से पहले पुरुषों के विश्व कप में किसी भी मेज़बान टीम ने जीत नहीं हासिल की थी. उसके बाद एक सिलसिला सा शुरू हो गया जहां पे कई बार मेज़बान टीम ने खिताब जीता. महिलाओं के विश्व कप में हालांकि 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड ने खिताब जीता. 2017 में ODI विश्व कप अपने नाम किया घर पे. अभी वापस घर पे खेल रही है इंग्लैंड की टीम. तो काफ़ी सारे बॉक्सेस इस नैरेटिव में टिक हो रहे हैं जीशान.
2: कह सकते हैं इस चीज़ों को. खैर ये तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा
1: कोइंसिडेंट
2: माने इसको या आप ये कहें, लेकिन सच ये है कि होम सीरीज़ कोई भी अगर होती है या होम कोई टूर्नामेंट बड़ा होता है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर से वहाँ की होम टीम को होती है. उसकी वजह है कि बहुत सारे ख़ासकर जो वुमेंस की टीम का ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो कहीं अगर कमेंट्री भी कर रहे हैं और अपनी कमेंट्री में भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ को आइडिया लगता है और उसके ऊपर में भी अमल करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझें कि वहाँ पर इनको बहुत सारे सपोर्ट्स हैं इंग्लैंड को आज के दिन में. अगर होम सीरीज़ होती है तो हमारे यहाँ भी होता है, अगर हमारे हिंदुस्तान में भी अगर इस तरह का कोई होम सीरीज़ होता है तो वहाँ हमारे यहाँ भी जो बड़े लीजेंड जो कमेंट्री में बैठे होते हैं वो कुछ अपने हिंट इससे देते हैं जिससे कि उससे फ़ायदा होता है. तो मैं ये ज़रूर से कहूँगा कि ऑब्वियस है 2009 के बाद से 2026 का जो ये टूर्नामेंट है कहीं ना कहीं वो रिपीट होने की तरफ बढ़ रहा है मुझे ऐसा लगता है.
3: और मेघा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका. स्वागत है आपका, नाम बताइए. नमस्कार बताइए सवाल जी.
1: So Sanjay ji advocating for further innovation. Now the two things that he touched upon involve a lot of subjectivity because wherever humans are involved in decision making, obviously there'd be that subjective perspective. I think this was better. You think that was better, Raj?
4: So we'll never be satisfied. Any amount of technology. Let's take LBW. पहले तो technology आया उसमें भी हमको we are finding gaps there. The DRS is supposed to have improved the decision making, lekin I think we are still only 95%. We can never be 100%. Aur cricket ek aisa khel hai mega jahan pe humans khelte hain to human ka judging element zaruri hai. I am of the firm opinion that we should leave everything to the umpires. Technology bahut zyada use karne se dikkatein aane lagi. I think we are relying too much on data. And very little on emotion. I think sport is about emotion.

0: emotion, and if we can go back to keeping it an emotional thing, it'll be good. Lekin, there is also some kind of validity in asking for data and for data to be used in decision-making processes. But I think ये बहुत simple game है, हम इसको complicate कर रहे हैं by getting in too much technology.
1: और ख्याति, अगर आज के match पर लौटें, बहुत ज़बरदस्त जीत रही है इंग्लैंड की, और कंडीशन की बात हो रही थी और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अब फाइनल मुकाबला होना है. ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप की टॉपर, सेमीफाइनल में आसान जीत, और इधर इंग्लैंड के साथ भी बिल्कुल वही हाल. अब फाइनल कैसा होने वाला है?
2: देखिए, अगर आप देखेंगे उनकी जो टॉप ऑर्डर बैटर है वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम का. वहीं पे इंग्लैंड टीम को आई थिंक अपने जो टॉप थ्री बैटर्स हैं उनको थोड़ा और बेटर प्लान के साथ आना होगा, कि इस टीम के साथ आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आपके पहले तीन बैटर्स जल्दी आउट हों, क्योंकि उनके पास वैसा बॉलिंग लाइनअप भी है जो वो कम बैक कर सकते हैं. तो आई थिंक अगर आपके पास आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिलता है विद योर ओपनिंग बैटर्स, डेफिनेटली देन आप उस कॉन्टेस्ट में होंगे. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट विद द टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया.
3: जीशान, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जो विविधता है, उनके पास लेफ्ट आर्म एंगल है लूसी हैमिल्टन का पेस में, और स्पिन में भी दे हैव गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड.
4: देखें, प्लेयर्स जो भी हैं उनके पास में, आप जिनके भी नाम ले रहे हैं सारे हैं, और भी सारे उनके अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास में ऑस्ट्रेलिया के पास. जो सबसे बड़ी जो खासियत है उनमें, कि उनके पीछे में 6 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप का एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट करने की उनके पास में एक चीज़ है जो कि इंग्लैंड के पास में नहीं है. तो ये एक प्लस पॉइंट उनके साथ में ज़रूर से है ऑस्ट्रेलिया के साथ में. लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम और अगर इंग्लैंड की टीम, दोनों टीमों को हम देखेंगे अभी के वक्त में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम जो देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे धीरे धीरे इंग्लैंड टीम जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है. जिस हिसाब से उन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो फाइनल मैच है वो बहुत बेहतरीन मैच होगा. और कहीं ना कहीं मुझे अब एहसास ये हो रहा है, या इंट्यूशन से हो रहा है मुझे, कि कहीं वो 2009 वापस जो कह रही थी कि क्या घर वापसी होएगी क्या, तो मुझे लगता है कि वो घर वापसी होने का वक्त आ गया है 5 तारीख को.
3: Well, those chances are emerging from the US as well, where yesterday night England handed DR Congo a defeat in the dying minutes, but today England completing a comprehensive victory over South Africa to romp into the finale. Thanks a lot to each one of our analysts.
4: Thank you very much.
3: Thank you, Dharmendra.
1: Shukriya.
3: And now we'd be back with that final clash, where on one hand, Australia, having been knocked out in the semi-finals of the 50 overs and 20 overs World Cup, would be extremely hungry. So would be England, who got knocked out in 2024 in the league stage itself, despite being very well prepared. So two extremely hungry teams, two teams unbeaten, facing off on the 5th of July. You'd get all the action, the commentary, the analysis right here from Akashvani. And there's a team that works from behind the scenes, the technical team, Sachin, Manoj, Prasoon, Sanjay, Bhojraj, Meena. Production team, Amisha Patel, Swati Kapoor, Tanmay Pant. Producer, Shahnawaz Khan, who worked tirelessly to bring the show and the commentary to you. We'd be back again on the 5th of July with the Summit Clash.
5: Player of the match. अभी अब आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
6: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द सेकेंड सेमीफाइनल T20 cricket match played between England and South Africa of the ICC Women's T20 World Cup 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

इस गाने से पहले आप सुन रहे थे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:46 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:55 पर इसी मीटर पॉइंट पर हम फिर हाजिर होंगे। तो आप इजाज़त दीजिए जावेद खान को। जय हिंद।